0: माँ संजय जी, हम तो भाव गदगद हुए। मित्रों, हम नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा करते हैं। वास्तव में नवरात्रि आपकी आंतरिक शक्ति का जागरण और प्रकटीकरण है। ये जीवन की विनाशकारी और अस्थायी प्रकृति का प्रतीक है। माँ दुर्गा के अनुयायी ये भी मानते हैं कि माँ दुर्गा पृथ्वी पर और उसके बाद के जीवन में उनकी रक्षा करती है जो उन्हें सर्वस्व मानते हैं। चलिए हम उस देवी माँ की आराधना में ये प्रसिद्ध आरती सुनते हैं। इसे जयपुर रेडियो के लिए प्रस्तुत करने आ रहे हैं डॉक्टर लवलेश पुरुषोत्तम, मोनिका दास, शोमा रॉय और तनुजा मुंद्रा।
1: बोल साचे दरबार।

0: बहुत ही मधुर और भक्तिमय प्रस्तुति मोनिका जी, लवलेश जी, शोमा जी और तनुजा जी। मित्रों, इसी के साथ हमारा आज का कार्यक्रम यही समाप्त होता है। हम आशा करते हैं कि आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। जाते जाते मैं लक्ष्मी बालचंद्रन आओ झूमे गाए समूह की ओर से आप सभी श्रोताओं का और जयपुर रेडियो का धन्यवाद करती हूँ। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।
1: नमस्ते।

0: जय माता दी,
1: जय माता दी। आपने सुना संवेद स्वर में महिषासुर मर्दिनी पाठ, इसे स्वर दिया स्वर परिवार के इन सदस्यों ने। आदेश शर्मा शामली यूपी से, अंजू गौड़ मुंबई से, योगेंद्र गौतम यूएसए से, शुभी श्रीवास्तव रायबरेली से, तरुण कोटियान, अमृता, अनीता जी, कविता, सचिन अरोड़ा, निश्चल श्रीवास्तव और उनके सभी साथियों ने। और अब समीर और वीना चौधरी की आवाजों में ये स्तुति।

आपने सुना समीर और वीना चौधरी की आवाजों में ये भक्तिमयी प्रस्तुति देवी माता की स्तुति के रूप में, और अब समीर सुना रहे हैं ये भजन।

0: शेरवाली भजन को आवाज दे रहे थे समीर मुंबई से।
1: डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का ये जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, आपकी आवाज आपकी पहचान। भक्ति धारा स्पेशल में आज कृष्ण जन्माष्टमी के स्पेशल भजन लेके आई हैं नागपुर महाराष्ट्र की साक्षी मेंढकर। आपकी आवाज आपकी पहचान का ये मंच और वेलकम है साक्षी का भजन के साथ।

सांवली सूरत पे मेरा दिल दीवाना हो गया। एक तो तुम देवता हो, दूसरे ये प्रियतम मेरे, और तीसरा सपनों में आना सच में ये बहाना हो गया। और इस अफसाने को सुना रही थी हमारी आज की सुरीली सिंगर नागपुर महाराष्ट्र से साक्षी मेडकर। आइए सुनते हैं साक्षी का अगला भजन।

श्यामा आन बसो वृंदावन में, मेरी उम्र बीत गई गोकुल में। और हम तो ये कहेंगे कि मेरी उम्र बीत गई और आप आन बसो मेरे तन मन में। आप सुन रही हैं विशेष स्पेशल प्रोग्राम भक्ति भावधारा, कृष्ण भक्ति स्पेशल प्रोग्राम जन्माष्टमी के अवसर पर। और गा रही हैं इस मंच की सुरीली सिंगर साक्षी मेंढकर नागपुर से। आइए सुनते हैं। सुना है तेरे दर पे आके मोहन, किस्मत सबकी संवर जाती है। और साक्षी कह रही है तो ये स्वयं साक्षी है, हम क्या कहें, क्योंकि साक्षी का और साक्ष्य का प्रमाण कहते हैं ना, पढ़े लिखे को फारसी क्या, तो वही चीज।

जिसके दर पे आके किस्मत संवर जाती है, उसी का नाम तो कृष्णा है। उसी को हम कृष्ण कहते हैं, उसी को हम माधव माखन चोर कहते हैं, और ये भी कहते हैं जो साक्षी कह रही है।

राधा ढूंढ रही, किसी ने मेरा श्याम देखा, और हम कहेंगे कि साक्षी इस मंच से ढूंढ रही है श्याम को, और हम उस श्याम का, उस रात का, उस अंधेरी रात का इंतजार कर रहे हैं श्याम को देखने के लिए, जो आएंगे और खुशियां हर हाल लेके आएंगे। आप सुन रहे हैं डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो वर्ल्ड, आपकी आवाज आपकी पहचान। राधे, कौन से पुण्य किए तुमने, हरी रोज तेरे घर आते हैं, तुझसे बतियाते हैं, और आज हम भी उम्मीद लगाए बैठे हैं, एक पल एक क्षण हमारी ओर भी देखेंगे श्री कृष्णा। साक्षी मंडेकर का

राधे कौन से पुण्य किए तुमने, हरी रोज तेरे ही घर आते हैं। और साक्षी मंडेकर हर जन्माष्टमी को इस मंच से रोज भजन सुनाते हैं, तो हम साक्षी को कहेंगे यूं ही गाते रहिए, सुरीले भजनों की सौगात यूं ही लाते रहिए। आप सुन रहे हैं डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो वर्ल्ड, आपकी आवाज आपकी पहचान। अच्युतम केशवम राम नारायणम, कृष्ण दामोदरम रामचंद्र भजे। साक्षी मेंढकर की आवाज नागपुर से जन्माष्टमी स्पेशल में हमारे संघ हमारे साथ जयपुर रेडियो वर्ल्ड पर।

आवाज साक्षी मेंढेकर की नागपुर महाराष्ट्र से। जयपुर रेडियो की सिंगर भक्ति भावधारा की स्पेशल पेशकश में साक्षी मेंढेकर।

साक्षी मेंढकर की आवाज में ये आरती उस कृष्ण को समर्पित जिसका हम इंतजार कर रहे हैं।

आरती से वंदन कर रही हैं और अपनी आवाज से खुशबू का चंदन लगा रही हैं कुंज बिहारी को, मधुसूदन मुरारी को, गोवर्धन गिरधारी को, बांके बिहारी को। आइए आरती का आनंद लेते हैं, सब मिलके गाते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं कुंज बिहारी की आरती।

आरती कुंज बिहारी की के गिरधर कृष्ण मुरारी की, और इस आरती को साक्ष्य बना रही थी अपने स्वर में साक्षी मेंढेकर, नागपुर महाराष्ट्र से, जयपुर रेडियो की सुरेली भक्ति रस की सिंगर। बहुत आभार, बहुत धन्यवाद साक्षी, हम सबको भक्ति रस में भिगोने के लिए। यूं ही आते रहिए, गाते रहिए और भक्ति गान के स्वर को गुंजायमान करती रहें। बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। सुनते रहें जयपुर रेडियो, बार बार आपकी आवाज आपकी पहचान। ये डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, जहां मिलती है आपकी आवाज को पहचान, यानी आपकी आवाज आपकी पहचान। डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का ये जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, आपकी आवाज आपकी पहचान। गणेश जो प्रथम पति है, गणेश जो गणनायक है, गणों के नायक गणेश सिद्धि और बुद्धिदायक हैं, उनको हम प्रणाम करते हैं, उनकी गाथा गाते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं। और गणों में सबसे पहले डॉक्टर गाथा।

रक्त वसन जाकोविश गोरी पुत्र प्रिय गणेश का वंदन कर रही थी डॉक्टर गाथा। आपकी आवाज आपकी पहचान। आप सुन रहे हैं गणपति भजन। शुभकामनाओं के साथ आइए सुनते हैं डॉक्टर गाथा का अगला मराठी गणेश।

डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो वर्ल्ड सुन रहे हैं आप। प्रोग्राम गणेश वंदना में अभी आपने सुना हिंदी और मराठी में डॉक्टर गाथा को, आपकी आवाज आपकी पहचान। और आइए अब सुनते हैं मंजू रैना की आवाज में गणपति भजन। एनसीआर दिल्ली से हमारे साथ मंजू रैना अपने गणपति भजन के साथ।

अष्टविनायक श्री सिद्धि विनायक को नमो नमः से वंदन कर रही थी मंजू रैना और रेणु कौल। आपकी आवाज, आपकी पहचान, आप सुन रहे हैं डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो वर्ल्ड। गणपति वंदन में आइए सुनते हैं बिंदु व्यास के भजन। जी हाँ, गणपति भजन बिंदु व्यास अहमदाबाद गुजरात से हमारे साथ।

तेरी छवि अति सुंदर सुखदायक, तेरी छवि अति सुंदर फलदायक। अहमदाबाद गुजरात से बिंदु व्यास का ये गणपति भजन सुनने के बाद आइए सुनते हैं इन्हीं की आवाज में एक और खूबसूरत गणपति वंदना। आपकी आवाज, आपकी पहचान, जयपुर रेडियो पर सुनते हैं।

हे गणपति, हे गणनायक, हर एक ने अपने अपने स्वर में, अपने अपने अंदाज में आपकी वंदना की है। हे गणनाथ, हे चिंतामणि, आपकी सदा जय हो, विजय हो। आपने सुना अहमदाबाद गुजरात से बिंदु व्यास की ये गणेश वंदना। आइए अब सुनते हैं वडोदरा गुजरात से विजया भट्ट अपनी गणेश वंदना के साथ। आपकी आवाज, आपकी पहचान।

0: हैप्पी गणपति चतुर्थी।
1: जय गणपति। वंदन गणनायक, तेरी छवि अति सुंदर सुखदायक। जय गणपति वंदन गणनायक, तेरे नाम को जिसने ध्याया उस पर रहती सुख की छाया। आपने सुना विजया भट्ट अपने खूबसूरत गणपति वंदन के साथ, वडोदरा गुजरात से हमारे साथ रही। और आइए आप सुनते हैं बेंगलोर की ललिता गोयनका का लिखा ये गणपति भजन।

माथे पे है तिलक, मूसे की है सवारी। जी हाँ, यही है गणेश की सवारी। आपने सुना संजू को इस खूबसूरत गणेश भजन में, और इसको लिखा ललिता गोयनका जी ने। आपकी आवाज, आपकी पहचान, आप सुन रहे हैं डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का, जयपुर रेडियो वर्ल्ड, गणेश भजन का ये विशेष प्रोग्राम। और अब अर्चना अग्रवाल और उनकी सखियां बाल गणेश की वंदना कर रही हैं।

बाल गणेश पिता महेश घर मेरे आइयो रे, रंग पर सइयो रे और रंग जमाइयो रे। और रंग जमा दिया अर्चना अग्रवाल मुंबई से अपनी सखियों के साथ इस खूबसूरत समूह भजन में हमारे साथ रही हैं। बहुत धन्यवाद, आपकी आवाज आपकी पहचान। आप सुन रहे हैं डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो वर्ल्ड। आइए सुनते हैं प्रनील पोकरणा की आवाज में ये गणेश वंदना।

एक दंत की वंदना सुन रहे थे आप प्रनील पोकरना की आवाज में। आपकी आवाज, आपकी पहचान, आप सुन रहे हैं गणपति विशेष भजन जयपुर रेडियो वर्ल्ड से। आपकी आवाज, आपकी पहचान। आइए सुनते हैं चोयता और कीनल त्रिपाठी की आवाज में गणेश आरती। आपकी आवाज, आपकी पहचान।

0: गणपति महाराज की
1: जय।
2: जय। और ये जयकारा लगा रही थी अपनी आरती के साथ किनल त्रिपाठी और जोयता चक्रवर्ती। आपकी आवाज आपकी पहचान, आपने सुना
3: यानी आपकी आवाज आपकी पहचान।

0: मुझसे बिछुड़कर खुश रहती हो, मेरी तरह तुम भी झूठी हो। ये तो श्रोता तय करेंगे कि हमारा प्रोग्राम सच्चा है कि नहीं। बहुत ही खूबसूरत गजल हमें सुनाई डॉक्टर गाथा ने इस प्रोग्राम में, जिसका नाम है गाथाई गजल। और चलते चलते क्या कहेंगी डॉक्टर गाथा हमारे लिसनर्स को, कुछ संदेश अपने बारे में कुछ बताएं।
1: लिसनर्स, तो मैं क्या कह सकती हूँ, वही आपने जो कहा ना, सच्चा है या झूठा है वो लिसनर्स ही बताएंगे। और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप सुनते हैं। और
2: हेल्दी सिटीजन्स आर द ग्रेटेस्ट एसेट एनी कंट्री कैन हैव, ये बात कही थी विंस्टन चर्चिल ने, और इस पर गौर फरमाया जाए तो 100% करेक्ट है। तो यही है आज हमारा विषय, आज के एपिसोड में मेरे तकनीकी सहयोगी श्री ओम प्रकाश शर्मा। तो हो जाए बातें दिल की विद सुषमा। नमस्कार, मैं हूँ सुषमा। बहुत ही महत्वपूर्ण है लाइफ की कुछ स्टेजेस, चाइल्डहुड, टीनेज एंड यूथ, जब वृद्धि और विकास अपने चरम पर होते हैं। इन स्टेजेस में शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और व्यावहारिक विकास सभी पर ध्यान देना जरूरी हो जाता है जब हम एक स्वस्थ राष्ट्र की परिकल्पना करते हैं। सो हेल्थ, अ वेरी इम्पोर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, जिस पर आज हम बात करेंगे डॉक्टर हर्ष उदावत से, डायरेक्टर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी एंड लिवर साइंसेज, इटर्नल हॉस्पिटल जयपुर। आपका अपना क्लिनिक भी है, उदावत गैस्ट्रो क्लिनिक इन श्यामनगर जयपुर। डाइजेस्टिव सिस्टम, लिवर, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियाज, इंटेस्टाइन्स, फूड पाइप, स्टमक डिजीजेस, एडिक्शंस, अल्कोहलिज्म, इन सभी की ट्रीटमेंट का पिछले 20 साल का अनुभव आपके पास। अ वंडरफुल डॉक्टर, स्पीकर एंड गाइड। नमस्कार डॉक्टर हर्ष उदावत।
3: नमस्कार सुषमा जी और सभी श्रोतागण।
2: सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि एक स्वस्थ जीवन शैली की परिभाषा क्या है, क्या इसके कोई बेसिक नियम भी है?
3: तो स्वस्थ जीवन शैली की परिभाषा के पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि हेल्थ किसे कहते हैं या स्वास्थ्य किसे कहते हैं। तो उसके अंदर केवल शारीरिक बीमारियां ही नहीं आती हैं, बल्कि एक इंसान को मानसिक बीमारियों से भी दूर रहना होता है, और साथ में सामाजिक और आध्यात्मिक जो स्वास्थ्य है वो भी होना जरूरी है। और कुछ कुछ लोगों ने तो आजकल फाइनेंशियल हेल्थ इंक्लूड कर लिया है। अब अगर अच्छी जीवन शैली नहीं होगी तो ये पूरा जो स्वास्थ्य है वो ठीक नहीं रह सकता। सो अच्छे स्वास्थ्य के लिए अच्छी जीवन शैली भी जरूरी है। और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि ये जितना जल्दी, मेरा मतलब है उम्र में जितनी जल्दी शुरू हो जाए, तो मतलब ये है कि स्कूल लाइफ से, और जब बच्चा बड़ा हो रहा हो उसको ये पता हो कि अच्छी जीवन शैली क्या है, हेल्थ क्या है, तो वो आगे जाके अपने जीवन में उसको ला सकता है। अदरवाइज क्या होता है कि बहुत लेट ये जितने चेंजेस लाना, एक तो बहुत मुश्किल होती है जीवन शैली को चेंज करना, और आजकल तो 30-30, 40-40 साल में ही बीमारी आने लग गई है। तो हम चाहते हैं बीमारी का बचाव, तो इसलिए ये जो हम टॉक हमने प्लान करी है वो है छोटे उम्र के बच्चे, यूथ, टीनेजर्स, वो अच्छी लाइफस्टाइल क्या है उसको पता रखें, और जिससे कि वो बीमारियों से दूर रह सके।
2: तो अच्छे लाइफस्टाइल की जब हम बात कर रहे हैं तो क्या इसके बेसिक रूल्स हैं, सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है।
3: मैं आपको तीन चीजें बताता हूँ कि एक बैलेंस जरूरी है, तो उसको हम कहते हैं कि तीन चीजों का समन्वय जरूरी है। एक तो आहार, एक श्रम और एक विश्राम। तो ये हो गया डाइट, फिजिकल एक्टिविटी एंड एक्सरसाइज, एंड थर्ड इज रेस्ट एंड स्लीप। तो ये सब प्रॉपर होना जरूरी है,
2: बैलेंस होना बहुत जरूरी है।
3: यस जी। और इसके साथ साथ हम दो चीजें मैं और ऐड कर देता हूँ। नंबर वन इज वैक्सीन इन चाइल्डहुड, और दूसरा है एडिक्शन से दूर रहना, नशे से दूर रहना, क्योंकि अगर किसी को नशा हो जाता है तो वो पूरा जो यूथ है वो ही बर्बाद हो जाता है, और फिर कहते हैं कि जो ज्यादा नशा करते हैं या जो एडिक्ट होते हैं उनकी लाइफ स्पैन वैसे ही कम हो जाता है। सो इसलिए इसमें हम दो चीजें और ऐड कर सकते हैं।
2: तो चलिए बात शुरू करते हैं आहार से, यानी डाइट से। क्या ध्यान देने की बातें एक डाइट को लेकर, कैसी हो डाइट और क्या अवॉइड किया जाए?
3: जी, तो अभी प्रेजेंट सिचुएशन में तो जो हमारी लड़ाई है वो है कि कैसे ये जंक फूड और प्रोसेस्ड फूड से दूर रहा जाए। और वो हर कहीं अवेलेबल है, घर में खाना कम बनने लगा है, सो बाहर के खाने पे ज्यादा बाहर का खाना खाते हैं। और इसमें हमें ये देखना होता है कि ये जो भी जंक और प्रोसेस्ड फूड है, इसमें एक तो शुगर बहुत ज्यादा होता है, सॉल्ट बहुत ज्यादा होता है, फैट बहुत ज्यादा होता है, इसके अंदर फूड एडिटिव्स होते हैं, ये सब केमिकल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल अजीनोमोटो, फॉर एग्जाम्पल कलरिंग एजेंट्स, इमल्सिफायर्स। तो ये सब एक तो मोटापा बढ़ाते हैं, मेटाबॉलिक सिंड्रोम एक होता है जिसके अंदर न केवल मोटापा बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो ये सारी जो फूड जो हमारे प्रेजेंट सिनेरियो में चल रहा है, ये सब बीमारियों का दाता है। अब इसकी जगह उल्टा क्या है कि जो भी नेचुरल फूड्स हैं वो हम खा पाए, घर का बना हुआ खाना हो। एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको कि मसाले जो काम में आते हैं आजकल, वो भी पैकेज और डब्बा बंद होते हैं
2: जी।
3: तो क्या नेचुरल मसाले काम में लिए गए हैं? आप फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स, ये सारी जो चीजें हैं ये कितनी नेचुरल हैं, और जितनी नेचुरल होंगी उतना आपके जो है हेल्थ के लिए। फिर आता है कि आजकल जैसे जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं,
2: राइट,
3: जैसे कोल्ड ड्रिंक्स हैं, आर्टिफिशियल जूसेस हैं, एनर्जी ड्रिंक्स हैं, अल्कोहलिक ड्रिंक्स हैं, इनका बहुत ज्यादा फैशन है। तो क्या हम उनकी जगह दूध, छाछ, लस्सी, फ्रूट जूसेस फ्रेश काम में ले सकते हैं? आजकल तो आप देखें कि कहीं भी आप वॉक करने जाएंगे या पार्क के बाहर जो है सब्जियों के और फ्रूट्स होते हैं उनके फ्रेश जूसेस मिलते हैं निकाल। तो ये प्रेजेंट जनरेशन के ना तो उनका टेस्ट डेवलप है ना उनको पता है कि ये भी चीजें होती हैं। इनको हम कैसे इंट्रोड्यूस, तो ये एक बड़ा चैलेंज है।
2: तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ा सवाल है हमारे सामने कि कैसे इन चीजों को अट्रैक्टिव बनाया जाए कि वो बच्चा भी उनको लेने को तैयार हो जाए।
3: बिल्कुल, अब आप सोचिए, आप छोटे बच्चे को आपने कोई भी कोल्ड ड्रिंक दे दी, तो आपने जब कोल्ड ड्रिंक दे दी तो उसका जो टेस्ट है उसका और छाछ का तो फर्क होगा, जूस का फर्क होगा ना। सो बच्चे को तो वही चीज अच्छी लगेगी, वो कैसे ये करेगा? सो कहने का मतलब ये है कि फूड में एक चीज तो होगी क्या खाएं क्या ना खाएं। सो मोस्ट ऑफ द टाइम्स घर पे ही खाना खाएं तो ज्यादा अच्छा है। रिलाइंग ऑन आउटसाइड फूड मे नॉट बी सेफ एंड हाइजीनिक। दूसरा है कि ये टाइमिंग ऑफ मील्स क्या रखें। सो ऐसा कहा गया है कि भाई एक समय बांध लेना चाहिए कि जैसे सुबह का खाना आपने 7 से 9 बजे के बीच में ले लिया, दोपहर का 12 से 1 बजे का बीच में हो गया, रात जो डिनर है वो 5 से 7 बजे के बीच में हो गया। कहते हैं 8 बजे के बाद तो खाना ही नहीं खाना चाहिए, और जितना आप भूखा सोएंगे उतना अच्छा है। कि जरूरी है क्या कि हम 3 ही मील लें? तो नहीं, 1 या 2 मील भी ठीक है। पानी के बहुत रूल्स हैं।
2: अच्छा,
3: तो उसमें पहला कहा जाता है कि हाँ, जैसे हम सुबह उठते हैं तो करीब 2 से 3 ग्लास जो है ल्यूक वार्म वाटर या गर्म पानी या आपके मटके में रखा हुआ पानी या कॉपर के तांबे में रखा हुआ पानी, तो ये सब पानी आप सुबह ले सकते हैं बिफोर ब्रशिंग टीथ, और उसको आप धीरे धीरे सिप बाय सिप पानी पिए, और उसके 45 मिनट तक पानी ना पिए। जब आपने पानी ले लिया सुबह ये 2 से 3 ग्लास बैठ के शांति से, अब उसके 45 मिनट में ब्रेकफास्ट या बेड टी जो लेते हैं वो सब नहीं लेना चाहिए
2: जी।
3: ठंडा पानी जैसे फ्रिज में रखा हुआ पानी है बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। पानी जो है खाने के साथ बिल्कुल न दें, 1 घंटे पहले या 1 घंटे बाद में ही लें। प्लास्टिक बॉटल्स में पानी कितना प्रचलित है आजकल,
2: बिल्कुल
3: वो बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। और आजकल तो ये होता है कि बिस्लेरी की बॉटल में एक बार पानी पिया और उसी को काम में लेते रहते हैं, और वो धूप में भी पड़ा रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। कहते हैं प्लास्टिक के साथ पानी तो कैंसरस भी हो सकता है। सो ये छोटी छोटी चीजें हैं। फॉर एग्जाम्पल अब लोगों को सीखना चाहिए कि भाई हमें जैसे जितनी भी कहते हैं व्हाइट चीज है वो सब खराब है। जैसे मान लीजिए शुगर है, हमारे को लगता है जितना व्हाइट उतना अच्छा, सॉल्ट जितना व्हाइट उतना अच्छा। तो जैसे शुगर के क्या अल्टरनेटिव्स हो सकते हैं? सो गुड़ है, गुड़िया शक्कर है, हनी है, ये काम में लिया जा सकता
2: जी।
3: जो अपना सॉल्ट है जो हम बिल्कुल एकदम सफेद काम में लेते हैं उसकी जगह सेंधा नमक इज बेस्ट, काला नमक अच्छा है, हमारे सांभर लेक का जो नमक आता है वो बहुत अच्छा है। फिर हम तेल पे आ सकते हैं, हम बिल्कुल सफेद तेल काम में लेने के आदि हो गए हैं जिसका ना टेस्ट है और ना जा उसकी चिकनाई है। तो कहते हैं कि कच्ची घानी का तेल बेस्ट है। अब वो के सरसों का तेल हो सकता है, मूंगफली का तेल हो सकता है, कोकोनट ऑयल हो सकता है, तिल्ली का तेल हो सकता है, या आपके जो ऑलिव ऑयल है वो हो सकता है। सो उस ऑयल को रोटेट करना है हर 3 से 4 महीने में, एक ऑयल को हमेशा काम में मत लीजिए। एंड अवॉइड प्रोसेस रिफाइंड एंड सुपर रिफाइंड ऑयल। ये सारी चीजें जो है इसका, हाँ इसका थोड़ा सा ज्ञान लेना पड़ेगा और इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा डिटेल में तो हम बात नहीं कर सकते, बट ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि घर में अगर लोग काम में लेंगे तो बच्चों की हेल्थ के लिए भी आगे अच्छा।
2: बस सबसे पहले बड़ी बात ये हो जाती है कि बचपन से अगर ये आदतें डाल ली जाएंगी तो शायद उनके लाइफस्टाइल का हिस्सा बनने में मुश्किल नहीं होगी, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। आहार की बात आते हैं श्रम पर, आपने श्रम की बात की यानी फिजिकल एक्टिविटी की बात की, और आप तो खुद एक अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन रहे हैं, क्रिकेट बीइंग योर परफॉर्मिंग एरिया, तो कितना जरूरी है स्पोर्ट्स, कितनी बड़ी भूमिका निभा सकता है ये हमारे अच्छे स्वास्थ्य की कोशिश में, कैसी हो हमारी फिजिकल एक्टिविटी?
3: पहली चीज जो लेते हैं वो उसको हम कर सकते हैं डेली वॉक, जो कि करीब करीब 45 मिनट से 1 घंटे की होनी चाहिए, या उसकी जगह साइकिलिंग कर सकते हैं, या स्विमिंग कर सकते हैं, या जॉगिंग। इसके साथ साथ जो है आपको ऐड करना पड़ेगा, इधर यू डू योगा और यू मे डू अदर एक्सरसाइजेस एज इन जिम। इसके साथ साथ जो है, क्योंकि हम बच्चों और इनकी बात कर रहे हैं टीनेजर्स की, आई मीन इफ दे डू अ कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट नथिंग लाइक इट, क्योंकि वहां सब कुछ कवर हो जाता है। आप सुबह 2 घंटे खेलते हैं, शाम को 2 घंटे खेलते हैं, इतना आपने टाइम दे दिया कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट में, तो आप वैसे ही फिट रहेंगे और लंबे समय तक फिट रहेंगे। और इस सब फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज, योगा से आपकी फिजिकल फिटनेस तो आती आती है, तो उसके साथ और भी बहुत फायदे हैं कि आपका जो सोचने की शक्ति है, आपकी रिटेन करने की शक्ति है, मेमोरी है, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, इन सब से आप दूर रहते हो, नींद अच्छी आती है, तो इसके बहुत फायदे हैं। स्लिम रहते हो, आपका वजन नहीं बढ़ता।
2: अच्छा।
3: वजन नहीं बढ़ता, बहुत सारी बीमारियों से आप दूर रह सकते। फिजिकल स्ट्रेंथ जब आपकी होगी सो आपके जॉइंट प्रॉब्लम्स जो है वो कम होंगी, आप कंसंट्रेट अच्छा कर पाओगे, आपकी पढ़ाई अच्छी होगी। कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स में जाने से कहते हैं कि पीपल लर्न हाउ टू फेस स्ट्रेस मच बेटर देन अदर्स, तो इसके बहुत फायदे हैं।
2: डिसिप्लिन सीखते हैं हम, टीम जो टीम में काम करने का एक तरीका
3: होता है, सीखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
2: आध्यात्मिक हेल्थ, जी आध्यात्मिक हेल्थ की आपने बात की थी, आई थिंक उसमें मेडिटेशन भी एक रोल प्ले कर सकता है।
3: यस ऑफ कोर्स, जैसे योगा इज आल्सो अ पार्ट ऑफ जो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट है उसमें, और अब तो काफी पॉपुलर भी हो चुका है योगा। और इसमें आप ये देखिए कि योगा और एक्सरसाइज इन जिम में जो फर्क है वो ये है कि योगा जो है वो शांति लाता है, सेरेनिटी, क्योंकि जो हॉर्मोन्स निकलते हैं वो दे आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम जो हॉर्मोन्स निकलते हैं एक जिम में एक्सरसाइज करने से। म्यूजिक चल रहा है, आप एक्सरसाइज कर रहे हो, आप अपने एफर्ट जो लग रहा है वो बहुत बहुत ज्यादा है जो आपको नहीं चाहिए। सो वहां के जो हॉर्मोन्स हैं वो आपको फ्लाइट फ्राइट फियर के हॉर्मोन्स हैं, एड्रेनलिन रश जिसको अपन हम कहते हैं, एड्रेनलिन नॉरएड्रेनलिन निकलते हैं। योगा करने से जो है जो हॉर्मोन्स निकलते हैं वो आपको शांति, पीस, ये सब देते हैं। प्लस इसमें मेडिटेशन जो है या चैंटिंग, ये जो है जो आप कह रही हैं आध्यात्मिक जो स्वास्थ्य है उसके लिए बहुत बहुत मतलब उच्च कोटि के ये कुछ ऐसे नियम हैं जो कि आपकी बहुत अच्छी हेल्थ दे सकते हैं। अब ये अगर बच्चों की लाइफ में शुरू से आ जाए तो क्या फायदा क्या नुकसान की बात नहीं है, फायदा तो होना ही होना है, बट पहले से अगर हम ये सोचें कि हम इस फायदे के लिए कर रहे हैं तो वो भी ठीक नहीं है।
2: जी
3: वो करेंगे तो फायदा डेफिनेटली दिखेगा। और चैंटिंग में अगर आप देखेंगे, हाँ बिल्कुल, और चैंटिंग भी क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, अगर आप कहते हैं कि अगर आप 5 से 10 मिनट की ओम चैंटिंग करें, ओम की चैंटिंग, या भ्रमरी करें, तो ब्रेन में इतने अच्छे वेव्स निकलते हैं, तो ब्रेन की जो पावर है वो बढ़ती है। सो बच्चों के और जो टीनेजर्स हैं उनकी जो फोकस है वो एक काम करेंगे तो उसमें फोकस ज्यादा रहेगा, अटेंशन स्पैन जो है वो बहुत अच्छा बढ़ेगा, मेमोरी बढ़ेगी। कहते हैं ब्रेन के जो अंदर सर्किट्स होते हैं वो बढ़ जाते हैं, ब्रेन का वॉल्यूम बढ़ जाता है। सो मेडिटेशन, चैंटिंग, ये तो इतनी अच्छी चीजें हैं, बट अनफॉर्चुनेटली ना तो हमें कभी सिखाई गई और लाइफ के काफी एंड तक आते आते ये सारी चीजें पता। सो जो आपने स्पिरिचुअल आध्यात्मिक स्वास्थ्य की बात करी, वो अगर बच्चों में हो जाए तो बहुत अच्छी बात है।
4: बिल्कुल, और शुरू से हो जाए तो वही लाइफस्टाइल का हिस्सा बनने में देर नहीं लगती। तो एक बैलेंस बहुत अच्छा सा आपने डिस्क्राइब किया, जिसमें बहुत सारी फिजिकल एक्टिविटीज के साथ साथ मेडिटेशन को जोड़ के बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है। राइट, अब आते हैं विश्राम पर, आपकी तीसरा जो पॉइंट था विश्राम यानी कि रेस्ट। रेस्ट की इम्पोर्टेंस मुझे लगता है जेन जी के पास तो जैसे ही नहीं, लेकिन हाँ क्या इम्पोर्टेंस है इसकी, ये भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है और किस तरह से करती है वो आप सबको समझाएं।
3: सो बॉडी और माइंड बनाया इसलिए गया है कि थोड़ा रेस्ट मिले, मतलब 24 आवर्स कोई भी चीज नहीं चल सकती है, बट हम लोग सब ऐसे हो गए हैं कि 24 आवर्स इन कॉम्पिटिशन, आपको वर्क करना है, मेहनत करनी है, टाइम मिला मतलब मल्टी टास्किंग करनी है और फिर उस पर रेस्ट रह जाता है। सो कुछ नहीं कर रहे तो आप व्हाट्सएप पे हो, आप किसी जूम मीटिंग पे हो, आप अपने काम को एक्सटेंड करते हो। तो कहते हैं कि स्लीप जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए, ये करीब 9 से 12 घंटे की हो सकती है, टीनेजर्स के लिए 8 घंटे की हो सकती है और एक अडल्ट के लिए 8 घंटा तो जरूरी है। ऐसा भी कहा गया है कि अगर आप दोपहर में 45 मिनट सो जाते हैं, 45 मिनट्स जो आपकी नैप होती है आफ्टरनून की, अगर आप वो कर लेते हो हाँ, तो वो आपकी प्रोडक्टिविटी को और बढ़ाता है। आपके बॉडी को और ब्रेन को रिचार्ज होना भी जरूरी है। सोचिए आपकी, हम लोग सब जो है या बच्चे भी हैं, एक एक बजे तक सोना और फिर सुबह बच्चे जो है सुबह सुबह 6 बजे उनको उठा देते हैं स्कूल जाने के लिए, 7 बजे जाने के लिए, तो उनको क्या रेस्ट मिलेगा। और फिर घर पे आके नो गेम्स नथिंग, जस्ट सिट इन फ्रंट ऑफ टीवी या व्हाट्सएप या आप एक सेल फोन हाथ में दे देते हैं, सो वो रेस्ट तो कहीं मिलता ही नहीं है।
4: बिल्कुल, और ये सेल फोन आईपैड इसकी जो भी लाइटिंग है या जो भी इफेक्ट्स हैं वो हम सोते समय जरूर हाथ में रखते हैं तो वो भी नुकसान पहुंचाते हैं, बिकॉज हम लोग उसको ही देखते देखते सो रहे हैं।
3: हाँ, उससे नींद नहीं आएगी क्योंकि वो जो ब्राइट लाइट होती है वो सोने नहीं देती है। वो जो स्लीप एरिया है उसको जो स्लीप एरिया है वो भी रिलैक्स नहीं हो पाता, वो भी एक्टिवेटेड रहता है तो नींद आती नहीं,
4: थॉट्स चलते रहते हैं, इसलिए मैं शांत नहीं होने देती।
3: जी,
4: तो रेस्ट की वाकई बहुत इम्पोर्टेंस है और विश्राम करना बहुत जरूरी है, और वो भी कुछ कुछ घंटे जो डॉक्टर साहब ने बताए हैं उनको जानकर पहचानकर इसकी इम्पोर्टेंस बच्चों को समझाना, टीनेजर्स को समझाना, सबको समझाना बहुत जरूरी है। तो समझने की बात है, इन तीन चीजों पे हमने बात करी।
3: आपने ये कहते हैं ना, एक चीज और मैं ऐड करना चाहता हूँ, हमारा एक ब्रह्म मुहूर्त का कंसेप्ट है।
4: हाँ,
3: कि आप 4 बजे उठे तो मिरेकल्स होंगे, तो 4 बजे के यहाँ 10-11 बजे तक ही लोग नहीं उठ पाते। सो आई मीन वो कंसेप्ट्स ना पता है ना हम वो कर पा रहे हैं।
4: हम अपनी पुरानी चीजों को भूल गए हैं और उसी से हम नुकसान उठा रहे हैं, वापस उन्हीं में लौटना पड़ेगा। बिल्कुल, अब बात करते हैं, आपने वैक्सीनेशन का एक पॉइंट रखा था जिसमें कि आजकल बहुत सारे वैक्सीनेशन जुड़ गए हैं जो अलग एज ग्रुप्स के लिए होते हैं, बच्चों से शुरुआत होती है ये तो सब जानते ही हैं, लेकिन बच्चों से लेकर और टीनेज तक आते आते क्या कुछ जरूरी है वैक्सीनेशन के रूप में, वो जरूर बताएं।
3: जी हाँ, सो मेरे ख्याल से एक आपका जो भी पीडियाट्रिशियन है और आपके जो भी डॉक्टर हैं उनसे जरूर मिलके क्लियर कर लें कि भाई हमारे बच्चे के लग चुके हैं और क्या क्या और वैक्सीन की जरूरत है, तो वो बहुत बहुत जरूरी है। क्योंकि जैसे हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस ए है, टाइफाइड है, ट्यूबरक्लोसिस है, ऐसे पीडियाट्रिशियन आपको बता पाएंगे कि मेनिंजाइटिस है, न्यूमोकोकल वैक्सीन है, डीपीटी है, ये तो जनरली लगते ही हैं, पोलियो है, ये सब। बट जरूरी है कि वैक्सीनेशन का हमें ध्यान रखना चाहिए और ये हमारे डॉक्टर से जरूर डिस्कस कर लेना चाहिए, क्योंकि कुछ बीमारियां देखिए आजकल ऐसा है कि जैसे फॉर एग्जांपल टैटूज हैं
4: जी,
3: नाउ दे आर सो कॉमन,
4: वेरी कॉमन,
3: एंड उससे हेपेटाइटिस बी सी एचआईवी होने के चांस रहते हैं, स्किन डिजीजेस के चांस रहते हैं। सो अगर वैक्सीनेटेड हैं तो एटलीस्ट ये तो नहीं होंगे।
4: फीमेल्स के लिए भी कुछ स्टार्ट किया गया था अगर हम वैक्सीनेशन की बात करते हैं स्पेशल जी।
3: हाँ, जैसे आजकल एक ह्यूमन पेपिलोमा वायरस एचपीवी के अगेंस्ट वैक्सीन आने लगा है, तो वो कहते हैं कि जो अपने गर्ल्स हैं और यंग एज के अंदर ही उनको लगा लिया जाए। कुछ लोग तो अपने जो है सन्स को भी लगा रहे हैं, लड़कों को भी लगवा रहे हैं, तो उससे एक बीमारी होती है वॉर्ट्स जो देखने को मिलते हैं, और ह्यूमन पेपिलोमा वायरस से जो बीमारियां होती हैं वो उससे बच सकते हैं। तो ये डिस्कस करना चाहिए वैक्सीनेशन इन दिस एज ग्रुप, पेरेंट्स को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए।
4: अब हम एक बहुत बड़े मुद्दे पे आना चाहेंगे जो हेल्थ को, खास करके टीनेजर हेल्थ को बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं, और उस यंग एज में इसकी शुरुआत हो जाती है जब बच्चे अभी स्कूल में ही होते हैं। मैं बात कर रही हूँ ड्रग्स की। उसके बाद आता है टबैको और फिर आता है अल्कोहल। तीनों ही हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही अब्यूजिव साबित हो रहे हैं, तो कैसे इनका इस तरह से निदान हो, क्या सॉल्यूशंस हैं?
3: देखिए, पहली चीज तो ये ध्यान रखने की है कि पेरेंट्स को जो है बच्चों से बात करनी चाहिए कि भाई ये चीज एक्सपेरिमेंट के लिए नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अल्कोहल टोबैको ड्रग्स, आप स्कूल्स में जाएंगे तो वहीं पर ही जो है शुरू हो जाता है ऐसा।
4: बिल्कुल,
3: पेरेंट्स को बताना पड़ेगा और बच्चों को भी जो है सोसाइटीज को मिलकर बताना चाहिए कि आप जितनी जल्दी एक ड्रग ऑफ अब्यूज लोगे, फॉर एग्जाम्पल अल्कोहल की बात करते हैं, अगर जो लोग 13 साल में शुरू करेंगे तो उसमें 100 में से 50% बच्चे जो हैं वो एडिक्शन से ग्रस्त हो जाएंगे, मतलब वो अल्कोहलिज्म उनको हो जाएगा, वो एडिक्ट हो जाएंगे। 21 साल के बाद लेते हैं तो चांसेस हैं कि करीब 10-20% लोगों को ये बीमारी होगी, उससे थोड़ा और ऊपर लेते हैं तो 8-12% को ये बीमारी होगी। अगर आप अल्कोहल को जितना जल्दी लोगे या ड्रग्स को जितना जल्दी लोगे, ज्यादा चांस है कि आप एडिक्शन में चले जाओगे, आप एडिक्ट बन जाओगे। तो सोशल ड्रिंकिंग अलग है, दैट इज डिफरेंट, बट देन वंस आप अल्कोहल ले लोगे बचपन में तो ज्यादा चांस है कि आपको एडिक्शन की बीमारी लगेगी। और कोई भी एडिक्शन की बीमारी आपके हेल्थ को असर करती है, फॉर एग्जाम्पल आप टोबैको ले लो, बहुत जल्दी कैंसर हो जाएगा, मुंह का कैंसर हो जाएगा, सांस की प्रॉब्लम होने लग जाएगी, लंग्स की प्रॉब्लम होने लग जाएगी। सोचिए एक बच्चा जो 13 साल में अल्कोहल शुरू कर देता है तो वो 25 साल तक आते आते तो 12 साल हो गए लेते हुए, तो 30-35 साल के बीच में तो उसका लिवर डैमेज हो जाएगा, पैनक्रियाटाइटिस हो जाएगी, बहुत कुछ हो जाएगा। और अल्कोहल एंड टोबैको तो 15 साल और 50 साल के बीच में मौत के सबसे बड़े कारण। और ऐसा भी कहा गया है जो ड्रग्स हैं, आजकल जो ड्रग्स चल रही हैं
4: जी,
3: जो ड्रग एडिक्ट होते हैं उनकी तो लाइफ वैसे ही बहुत कम होती है, उनकी यूजुअल लाइफ नहीं होती है, लाइफ स्पैन नहीं होता है।
4: आप बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं जिनमें अल्कोहलिज्म और टोबैको को लेकर जो अब्यूज है उनकी हेल्थ के साथ हो रहा है, क्या मेंटालिटी आप देखते हैं या किस तरह से जो ट्रीटमेंट प्रोसीजर है वो चलता है और कैसे वो रिस्पॉन्ड करते हैं?
3: ये बहुत, पहले तो ट्रीटमेंट हर जगह ना तो अवेलेबल है ना एक्सपर्टीज अवेलेबल है, दूसरा अगर आप ट्रीटमेंट देते भी हैं प्रॉपर तो इसके रिजल्ट्स बहुत खराब है।
4: अच्छा,
3: क्योंकि इसके अंदर दवाइयां कम काम करती हैं और मरीज की तरफ से जो चेंज है, जो बदलाव है उसको लाना है, उसके थॉट्स में जो चेंज लाना है, एक्शन में जो चेंज लाना है, इमोशनल स्टेट में जो चेंज लाना है, वो उस मरीज को ही करना है, उसकी फैमिली सपोर्ट कर सकती है, लेकिन दवाइयां एक हद तक ही कारगर है। तो जो दवाइयां हैं वो ठीक है, विड्रॉल है कि अगर छोड़ना है तो हम विड्रॉल का ट्रीटमेंट देते हैं जिससे कि वो छोड़ना उसको थोड़ा सा कंफर्टेबल रहे, लेकिन ये दवाइयां पूरी जिंदगी नहीं चलती हैं। उसको एक ऑब्सेशन है, आप सोचिए एक अट्रैक्शन है, एक्सट्रीम अट्रैक्शन है अल्कोहल के प्रति या तंबाकू के प्रति या ड्रग के प्रति, तो वो जब एक बार छोड़ देता है अब उसको वापस वो नहीं लेना, तो उसके लिए उसको बहुत मेहनत करनी पड़ती है
4: राइट।
3: और वो जो समझ है, वो जो समझ है और जो आप इसको बोल दीजिए, चलिए मैं विल पावर बोल देता हूं, जितना जल्दी कोई भी नशा शुरू होता है चांसेस ज्यादा होते हैं कि वो उसका एडिक्ट बन जाए। एक तो सोशल इंटेक होता है, जैसे सोशल ड्रिंकिंग है कि शराब को कभी होली दिवाली पिए, लेकिन जो बच्चे 15 साल के पहले किसी भी चीज को लेते हैं, फॉर एग्जांपल अल्कोहल को ही लेते हैं, तो उनका चांस एडिक्ट होने का करीब करीब 50% है। मतलब 100 बच्चे अगर लेंगे तो 50 बच्चे जो है एडिक्ट बन जाएंगे इन फ्यूचर। अगर ये ही 21 साल के बाद लिया जाए तो करीब करीब जो प्रतिशत है वो होगी 8-12% होगी उनके उनका चांस होगा कि वो एडिक्ट बन जाए। इसलिए पेरेंट्स को ये ध्यान रखना चाहिए और बच्चों को भी ये ध्यान रखना चाहिए, उनसे बार बार बात की जानी चाहिए कि आपको एक्सपोज किया जाएगा सोसाइटी में, आपके खुद के ही फ्रेंड्स करेंगे, आपके सीनियर्स करेंगे, जहां आप जॉब कर रहे हैं वो लोग करेंगे, कुछ तो इसका बिजनेस करते हैं वो लोग करेंगे कि भाई आप ये ट्राई करो, एक्सपेरिमेंट करो। तो बच्चों को ये सिखाना है कि एक्सपेरिमेंट कुछ चीजों से नहीं करना। किन किन चीजों से? टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट्स, अल्कोहल, ड्रग्स ऑफ अब्यूज, फॉर एग्जांपल हशीश, चरस, गांजा, कोकेन, मौली, ऐसे ढेर सारे पदार्थ। दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि एक तो जो नशा है उसका ट्रीटमेंट हर जगह आपको मिलेगा नहीं, नॉट एवरीबडी इज ट्रेन्ड टू ट्रीट सच डिजीजेस रादर एडिक्शन। दूसरा, इसका जो रिजल्ट है वो ही बहुत खराब है। मतलब आप देखिए कि अगर अच्छे सच्चे सेंटर में भी आप देखा जाए तो करीब केवल 50% ही छोड़ पाएंगे, बाकी लोग नहीं छोड़ पाएंगे। अच्छा। क्योंकि जो दवाइयां हैं वो एक हद तक काम करती हैं, इम्पॉर्टेंट चीज जो काम करती है कि वो जो एडिक्ट है वो अपने थॉट्स में, अपने एक्शंस में और अपने इमोशंस में कैसे चेंज लाए। वो क्या चेंज लाना है वो ना तो आसपास के लोगों को पता है, तो उन लोगों को कैसे ढूंढे कि जो ये चेंज ला सकते हैं उसके अंदर, तो वो सपोर्ट मिलना मुश्किल होता है, सबको नहीं पता कि कहाँ वो सपोर्ट मिले। दूसरा, इस एज के अंदर जो हमारा ब्रेन का एक पार्ट होता है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स,
4: जी,
3: वो डिसाइड करता है कि मुझे अब ये नशीला पदार्थ आगे लेना है या नहीं लेना है।
4: नाउ व्हाट विल बी योर मैसेज फॉर ऑल, अपनी ओवरऑल जो हेल्थ है, जो ओवरऑल हेल्थ है उसको अच्छा रखने में किस तरह की भूमिका हर शख्स निभा सकता है, क्या कर सकता है?
3: जी, तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि जो हेल्थ है वो एक बहुत इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट है लाइफ, क्योंकि हमारा जो जो हमारा फोकस है वो हेल्थ के ऊपर ना होके और दूसरी जगह ज्यादा है, पहली चीज। दूसरी, हेल्थ केवल ये नहीं है कि केवल फिजिकल डिजीज हो, ऐसा नहीं है। आपको फिजिकल जो डिजीज है उनसे भी दूर रहना है, मेंटल इलनेसेस से भी दूर रहना है, इमोशनल प्रॉब्लम से भी दूर रहना है, आपको सोसाइटी में अच्छी तरह रहना आना चाहिए, आपके रिलेशनशिप अच्छे होने चाहिए, आपकी जो स्पिरिचुअलिटी है वो भी अच्छी होनी चाहिए और आपकी फाइनेंशियल हेल्थ भी अच्छी होनी चाहिए। ये सब एक स्वास्थ्य जरूरी है। अब अगर आप चाहते हैं कि आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ ठीक रहे, मैंने 3 आयाम बताए जिसमें बैलेंस जरूरी है। एक आपकी फिजिकल एक्टिविटी एंड एक्सरसाइज या श्रम, दूसरा विश्राम, नींद या स्लीप एंड रेस्ट, और तीसरा हो गया आपकी डाइट या आहार। सो इनका बैलेंस इन तीनों में बहुत जरूरी है। फिर हम इसमें 2 चीज और ऐड कर देते हैं, एक वैक्सीनेशन जो कि कुछ कुछ बीमारियों से बचाता है। अगर वैक्सीनेशन नहीं होगा तो वो बीमारियां होंगी, तो इसलिए पेरेंट्स को जरूरी है कि वो अपने बच्चों के वैक्सीनेशन पे बहुत जरूर जरूर ध्यान दें। और एक चीज हमने और डिस्कस करी वो है एडिक्शंस, एडिक्शन लाइक तंबाकू, अल्कोहल एंड वेरियस ड्रग्स, ये बच्चे की आगे की लाइफ को पूरी तरह बर्बाद कर देता है, लाइफ स्पैन कम कर देता है और पूरी की पूरी तरह फैमिली लाइफ खराब हो जाती है। सो मेरा मैसेज ये है कि कोई भी बच्चा जो है पर्टिकुलरली 21 साल से पहले इन चीजों का एक्सपेरिमेंट ना करें। बाकी इन सब चीजों के बारे में और भी ज्ञान अर्जित करना बहुत जरूरी है। तो आपको केवल डॉक्टर्स ही नहीं बट बहुत सारे लोग हैं जो आपको डाइट के बारे में, एक्सरसाइज के बारे में और रेस्ट के बारे में बता सकते।
4: बिल्कुल, लेकिन सही स्रोत से ही आप अपनी जो भी ये जानकारी है उसको लें, वो बहुत जरूरी है
3: जी।
4: सो डॉक्टर हर्ष रुदावत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस खास बातचीत के लिए और इतनी अहम बातों को सभी के साथ शेयर करने के लिए, इस अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए। थैंक यू सो मच।
3: थैंक यू सुषमा जी, और आप ये टॉपिक लेकर आई और ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है और अभी प्रेजेंट सिनेरियो के लिए तो बहुत ही बहुत एप्ट है। तो थैंक यू।
5: जयपुर से निकली गाड़ी दिल्ली चले हल्ले हल्ले दिदिन तिनक दिन दिदिन तिनक दिन। अरे हल्ले हल्ले क्यों, जल्दी जल्दी डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से जयपुर रेडियो ऐप अभी इसी वक्त और आनंद लीजिए अपने मन पसंद गीतों का कहीं भी कभी भी। जयपुर रेडियो, आपका अपना रेडियो।

0: Oh no, no need to be sad now. You can do all of this on a click away through Jaipur Radio. Send messages and dedicate your favorite songs to your loved ones on your favorite program. Your voice, your identity. So what are you waiting for? Download Jaipur Radio app through Play Store and tune into your favorite songs. Celebrate your special occasion only on your own radio, Jaipur Radio.
1: डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का ये जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, आपकी आवाज़ आपकी पहचान। आज एक ऐसे विषय को लेकर हम उपस्थित हुए हैं जिस विषय की आज के संदर्भ में बहुत अधिक सार्थकता है, और वो विषय है हमारी दिनचर्या, हमारा खान पान, और उसमें यदि योग को शामिल कर लें तो क्या बात है। तो इस दिनचर्या को जब तक हम नियंत्रित नहीं करेंगे, नियोजित नहीं करेंगे, तब तक हम कई बार कहते हैं कि हम बहुत बहुत व्यस्त रहता हूं, बहुत बिजी रहता हूं। असल में जो ऐसा कहते हैं वो ना तो व्यस्त रहते हैं ना बिजी रहते हैं, वो अस्त व्यस्त रहते हैं। यानी उनकी लाइफस्टाइल जो है वो बहुत ही इधर उधर होती है, कोई भी समय निर्धारित नहीं होता, ना उनके सोने का, ना उनके खाने का, ना उनके पीने का, ना जीने का। तो जीना दुभर हो ही जाता है ऐसे में। तो इसी चिंतन को लेके, इसी विषय को लेके हमारे साथ आज हैं कला सिंह बिट्टू। हम वेलकम कर रहे हैं और आप अपनी कला से हमें देंगी सलाह, और यदि इनकी सलाह हम मानेंगे और उसको व्यवहार में अपने जीवन में लाएंगे तो हमारी दिनचर्या, हमारा जो रोजमर्रा का जीवन है वो सुखी और समृद्ध हो सकता है। तो वेलकम है कला सिंह बिट्टू का जोधपुर राजस्थान से जयपुर रेडियो के इस मंच पर, गुलाबी नगरी जयपुर के इस मंच पर, जिसका नाम है आपकी आवाज आपकी पहचान। और आज कला सिंह अपनी आवाज के माध्यम से आपको बहुत ही उपयोगी सलाह देने आई हैं पूरी दुनिया को, क्योंकि हमारा ये मंच, ये आवाज पूरी दुनिया तक पहुंचती है। तो वेलकम है, स्वागत है कला जी आपका।
2: बहुत बहुत शुक्रिया सर। मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है एज ए हेल्थ कोच और एज ए योगा एक्सपर्ट
1: जी,
2: आजकल कोरोना में बहुत बीमार हो गई थी सर, और सांस की दिक्कत थी मुझे, उसके बाद मुझे सर्वाइकल पेन भी स्टार्ट हो गया, और कोटा शिफ्ट होने के बाद पानी की वजह से रूटीन चेंज हो गया, तो डाइजेस्टिव सिस्टम भी बिगड़ गया, मेरे हेडक भी मेरे शुरू हो गया था, और विमेंस इश्यूज भी मुझे काफी प्रॉब्लम हुआ था पीसीओडी में। तो मैंने सर इसी दौरान अपना योगा में डिप्लोमा किया गुरुकुल यूनिवर्सिटी से, स्वामी नारायण गुरुकुल यूनिवर्सिटी अहमदाबाद। तो उस दौरान जब योग, हाँ जी सर, तो जब मैंने अपना योगा में डिप्लोमा शुरू किया तो आप बिलीव नहीं करेंगे कि एक एज के बाद आपसे स्टडी नहीं होती है, अगर आप बीमार है तो बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत की और मैंने अपना योगा में डिप्लोमा स्टार्ट किया। जैसे जैसे मैं योग करती गई तो मुझे चेंजेस लगे कि मेरा सर्वाइकल चला गया है, मेरा केड़ी में दर्द था वो चला गया है, मेरे विमेंस इश्यूज थे वो चले गए, मेरे जॉइंट्स पेन चले गए, और जो हेडक माइग्रेन था, बैक पेन था, सब गायब हो गए, मुझे कब गया पता ही नहीं चला सर। तो ये सारा जो संभव हुआ है जी, ये सब योग के माध्यम से पॉसिबल हुआ।
1: योग की स्टडी के साथ आप उसका प्रैक्टिकल भी करती रही, मतलब ये था।
2: बिल्कुल हाँ जी, और उसके दौरान जब मेरा ये कंप्लीट हुआ तो वहीं से मैंने स्वामी नारायण गुरुकुल यूनिवर्सिटी से अपना हेल्थ कोच का डिप्लोमा भी किया, क्योंकि मुझे कमी लगी कि अभी भी कुछ कमी है, कुछ और करूं कि मैं स्वास्थ्य को लेके ना केवल अपना ध्यान रख सकूं बल्कि अपने परिवार, अपने फैमिली, दोस्त, जितने भी जानकार हैं उनको भी उसका बेनिफिट हो।
1: बिल्कुल।
2: आजकल क्या है सर, दवाइयां तो सारे ही खाते हैं। उसका मेन रीजन जो मैं मानती हूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस है, वो है हमारी दिनचर्या और हमारा खान पान सर
1: जी।
2: तो हमारी जो दिनचर्या है
1: जी,
2: जैसे देर रात तक सोना, सुबह सूरज 9 बजे तक लोगों का उठना है ना, सूर्योदय से पहले उठ जाएं तो उसके बहुत फायदे हैं, और बहुत देर तक सोते रहें तो सर बहुत नुकसान है। बिकॉज मैं स्पोर्ट्स पर्सन रही हूँ तो मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ, मैं 5 बजे उठ जाती हूँ।
1: बिल्कुल, हम यही पहुंच पूछने वाले थे और यही पहुंचने वाले थे कि आप एक स्पोर्ट्स पर्सन भी हैं और योग तो आपने अभी किया है स्टार्ट, तो आपने स्पोर्ट्स लाइफ के बारे में आपने क्या क्या अचीव किया ये भी बताएं।
2: जी, मैं जब 13 साल की थी तो मैंने बास्केटबॉल खेलना शुरू कर दिया था, और मेरा फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट, फर्स्ट स्टेट, फर्स्ट नेशनल था सर, और कम से कम मैंने 10-15 नेशनल खेले होंगे, यूनिवर्सिटी, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी। और आफ्टर मैरिज, बिफोर कोरोना सर, हमने मास्टर कप खेला, उसमें हमने गोल्ड लिया था राजस्थान टीम ने
1: जी,
2: प्लस 45 में। तो बस वही है कि मैं अपनी हेल्थ को लेके जागरूक रही हूँ शुरू से, लेकिन आफ्टर योगा एक्सपर्ट हेल्थ कोच के बाद तो मैं इतनी सजग हो गई हूँ कि जब मैं कोई चीज उठाती हूँ सोचती हूँ कि मैं ये खाऊं कि नहीं खाऊं, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या मुझे नुकसान करेगा।
1: एक स्पोर्ट्स पर्सन और एक साथ में योग के जानकार होना, ये दोनों का कॉम्बो जो है वो आपको कितना भाया, कितना अच्छा लगा, और उसमें एक दोनों चीजों की जो निर्भरता है वो कैसे प्रभावित कर सकती है जीवन को, जीवन शैली को।
2: जी सर, अब जैसे मैं पहले स्पोर्ट्स पर्सन थी तो मैं केवल अपना ध्यान रख पाती थी कि मुझे वॉक करना है, एक्सरसाइज करना है। बिकॉज अब योगा एक्सपर्ट बनने के बाद और हेल्थ कोच भी बनने के बाद, सबसे पहला मैं यही कहूंगी सभी अपना रूटीन सुधारें, जो हमारा पेट है उसको डस्टबिन ना बनाए, है ना। हमारा जो एक मोटो कहते हैं वो हमें ये सिखाया गया, पेट को डस्टबिन मत बनाओ, आप पूछते ही जा रहे हैं, सोचते ही जा रहे हैं, सोचते ही जा रहे हैं, वो नुकसान करता है। अगर हम टाइम पे सो जाएं तो हमारी मॉर्निंग में नींद आराम से खुल जाती है
1: जी।
2: और उठते ही सर हमें चाय कभी नहीं लेनी चाहिए, उठते ही आप अपना गर्म पानी, उसमें शहद डाल दीजिए, नींबू डाल दीजिए, आप अपना चिया सीड्स ले सकते हैं रात को 1 चम्मच भिगो के मॉर्निंग में। उससे ना केवल हमारा वेट लॉस होता है बल्कि सर उसमें कैल्शियम भरपूर मात्रा में है
1: जी।
2: तो बॉडी को बहुत फायदा करता है। कई बार ऐसा होता है हम दही नहीं खा पाते हैं, दूध भी नहीं पीते हैं, तो चिया सीड्स में वो सब

0: में है, तो मैं यही कहूंगी जितना हो सके आप उतना ही खाओ जितना हमारी बॉडी को जरूरत।
1: जी
0: आप फ्रूट्स खाइए, आप सैलेड खाइए, आप दही लीजिए, आप हरी सब्जियां खाइए, और इवनिंग में पॉसिबल हो तो 6 बजे से पहले अपना डिनर ले लीजिए। आपका वेट कभी नहीं बढ़ेगा, एक बार करके देखिए। और किसी को अपना डाइजेस्टिव सिस्टम मजबूत करना है तो सर रात को 2 चम्मच, 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच जीरा भिगो दीजिए, और मॉर्निंग में उसका पानी पीना। आपको 1 महीने तक जो चेंजेस जाएंगे वो आप खुद देख लीजिए, ना केवल आपका वेट कम हुआ बल्कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, आपकी जो जठर अग्नि है वो इतनी तेज हो जाए कि आप जो भी खाएंगे वो हजम हो जाएगा। और जब खाना हजम हो जाएगा सर तो हमारे हेडेक, हमारे गैस की प्रॉब्लम है ना, कुछ भी नहीं होगा हमारी बॉडी में। और उसके साथ अगर हम आसन कर लेते हैं तो वो सोने पे सुहागा हो जाता है।
1: बहुत बहुत उपयोगी बातें आप बता रही हैं, लेकिन इनको अमल कैसे करें आज की जो लाइफस्टाइल है उसमें, उसके लिए कुछ टिप्स आप देंगी?
0: सर बिल्कुल, मैं इसके लिए टिप्स दूंगी, क्योंकि सबसे पहले सर जो हमारी जो दिनचर्या है ना, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। अभी लास्ट ईयर दिसंबर में मेरे फादर बीमार थे, बेड पे आ गए थे है ना, और मेरी मम्मा के 4th स्टेज का कैंसर था जबड़े का। तो कुछ परिस्थितियां ऐसी आन पड़ी कि भैया भी ऑफिसर है हॉस्पिटल में, रात को मम्मा को वो देखता, दिन में मैं देखती, इधर पापा है ना, कि आप बहुत सारे जने हो तब कोई दिक्कत नहीं है, तो क्या करूं कि मैं अपने पापा को खड़ा कर दूं सर। तो मैं रात को उनके पास ही सोती थी, तो वो पहले क्या करते थे उनकी दिनचर्या बताती हूँ मैं। वो सुबह देरी से उठते थे, फिर वो 4 4 दिन से नहाना धोना करते थे अपना, और उनकी एज है 79 ईयर्स ओल्ड सर। तो मैंने सबसे पहले सर, मैं उनके पास होती थी, मैं उनसे बातें करने लगी, तो मैंने रूटीन यहाँ सुधारा कि वो जो शाम को डिनर लेते ही 6 7 बजे सो जाते थे ना, मैं उनको रात को 10 बजे सुलाने लगी, तो वो सुबह मॉर्निंग में अपने आप उनकी नींद पूरी होती 6 बजे उठने लग गए। फिर वो एक दिन छोड़ के एक दिन नहाने लगे सर।
1: जी
0: अब कंडीशन है वो खुद रोज नहा लेते हैं, अपना वॉक कर लेते हैं, अपना जो अंडर गार्मेंट्स वगैरह है वो भी खुद धोने लग गए हैं, अपना एप्पल काटना खाना है ना, तो स्ट्रेचिंग आज भी वो करते हैं। उनका पापा कुछ और नहीं, ज्यादा तो अपना स्ट्रेचिंग करो, उठक बैठक करो, अपना चक्की चालन आसन जो होता है, जेंट्स में प्रोस्टेंट की बहुत ज्यादा शिकायत होती है, तो उसके लिए सर चक्की चालन है, मलासन है, बटरफ्लाई है, ये कुछ आसन है जो बहुत फायदेमंद होते हैं जेंट्स के लिए। तो मेरे पापा को प्रोस्टेंट में भी बहुत फायदा हुआ, और आज माता रानी की मेहरबानी से उनको देख के कोई कह नहीं सकता कि वो कभी इतने बीमार हुए थे क्या। और अगर हम खान पान सुधार लें अपना, लाइक के जैसे
1: जी
0: चने हैं, मूंगफली है, हमें हाई रिच प्रोटीन लेना चाहिए सर बॉडी में।
1: बिल्कुल
0: प्रोटीन होगा बॉडी में तभी हमारे न्यूट्रिएंट और सारी चीजें अब्जर्व होगी, और विटामिन डी बहुत जरूरी है। तो लोग दिन भर एसी में बैठे रहते हैं, मैं यही कहूंगी कि जब आपको थोड़ी गर्मी लगे तो बैठे रहो, अदरवाइज आप नेचुरल लाइफ जीना सीख। अगर आप विटामिन डी नहीं लेंगे तो आप कितना भी अच्छा भोजन कर लो, हमारी बॉडी उसको ऑब्जर्व नहीं करेगी, कोई न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी में नहीं बनेगा। और जब खाना ही अच्छे से रस नहीं बनेगा सर तो हमारा शरीर कैसे काम करेगा।
1: बहुत ही उपयोगी बात है। बहुत सामान्य शब्दों में आपने कही है कि विटामिन डी यदि हम नहीं लेंगे तो इसके लिए आपको धूप सुबह की लेनी बहुत जरूरी है। बहुत ही उपयोगी बात।
0: जी जी सर। तो अब आता है सर कि एक होता है ईटिंग होता है अलग अलग, मैं यही कहूंगी कि जैसे लोग मोबाइल देख के भी खाना खाते रहते हैं, टीवी देखते हुए भी खाना खाते हैं सर, और कई बार हम बच्चों को डांट लगा देते हैं तो वो इमोशनल ईटिंग भी करते हैं है ना, जैसे हमने मना कर दिया पिज्जा नहीं खाना तो
1: बिल्कुल
0: जिद से मंगाएंगे फिर खाएंगे है ना, तो सर ये चीजें बहुत नुकसान करती है। तो जो मैदा है, ब्रेड है, ये चाउमीन है, फास्ट फूड है, ये सब छोड़ देने चाहिए। अगर हम कोशिश करते हैं ना, तो आज जैसे मुझे आज 8 9 महीने हुए, मैं मिठाई की बहुत शौकीन हूँ सर, मैंने टच तक नहीं किया, अभी मैंने फंक्शन

0: किया, सुबह शाम मिठाई लिया मेरे सामने, वो थी जो मेरी पसंदीदा थी। छोड़ना है तो छोड़ना है, मैं सब छोड़ चुकी हूँ उसे। और उससे मुझे क्या फायदा हुआ है कि एक तो आपका हेयर फॉल नहीं होता है, एक आपके नाखून नहीं टूटेंगे सर,
1: अरे वाह, ये
0: और
1: तो
0: आंखों
1: बहुत
0: की रोशनी भी तेज होती है सर। जी
1: नई बात बताई आपने। जी बहुत उपयोगी
0: जी
1: बात। जी
0: तो बस स्वास्थ्य के लेके यही है सर कि सबसे पहले डेली रूटीन सुधारना है। उस डेली रूटीन में सर टाइम पे उठना, वॉक करना, थोड़ा बहुत आप एक्सरसाइज कर लो जितना आपको आता है। कोई जरूरी नहीं है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप अपने सिद्धियां हासिल करें आसन करके, लेकिन आप वॉक करो 45 मिनट की, फिर आपको जितना आते हैं, आपको एक्सरसाइज है या आप जिम भी जा रहे हैं या आप घर पे करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको इस समय में, समय टाइम ऐसा चल रहा है सर कि हमें अपने बॉडी का ध्यान रखना पड़ेगा, हमें अपने शरीर से प्यार करना पड़ेगा सर।
1: बिल्कुल, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि आजकल जैसे
0: बहुत
1: देखने को मिलता है कि कोई स्टेज पे परफॉर्मेंस दे रहा है और उसके साथ ही उसको हार्ट अटैक आया या गिर
0: जी,
1: गया, कोई नाच रहा है, कोई
0: हार्ट
1: डांस
0: अटैक
1: कर
0: आ
1: रहा,
0: गया।
1: तो ऐसे ही
0: जी
1: कैसे
0: जी
1: जो है
0: सर,
1: ना, कोई सीढ़ियां चढ़ रहा है, कुछ कोई
0: जी
1: अपने
0: जी
1: घर
0: सर,
1: आ रहा है, कोई ऑफिस जा रहा है और रास्ते में कोलैप्स हो गया, तो ये
0: जी
1: सारी
0: सर,
1: जो घटनाएं हो रही हैं उसका कोई ना कोई तो रीजन होगा, कोई ना कोई तो कारण होगा ही, और वो कारण इन्हीं
0: बस
1: में
0: सर
1: से
0: इस
1: निकालना पड़ेगा कि
0: इन्हीं में
1: क्योंकि
0: से।
1: हाँ हमारी दिनचर्या
0: जी
1: जो
0: सर,
1: है, दिनचर्या जो है
0: सबसे पहले कि जो
1: उसमें सुधार
0: आजकल जिम
1: जरूरी
0: में
1: है। जी
0: प्रोटीन पाउडर बताते हैं कि आप ये लीजिए, वो बहुत नुकसान करता है सर बॉडी को, बहुत नुकसान करता है।
1: ओहो
0: तो ऐसे होने को नमस्कार है, किसी को कुछ भी हो सकता है, लेकिन कोशिश कीजिए कि डिब्बा बंद, पैक बंद, जो भी फूड आता है वो बंद कर दीजिए,
1: आजकल
0: वो
1: बहुत
0: नहीं खाना है।
1: प्रचलन चल रहा है कि वो प्रोटीन पाउडर लो, बच्चों को भी, जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको भी दूध में मिक्स करके उसको पिलाओ, तो ऐसा भी
0: नहीं
1: देखने
0: सर,
1: को ट्रेंड
0: प्रोटीन
1: चल पड़ा
0: सबसे
1: है सर।
0: हाई रिच प्रोटीन जो है सर हमें मूंगफली से मिलता है, आप बिलीव करेंगे। अगर हम रात को एक मुट्ठी भर मूंगफली भिगो देते हैं और मॉर्निंग में उसका सेवन करते हैं,
1: जी
0: हम लोग अंकुरित मूंग है, अंकुरित मोठ है ना, अंकुरित अपनी मेथी है, दाना मेथी, तो अगर हम ये सब लेने लग जाएंगे सर तो हमारे बॉडी में कभी कमी नहीं होगी प्रोटीन की,
1: बहुत
0: और
1: ही
0: हमें ये तला फला खाने की जरूरत ही नहीं है सर। आप खुद, मैं कोटा में रह रही हूँ, सामने से रतन रावत के कचौड़ी वाला है, मुझे यूं गिल से आने
1: हाँ,
0: लगे
1: बट
0: कि नहीं
1: वो
0: मुझे नहीं
1: कचौरी
0: खाना।
1: तो अच्छी होगी, बट मूंगफली
0: बिल्कुल
1: भी
0: सर,
1: कोटा की अच्छी होती है, तो वो
0: जी सर,
1: आपको प्रोटीन का सोर्स वो भी है, तो आप तो वही
0: सबसे
1: लीजिए।
0: बड़ा सोर्स है सर। तो हम, हमें जैसे है, कई कहते हैं हम लोग बादाम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो आप मूंगफली खा सकते हैं सर। मूंगफली है, चने हैं, चने गुड़ खाइए, आयरन मिलेगा भरपूर आपको, और चने में वैसे भी प्रोटीन होता है क्योंकि बेसन होता है, चना होता है वो। तो जो साबुत अनाज है, दालें हैं सर, राजमा के साथ चावल होना चाहिए, रोटी के साथ दाल होती है, सांभर के साथ इडली होती है। हमारा खुद का भोजन इतना अच्छा है कि आज हमें ये मोमोज, चाउमीन, ये सब खाने की जरूरत ही नहीं है।
1: एक फैशन सा, एक ट्रेंड सा चल पड़ा है बच्चों में, वो जो नई जनरेशन है उसमें, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगी कि हम अपनी दिनचर्या को कैसे जो है व्यवस्थित कर सकें, क्या कहना चाहेंगी
0: सर
1: आप?
0: देखिए, जान है तो जहान है सर। तो अगर अगर हमने अपने हेल्थ की तरफ ध्यान नहीं दिया है तो बीमारी कोई उम्र नहीं देखती है सर। समय ऐसा आ गया है कि छोटे छोटे बच्चों को हार्ट अटैक हो रहे हैं,
1: बिल्कुल
0: उसका मेन रीजन ये है कि उनकी दिनचर्या सुधरी हुई नहीं है। वो लोग फिजिकली वर्क कुछ है, उनकी एक्टिविटीज है ही नहीं, वो खाते हैं लेकिन वो कैलोरी बर्न नहीं करते हैं सर। तो मैं यही
1: कैलोरी का बर्न
0: कहूंगी
1: करना भी बहुत
0: जो
1: जरूरी है। जी
0: जी आज का जो युवा वर्ग है, और कि आप अपना दिनचर्या सुधारिए, अपना अच्छा खान पान लीजिए। खान पान का मतलब ये नहीं है कि आप पिज्जा खाएं, बाहर की तरफ खींचे चले जाएं, कोशिश करें घर पे ही खाएं। और ये वेट बढ़ रहा है तो वेट घटाना बहुत आसान है सर। वो हमारे खुद के हाथ में ही है। मैं चाहूँ तो 1 महीने में अपना 10 किलो वेट घटा सकती हूँ। कुछ टिप्स देना चाहूंगी सर मैं, किसी को अगर अपना वेट लॉस करना है तो सर आप अपना ब्रेकफास्ट बंद कर दीजिए, आप ब्लैक टी ब्लैक कॉफी लीजिए, आप सैलेड ले सकते हैं, आप फ्रूट ले सकते हैं, फिर आप अपना लंच ले लीजिए जिसमें आपके रोटी सब्जी सैलेड होना चाहिए और हरी सब्जियां होनी चाहिए, एक आपकी पसंद की कोई भी ले सकते हैं बच्चे। और इवनिंग में कोशिश कीजिए कि अगर आपके डिनर की इच्छा है तो आप 6:30 तक डिनर ले लीजिए, ताकि आप रात को सोए जब तक आपका वो खाना हजम हो जाए, आपके लीवर को रात को आराम मिले। जब भोजन अच्छे से पाचन हो जाता है हमारे भोजन का, तो हमारी बॉडी में उसका रस बनना शुरू हो जाता है, हमारे मेटाबॉलिज्म सर फास्ट काम करते हैं, और मेटाबॉलिज्म फास्ट काम करता है तो हमारी हजारों बीमारियां मिट जाती है सर। आजकल जैसे हाइपोथायराइड हो जाता है, थायराइड की दिक्कत है
1: जी,
0: तो सर थायराइड ग्लैंड है जो एक्टिव नहीं रहती है, उसके लिए भी आसन होते हैं सर, है ना, गर्दन घुमाइए राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, ऊपर पंखे को देखिए, नीचे गर्दन कीजिए, फिर ऊपर मुंह ले जाओ, मुंह को लो, फिर नीचे लाओ। तो सर कुछ आसन है जिनसे करने से हम लोग हाइपोथायराइड से भी बच सकते हैं। एक है वेरिकोज वेंस की प्रॉब्लम लेडीज में, बिकॉज खड़े होके वो ज्यादा काम करती है सर। एक है घुटनों की दिक्कत, है ना, तो वेरिकोज वेंस और घुटनों की दिक्कत लेडीज में ही ज्यादा है, जेंट्स में नहीं है सर, आपने नोट किया होगा।
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि लेडीज पूरे दिन भर खड़े होके काम करती है। अब एक जमाना था कि हम लोग नीचे बैठ के खाना पकाते थे,
1: बिल्कुल, आजकल गैस आने के बाद गैस
0: खाना खाते थे
1: पट्टी पर, बिल्कुल खड़े खड़े ही सब कुछ काम होता। हाँ,
0: या तो वो डबल बेड पे खाना खाएंगे या डाइनिंग टेबल पे बैठेंगे, है ना, सब्जियां भी वो कट करेंगे तो किचन में खड़े खड़े, तो उससे क्या वेरिकोज वेंस की प्रॉब्लम शुरू हो गई है सर लेडीज में। अभी मेरी फ्रेंड है, उसको डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि तुम्हें ऑपरेशन कराना पड़ेगा, बहुत पेन था उसकी, मेरे से कॉन्टेक्ट में आई, मैंने कुछ आसन करवाए, विपरीत करनी बोलते हैं जिसको, आप लेट जाइए, अपने पैरों को दीवार की तरफ सीधा खड़ा कर दीजिए, तो सर जब वो ब्लड सर्कुलेशन है वो पैरों से वापस जब हमारे हार्ट की तरफ आता है तो सर वो दिक्कत खत्म हो जाती है,
1: उल्टा होगा वो। हाँ, बिल्कुल
0: उल्टा, हाँ हाँ जी उल्टा, और मसाज मालिश वगैरह करने से भी ये दिक्कत खत्म हो जाती है। और अगर आप नीचे बैठ के खाना खाते हैं सर, तो मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ आपको कभी घुटनों की दिक्कत नहीं होगी। जो डॉक्टर कहते हैं आपको नीचे नहीं बैठना, आपका ग्रीस खत्म हो गया, ये वो फलाना देखड़ा, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट है जो ठीक हो चुके हैं। तो अपना पुराना जो हम जो हमारी भारतीय संस्कृति सभ्यता, हमारे जो रीति रिवाज खान पान जो है, वापस उसमें लौट आई, उसी में फायदा है सर।
1: बहुत ही उपयोगी जानकारी आपने दी योग की, और अपने दिनचर्या को सुधारने की और साथ साथ खान पान पे ध्यान देने की। ये बहुत ही आज की जो जीवन शैली है उसके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी और सार्थक है। तो
0: जी सर,
1: बिल्कुल, आप कुछ और बताना चाहेंगी, कोई आपसे संपर्क करें, आपसे सलाह करें तो
0: बिल्कुल सर,
1: कब करें?
0: मैं एक
1: जयपुर रेडियो के माध्यम से करें।
0: बिल्कुल बिल्कुल सर, आप मेरे नंबर दे दीजिए, अगर कोई परेशान है, कोई वुमेन्स इश्यूज, पीसीओडी, जॉइंट पेन, सर्वाइकल पेन,
1: बिल्कुल, तो आप जयपुर रेडियो के जो ऐप है उस पे नंबर है, उस पर आप हमें संपर्क करके आप अपना सवाल हमें दे सकते हैं, हम कला जी को आपका सवाल जरूर प्रेषित कर देंगे और उसका आंसर भी हम हो सका तो रेडियो के माध्यम से ही आपको दिलवाएंगे। जी हाँ, आप जी कुछ उदाहरण बता रही थी वो बताएं।
0: जी सर, मेरे है एक ब्रदर है, फ्रेंड के भाई हैं, तो सर उनके बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हो गया था, बहुत कर्जा सिर हो गया, इवन जेल भी हो गई थी, और वेट बहुत ज्यादा बढ़ गया था उनका, 120 समथिंग कुछ ऐसा हो गया था। फिर इस दौरान उनके भैया के फादर की अंकल की भी डेथ हो गई थी, तो मुझे मेरी फ्रेंड से ही पता चला, मैंने जैसे तैसे आंटी से सबसे कांटेक्ट किया, राजेश से मैंने बात की, तो राजेश भैया पहले तो वीडियो कॉल पे रोया, बोल ही नहीं पाया सर। किसी को मोटिवेट करना होता है तो आपको कॉल पे लेना पड़ता है, तो मैंने एक ही चीज बोली, मैंने कहा भैया ऐसा है देखो अमिताभ बच्चन भी बर्बाद हुए थे, है ना, वक्त
1: फिर
0: किसी
1: उठ
0: का
1: गए।
0: भी सर बुरा आ सकता है, हिम्मत नहीं हारनी थी।
1: बिल्कुल
0: तो मैंने बहुत मोटिवेट किया, आज राजेश भैया ने अपने फिर से जॉब ज्वाइन कर ली है और उनकी 70-80 हजार तनख्वाह है सर, और अपना वेट भी मेरे पे ही है, वो 7 किलो मैंने वजन घटा दिया है 1.5 महीने में। तो मेरे लिए इससे बड़ा अचीवमेंट कुछ हो नहीं सकता कि आज जो मैंने डिप्लोमा किए हैं सर उनसे
1: बिल्कुल,
0: बहुत
1: आपके
0: फायदा हो
1: अपने
0: रहा
1: लोग
0: है,
1: तो
0: तो ये
1: कम से
0: जानकारी
1: कम,
0: सबको होना चाहिए। जी
1: बिल्कुल आपके अपने लोग तो जो हैं, और इसी सिलसिले में आप इस मंच पे हैं कि हम आपके जो अनुभव हैं, आपने जो प्रैक्टिकल किए हैं उसको सुन के
0: जी
1: हमारे जो लिसनर हैं, हमारे जो श्रोताएं, वो लाभान्वित हों, उनको लाभ मिले कि
0: बिल्कुल सर,
1: हम अपनी
0: बिल्कुल
1: दिनचर्या को कैसे संभालें, योग साधना कितनी जरूरी है, सूर्य की जो रोशनी है, सूर्य की जो ऊर्जा है, क्योंकि आजकल तो सोलर ऊर्जा का जमाना भी आ गया
0: जी
1: है,
0: जी
1: तो
0: सर
1: वो ऊर्जा उसमें है। यदि हमने एक जगह पढ़ा था कि कुछ आदमी सिर्फ और सिर्फ धूप में बैठे रहते हैं, कुछ खाते ही नहीं है, सिर्फ सूरज की जो
0: जी सर
1: ऊष्मा है, जो ऊर्जा है, उसके बल पर जीवित रहते हैं,
0: बिल्कुल सर
1: तो कुछ उपयोगिता, कुछ जो प्रकृति की चीजें हैं, जो पांच तत्व हैं जिसे हम भगवान कहते हैं, वो
0: जी
1: जो
0: सर
1: भूमि है, आकाश है, जल है और अग्नि है, वायु है, यही तो हमारे जीवन
0: जी सर
1: का असल मूल आधार है। और इस
0: जी जी
1: आधार
0: सर
1: पर यदि हम इनको सशक्त बनाने, क्योंकि ये पांच तत्वों से ही हमारा शरीर बना हुआ है, और इनको
0: बिल्कुल
1: हम
0: सर
1: यदि शामिल करें पूरे तौर पे हमारे शरीर में, हमारे साथ हों ये पांच तत्व, तो हम और हमारा बल कभी कम नहीं होगा, हमारी शक्ति कभी कम नहीं होगी। हम बता दें कि कला सिंह बिट्टू हमारे साथ हैं, और आप एक स्पोर्ट्स पर्सन हैं और साथ में योगिनी भी हैं, योग इनकी साधना साथ साथ चलती है, योग साधना और एक स्पोर्ट्स पर्सन होना बहुत ही दुर्लभ देखने को मिलता है, और वो दोनों कॉम्बो हमारी आज की जो प्रवक्ता हैं उनके पास हैं। तो आप अंत में कुछ कहना चाहेंगे, कुछ टिप्स?
0: अंत में सर मैं जी सर मैं अंत में यही कहना चाहूंगी कि हम लोग किसी भी चीज को सीरियस नहीं लेते हैं।
1: जी
0: सपोज जैसे हमारे दांतों में प्रॉब्लम हो जाती है, हमारा हेयर फॉल होता है सर, हमारे नाखून टूटते हैं सर, है ना,
1: जी
0: तो कैल्शियम की कमी है, विटामिन ए की कमी है सर, है ना, इन चीजों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। इसका मतलब हमारे बॉडी के अंदर कुछ हो रहा है,
1: कुछ कमी
0: कुछ
1: हुई है,
0: गड़बड़ है
1: किसी भी
0: सर।
1: तत्व की कमी
0: जी
1: हुई
0: सर
1: है। बिल्कुल हाँ,
0: जी जी सर जी सर तो बस मैं यही कहूंगी कि सब चीजों को ध्यान में रखते हुए अपना खान पान सुधारिए, हेल्दी खाना खाइए, अपना अच्छे से एक्सरसाइज कीजिए, और सूर्य भगवान को थोड़ा सा नमस्कार करके 1 घंटा मॉर्निंग में या इवनिंग में 4 से 5 आप धूप सेवन कीजिए। तो अगर आप विटामिन डी लेते हैं सर, तो हमारी आधी बीमारियां तो वैसे ही खत्म हो जाती है। जो B12 आजकल चला हुआ है, वो यही दिक्कत है कि लोग पूरे दिन गाड़ी में एसी, ऑफिस में एसी, घर पे एसी, उनके पसीना तो सर निकलता ही नहीं है। कहते हैं कि हमारा जो स्किन है वो हमारी तीसरी किडनी है सर, अगर हमारी किडनी काम नहीं करती है तो वो काम हमारे स्किन करती है सर, पसीना निकाल के।
1: बहुत अच्छी बात कही
0: अगर
1: आपने।
0: पसीना नहीं निकला तो सर कुछ भी नहीं है, तो पसीना निकलने दीजिए, आप गर्मी की आदत डालिए सर।
1: यदि स्वस्थ
0: तो
1: रहना
0: सुबह
1: है तो
0: मॉर्निंग में
1: पसीना निकालना
0: जी
1: बहुत
0: सर
1: जरूरी है, ताकि टॉक्सिन
0: बहुत
1: जो है
0: जरूरी है
1: वो
0: सर
1: आउट हो सके बॉडी से।
0: जी सर तो
1: बहुत सही बात।
0: सुबह मॉर्निंग में 4 बजे एसी बंद कर दीजिए, टाइमर लगा के, फिर देखिए आप अपने आप उठ जाएंगे, अपने आप आंख खुलेगी सर।
1: बिल्कुल, हमारे श्रोताओं की भी आंख खुल गई होगी इतनी सारी अच्छी जानकारी सुन के, और यदि उपयोग में लाएंगे तो आंख भी खुलेगी और हाथ पांव भी खुलेंगे, और आप में एक नई स्फूर्ति, नई ऊर्जा आएगी, ऐसा हमारा विश्वास है। हमारे साथ कला सिंह बिट्टू रही इतनी उपयोगी जानकारी के लिए। आपका बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। फिर आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। बहुत धन्यवाद कला जी।
0: थैंक यू सो मच। आभार सर।
2: थैंक यू।
3: नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? मैं आरजे भूमिका और मेरे संग सुपर सिंगर अर्चू रानू, और हम लेकर आए हैं आपके लिए गीत सुहाने और गीतों में छुपे अफसाने। लिसनर्स, आपसे मिलकर ना जाने क्यों और भी याद आता है। ये कह रहे हैं उदय कुमार रजक इस गीत में। आइए सुनते हैं उदय कुमार और अर्जुन रानू को।

पुरानी यादों का गीत अर्जुन रानू के संग पहुंचाया उदय कुमार रजक ने। और अब एक और बेहतरीन सिंगर दीपक कह रहे हैं, जाने कब से दिल में है तू, जब से मैं हूँ तब से है तू। ये सुरीला गीत फिल्म मुझसे दोस्ती करोगे को आप तक पहुंचा रहे हैं अर्जुन रानू के संग दीपक।

मैं आवाज हूँ तो तू है गीत मेरा के इस लेटेस्ट एपिसोड को प्रस्तुत कर रही हूँ मैं आरजे भूमिका, जयपुर रेडियो की सुरीली सुपर सिंगर अच्छू रानू के सुरीले गीतों को लेकर। और दिन महीने साल गुजर ही जाएंगे और गुजरते जाएंगे, और जयपुर रेडियो आप श्रोताओं के प्यार और सुरीले स्नेह के साथ यूं ही गीतों के अफसानों के साथ साथ गाते जाएंगे। अगले गीत में बबलू आर्य आए हैं सुपर सिंगर अर्चू रानू का साथ देने।

की रफ्तार को कौन थाम पाया है? जिसने भी कहा है इसी वाक्य को दोहराया है, लेकिन कभी थोड़ी देर के लिए रुक भी जाता है आके ये वक्त जयपुर रेडियो के इस मंच पर, जिसका नाम है मैं आवाज हूँ तो तू है गीत मेरा। वीजी विनोद गुप्ता आ गए हैं अर्चुरानू का साथ देने इस सुरीले गीत में, तेरी बाहों में आके।

आपने सुना वीजी विनोद गुप्ता और अर्जुन रानू को। अगले गीत में एक बार फिर वीजी विनोद गुप्ता गीतों का बंजारा सुपर सिंगर अर्जुन रानू के संग। आइए सुनते हैं गली गली में फिरता है तू क्यों बन के बंजारा, वीजी विनोद गुप्ता और अर्जुन रानू के संग। प्रोग्राम मैं आवाज हूँ तो तू है गीत मेरा में।

0: गली गली में फिरता है तू क्यों बन के बंजारा, जयपुर रेडियो के दिल में बस जा। सुरीले सिंगर वीजी विनोद गुप्ता को सुरीला निमंत्रण जयपुर रेडियो की ओर से। आपके दो शानदार गीतों के लिए बधाई और शुक्रिया। मैं आवाज हूँ तो तू है गीत मेरा का ये आज का एपिसोड, और इसमें आज अपने सिंगिंग को आप तक पहुँचाने वाले सिंगर्स का अर्जु रानू के संग सुरीला सफर आपको कैसा लगा। जिन सिंगर्स ने इस सुरीले सफर में अर्जु रानू का साथ दिया उनके नाम है उदय कुमार रजक, दीपक, बबलू आर्य और वीजी विनोद गुप्ता। आप अपने पसंदीदा सिंगर के लिए अपने फीडबैक हमें सेंड कर सकते हैं। और अब
1: अपना शहर अपनी शान जयपुर रेडियो मेरी जान।
2: अरे ये लाहौर लाखों और इस कमबख्त को क्या हो गया, ये बजता क्यों नहीं है?
3: क्या हुआ चचा, ये रेडियो पे इतना जुल्म क्यों ढा रहे हैं आज?
2: अरे जुल्म किस बात का बेटा, अब आधे घंटे से लगे हुए हैं, अब हमारा पसंदीदा प्रोग्राम आने वाले थे, हमारे गीत आने वाले थे, लेकिन ये कमबख्त है कि बजने का नाम ही नहीं लेता।
3: तुम मोबाइल पे ही सुन लीजिए ना रेडियो।
2: अरे बेटा कौन वो लीड लगाए और फिर वो दो फुलटरू कान में डाल के वो लंबी सी रस्सी लेकर यहाँ वहाँ घूम।
3: अरे नहीं चाचा, अब उस रस्सी की जरूरत नहीं पड़ेगी।
2: अच्छा?
3: अब आ गया है एक नया ऐप जिसपे आप इंटरनेट के सहारे रेडियो सुन सकते हैं कहीं भी कभी भी।
2: अच्छा कौन सा ऐप है वो?
3: हाँ चाचा, जयपुर रेडियो।
2: जयपुर रेडियो? पर बेटा हम तो लखनऊ में रहते हैं और जयपुर।
3: चचा देश के नहीं बल्कि दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर आप अपने पसंद के गाने सुन सकते हैं।
2: अरे वाह, ये लो बेटा फोन, और क्या नाम बताया उस ऐप का?
3: लाइए मुझे दीजिए आपका फोन, मैं अभी डाउनलोड कर देती हूँ जयपुर रेडियो।
4: तुमने दी आवाज, हो जाए अब तो आगाज, जयपुर रेडियो आपकी पहचान।
1: आवाज की पहचान जयपुर रेडियो मेरी जान।
5: जयपुर रेडियो अपनार आवाज अपनार परिचय सुनते थाकुन बंधुगण। जयपुर रेडियो
1: आपकी आवाज का जादू, कैसे रहे खुद पर काबू, जयपुर रेडियो आपकी पहचान।
6: और अब आ गए हैं इस मंच के मेल सिंगर हमेशा की तरह। मैं आवाज हूं तो तू है गीत मेरा में आप जानते हैं पहचानते हैं उन सिंगर को जिनका नाम है अनुराग सिन्हा। नई मुंबई से हमारे साथ इस मंच पर हमेशा रहते हैं। आपके

सुपरस्टार राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर पर फिल्माया गया ये सुरीला गीत आप तक पहुंचा रहे थे अनुराग मुंबई से। आपकी आवाज आपकी पहचान का ये प्रोग्राम जिसमें आप आज सुन रहे हैं मैं आवाज हूं तो तू है गीत मेरा का ये खास प्रोग्राम हमारे इस मंच के मेल सिंगर अनुराग की आवाज में। आइए अब सुनते हैं अनुराग से ही अगला सॉन्ग।

भीगे आज इस मौसम में गा रहे थे अनुराग। और अब बात कर रहे हैं हम प्यार करने वाले क्या करते हैं, आइए सुन लेते हैं।

अनुराग की सुरीली आवाज आप सुन रहे हैं इस मंच से। मैं आवाज हूं तो तू है गीत मेरा में आज लेके आए हैं अपने गीत अनुराग मुंबई महाराष्ट्र से। आइए सुनते हैं सड़क फिल्म का ये गीत।

तुझे पाकर जमाने की खुशी पाई है, तुझे अपना बनाने की कसम खाई है। और ये कह रहे थे इस मंच के मेल सिंगर अनुराग, जिनका नाम है। और अब फिका ये गीत अनुराग की आवाज में।

0: वाह, मैं शायर तो नहीं। आपने सुना अनुराग सिन्हा को, मैं आवाज हूं तो तू है गीत मेरा। इस प्रोग्राम के मेल सिंगर गा रहे थे अपनी आवाज में ये सारे गीत। कैसा लगा आपको ये प्रोग्राम? हमें अपने फीडबैक जरूर प्रेषित कीजिएगा। ये डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, जहां मिलती है आपकी आवाज को पहचान, यानी आपकी आवाज आपकी पहचान।
1: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं आपकी अपनी आरजे सपना देवगुप्ता और मेरे साथ है टेक्निकल एक्सपर्ट जगदीश अरोड़ा जी, और आप सुन रहे हैं आपका मनपसंद प्रोग्राम जश्न सितारा गीत गुफ्तगु। तो दोस्तों, आज हमारे साथ हैं एक ऐसी शख्सियत जिनकी मुस्कान जितनी खूबसूरत है उतना ही सुरीला है उनका सफर। उत्तर प्रदेश की नवाबी नगरी लखनऊ से लेकर माया नगरी मुंबई तक का सफर, एक सफल प्रोफेशनल, एक समर्पित गृहिणी और सबसे बढ़कर संगीत से दिल की गहराइयों तक जुड़ी हुई एक प्यारी सी गायिका। आइए जोरदार स्वागत करते हैं हम आज की विशेष अतिथि मुंबई से, मिनाली लाल जी का। मिनाली, बहुत बहुत स्वागत है आपका डिजिटल वॉइस वर्ल्ड जयपुर रेडियो की स्टूडियो में। मैं हूँ आरजे सपना देव गुप्ता और मेरे साथ हैं टेक्निकल एक्सपर्ट जगदीश अरोड़ा।
2: सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद सपना जी और जगदीश जी, जो मुझे इस प्लेटफॉर्म पे आपने मुझे इनवाइट किया और मैं आप लोग के संपर्क में आई, और मुझे बहुत खुशी है कि आज मैं अपने आप को, अपने बारे में, अपने संगीत के प्रेम को आपके सामने संपर्क दे सकती हूँ।
1: जी बिल्कुल, हमारे श्रोता भी बेताब हैं इतनी प्यारी गायिका के गीत और उनके जीवन के सफर के बारे में सुनने के लिए। तो मिनाली जी, हम शुरुआत करते हैं हमारे पहले प्रश्न से। तो लखनऊ की गलियों से मुंबई तक का जो आपका खूबसूरत सफर रहा है वो कैसा रहा है? क्या कोई आज भी लखनऊ की कोई ऐसी याद है जो आपके दिल के बेहद करीब हो?
2: लखनऊ से मुंबई तक का सफर मेरे लिए तो एक सीख, संघर्ष और नए अवसरों से भरा रहा। लखनऊ ने मुझे संस्कार, अपनापन और बहुत कुछ सिखाया, जबकि मुंबई ने मुझे बड़े बड़े सपने देखने के लिए एक जगह दिया, उन्हें पूरा करने का एक हौसला दिया, और दोनों शहरों ने मेरी जिंदगी को एक अलग अलग तरीके से समृद्ध किया है। जी। अगर लखनऊ की सबसे प्यारी याद की बात करो तो मुझे वहाँ का अपनापन, परिवार के साथ बिताया मेरा बचपन, मेरे कॉलेज डेज, शाम की गंजिंग की सैर जो वहाँ का बहुत बहुत ही प्रसिद्ध है, जहाँ हर जगह हर प्राण में कहीं भी आप पूछेंगे तो ये गंज वर्ड जो है वो बहुत वहाँ पे फेमस है।
1: अच्छा अच्छा।
2: और वहाँ की तहजीब आज भी मेरे दिल में बहुत करीब है।
1: जी, लखनऊ के खान पान की भी बहुत तारीफ की जाती है, वहाँ के कबाब और वहाँ के पान, बहुत, और एक वहाँ के शर्मा जी की हेरिटेज दुकान है अगर मैं गलत नहीं हूँ, जहाँ समोसे बड़े फेमस है।
2: लखनऊ में तीन चार चीजें जो खान पान जिसको आपने अभी मेंशन किया है, मतलब चाट, लखनऊ की फेमस चाट जिसको आप समोसे बोलिए, एक शर्मा की चाट भी है
1: जी।
2: ये आज से नहीं, इट्स ऑलमोस्ट लाइक सॉरी पिछले 50 सालों से चल रही
1: है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही।
2: और एक मक्खन मलाई, ये आपने पता नहीं
1: सुना है, सुना है,
2: सुना है,
1: बहुत
2: सुना। तो ये लखनऊ की, मतलब ये सर्दियों के समय की ही एक बनावट है जो गर्मी या बारिशों में और किसी सीजन में नहीं मिलेगा, एक और ठंड में, तो इसका मजा अलग है। और बिरयानी तो आप जानते हैं, कबाब और बिरयानी, टुंडे के कबाब, बिरयानी, ये सब तो वहाँ के बहुत ही मशहूर लजीज क्विजींस हैं। तो इसके लिए तो मैं आपको, मैं बोलती जाऊंगी तो अंत ही नहीं।
1: तो लखनऊ के खान पान और मुंबई के खान पान में क्या फर्क लगा?
2: डेफिनेटली खान पान में अंतर तो है, मतलब मैं चूंकि लखनऊ से हूँ, मैं लखनऊ से खाना बनाने का मुझे शौक भी है और हम लोग ने इतना कुछ खाया है, सीखा है, तो वो मैं अपना के मुंबई तो ले आई, बट यहाँ पे, यहाँ के खान पान में बहुत कुछ अंतर इसलिए है, बिकॉज सही बात बोलूँ तो मसाले, यहाँ का मीडियम, यहाँ का जो तड़के हैं वो सब बहुत फर्क है। आप मतलब हम कुछ भी मीट मटन चिकन कुछ भी हम यहाँ का प्रेपरेशन करेंगे तो आपको डेफिनेटली बहुत फर्क दिखेगा। जो हम मसालों का जो फ्लेवर, जो हम लखनवी जिसको वर्ड यूज करते हैं, वो आपको लखनऊ के मसाले से यहाँ बहुत अंतर दिखेगा।
1: बहुत अंतर दिखेगा। जी जी
2: मतलब वो कंपेयर ही नहीं कर सकते, वो हम लोग समझ जाते हैं कि हाँ ये हमारा। इसलिए मैं तो प्रेफर ही करती हूँ कि मैं अपने घर का ही बनाया हुआ खाऊं,
1: जी बिल्कुल, क्योंकि
2: मुझे
1: हालांकि हर एक प्रांत का एक अपना स्वाद होता
2: अलग
1: है,
2: रहता है। नो
1: पर
2: डाउट,
1: जहां
2: नो
1: पर
2: डाउट।
1: हम बेस्ड होते हैं वहां के हम कुछ मसाले, कुछ यादें, कुछ बनाने के तरीके अपने साथ, हमारे
2: अलग ही
1: वो
2: है।
1: जी हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाता है और हर जगह हम अपने साथ ले जाते हैं।
2: बिल्कुल
1: बहुत खूब, तो इसी के साथ मीनाली जी हम आपका पहला गीत लेते हैं।

0: तो बातचीत का दौर आगे बढ़ाते हुए हमारा अगला प्रश्न रहेगा मिनाली जी कि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन और मैनेजमेंट की पढ़ाई की है और उसके बाद एयरलाइन इंडस्ट्री में आप लगभग 13 वर्षों तक आपने एक लीडिंग भूमिका निभाई है, तो उस दौर को, उस दौर जो आपके जीवन को उस दौर ने सबसे बड़ा सबक क्या दिया?
1: मेरे लिए एयरलाइन इंडस्ट्री में बिताए लगभग 13 वर्ष एक नौकरी ही नहीं बल्कि जीवन की एक बहुत महत्वपूर्ण पाठशाला रही। इस दौरान मैंने बहुत कुछ सीखा, नेतृत्व का वास्तविक अर्थ केवल टीम का नेतृत्व करना नहीं बल्कि हर परिस्थिति में शांत रहकर सही निर्णय लेना, लोगों के साथ लेकर चलना, क्योंकि मैं एचआर डिपार्टमेंट में थी और इस पर्टिकुलर विभाग में हर तरीके का इंटरेक्शन रहता है लोगों से
0: जी,
1: और लोगों को बीच में अपने टीम को कैसे विश्वास दिलाना, कैसे टीम वर्क सिखाना, वो सब बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर रहा है मेरे लिए। एयरलाइंस तो आप जानते हैं कि बेहद ही एक चुनौतीपूर्ण जगह रहता है हमेशा,
0: बिल्कुल,
1: जहां हर दिन नई नई परिस्थितियां आती थी, लेकिन हम एचआर के होके बहुत डायरेक्ट नहीं आते थे बट हमारा लोगों से संपर्क रहता था जो एयर होस्टेसेस थी या कस्टमर्स रिलेशंस थी, तो वहां भी मैंने बहुत डिसिप्लिन और समय का टाइम मैनेजमेंट, समय का सम्मान करना, कैसे कैसे टीम वर्क में लोगों के साथ रहना, बहुत कुछ सीखा और बहुत कुछ सिखाया भी।
0: तो मिनाली जी, जैसे आजकल अक्सर न्यूज में हम पढ़ते रहते हैं कि फलानी एयरलाइंस में या फलानी फ्लाइट में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ गई, उनको लैंड करना पड़ा, या जो एक बहुत ही दुखद भरी फ्लाइट थी जो अहमदाबाद से चली थी वो क्रैश हो गई थी, या फिर इस तरह के इंसिडेंट्स आजकल बहुत आते हैं, तो इसके साथ, ऐसे इंसिडेंट्स के साथ आपका बीइंग एन एचआर लीडर क्या इसमें आपका इंटरेक्शन रहता था?
1: सौभाग्य बोलिए, मतलब सौभाग्य से उस मेरे वक्त पे ऐसा कुछ हुआ नहीं और मैंने बहुत ज्यादा नहीं सुना था, बट हमारे एयरलाइंस में उतना कुछ ऐसा हुआ नहीं। यस, एक टेक ओवर हुआ था, एक हैंडिंग ओवर एंड टेकिंग ओवर ऑफ बाय जेट एयरवेज, तो फिर वो जो पूरा ऑन बोर्ड चेंज होना पड़ा, लोगों को हमने फिर से रिक्रूट किया, फिर से उनको हमने डिपार्टमेंट वाइज उनको हमने प्लेस किया, वो काम मेरा पर्सनली बहुत इम्पोर्टेंट था, मेरा ही रोल उसमें ज्यादा था
0: जी,
1: इसलिए था क्योंकि मैं पहले से ही लोगों को जानती थी और लोगों को मैं किस डिपार्टमेंट में रिक्रूट करके प्लेस करूं, उनको प्रॉपर उनकी तनख्वाह भी बराबर रहे या उनके रिक्वायरमेंट्स या उनके वो, मैं, मेरा रोल कुछ उसमें ज्यादा ही था
0: जी,
1: तो
0: जी,
1: वो पीरियड मेरा बहुत एक्सटेंसिव पीरियड रहा। अदरवाइज क्रैशेस, कुछ मिसमैनेजमेंट तो छोटे मोटे तो थे, but that was
0: that is all a part of life,
1: या उतना consider नहीं किया हमने।
0: जी जी जी, बहुत ही रोचक पूर्ण आपके किस्से हैं और हम वापस इन किस्सों में आएंगे, इससे पहले हम आप

0: मिनाली जी, एक सफल प्रोफेशनल से पूर्णकालिक गृहिणी बनने का निर्णय किसी के लिए भी आसान नहीं होता
1: जी।
0: इस बदलाव के दौरान आपने स्वयं को कैसे पॉजिटिव बनाए रखा, कैसे हमेशा सकारात्मक बनाए रखा?
1: सच कहूं तो ये डिसीशन, ये निर्णय आसान नहीं था।
0: जी।
1: एक लंबे समय तक प्रोफेशनल जीवन के
0: जी,
1: जीने
0: लगभग
1: के बाद
0: 13 वर्ष आप
1: अचानक,
0: बता रही हैं।
1: यस यस,
0: जी।
1: जिसमें से 8 वर्ष मैंने मुंबई में किया और बाकी मैंने लखनऊ से ही स्टार्ट किया था।
0: जी
1: तो ये सफर बहुत ही एकदम सडन, प्रोफेशनल जीवन को जीने के बाद अचानक घर पे और परिवार को समय देना अपने आप में एक बहुत बड़ा बदलाव था मुझे। शुरुआत में मेरे को ऐसा लगा कि मेरी पहचान सिर्फ मेरे काम से जुड़ी थी हुई, क्योंकि हम इतने काम में लीन रहते थे और एचआर का काम ही इतना है कि वो टोटल इन्वॉल्वमेंट विद पीपल अराउंड, तो वो हमें लोगों के बीच में ही रहता था। तो मेरा समय इतना निकलता था कि मुझे कभी और कुछ सोचने का समय का ध्यान ही नहीं आता था। फिर ऑब्वियसली जब हमारी शादी हुई या हम मैरिज के बाद हम बॉम्बे आए, बच्चे हुए, तो बच्चों के साथ टाइम ज्यादा मिलना जरूरी हो गया। बिकॉज प्रोफेशन ऐसा है कि देखिए, काम तो हर के लिए एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है,
0: बिल्कुल।
1: और जो झाड़ू तो सबका ही नेचर रहता है, मतलब हम फीमेल्स का हैबिट ही, हम लोग का आदत ही है कि कोई काम पकड़ो तो उसको एकदम
0: बिल्कुल
1: अंजाम दे के रहो।
0: बिल्कुल।
1: तो मेरा
0: एक्चुअली
1: चूंकि
0: डबल
1: लखनऊ से,
0: रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है ना हमारी अगर हम प्रोफेशन
1: टोटली
0: में हैं तो।
1: टोटली
0: हाँ जी, हाँ
1: तो
0: जी।
1: फिर बच्चे छोटे, एंड उसी दौरान मेरे हस्बैंड को भी आउट ऑफ इंडिया प्लेसमेंट हो गया, तो ही वॉज आउट फॉर ऑलमोस्ट 6 years उनको
0: ओ
1: बाहर रहना पड़ा। ही वॉज इन दुबई।
0: अच्छा
1: तो फिर जॉब भी, और फिर मेरी एक बुजुर्ग, मेरी सासू माँ थी जो मेरे
0: जी
1: साथ
0: जी
1: रहती थी,
0: जी
1: तो फिर उनको देखना, और मेरे बच्चे छोटे ही थे, मतलब मेरा बेटा उस समय 9 साल का था, बेटी तो 5 साल की ही थी,
0: जी
1: तो बहुत डिफिकल्ट हो रहा था मैनेज करना। फिर मेरा नेटवर्किंग बहुत स्ट्रांग था, तो मैंने, चूंकि हम एचआर वाले हैं, हम लोग का रिक्रूटमेंट भी एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहता है,
0: जी
1: तो मेरा नेटवर्क बहुत स्ट्रांग था, प्लेसमेंट कंसल्टेंट्स बहुत सारे मेरे साथ अटैच थे। तो मैंने यही प्लान किया था कि मैं आफ्टर, मतलब अगर मैंने सबैटिकल लिया, मैंने छोड़ा बीच में, तो मैं वो कंटिन्यू करूंगी। बट कुछ ऐसा हुआ कि वो चीजें होते होते डेवलप कुछ महीने चली, बट फिर आगे नहीं हो पाया, तो फिर रह ही गया। और फिर आप जब आप परिवार के साथ रहते हैं तो आप समझ सकते हो कि वो एक अलग ही भूमिका हम निभा रहे हैं।
0: बिल्कुल
1: तो
0: बिल्कुल।
1: वो फिर, बट मुझे ऐसे बोलेंगे कि मैंने बहुत कुछ सीखा, कैसे मतलब अच्छे लोगों के साथ रह के जो मैंने सीखा था, तो मैंने अनुशासन भी सीखा था, कैसे निर्णय लेना सीखा था। तो ये मेरा गृहिणी होने पर भी मैंने ये भूमिका बहुत अच्छे से निभाई,
0: जी बिल्कुल।
1: और फिर दोनों को मिलाकर एक बेहतर, एक मैं अपने बोल सकते हैं कि मेरे बच्चों पे मैंने जितना डाइवर्ट किया टाइम, तो मुझे आज अपने पर इस बात पे फक्र
0: फक्र
1: है कि
0: है।
1: मैं
0: जी जी जी
1: बिल्कुल
0: एक्चुअली जो
1: समझ।
0: हमारे बच्चे जब अच्छे सेटल हो जाते हैं, अपनी मंजिल हासिल कर लेते हैं, तो उससे बड़ा इनाम हमारे लिए कोई
1: यस
0: नहीं
1: यस,
0: होता।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: जी,
1: बहुत
0: तो
1: बड़ी
0: एक
1: बात होती
0: ऐसा
1: है।
0: फिर दौर आया था जब कोविड ने हम सबकी
1: जी
0: जिंदगी तहस नहस कर दी थी, ऊपर से नीचे सब हिल गए थे।
1: पूरे पूरे पूरे
0: जी, तो उस वक्त फिर आपकी लाइफ में क्या चेंज आया?
1: देखिए, मैं संगीत से तो हमेशा से जुड़ी हुई थी, ऐसा नहीं
0: जी
1: है कि मैं नहीं गाती थी। मेरे कॉलेज डेज में, स्कूल डेज में, मतलब इनफैक्ट आई वाज, मेरे को बोला जाता था कि नाइटिंगेल ऑफ द स्कूल
0: क्या
1: और
0: बात
1: ऐसे
0: है,
1: करके
0: क्या बात है।
1: तो बोला जाता था। तो लेकिन फिर पढ़ाई, फिर बहुत कुछ करते करते वो थोड़ा साइड ट्रैक हो गया। फिर ग्रेजुएशन आया, फिर हमने शादी हो गई, फिर हम छोटे छोटे, मेरे उस समय भी मैं प्रोग्राम्स करती थी, बट ये इस स्केल पे नहीं करती थी। कोविड के टाइम पे हम जब इतना लंबा सफर घर में रह गए, बाहर निकल ही नहीं पाए, तो हमें स्टार मेकर और स्म्यूल मिला। वो मेरी एक सिस्टर है, कजन सिस्टर, यूएस में थी,
0: जी।
1: उसने मुझे इंट्रोड्यूस किया था स्टार मेकर में, और हम गाते थे साथ में। बट वो धीरे धीरे वो भी इसलिए कम होने लगा बिकॉज वो, उन लोग का टाइमिंग मैच नहीं होता था मेरे से, वो
0: जी।
1: लेट नाइट वाले और हम दिन वाले। तो फिर स्म्यूल आया, स्म्यूल से भी मैंने एक इंटरेक्शन शुरू किया। मेरे सोसाइटी में बहुत सारी फ्रेंड्स हैं जो स्म्यूल में हैं, उन
0: जी
1: लोग ने मुझे इंट्रोड्यूस किया, सिखाया, और फिर जब उस सिलसिले से मैं ज्वाइन हुई, गाना शुरू
0: देयर वाज
1: किया,
0: नो लुकिंग बैक।
1: देयर वॉज नो लुकिंग बैक, अब तक चल ही रहा है, मतलब वो
0: जी
1: अब उसके वजह से मैं, मेरा एक बहुत बड़ा एक इंटरेस्ट जाग गया, एंड प्रॉबेबली मैं ये बोलूंगी कि उससे लोगों ने मेरी, मतलब मेरे को पहचाना। और लोगों ने पहचाना मुंबई में, क्योंकि यहाँ पे भी मैं आज की डेट में लाइव शोज कंटिन्यूअसली, मेरा ये अभी ये महीना नेक्स्ट मंथ पूरा पैक्ड है, मतलब आई हैव सो मेनी शोज
0: वाह
1: कमिंग अप,
0: वाह
1: और कराओके शोज तो ऐसे नॉर्मल तो करती ही रहती हूँ,
0: जी
1: बट
0: जी
1: लाइव
0: जी
1: शोज विद म्यूजिशियंस करना ये अभी मेरा बहुत फोटे हो गया है।
0: जी
1: ये
0: जी
1: मैंने
0: जी
1: बहुत सारे, मैं जनरली लोग मुझे बहुत बोलते हैं कि आप डालते नहीं हो पर वीडियोस, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि हाँ डाल दूँ, बट उसमें थोड़ा सा मैं पीछे रहती हूँ, बट अदरवाइज मैं मेरे बहुत सारे मैं शोज अभी तक तो कर चुकी हूँ, मतलब
0: जी
1: एंड आई हैव ग्रोन विद दैट, वो एनवायरमेंट में मैं बहुत अभी आजकल एक्टिव हो गई हूँ,
0: बहुत खूब
1: तो
0: बहुत खूब
1: यही चल रहा है बस अभी।
0: जी। तो इसी के साथ हम आपका एक और खूबसूरत गीत लेते हैं।

0: मीनाली जी, जैसे आपने बताया कि आपको तो लोग पहले से ही नाइटिंगेल का खिताब दे चुके थे और आप पहले से ही स्टेजेस पर गाती आई हैं। कोविड के दिनों में आपने कैरियोके ऐप्स को काफ़ी यूज़ किया और एक तरह से कैरियोके की वजह से कहा जाए तो आपके टैलेंट को पंख लग गए, है ना। तो
1: बिल्कुल
0: जैसे कि हम सभी जानते हैं कि एक स्म्यूल या किसी भी कैरियोके सिंगिंग का जो गेट टुगेदर होता है वो लाइव सिंगिंग से बहुत अलग होता है।
1: बिल्कुल
0: तो कोई आपके ऐसी खास याद अपनी लाइव परफॉर्मेंस के साथ जो अभी तक आपके दिल के साथ जुड़ी हुई हो और जो आप हमारे श्रोताओं के साथ शेयर करना चाहती हूँ?
1: हाँ, मेरा पहला लाइव शो था जिसमें मतलब मैंने स्टूडियो में पहले गाया, फिर उसके बाद उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया कि द शो का जो शुरुआत में वंदना करते हैं
0: जी जी जी
1: वो आपको ही करना है। अब वो तो मैंने तो अभी शो स्टार्ट करना ही शुरू किया था, तो ये तो मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो गया कि अभी शो का एक वंदना स्टार्ट करना। फिर वो वंदना भी मतलब मैंने कभी जीवन में सुना ही नहीं था, वो बिल्कुल नया था मेरे लिए।
0: जी जी
1: फिर वो एक चैलेंज, ऐसा एक दूसरा चैलेंज ये हो गया कि अब ये वंदना को पहले लर्न करो, फिर उसके पूरे पूरे सिस्टम में लाना है, क्योंकि मुझे गाना है उसके अंतरे बराबर होने चाहिए, क्योंकि लोगों ने सुना हुआ है बट मैंने बहुत बाद में, मैंने मतलब मैंने
0: अच्छा,
1: बहुत
0: तो आपने
1: लेटली
0: वो
1: सुना
0: अकेले
1: था।
0: गाना था?
1: जी,
0: जी
1: तो हिच बहुत हो गया था, डर बहुत था, घबराहट बहुत थी कि कैसे बढ़ेगा, क्योंकि उसमें थोड़े हरकतें थी थोड़े,
0: जी जी जी जी जी
1: लेकिन मुझे दो बार मतलब मैंने प्रैक्टिस स्टूडियो में अलग से उन्होंने करवाया मुझे कि नहीं आप पहले इधर गा के देख लीजिए कि आपको कैसा। फिर
0: जी
1: मैं, आप बिलीव नहीं करोगे, आप रात दिन मैंने घर पे बहुत प्रैक्टिस किया, मतलब मैं कभी सोची नहीं थी कि अरे ठीक है वंदना है गाना है गा लेंगे वैसा, लेकिन वो नहीं हुआ मेरे साथ। मुझे काफी बार उसको सुनना पड़ा, फिर उसमें वो ट्रैक में भी कुछ प्रॉब्लम था तो मुझे बहुत सारा चेंजेस करवाना पड़ा, मतलब जो ट्रैक मेकर थे। फिर फाइनली जब आया है निखर के तो देवर अराउंड मेरा उस पर्टिकुलर शो में ऑलमोस्ट 500+ लोग थे,
0: वाह,
1: और जब मैंने स्टार्ट किया जो अलाप करके फिर उसमें अंतरा, तो इतना अपलॉड मिला मुझे, इतनी वाहवाही मिली उस पर्टिकुलर वंदना से, लोगों ने मुझे पहचानना शुरू किया। तो आगे जो भी शोज होते थे मुझे बुलाया जाता था कि नहीं पहले वंदना यही गाएंगी तो मुझे
0: दरअसल
1: वो
0: जो
1: अभी तक
0: श्रोताओं का,
1: बैठ गई।
0: हाँ, जो श्रोताओं का जो प्यार मिलता है वो एक कलाकार
1: बिल्कुल
0: की असली जो खुराक
1: असली
0: होती है
1: पहचान
0: वही
1: है,
0: होती
1: एक्चुअली वही है,
0: है ना।
1: वही बात है।
0: बहुत खूब। तो अगर आपको अपने जीवन को
1: जी
0: किसी एक पुराने सदाबहार गीत के माध्यम से व्यक्त करना, तो आप
1: हाँ हाँ
0: कौन सा गीत उसके लिए चुनेंगी और क्यों?
1: मैं तो बोलूंगी, देखिए मेरे हिसाब से अगर अगर आप सबसे पहले बोलेंगे तो लगेगा कि जिंदगी में, जिंदगी वाला जो एक शब्द है
0: जी
1: तो वो जिंदगी एक सफर है सुहाना वाला जो गीत है,
0: यहाँ कल क्या
1: या
0: हो किसने जाना।
1: हाँ ये है, और प्लस जीवन से भरी तेरी आंखें, मुझे ये लगता है ये दोनों गानों में इतनी गहराई है, मतलब हर चीज दोनों गानों में ये समझा रहा है कि आप लाइफ में आपने क्या सीखा, कैसा सफर गुजर गया क्या गुजरेगा। वो एक आदमी एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए ये चीजें बहुत मैटर करती हैं, जो हम कहाँ से किस लेवल से उठ के हम किस लेवल पे आज की डेट पे आए हैं,
0: जी
1: क्योंकि देखिए
0: जी
1: सपनों का तो कोई उम्र होती नहीं है, जीवन
0: नहीं
1: में जिम्मेदारियां हमेशा रहेंगी, लेकिन हम थोड़ा सा समय जो अपने जुनून के लिए निकाल लेते हैं या उसको जिंदा रखते हैं तो वो जो खुशी या वो जो ऊर्जा हमको मिलती है वो, अब गाने तो कोई अनलिमिटेड है, उसके तो कोई सीमा ही नहीं है,
0: जी बिल्कुल, किसी एक गाने को नहीं हम चुन सकते बताने
1: हम
0: के लिए
1: नहीं
0: कि
1: बता
0: हमारे जीवन
1: सकते।
0: का सफर कैसा
1: बिल्कुल
0: रहा।
1: बिल्कुल,
0: जी
1: लेकिन फिर भी ये दो गाने ऐसे लगते हैं मुझे कि ये बहुत मीनिंगफुल गाने हैं, बहुत ही इसमें बहुत मन से भरा हुआ
0: बिल्कुल
1: बिल्कुल किसी का पड़ा हुआ है, तो इसलिए मैं
0: बिल्कुल
1: वही सोचती हूँ कि गाने का तो कोई अंत नहीं है, आप अपने, मैं तो जैसे मैं अपने लिए सोचती हूँ कि मैं अपने इस शौक को पूरा कर रही हूँ, और भगवान की दया से साईं बाबा की तरफ से मैं, जो कि अब मैं यहाँ रह गई हूँ तो मुझे साईं बाबा पे बहुत विश्वास है, तो
0: जी
1: और गणपति बप्पा मेरे चूंकि
0: जी
1: हम घर पे भी अपने गणपति लाते हैं तो
0: लाते
1: उनकी
0: हैं।
1: कृपा से हम, मेरा जो अपना सफर चल रहा है भगवान करे वैसे ही मेरी उम्मीदें जैसे हैं, मैं चाहती हूँ कि हाँ मैंने बहुत उम्मीद नहीं रखा है कि मैं बहुत बड़ा कुछ फिल्म स्टार के रोल पे, वैसा वाला रोल तो नहीं होता है,
0: जी।
1: बट मेरा ये पैशन है जिसको मैंने जारी रखा है, और मैं जितना गा पाऊं अपने पैशन को निभा पाऊं इतना
0: जी
1: ही मेरा
0: मिनाली जी,
1: इच्छा।
0: देखा जाए तो हर कोई अपने अपनी जगह, अपनी अपनी फैमिली में एक नायक या नायिका का ही रोल अदा कर रहा होता
1: डेफिनेटली, बिल्कुल
0: है ना
1: बिल्कुल।
0: जी। तो कार्यक्रम के अंत में क्या आप हमारे श्रोताओं के लिए एक छोटा सा संदेश देना चाहेंगी, कोई प्रेरणादायक शब्द उन लोगों के लिए जो कि अपनी जिम्मेदारियों के बीच अपने सपनों को कहीं पीछे छोड़ चुके हैं?
1: देखिए, मैं बिल्कुल जरूर बोलूंगी अपने श्रोताओं को कि देखिए, सपनों को मत छोड़िए, उन्हें थोड़ा समय दीजिए, और छोटे छोटे कदम भी एक बड़ी मंजिल तक पहुंचा ही देते हैं, जैसे मुझे आज यहाँ पे पहुंचाया है।
0: जी
1: और बस सबसे बड़ी बात है कि एक अपनी तुलना किसी और से मत करिए, मतलब
0: जी ये
1: अगर
0: बहुत
1: हमने
0: जरूरी है।
1: कंपेयर किया तो अपनी यात्रा और हमारी यात्रा और किसी और की यात्रा में बहुत अंतर है, तो इस तुलना को करके जीवन चलेगा नहीं, आगे बढ़ेगा नहीं। तो अपनी खुशियों को अपनाइए, यदि यदि आपके मन में अच्छी सच्ची लगन है, विश्वास है, धैर्य है, तो रास्ते अपने आप ही बन जाते हैं।
0: बहुत ही खूबसूरत संदेश मिनाली जी, आज
1: थैंक
0: आपने
1: यू।
0: अपनी सादगी, अपनी सकारात्मक सोच और संगीत के प्रति अपने समर्पण से इस बातचीत को बेहद खूबसूरत बना दिया। आपका
1: थैंक
0: बहुत
1: यू,
0: बहुत धन्यवाद कि आपने
1: बहुत
0: अपने
1: बहुत
0: जीवन के इतने
1: शुक्रिया,
0: सुंदर अनुभव हमारे साथ साझा किए।
1: बहुत अच्छा लगा मुझे भी आप लोग सबसे बात
0: जी
1: करके।
0: तो दोस्तों, जिंदगी की भागदौड़ में अगर कोई चीज हमें फिर से मुस्कुराना सिखाती है तो वह है अपने दिल की आवाज को सुनना। और मिनाली जी ने ये साबित कर दिया है कि सपनों की कोई उम्र नहीं होती। मैं हूं आपकी अपनी आरजे सपना देव गुप्ता, और मेरे साथ हैं टेक्निकल एक्सपर्ट जगदीश अरोड़ा जी। फिर मिलेंगे जश्न सितारा गीत गुफ्तगू के एक और प्रेरणादायक एपिसोड में। नमस्कार, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए, रब राखा।

ये डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, जहां मिलती है आपकी आवाज को पहचान, यानी आपकी आवाज आपकी पहचान। डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो वर्ल्ड सुन रहे हैं आप, आपकी आवाज आपकी पहचान। प्रस्तुत है प्रोग्राम आज के कलाकार। हमारे आज के कलाकार हैं पंजाब गोविंदगढ़ मंडी से जगदीश अरोड़ा साहब। वेलकम है जगदीश जी आपका इस प्रोग्राम में। आज कुछ खास करने जा रहे हैं जगदीश जी, कुछ अलग तरह के गीत, कुछ हटके और कुछ इनके गीतों के खटके। आपकी आवाज आपकी पहचान, जगदीश अरोड़ा, पंजाब गोविंदगढ़ मंडी से।

तू है कभी जवा कोई तो है तेरा, तू ढूंढ ले उसे दिल दीवाने। तू है कभी जवा कोई तो है तेरा, तू ढूंढ ले उसे।

जी हाँ, ये सलाह दे रहे थे हमारे आज के कलाकार जगदीश अरोड़ा पंजाब से। आपकी आवाज, आपकी पहचान और इस सलाह के बाद हवा क्या कहती है, हवा का रुख क्या है, आइए ये भी जान देते हैं। आपकी आवाज में, आपकी आवाज, आपकी पहचान।

हवाओं की बातें हवाओं से बातें, जी हाँ, हवाओं की बातें हवाओं से बातें बातें कर रहे हैं आज के कलाकार जगदीश अरोड़ा। आपकी आवाज, आपकी पहचान, आप सुन रहे हैं डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो वर्ल्ड। और तेरी आंखों में क्या है वो भी सुन लेते हैं, देख लेते हैं, पहचान लेते हैं। आवाज जगदीश अरोड़ा की।

इसमें मेरा कसूर क्या है सनम? आपने सुना हमारे आज के कलाकार जगदीश अरोड़ा जी को। आपकी आवाज, आपकी पहचान, डिजिटल वॉइस वर्ल्ड के जयपुर रेडियो वर्ल्ड से आप सुन रहे हैं आज के कलाकार प्रोग्राम।

आपकी आवाज आपकी पहचान आप सुन रहे हैं आज के कलाकार प्रोग्राम में। हमारे साथ हैं जगदीश अरोड़ा पंजाब गोविंदगंज मंडी से, डिजिटल वॉइस वर्ल्ड के जयपुर रेडियो वर्ल्ड से आप सुन रहे हैं जगदीश अरोड़ा के कुछ हटके नए गीत।

0: डिजिटल वॉइस वर्ल्ड के जब रेडियो वर्ल्ड से आप सुन रहे थे प्रोग्राम आज के कलाकार। हमारे आज के कलाकार रहे जगदीश अरोड़ा, पंजाब गोविंदगढ़ से। आपको जगदीश जी के गीत कैसे लगे हमें जरूर अपना फीडबैक दीजिएगा। आपकी आवाज, आपकी पहचान, आप सुन रहे हैं जयपुर रेडियो वर्ल्ड। ये डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, जहां मिलती है आपकी आवाज को पहचान, यानी आपकी आवाज, आपकी पहचान।
1: भक्ति प्रभा, भजनों की सरिता, आप सुन रहे हैं जयपुर रेडियो, आपकी आवाज, आपकी पहचान।
2: नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम भजनों की सरिता में। लक्ष्मी का सादर प्रणाम। मित्रों, भक्ति गीत प्रार्थना की एक विशेष अंश है, भगवान के साथ एक मिलाप का समय है। प्रार्थना में हम अपने आप को एक ऐसी शक्ति के सामने आत्मसमर्पण करते हैं

वाह संजीव जी, बहुत खूब। मित्रों, भारतीय परंपरा के कई महान संत थे, जैसे रामानुजाचार्य, संत रविदास, कबीर आदि, जिन्होंने हमें धार्मिकता का सही मार्ग दर्शाया। इनमें से एक थे गुरु अर्जन, जिन्होंने सिखों के आदि ग्रंथ को संकलित किया, जिसमें पिछले कई गुरुओं के गुरुवाणी शामिल थे। गुरु ग्रंथ साहिब में आधे से अधिक शब्द गुरु अर्जन द्वारा रचित हैं। चलिए एक शब्द सुनते हैं ललिता कृष्णमूर्ति की मधुर वाणी में।

वाह ललिता जी, अति मधुर प्रस्तुति। मित्रों, भक्ति संगीत में ऐसी शक्ति है कि वह सभी को अपनी ओर आकृष्ट कर लेती है। संगीत ऐसा सात्विक आनंद है जो जाति, धर्म, लिंग, आयु, वर्ग सभी से परे है। संगीत सबके लिए है। संगीत को न सीमाओं से बांधा जा सकता है, न नष्ट किया जा सकता है। ये आबाद धारा सबके लिए सर्वत्र सुलभ है। हमारा अगला गीत फिल्म जॉनी मेरा नाम के लिए इंदिवर जी ने लिखा था और इसे संगीत से सजाया है कल्याण जी आनंद जी ने। इसे मूल रूप से लता मंगेशकर जी ने गाया है और जयपुर रेडियो के लिए प्रस्तुत करने आ रही हैं विद्या शंकर जी।

वाह विद्या जी, इस सुमधुर प्रस्तुति से मन प्रफुल्ल हुआ। मित्रों, हमारे देश के संतों ने समय समय पर यह शिक्षा दी है कि वास्तव में भगवान और उनके नाम के बीच कोई अंतर नहीं है। ऐसा भी कहा जाता है कि भगवान का नाम स्वयं भगवान से भी श्रेष्ठ है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, राम का नाम भगवान राम से भी श्रेष्ठ है। श्रीमद् भागवत में ये कथा है कि कलयुग में श्री हरि के नाम के जाप से ही जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्ति प्राप्त हो सकती है, क्योंकि सब में राम और राम में है सब। तुलसी का प्रभु भी वही, नानक का रब भी वही। नाम भजन में ज्योति असीमित। पेश है एक राम धुन जो मूल रूप से लता मंगेशकर जी ने गाया है प्रसिद्ध एल्बम राम श्याम गुण गान में। इसे जयपुर रेडियो के लिए प्रस्तुत कर रहे हैं स्वागता पॉल और संजय हर।

और संजय जी हम मन विभोर हुए। मित्रों, भगवान राम एक अवतार पुरुष थे, असाधारण पुरुष थे, करुणा मूर्ति थे। ये सभी के प्रति स्नेह और अपनापन का सामान्य भाव रखते थे, चाहे वह सज्जन हो या दुर्जन हो। वह तो ऐसे करुणा मूर्ति थे जो उनके शत्रु के प्रति भी स्नेही और दयालु थे। चलिए सुनते हैं एक भजन जो श्री अरबिंदो सोसाइटी के मेंबर्स द्वारा रचाया गया है। इस भजन को स्वरबद्ध किया था जगजीत सिंह जी ने। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं संजय फड़के जी और मैं लक्ष्मी बालचंद्र।

0: बेहद खूबसूरत संजय जी, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारा साथ दिया। मित्रों, सुविचार, सत्संग और निरंतर भगवान के जाप से सकारात्मक ऊर्जा निर्मित होती है। हम आशा करते हैं आपका जीवन सकारात्मक ऊर्जा से प्रकाशित हो।
1: आप सुन रहे हैं जयपुर रेडियो, आपकी आवाज, आपकी पहचान।
0: मित्रों, ये एक सामान्य बात है कि संकट के समय हम भगवान की ओर रुख करते हैं। हम घोर विनम्रता और प्रत्याशा दोनों के दोहरे रवैया के साथ आते हैं। हम परमेश्वर को आदेश तो नहीं देते, लेकिन हम साहसपूर्वक, श्रद्धापूर्वक उनके सिंहासन के सामने आते हैं, ये कहते हुए कि मैं तो कब से तेरी शरण में हूँ, मेरी ओर तू भी तो ध्यान दे। नक्शल्यालपुरी की ये पंक्तियाँ फिल्म रामनगरी के लिए लिखा गया था। इसे संगीत से सजाया था जयदेव जी ने। इस गीत को मूल रूप से हरिहरन जी और नीलम सानी जी ने गाया है। आपके लिए इस गीत को प्रस्तुत करने आ रहे हैं संजय फड़के जी।

वासंजय जी, हम तो भाव गदगद हुए। मित्रों, एक व्यक्ति का आंतरिक जीवन और बाहरी ब्रह्मांड के बीच कोई अलगाव नहीं है। मन एक दर्पण की तरह है, जो कुछ भी सामने आता है वह उसमें प्रतिबिंबित होता है। आप जिस किसी के बारे में सोचते हैं, उसकी भावनाएं और उसकी मनस्थिति आप पर टिकी रहती है। अगर आप खुश लोगों के बारे में सोचते रहते हैं तो आप खुश हो जाते हैं। दुखी चीजों के बारे में सोचकर आप दुखी महसूस करते हैं। इसलिए साहिर लुधियानवी जी ने लिखा है, तोरा मन दर्पण कहलाए। इस गीत को काजल फिल्म के लिए संगीतकार रवि ने स्वरबद्ध किया था और आशा भोसले जी ने अपने मधुर वाणी से इसे सजाया है। जयपुर रेडियो के लिए प्रस्तुत करने आ रही हैं मोनिका दश और अनुराधा वैद्यनाथन।

वाह मोनिका जी और अनुराधा जी, अति मधुर प्रस्तुति। हमारे अगले भक्ति गीत में कौशल्या मैया कागज से पूछती है, तुम सच बोलो और मुझे बताओ कि मेरे प्राणों से प्यारे वे लोग कब आएंगे। तुलसीदास जी की गीतावली से ये रचना।

अति सुंदर प्रस्तुति संजय जी, आइए स्वागत करते हैं इस खूबसूरत शिव धुन के साथ। इस पारंपरिक धुन को प्रस्तुत करने आ रहे हैं संजय हरने जी, संजय फड़के जी, अनूप शर्मा जी, जय कृष्णन जी, ललिता कृष्णमूर्ति, श्वेता, शोमा सी रॉय, प्रेरणा जकातदार, मधुलिका शर्मा और स्वयं मैं लक्ष्मी बाई।

0: बेहद खूबसूरत प्रस्तुति, हम सचमुच मन विभोर हुए। इसी के साथ हमारा आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है।
1: आप सुन रहे थे प्रोग्राम भजनों की सरिता। इस भक्तिमय संगीतमय साधना को प्रस्तुत कर रही थीं लक्ष्मी बालाचंद्रन। डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का ये जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, आपकी आवाज आपकी पहचान।

0: आप सुन रहे थे बिंदु व्यास की आवाज में डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का, ये जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, आपकी आवाज आपकी पहचान।
1: जयपुर से निकली गाड़ी दिल्ली चले हल्ले हल्ले दिदिन तिनक दिन दिदिन तिनक दिन। अरे हल्ले हल्ले क्यों, जल्दी जल्दी डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से जयपुर रेडियो ऐप अभी इसी वक्त और आनंद लीजिए अपने मन पसंद गीतों का कहीं भी कभी भी। जयपुर रेडियो आपका अपना रेडियो,
2: अपना शहर अपनी शान, जयपुर रेडियो मेरी जान।
3: अरे ये लाहौर लाखों और इस कमबख्त को क्या हो गया, ये बजता क्यों नहीं है?
4: क्या हुआ चचा, ये रेडियो पे इतना जुल्म क्यों ढा रहे हैं आज?
3: अरे जुल्म किस बात का बेटा, अब आधे घंटे से लगे हुए हैं, अब हमारा पसंदीदा प्रोग्राम आने वाले थे, हमारे गीत आने वाले थे, लेकिन ये कमबख्त है कि बजने का नाम ही नहीं लेता।
4: तुम मोबाइल पे ही सुन लीजिए ना रेडियो।
3: अरे बेटा कौन वो लीड लगाए और फिर वो दो फुलटरू कान में डाल के वो लंबी सी रस्सी लेकर यहाँ वहाँ घूम।
4: अरे नहीं चाचा, अब उस रस्सी की जरूरत नहीं पड़ेगी।
3: अच्छा?
4: अब आ गया है एक नया ऐप जिसपे आप इंटरनेट के सहारे रेडियो सुन सकते हैं कहीं भी कभी भी।
3: अच्छा कौन सा ऐप है वो?
4: हाँ चाचा, जयपुर रेडियो।
3: जयपुर रेडियो? पर बेटा हम तो लखनऊ में रहते हैं और जयपुर।
4: चचा देश के नहीं बल्कि दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर आप अपने पसंद के गाने सुन सकते हैं।
3: अरे वाह, ये लो बेटा फोन, और क्या नाम बताया उस ऐप का?
4: लाइए मुझे दीजिए आपका फोन, मैं अभी डाउनलोड कर देती हूँ जयपुर रेडियो।

डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, जहां मिलती है आपकी आवाज को पहचान, यानी आपकी आवाज आपकी पहचान।

0: अरे ये लाहौर लाखों और इस कमबख्त को क्या हो गया, ये बजता क्यों नहीं है?
1: क्या हुआ चचा, ये रेडियो पे इतना जुल्म क्यों ढा रहे हैं आज?
0: अरे जुल्म किस बात का बेटा, अब आधे घंटे से लगे हुए हैं, अब हमारा पसंदीदा प्रोग्राम आने वाले थे, हमारे गीत आने वाले थे, लेकिन ये कमबख्त है कि बजने का नाम ही नहीं लेता।
1: तुम मोबाइल पे ही सुन लीजिए ना रेडियो।
0: अरे बेटा, कौन वो लीड लगाए और फिर वो दो फुलटरू कान में डाल के वो लंबी सी रस्सी लेकर यहाँ आ रहा हूँ।
1: अरे नहीं चाचा, अब उस रस्सी की जरूरत नहीं पड़ेगी।
0: अच्छा,
1: अब आ गया है एक नया ऐप जिसपे आप इंटरनेट के सहारे रेडियो सुन सकते हैं, कहीं भी कभी भी।
0: अच्छा, कौन सा ऐप है वो?
1: हाँ चाचा, जयपुर रेडियो।
0: जयपुर रेडियो? पर बेटा, हम तो लखनऊ में रहते हैं और जयपुर?
1: चाचा, देश के नहीं बल्कि दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर आप अपने पसंद के गाने सुन सकते हैं।
0: अरे वाह, ये लो बेटा फोन, और क्या नाम बताया उस ऐप का?
1: लाइए, मुझे दीजिए आपका फोन, मैं अभी डाउनलोड कर देती हूँ जयपुर रेडियो। तुमने दी आवाज, हो जाए अब तो आगाज, जयपुर रेडियो आपकी पहचान।
2: आवाज की पहचान, जयपुर रेडियो मेरी जान।
3: जयपुर रेडियो अपनार आवाज अपनार परिचय, सुनते थाकुन बंधुगण। जयपुर रेडियो
2: आपकी आवाज का जादू, कैसे रहे खुद पर काबू, जयपुर रेडियो आपकी पहचान।
4: तवा बुधिराय आयो जयपुर रेडियो ते भक्ति आराधना।

0: डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का ये जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, आपकी आवाज आपकी पहचान। आज से हम एक नया सेगमेंट शुरू कर रहे हैं और उसका टाइटल है, उसका शीर्षक है सोच की दुनिया। जितना हम सोचते हैं, जैसा हम सोचते हैं, हमारे आसपास, हमारे चारों तरफ वही दुनिया बस जाती है। यानी हमारे सोच का प्रतिरूप होती है हमारे आसपास की दुनिया। और ऐसा क्यों होता है, किस लिए होता है, इसके पीछे कौन से घटक होते हैं, कौन से कारण होते हैं, इन सब के लिए हमारे साथ एक स्पेशलिस्ट हैं। अहमदाबाद गुजरात की कृति मेहता हमारे साथ हैं इस खास प्रोग्राम में। कृति, वेलकम है आपका इस खास प्रोग्राम में जिसका नाम है सोच की दुनिया। क्या कहेंगी, क्या सोचती हैं आप इस बारे में? पहले तो प्रोग्राम के बारे में क्या कॉन्सेप्ट है, आप हमारे लिसनर्स को इस कॉन्सेप्ट का जो डिस्क्रिप्शन है उसे अपने शब्दों में बयान करेंगी?
1: यस ऑफ कोर्स सर, सबसे पहले नमस्ते सारे जो भी मेरे श्रोतागण हैं उनको सबको भी नमस्ते। सोच की दुनिया यही मेरा मेन सब्जेक्ट है और नॉर्मली मैं सभी के माइंडसेट, बिलीफ सिस्टम, पर्सनालिटी और जो भी वाइब्रेशन वाली जो दुनिया है उसी के ऊपर मैं वर्क कर रही हूँ। तो सोच की दुनिया में मैं ऐसा मानती हूँ कि अभी की जो दुनिया है ना वो हमारी ही बनाई गई एक दुनिया है और हमारा ही ये जो विश्व है, हमारे पास जो भी हमें जीवन मिला है, हमें जिन लोगों के साथ अभी रह रहे हैं, जिस तरह से रह रहे हैं, पैसा कितना है, हमारे आजू बाजू एटमोस्फियर कितना है, किस तरह के लोग हैं कि और किस तरह से हमें उनकी ओर से भी बिहेवियर मिलता है, किस तरह से हमारे रिश्ते हैं, ये सब हमारी सोच के ऊपर निर्भर होता है।
0: बिल्कुल, आपने बहुत सही कहा कि जो हमारा सोच है, वो सोच जिसको हम यदि धार्मिक दृष्टि से कहेंगे तो कहा जाता है कि पहले हमने इच्छा की किसी चीज की, इच्छा के बाद में जो है कल्पना की, कल्पना के बाद में उसके लिए हमने क्रिया की और क्रिया से हमें ज्ञान का बोध हुआ। तो इसी तरह से सोच की जो दुनिया है कि आपने रात को सोचा कि कल सुबह मुझे क्या पहनना है, जीन्स पहननी है या टी शर्ट पहनना है या किस तरह का लिबास पहनना है, आज तो मैंने साड़ी पहनी थी, तो उस सोच को जब आप दूसरे दिन परिणति में यथार्थ में ढालती हैं तो और उसको उसी रूप से यदि वो सब कुछ हो जाता है तो हमें एक आत्मिक खुशी मिलती है, मन को एक शांति मिलती है कि जैसा मैंने सोचा वैसा किया। तो इस चीज को हम और व्यापक तरीके से, यानी जितना हमारा सोच होगा उसी तक उसकी सीमाएं होंगी, सरहदें होंगी, तो उस सोच को हम व्यापक कैसे बना सकते हैं?
1: ऑफ कोर्स, बहुत अच्छा टॉपिक आपने कहा और यही टॉपिक मैं सबके लिए ही लाई हूँ। तो सबसे पहले हमें ये मान लेना चाहिए कि ये जो विश्व है ना, तो वो विश्व के पास अनंत शक्तियां पड़ी हुई है, अनंत शक्तियां। मैंने बहुत बार देखा हुआ है और काफी सारे धार्मिक ग्रंथ, सबसे ज्यादा मेरा फेवरेट जो है भगवद गीता, तो उसी में जो कहते हैं कृष्णा यही कहते हैं कि ना ही मुझे जला सकता है, ना ही मुझे कोई डुबा सकता है, ना ही मुझे कोई काट सकता है, ना ही मेरे को कोई, मतलब किसी तरह से मुझे परेशान नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे मन का स्वामी मैं खुद हूँ, मैं खुद एक पावरफुल सोल हूँ। ठीक है, तो अगर कोई भी इंसान या कोई भी व्यक्ति मतलब इस तरह से मान ले कि मुझे पहले, सबसे पहले उसको पर्पस नक्की करना है कि मुझे क्या करना है अपने जिंदगी में और मैं किस हद तक जाने वाला हूँ। जैसे नॉर्मल कोई भी बच्चा है, हम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को, सर जी को ले ले, तो उनको देखिए कि कहाँ मामूली इंसान से वो इतने बड़े साइंटिस्ट, फिर हमारे राष्ट्रपति बन गए और आज भी उनका नाम एक रिस्पेक्ट के साथ हम लेते हैं कि उन्होंने अपनी सोच, जैसे स्वामी विवेकानंद है, गांधी जी है, तो उन लोगों ने डिसाइड किया था कि मुझे कहाँ तक जाना है। तो जो मन हमारा होता है ना, तो जब ये सब मैं बहुत बार पढ़ती हूँ ना, तो मुझे एक बात बहुत गौर की है तो जो हमारा मन है ना वो हमारा पिता है और जो हमारा बॉडी है वो हमारी माता है।
0: जी नॉर्मली तो मतलब ये है कि मन की ऊर्जा जो है वो तन की ऊर्जा के साथ मिले, उनका सामंजस्य हो और तालमेल रहे, यानी ऐसा नहीं हो कि हमारा तन तो कहीं और देख रहा है और मन कहीं और घूम रहा है, तो उन दोनों में संतुलन होने की जरूरत है। बहुत अच्छी बात कही कि मन हमारा पिता है और बॉडी जो है हमारी मदर है।
1: तो नॉर्मली हम बचपन से हमारी प्रोग्रामिंग जिस तरह से हम माहौल में रहते हैं इस तरह से तो मानते हैं, मैं इतना श्योरली मानती हूँ, मैं क्योंकि सब सबके पर्सनालिटी पे मैं काम करती हूँ तो बहुत ऐसा देखती हूँ कि मैक्सिमम 7 इयर्स तक सारी प्रोग्रामिंग हो चुकी होती है। 7 इयर्स के बाद तो जो सोसाइटी होती है, जो हमारा एटमोस्फियर, जो हमारा परिवार और हमारे दोस्त, टीचर्स, कॉलेज, फ्रेंड्स सभी हमको ड्राइव करते रहते हैं। एक्चुअली हम फिर डेटा ही कैरी करते रहते हैं, हमारा डेटा हम इनपुट ही करते रहते हैं, आउटवर्ड हमारा कुछ होता ही नहीं है। तो इस तरह से हमारी पूरी दुनिया हमारी
0: हम इस बात को एक बार फिर और स्पष्ट करना चाहेंगे, और आप ये कहना चाह रही हैं या ये कह रही हैं कि जो बच्चा होता है तो उसकी 7 वर्ष की उम्र तक ही जो है दिमाग की जो प्रोग्रामिंग होती है वो सेट हो चुकी होती है, उसके बाद हम जो है उसको यूज करते हैं, मतलब
1: तो नॉर्मली जब बच्चा छोटा होता है तो उसको ऐसा हम बार बार ना शब्द का यूज बहुत करते हैं कि ऐसा मत कर, ऐसा मत कर, ऐसा मत कर। आगे जाके वो लड़का या लड़की कुछ भी करने से उसको कॉन्फिडेंस नहीं आता है। कभी कोई बच्चा छोटा है उसको बोल दिया गया कि तू छोटा है रहने दे हम कर लेंगे, वो बच्चा 80 साल का भी हो जाएगा, मतलब वो खुद भी दादा बन जाएगा या दादी बन जाएगी, वो ऐसा ही मानता रहेगा, वो जिम्मेदारी से भागता रहेगा।
0: कृति हमने कई बार ऐसा देखा है कि जब ना ना उसको कहा जाता है तो किसी यस चीज के लिए कि आपको ये चीज खानी है या पीनी है, तब वो पहले ना कहेगा और फिर कहेगा यस जी मैं ये काम करूंगा, तो उसमें जो नेगेटिविटी है वो पहले ही हम आरोपित कर देते हैं। आपके कहने का तात्पर्य मेरे ख्याल में यही है। जी
1: यस तो वो नेगेटिविटी इतनी होती है ना कि फिर वो जो जब रियल लाइफ में आता है ना, क्योंकि हम क्या करते हैं बहुत सारा पैम्परिंग वाला एटमोस्फियर दे देते हैं, या तो इतना वो मतलब इस तरह से एटमोस्फियर दे देते हैं जैसे तू कुछ वैलिड ही नहीं है, मतलब दो देते हैं, मतलब पैम्परिंग ही चाहिए और इस तरह से उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दे, तो उस तरह से हम नहीं देते हैं। हम या तो पैम्परिंग ही बहुत ज्यादा दे देते हैं या उसको कम्प्लीटली रिस्पॉन्सिबल छोटी उम्र से भी बना देते हैं। अभी यहाँ पे 2 स्टेज आएंगे। सोच की दुनिया में मैं बहुत ज्यादा देती हूँ प्रोग्रामिंग के ऊपर पार, क्योंकि मुझे इतना पता है कि ऐसा भी नहीं है। यहाँ पे कलयुग में एक गिफ्ट बहुत अच्छी दी है और ये गिफ्ट ये है कि अगर हम प्रोग्रामिंग हुआ है ना तो रीप्रोग्रामिंग भी हो सकता है, ये मैं बहुत अच्छी तरह से मानती हूँ। और
0: वो,
1: मैंने
0: वो किस तरह से हो सकता है, वो किस तरह से हो सकता है, क्योंकि ये सारी चीजें डिपेंड करते हैं जब जिस एटमोसफेयर में हम रहते हैं, जिस परिवेश में हम पलते बढ़ते हैं, तो रीप्रोग्रामिंग आप किस तरह से करेंगी। जैसे कंप्यूटर है तो उसमें कंप्यूटर की सारी चीजें जो थी वो हमारे मस्तिष्क में थी वो हमने निकाल के बाहर डाल दी। जैसे अपना मोबाइल है वो सारी चीजें हमने हमारे दिमाग में थी पर हमने उसको इस तरह से उसके सॉफ्टवेयर को डेवलप किया और वो सारी चीजें ना उस कागज पे उतारने की जगह हमने इस तरह से उसको इम्प्लीमेंट किया कि वो हमारे लिए उपयोगी हो सके। तो आपने रीप्रोग्रामिंग की बात की, वो कैसे हो सकता है, क्योंकि उसको करने से तो बड़ी क्रांति आ सकती है और बहुत सारी चीजें जो है वो हम जैसा चाहें वैसा हो सकती है, तो किस तरह से हो सकती है?
1: यस, क्योंकि ये जो रीप्रोग्रामिंग जो होगा ना, इससे सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि अभी तक जो इमोशनल फूल बनकर हम लोग जी रहे हैं ना, इसके ज्यादा हम प्रैक्टिकल कूल बनकर जी सकते हैं और लाइफ बहुत ईजी बन जाए, बहुत ईजी। और जितना पैसा चाहो, जितने रिलेशनशिप इश्यू है वो सोल्व हो सकते हैं, बॉडी एकदम से हेल्दी हो सकती है, पूरा रिग्रेट चला जाता है इंसान को। मतलब मेरे पास इतनी वो कहते हैं ना संजीवनी जड़ी बूटी है कि इंसान हर एक मोमेंट पे, मतलब हर एक मोमेंट पे वो खुश रह सकता है और जितना भी आयुष्य लेना चाहे इतना आयुष्य एकदम हेल्दी लाइफ जी सकता है,
0: यानी दुखी रहने का कोई कारण बचता ही नहीं।
1: यस, दुख का कोई कारण नहीं रहेगा, क्योंकि यही एक चीज है। और मैं बहुत अच्छी तरीके से ये मानती हूँ कि लाइव इन प्रेजेंस, अभी यह अभी का जो इरा चल रहा है या अभी कोई भी लोग होंगे ना, तो उनको आप गौर से देखिएगा, वो हो गए 24-25 साल के, लेकिन 15 साल का वक्त जो डेटा है या पिछले 2 साल का भी जो डेटा है ना, वो और अभी के प्रेजेंट सिचुएशन को मर्ज करके चलते हैं। पिछला जो डेटा, रॉन्ग एक्सपीरियंस, रॉन्ग डेटा, रॉन्ग पर्सन मिल गए ना, तो अभी कोई भी एक्सपीरियंस नया करने से सबसे पहले डरते हैं। अगर किसी ने धोखा दे दिया तो नए इंसानों पर विश्वास नहीं करते हैं। अगर कहीं पे मनी इश्यू आ गए तो वो ज्यादा मनी लेने से भी डरते हैं, देने से भी डरते हैं कि कहीं फंस गए तो अपने को तो जो भी सही है बिजनेस
0: इसी जीवन में, हाँ, हाँ, इसी वह पोहोच जिसको कहें, असमंजस की स्थिति हो जाती है ऐसे में। बहुत सही कह रहे हैं आप।
1: दूसरा क्या होता है कि समाज में ऐसी बता दी गई है कि देखो इतने इतने फैक्टर है, इतने इतने में, जैसे बच्चा बड़ा हुआ, जॉब लगी, शादी की, उनके बच्चे आए, अच्छी तरह से कर रहे हैं, साल में 2-4 बार ट्रिप लेके आते हैं, अच्छे होटल में खाना खाते हैं, बस यही इनकी लाइफ। समाज को कुछ नहीं देते, और समाज को अगर दे भी देते हैं तो इस तरह से देते हैं कि जैसे कि मेरे पास एक्सेस था इसीलिए मैंने दिया, ये मेरा पार्ट है, मुझे करना चाहिए, मैं समाज से इतना ले रहा हूँ, और यही समाज में मैं जीने वाला हूँ, मेरी 7 पीढ़ियां भी यहाँ पे आने वाली है। तो इस तरह से नहीं होता है। जैसे दान पुण्य हमेशा फियर में होता है, जिसका फियर सबसे ज्यादा होगा उसका डोनेशन सबसे ज्यादा है, ये चीज मैंने बहुत अच्छे तरीके से देख ली है।
0: बहुत सही कहा आपने। हम उस बात को और स्पष्ट करना चाहेंगे, जैसे इमोशनल फूल और कूल वाली बात आपने कही, उसको आप जरा और व्यापक विस्तार से कहेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा, समझाने वाली बात में, यानी हर आदमी उसको समझ सके।
1: यस, इमोशनली फूल में कैसा होता है कि नॉर्मली हम कोई भी काम करते हैं ना, तो उसके बेनिफिट्स और ड्रॉबैक्स देखते हैं, ठीक है। दूसरा है कि कहाँ पे हाँ बोलना है, कहाँ पे ना बोलना है, वो हमें नहीं पता है होता है। तो कहीं पे हम ऐसे फंस जाते हैं ना, तो वो सिचुएशन ले तो लेते हैं लेकिन उसको न्यायपूर्वक अच्छे तरीके से निभा नहीं सकते। तीसरी बात होती है कि कोई भी आकर हमारे बारे में कोई भी स्टेटमेंट बोल के जाता है, वो चीज अपन मतलब इतना गांठ बांध के रख लेते हैं ना, अरे ये कैसे बोल गया, उन्होंने, मेरे कोई गलती नहीं थी, मेरा कसूर नहीं था, मैंने तो अच्छा करने गया, ये सब कुछ।
0: अगर उस वक्त इसने इस तरह से कहा या ये बात कही, उस चीज को प्रिजर्व करके अपने दिमाग में प्रिजर्व करके उसको जो है वो रख लेते हैं, सेव कर लेते हैं, जैसे कंप्यूटर में हम सेव करते हैं, उसी तरह उस बात को सेव कर लेते हैं। तो वो
1: वो होते नहीं है, जैसे बोलते हैं कि अरे यार तेरे के ऊपर ये शर्ट अच्छी नहीं लग रही है, अरे ये तेरे बाल कितने बेकार है। अगर वो इंसान प्रैक्टिकल कूल होगा, वो अपना सेल्फ लव करता होगा ना, उसके बाल कैसे भी है, उसने किसने भी वो शर्ट पे, वो इतना अपने आजू बाजू है ना एक प्रोटेक्टिव शील्ड रखेगा, तुमको जो बोलना है, तुमको जो एक्शन लेना है, मेरे मन की स्थिति मेरे काबू में है, मुझे कितना सुखी होना है, कितना दुखी होना है, वो सिर्फ मैं ही तैयार करूंगा।
0: बहुत अच्छी बात, बहुत ही बेहतरीन बात, बहुत बेहतरीन बात। कई बार बहुत अच्छा लग रहा होता है तो लोग जलते हुए भी ऐसे कह देते हैं कि अरे तुम कैसे लग रहे हो, अजीब से कपड़े पहने हैं, क्या है, जबकि वो बहुत अच्छा लग रहा होता है। और वो कहने वाले को अच्छा नहीं लग रहा होता है, जो कह रहा है उसको अच्छा नहीं लग रहा है, और वो जो है वो संवेदना ट्रांसफर करता है, अपनी जो नेगेटिविटी है

0: दूसरा एक साइंटिफिक वे में आपको बता देती हूँ. साइंटिफिक वे में ये आप बहुत अच्छे तरीके से डीपली समझ पाओगे. आप कोई भी विचार आता है आपका, 17 सेकंड तक आप होल्ड करो. कि जैसे मुझे विचार आया कि आज मैं है ना, तो आज मैं खुश रहूंगा. ठीक है, तो खुश रहने के लिए आपको कोई भी मटेरियलिस्टिक चीज की जरूरत नहीं है. खुशी हमारे अंदर होती है. जैसे आज आप और मैं ऐसे ऑफिस में बैठे हुए हैं, मेरे नीचे मैं देख रही हूँ बालकनों में कुछ बच्चे खेल रहे हैं इतनी धूप में भी, तो वो भी आराम से खेल रहे हैं. तो सुकून जो होता है ना, सुकून होता है या जो शांति होती है या जो ओरिजिनल पी, मतलब किस तरह से कहे कि जो हमारा
1: ओरिजिनल पीस, मन की शांति, हाँ, जो
0: ओरिजिनल, यस यस, तो वो जो होता है वो डिपेंड हमारे मन के ऊपर करता है. तो कोई भी थॉट को आपने पकड़ लिया, अभी वो 17 सेकंड तक होल्ड कर लेते हैं ना, तो वो ही थॉट हमारा 100% आगे बढ़ता है, और फिर 1000% बढ़ता है, फिर 10000% बढ़ता है. तो इस तरह से हमारे आजू बाजू एक मैग्नेटिक फील्ड हो जाता है. अभी आप कभी भी देखना कि आप बहुत ही अच्छे कोई साधु संत है, भगवंत है, उनके पास जाओगे, या कभी मंदिर मस्जिद कहीं पे भी गुरुद्वारे में आप जाओगे, तो वहां का ओरा कैसा होता है कि वहां पे सब एकदम पॉजिटिव पॉजिटिव. जैसे हम कहते हैं ना कि घर में तो मंदिर में पूजा करके मजा नहीं आता है, मैं इस मंदिर में जाती हूँ या जाता हूँ ना तो मुझे सुकून लगता है
1: जी.
0: तो वहां पे क्या होता है, बहुत सारे लोग एक साथ, मतलब अभी आप है, आप अपने बेटे को ऐसा बोल दो कि बेटा तू बहुत अच्छा बेटा है, आपके घर वाले बोल दे, 3, 4, 5, 10 लोग बोल दे, तो समझो कि ये विचारों का समूह बन जाएगा. और जो समूह बनेगा तो आपको पता ही है कि ये बच्चा अगर नॉटी बॉय भी है ना, वो भी गुड बॉय में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा. ये वाइब्रेशन और ये थॉट प्रोसेस जो होती है ना, उसका एक जादू होता है.
1: बहुत ही जादू मंत्र आपने बताया है, बेहतरीन मंत्र है. और हम श्रोताओं को बता दें कि हमारे साथ हैं माइंड थेरेपिस्ट और विशेषज्ञ स्पेशलिस्ट, मन के विज्ञान की स्पेशलिस्ट कृति मेहता, अहमदाबाद गुजरात से. वेलकम कर रहे हैं आपकी बातों का और जीवन के दर्शन का प्रोग्राम सोच की दुनिया में. जी कृति, वेलकम है फिर से.
0: यस, नमस्ते. सोच की दुनिया, सोच की दुनिया एक ऐसी दुनिया है कि जहाँ पे हम लिमिटलेस हैप्पीनेस, लिमिटलेस पीस, लिमिटलेस गुड हेल्थ, सब कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हैं. सिर्फ और सिर्फ हमें इतना सोचना है कि हम कहाँ तक सोच सकते हैं, हमारी जिंदगी हम कितनी व्यापक बनाकर उनको रियल लाइफ, मतलब हमारे पास एक ही जीवन अगर मिला हुआ है मनुष्य योनि में, तो उनको किस अच्छी तरीके से जिए कि लास्ट में हम भी अगर जब जाए ना इस दुनिया से, तो इतना पता चले कि यार मजा आ गया, सच में मैंने एक अच्छी हीरो या अच्छी हीरोइन की तरह मैंने जिंदगी जी. तो ये है हमारी सोच की दुनिया.
1: बिल्कुल, जैसा सोचोगे वैसा पाओगे. और हमने हमने उड़ने का मन बनाया तभी जो है हवाई जहाज बने, एरोप्लेन्स बने, रॉकेट्स बने. और जिसने इस लोक से दूसरे लोक, चंद्रलोक जाने का सोचा तो वो चंद्रलोक पहुंचे, मंगललोक पहुंचे, और न जाने किन किन लोगों में जाने की अभी भी अपनी सोच को जारी रखे हुए, अपनी इच्छा को, अपनी क्रिया को, अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए. तो हमारा कहने का मतलब है कि हमारा सोच जो है, हमारा जो सोचने का दृष्टिकोण है वो व्यापक होना चाहिए, और उसी से हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं. क्या हम सही कह रहे हैं?
0: यस यस, एब्सोल्युटली. सोच की जो हमारी व्यापकता है, जो यहाँ पे मैं साइंटिफिकली, क्योंकि मैं बेसिकली जो माइंड थेरापिस्ट हूँ, तो मैं लोगों की पर्सनालिटी, लोगों की बिलीफ सिस्टम और उन लोगों की जो भी अभी तक की जर्नी रही है, तो उसमें मैं लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग का काम करती हूँ. और जो भी अभी तक आप लोगों ने जितनी भी जिंदगी जी, चलो सही बात है, अच्छी जी बुरी जी जो भी है, लेकिन आगे अगर आप अच्छी और पीसफुल लाइफ चाहते हो, तो मैं इतना ही कहूंगी कि ऑलवेज अपने विचारों पे काबू रखो, और अपने विचारों को, अपनी जो भी सोच है ना, उसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल बने. कभी भी कोई भी सोच आ जाए और हम उसको स्वीकार कर ले, और वही स्वीकार करके, वही अगर वो नेगेटिव सोच है, तो नेगेटिव सोच को हम बार बार रिपीट रिपीट रिपीट करते रहेंगे, तो ऑफकोर्स हमारी लाइफ भी नेगेटिव हो जाएगी. लेकिन हमारे कंफर्ट जोन से आगे निकलकर हम सोचते हैं कि नहीं, आज तो मैं पक्का वादा करता हूँ कि मैं आज अपने बारे में या

0: किसी और के बारे में मैं एक भी सोच नेगेटिव नहीं लाऊंगा। अगर कोई आता है तो उनको मैं कहूंगा कि यस आज मैंने अपने आप से ये वादा किया हुआ है तो मैं आज कुछ भी गलत नहीं बोलूंगा या गलत सोचूंगा नहीं, तो आज के दिन के लिए मुझे माफ करें।
1: बहुत बहुत सही बात है कि खुद से प्रॉमिस करना एक ये बहुत बड़ी चीज है जो आपने बताई है। इस बात से निकल के आई कि आप अपने आप से प्रॉमिस करिए कि मैं आज ये कुछ भी नेगेटिव सोचूंगा नहीं ना करूंगा। करने की तो बात ही दूर है, सोचूंगा ही नहीं, तो सोचूंगा नहीं तो मैं करूंगा नहीं। बट क्योंकि हमने ऐसा भी व्यावहारिक दृष्टि में हम देखते हैं, देखने को मिलता है कि कुछ लोगों की सोच बहुत लिमिटेड होती है और कुछ की बहुत व्यापक होती है। तो अधिकतर लोगों की जो लिमिटेड सोच होती है वही क्यों होती है, घर में, परिवार में, अपने आसपास के जो लोग हैं, अपने बच्चों में, या उससे आगे बढ़ के कुछ नहीं होता। बहुत सारे कम लोग होते हैं जो पूरे विश्व के लिए, पूरी दुनिया के लिए जो भी बोलते हैं वो सबके लिए बोलते हैं कि ये सबके लिए यूनिवर्सल बात है। तो इस तरह की जो ये चीज क्यों नहीं है, ये हमें कई बार हमारे दिमाग में आती है कि ऐसा क्यों नहीं है कि जैसा मैं सोच रहा हूं वैसा ही ये क्यों नहीं सोच रहा। ये सिर्फ अपने तक सीमित है, कुछ लोग सिर्फ अपने तक है, कुछ अपने माँ बाप तक है, कुछ अपने बच्चों तक है, कुछ अपने परिवार तक है, कुछ अपने समाज तक है, कुछ जो है वो अपनी कम्युनिटी जिसको कहें या समुदाय कहें उसके सराउंडिंग सोचते हैं। यानी एक इंसानी सोच और एक ऐसी सोच जो पूरे दुनिया के लिए, यूनिवर्स के लिए सच हो, अच्छी हो, पॉजिटिव हो, ऐसी सोच डेवलप करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा जो हम बुद्धिवादी हैं, मानवतावादी हैं या यथार्थवादी हैं, उनको क्या करना होगा?
0: यस, ये बहुत अच्छा है। देखिए, मैं सबसे पहला इतना कहना चाहूंगी कि हम जो है ना, हम क्या कहते हैं कि हमारे यहाँ ऐसा कहा जाता है कि मतलब गुजरातियों में एक कहावत है कि जात परिवर्तन द्वारा जगत परिवर्तन, मतलब कि खुद के ऊपर काम करना शुरू कर दो, जगत पूरा तुम्हारा सराउंडिंग जो वर्ल्ड होगा ना वो अपने आप ही चेंज होता जाएगा।
1: वाह, बहुत खूबसूरत तो, बात, यानी अपने से शुरुआत करनी होगी।
0: यस यस, क्योंकि देखो मैंने जो भी मैनिफेस्ट किया है, मेरे आसपास अच्छे बुरे, मेरे अनुभव अच्छे बुरे हैं या मेरी लाइफ अच्छी बुरी है, तो वो मेरी सोच के ऊपर आता रहते हैं। और रही बात आपने जिन्होंने बोला कि कुछ समुदाय तक है, अभी तो कम्युनिटी वाला तो बहुत चल रहा है, तो जो सोचते हैं ये कितना करते हैं, उनको एक ही बात याद रखनी चाहिए कि वसुधैव कुटुंबकम की हम भावना रखते हैं। और जो भी ये चीला चालू जो देशवादी और इस तरह से सोच रखते हैं, उनको मैं एक ही उदाहरण देना चाहती हूँ कि आप कितने भी मतलब पीसेस कर लो, कितने भी कुछ कर लो, लेकिन हम सबके बीच में जो आत्मा है वो तो हमारे सबके बीच में एक ही है, उसको कैसे अलग कर पाओगे?
1: यूनिवर्स तो बहुत ही खूबसूरत बात, हमारे बीच, हमारे ऊपर जो आत्मा है वो तो एक ही, जो जिसकी छाया है, जिसका जिसकी जिसका साया है हमारे ऊपर, वो तो एक ही है। बहुत ही खूबसूरत बात।
0: तो यूनिवर्स है, तो यूनिवर्स कभी भी देखता नहीं है कि ये मेरा बच्चा छोटा है या बड़ा है, मोटा है या पतला है, गोरा है काला है, कौन सी कम्युनिटी से है, कौन से देश से है। यूनिवर्स एक ही भाषा जानता है और वो यूनिवर्स यही एक भाषा जानता है, वो है प्यार की भाषा, वो है पॉजिटिविटी की भाषा। और जो लोग बोलते हैं ना कि इस दुनिया में पॉजिटिव और नेगेटिव वाइब्स है, हाँ मैं मानती हूँ पॉजिटिव नेगेटिव्स होते हैं, लेकिन पॉजिटिविटी के पास इतनी ताकत है कि जहां जहां पे पॉजिटिविटी नहीं होती है ना वहां ही नेगेटिविटी होती है। बाकी पूरा सर्वत्र जो राज्य है ना वो तो पॉजिटिविटी का ही है, क्योंकि ऐसे ही राम कृष्ण भगवान बुद्ध और इतने सारे देवी देवता हमारे यहाँ नहीं हो गए हैं। और इतनी सारी आज भी इतनी सारी एनजीओ चलती है, आज भी इतने सारे धर्म भी चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पे आपको मुझे कहीं ना कहीं पे वो डिवाइन पावर चला रहा है। हमारी धड़कने देखो, हमारा पूरा बॉडी देखो, तो किस तरह से चला रहा है, ये तो रोबोट भी बना लिया, लेकिन किस तरह से हार्ट बीट किस तरह से वर्क करती है वो आज दिन तक साइंटिस्ट नहीं कर पाए किस तरह से। तो ये जो ब्रीदिंग सिस्टम है, तो वो ब्रीदिंग सिस्टम किसकी देन है? यूनिवर्स की देन है। और ये यूनिवर्स चलता है हमारी पॉजिटिव सोच के ऊपर। हम जैसा मांगेंगे ना, हम सबके पास एक अल्लाह दिन का चिराग है, और ये अल्लाह दिन का चिराग है हमारा यूनिवर्स। और हम मांगेंगे ना कि अरे भाई आज तो मैं दुखी हूँ, चलो एक काम कर, मैं तो आज दुखी हूँ, तो यूनिवर्स बोलेगा तथास्तु, मैं आज बोलूंगी कि नहीं आज तो मुझे बहुत रॉक करना है, आज तो मुझे बहुत अच्छा अच्छा पार्टी करना है, बहुत अच्छा खाना खाना है, मैं बहुत खुश हूँ, यूनिवर्स बोल देगा तथास्तु। आप जिस तरह से सोच बिलीव करोगे कि वो अल्लाह दिन का चिराग है, वो तुरंत ही बोलेगा हुकुम करो मेरे आका। और हम जिस तरह से हुकुम करते हैं कि चलो आज मेरे को दुखी रहना है, चलो हो गया आका, नहीं हुआ आज मुझे खुश होना है, हो गया आका, तो यही बोलेंगे। तो अल्लाह दिन का चिराग है तो उसको किस तरह से यूज करो वो तो फिर हमारे ही हाथ में होना चाहिए ना। हम क्यों किसी को अपना स्टीयरिंग देकर, जिस तरह से मिस्टर खान बोलते हैं, तो हमारे लाइफ के ऊपर कोई भी बैठ जाएगा तो फिर वो अपने हिसाब से गाड़ी चलाने लगेगा और हम पूरी जिंदगी ऐसे ही चलते रहेंगे किसी के कहने पे।
1: तो जैसा सोच वैसी दुनिया, बहुत ही खूबसूरत बात कही आपने। और हमारे साथ इस खास प्रोग्राम में रही कृतिका मेहता, माइंड थेरेपिस्ट और रेकी विशेषज्ञ भी हैं आप, तो बहुत सारी बातें हमने इस एपिसोड में की। कंक्लूड कैसे करेंगी आप इसको, सोच की दुनिया को अपने शब्दों में?
0: बस सोच की दुनिया में मैं इतना ही छोटे से वाक्य में कहना चाहूंगी कि जिस तरह से आप सोच लेते हो उसी तरह से आपकी दुनिया बन जाती है, और जो विचार आपके अंदर पड़ा हुआ एक बार उनको ढूंढो और एक बार सच में एक बार मिरर के सामने खड़े होकर बोलो कि क्या यही लाइफ या यही सब कुछ मैं डिजर्व करता हूँ या करती हूँ। अगर सच में अंदर से एक आवाज आए ना नहीं, तो तुरंत अपनी सोच बदल डालो और ये सोच अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखो। जो भी हुआ है किसी और के कारण या परिवार के कारण या सोसाइटी या किसी और के कारण नहीं हुआ है, सिर्फ मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ और अभी मैं इसको मैजिकली चेंज करूंगा या करूंगी। ये चीज अगर आपने ठान ली ना, तो अपने अंदर भी वही राम कृष्ण बुद्ध महावीर बैठे हुए हैं, वो तुरंत उन सबको काम पे लग जाना पड़ेगा, क्योंकि बॉस यहाँ पे इसने ठान लिया है कि अभी तो ये हमारे जैसा बनकर रहेगा ये बंदा या बंदी, तो उसको तो फिर काम पे लग जाना पड़ेगा।
1: बहुत ही खूब बात कही आपने कि दूसरे पे दोषारोपण करना छोड़ के खुद पे आ जाएं और जैसा आप सोचेंगे आपके आसपास की दुनिया आपकी दुनिया वैसी ही होगी। बहुत बहुत बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। बहुत सारी बातें, बहुत सारे प्रश्न फिर भी रह जाते हैं, अगले एपिसोड में हम इन सबको शामिल करेंगे और इस प्रोग्राम को हम क्रमशः जारी रखेंगे। और हमारे साथ रहेंगी माइंड थेरेपिस्ट और खास विशेषज्ञ कृतिका मेहता अहमदाबाद से। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, बहुत आभार कृतिका, आपने इतना अच्छा व्याख्यान दिया इस प्रोग्राम के लिए, हमारे श्रोताओं के लिए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस प्रोग्राम के बहुत सारे एपिसोड होंगे और आप सुनेंगे तो सच में आपको मजा आएगा। पूरी दुनिया से हटके जिस तकनीकी युग में हम जी रहे हैं, उन सबको हमने समेटा है, पूरे यूनिवर्स को इस प्रोग्राम में हमने लिया है। और आप भी सुनेंगे तो फिर सुनना बंद नहीं करेंगे, रुकेंगे नहीं, आप सुनते ही जाएंगे, क्योंकि इसमें इतने इंटरेस्टिंग पहलू आने वाले हैं। तो आज का पहला एपिसोड सोच की दुनिया का, हमारे साथ हमारे संग इस प्रोग्राम में हम दोनों आपके लिए लेके आए कुछ खास बातें जो हमारे जीवन शैली से संबद्ध है और हमारे जीवन दर्शन को दर्शाती हैं। शुभ का

ये डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, जहां मिलती है आपकी आवाज को पहचान, यानी आपकी आवाज आपकी पहचान।

ये डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, जहां मिलती है आपकी आवाज को पहचान, यानी आपकी आवाज आपकी पहचान।

ये डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, जहां मिलती है आपकी आवाज को पहचान, यानी आपकी आवाज आपकी पहचान।

0: हेल्दी सिटीजन्स आर द ग्रेटेस्ट एसेट एनी कंट्री कैन हैव, ये बात कही थी विंस्टन चर्चिल ने, और इस पर गौर फरमाया जाए तो 100% करेक्ट है। तो यही है आज हमारा विषय, आज के एपिसोड में मेरे तकनीकी सहयोगी श्री ओम प्रकाश शर्मा। तो हो जाए बातें दिल की विद सुषमा। नमस्कार, मैं हूँ सुषमा। बहुत ही महत्वपूर्ण है लाइफ की कुछ स्टेजेस, चाइल्डहुड, टीनेज एंड यूथ, जब वृद्धि और विकास अपने चरम पर होते हैं। इन स्टेजेस में शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और व्यवहारिक विकास सभी पर ध्यान देना जरूरी हो जाता है जब हम एक स्वस्थ राष्ट्र की परिकल्पना करते हैं। सो हेल्थ, अ वेरी इम्पोर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, जिस पर आज हम बात करेंगे डॉक्टर हर्ष उदावत से, डायरेक्टर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी एंड लिवर साइंसेज, इटर्नल हॉस्पिटल जयपुर। आपका अपना क्लिनिक भी है, उदावत गैस्ट्रो क्लिनिक इन श्यामनगर जयपुर। डाइजेस्टिव सिस्टम, लिवर, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियाज, इंटेस्टाइन्स, फूड पाइप, स्टमक डिजीजेस, एडिक्शंस, अल्कोहलिज्म, इन सभी की ट्रीटमेंट का पिछले 20 साल का अनुभव आपके पास। अ वंडरफुल डॉक्टर, स्पीकर एंड गाइड। नमस्कार डॉक्टर हर्ष उदावत।
1: नमस्कार सुषमा जी और सभी श्रोतागण।
0: सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि एक स्वस्थ जीवन शैली की परिभाषा क्या है, क्या इसके कोई बेसिक नियम भी है?
1: तो स्वस्थ जीवन शैली की परिभाषा के पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि हेल्थ किसे कहते हैं या स्वास्थ्य किसे कहते हैं। तो उसके अंदर केवल शारीरिक बीमारियां ही नहीं आती हैं, बल्कि एक इंसान को मानसिक बीमारियों से भी दूर रहना होता है, और साथ में सामाजिक और आध्यात्मिक जो स्वास्थ्य है वो भी होना जरूरी है। और कुछ कुछ लोगों ने तो आजकल फाइनेंशियल हेल्थ इंक्लूड कर लिया है। अब अगर अच्छी जीवन शैली नहीं होगी तो ये पूरा जो स्वास्थ्य है वो ठीक नहीं रह सकता। सो अच्छे स्वास्थ्य के लिए अच्छी जीवन शैली भी जरूरी है। और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि ये जितना जल्दी, मेरा मतलब है उम्र में जितनी जल्दी शुरू हो जाए, सो मतलब ये है कि स्कूल लाइफ से, और जब बच्चा बड़ा हो रहा हो उसको ये पता हो कि अच्छी जीवन शैली क्या है, हेल्थ क्या है, तो वो आगे जाके अपने जीवन में उसको ला सकता है। अदरवाइज क्या होता है कि बहुत लेट ये जितने चेंजेस लाना, एक तो बहुत मुश्किल होती है जीवन शैली को चेंज करना, और आजकल तो 30-30, 40-40 साल में ही बीमारी आने लग गई है। तो हम चाहते हैं बीमारी का बचाव, तो इसलिए ये जो हम टॉक पन हमने प्लान करी है वो है छोटे उम्र के बच्चे, यूथ, टीनेजर्स, वो अच्छी लाइफस्टाइल क्या है उसको पता रखें, और जिससे कि वो बीमारियों से दूर रह सके।
0: तो अच्छे लाइफस्टाइल की जब हम बात कर रहे हैं तो क्या इसके बेसिक रूल्स हैं? सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है।
1: मैं आपको तीन चीजें बताता हूँ कि एक बैलेंस जरूरी है, तो उसको हम कहते हैं कि तीन चीजों का समन्वय जरूरी है। एक तो आहार, एक श्रम और एक विश्राम। तो ये हो गया डाइट, फिजिकल एक्टिविटी एंड एक्सरसाइज, एंड थर्ड इज रेस्ट एंड स्लीप। तो ये सब प्रॉपर होना जरूरी है,
0: बैलेंस होना बहुत जरूरी है।
1: यस जी। और इसके साथ साथ हम दो चीजें मैं और ऐड कर देता हूँ। नंबर वन इज वैक्सीन इन चाइल्डहुड, और दूसरा है एडिक्शन से दूर रहना, नशे से दूर रहना, क्योंकि अगर किसी को नशा हो जाता है तो वो पूरा जो यूथ है वो ही बर्बाद हो जाता है, और फिर कहते हैं कि जो ज्यादा नशा करते हैं या जो एडिक्ट होते हैं उनकी लाइफ स्पेन वैसे ही कम हो जाता है। सो इसलिए इसमें हम दो चीजें और ऐड कर सकते हैं।
0: तो चलिए बात शुरू करते हैं आहार से, यानी डाइट से। क्या ध्यान देने की बातें एक डाइट को लेकर, कैसी हो डाइट और क्या अवॉइड किया जाए?
1: जी, तो अभी प्रेजेंट सिचुएशन में तो जो हमारी लड़ाई है वो है कि कैसे ये जंक फूड और प्रोसेस्ड फूड से दूर रहा जाए, और वो हर कहीं अवेलेबल है। घर में खाना कम बनने लगा है, सो बाहर के खाने पे ज्यादा बाहर का खाना खाते हैं, और इसमें हमें ये देखना होता है कि ये जो भी जंक और प्रोसेस्ड फूड है इसमें एक तो शुगर बहुत ज्यादा होता है, सॉल्ट बहुत ज्यादा होता है, फैट बहुत ज्यादा होता है, इसके अंदर फूड एडिटिव्स होते हैं, ये सब केमिकल्स हैं, फॉर एग्जाम्पल अजीनोमोटो, फॉर एग्जाम्पल कलरिंग एजेंट्स, इमल्सिफायर्स। तो ये सब एक तो मोटापा बढ़ाते हैं, मेटाबॉलिक सिंड्रोम एक होता है जिसके अंदर न केवल मोटापा बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो ये सारी जो फूड जो हमारे प्रेजेंट सिनेरियो में चल रहा है, ये सब बीमारियों का दाता है। अब इसकी जगह उल्टा क्या है कि जो भी नेचुरल फूड्स हैं वो हम खा पाएं, घर का बना हुआ खाना हो। एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको कि मसाले जो काम में आते हैं आजकल, वो भी पैकेज और डब्बा बंद होते हैं
0: जी।
1: तो क्या नेचुरल मसाले काम में लिए गए हैं? आप फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स, ये सारी जो चीजें हैं ये कितनी नेचुरल हैं, और जितनी नेचुरल होंगी उतना आपके जो है हेल्थ के लिए। फिर आता है कि आजकल जैसे जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं,
0: राइट,
1: जैसे कोल्ड ड्रिंक्स हैं, आर्टिफिशियल जूसेस हैं, एनर्जी ड्रिंक्स हैं, अल्कोहलिक ड्रिंक्स हैं, इनका बहुत ज्यादा फैशन है। तो क्या हम उनकी जगह दूध, छाछ, लस्सी, फ्रूट जूसेस फ्रेश काम में ले सकते हैं? आजकल तो आप देखें कि कहीं भी आप वॉक करने जाएंगे या पार्क के बाहर जो है सब्जियों के और फ्रूट्स होते हैं उनके फ्रेश जूसेस मिलते हैं निकाल। तो ये प्रेजेंट जनरेशन के ना तो उनका टेस्ट डेवलप है ना उनको पता है कि ये भी चीजें होती हैं। इनको हम कैसे इंट्रोड्यूस? तो ये एक बड़ा चैलेंज है।
0: तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ा सवाल है हमारे सामने कि कैसे इन चीजों को अट्रैक्टिव बनाया जाए कि वो बच्चा भी उनको लेने को तैयार हो जाए।
1: बिल्कुल। अब आप सोचिए, आप छोटे बच्चे को आपने कोई भी कोल्ड ड्रिंक दे दी, तो आपने जब कोल्ड ड्रिंक दे दी तो उसका जो टेस्ट है उसका और छाछ का तो फर्क होगा, जूस का फर्क होगा ना। सो बच्चे को तो वही चीज अच्छी लगेगी, वो कैसे ये करेगा? सो कहने का मतलब ये है कि फूड में एक चीज तो होगी क्या खाएं क्या ना खाएं। सो मोस्ट ऑफ द टाइम्स घर पे ही खाना खाएं तो ज्यादा अच्छा है। रिलाइंग ऑन आउटसाइड फूड मे नॉट बी सेफ एंड हाइजीनिक। दूसरा है कि ये टाइमिंग ऑफ मील्स क्या रखें। सो ऐसा कहा गया है कि भाई एक समय बांध लेना चाहिए कि जैसे सुबह का खाना आपने 7 से 9 बजे के बीच में ले लिया, दोपहर का 12 से 1 बजे का बीच में हो गया, रात जो डिनर है वो 5 से 7 बजे के बीच में हो गया। कहते हैं 8 बजे के बाद तो खाना ही नहीं खाना चाहिए, और जितना आप भूखा सोएंगे उतना अच्छा है। कि जरूरी है क्या कि हम 3 ही मील लें? तो नहीं, 1 या 2 मील भी ठीक है। पानी के बहुत रूल्स हैं।
0: अच्छा।
1: तो उसमें पहला कहा जाता है कि हाँ, जैसे हम सुबह उठते हैं तो करीब 2 से 3 ग्लास जो है ल्यूक वार्म वाटर या गर्म पानी या आपके मटके में रखा हुआ पानी या कॉपर के तांबे में रखा हुआ पानी, तो ये सब पानी आप सुबह ले सकते हैं बिफोर ब्रशिंग टीथ। और उसको आप धीरे धीरे सिप बाय सिप पानी पिए, और उसके 45 मिनट तक पानी ना पिए। जब आपने पानी ले लिया सुबह ये 2 से 3 ग्लास बैठ के शांति से, अब उसके 45 मिनट में ब्रेकफास्ट या बेड टी जो लेते हैं वो सब नहीं लेना चाहिए
0: जी।
1: ठंडा पानी जैसे फ्रिज में रखा हुआ पानी है बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। पानी जो है खाने के साथ बिल्कुल न दें, 1 घंटे पहले या 1 घंटे बाद में ही लें। प्लास्टिक बॉटल्स में पानी कितना प्रचलित है आजकल,
0: बिल्कुल
1: वो बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। और आजकल तो ये होता है कि बिस्लेरी की बॉटल में एक बार पानी पिया और उसी को काम में लेते रहते हैं, और वो धूप में भी पड़ा रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। कहते हैं प्लास्टिक के साथ पानी तो कैंसरस भी हो सकता है। सो ये छोटी छोटी चीजें हैं। फॉर एग्जाम्पल अब लोगों को सीखना चाहिए कि भाई हमें जैसे जितनी भी कहते हैं व्हाइट चीज है वो सब खराब है। जैसे मान लीजिए शुगर है, हमारे को लगता है जितना व्हाइट उतना अच्छा, सॉल्ट जितना व्हाइट उतना अच्छा। तो जैसे शुगर के क्या अल्टरनेटिव्स हो सकते हैं? सो गुड़ है, गुड़िया शक्कर है, हनी है, ये काम में लिया जा सकता
0: है।
1: जो अपना सॉल्ट है जो हम बिल्कुल एकदम सफेद काम में लेते हैं उसकी जगह सेंधा नमक इज बेस्ट, काला नमक अच्छा है। हमारे सांभर लेक का जो नमक आता है वो बहुत अच्छा है। फिर हम तेल पे आ सकते हैं, हम बिल्कुल सफेद तेल काम में लेने के आदि हो गए हैं जिसका ना टेस्ट है और ना जा उसकी चिकनाई है। कहते हैं कि कच्ची घानी का तेल बेस्ट है। अच्छा। तो वो के सरसों का तेल हो सकता है, मूंगफली का तेल हो सकता है, कोकोनट ऑयल हो सकता है, तिल्ली का तेल हो सकता है, या आपके जो ऑलिव ऑयल है वो हो सकता है। सो उस ऑयल को रोटेट करना है हर 3 से 4 महीने में, एक ऑयल को हमेशा काम में मत लीजिए। एंड अवॉइड प्रोसेस्ड रिफाइंड एंड सुपर रिफाइंड ऑयल।
0: तो ये सारी
1: चीजें जो है इसका, हाँ, इसका थोड़ा सा ज्ञान लेना पड़ेगा और इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा डिटेल में तो हम बात नहीं कर सकते, बट ये कुछ इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो कि घर में अगर लोग काम में लेंगे तो बच्चों की हेल्थ के लिए भी आगे अच्छा।
0: बस सबसे पहले बड़ी बात ये हो जाती है कि बचपन से अगर ये आदतें डाल ली जाएंगी तो शायद उनके लाइफस्टाइल का हिस्सा बनने में मुश्किल नहीं होगी। ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है।
1: जी हाँ,
0: आहार की बात आते हैं श्रम पर। आपने श्रम की बात की यानी फिजिकल एक्टिविटी की बात की, और आप तो खुद एक अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन रहे हैं, क्रिकेट बीइंग योर परफॉर्मिंग एरिया। तो कितना जरूरी है स्पोर्ट्स, कितनी बड़ी भूमिका निभा सकता है ये हमारे अच्छे स्वास्थ्य की कोशिश में, कैसी हो हमारी फिजिकल एक्टिविटी?
1: पहली चीज जो लेते हैं वो उसको हम कर सकते हैं डेली वॉक, जो कि करीब करीब 45 मिनट से एक घंटे की होनी चाहिए, या उसकी जगह साइकिलिंग कर सकते हैं, या स्विमिंग कर सकते हैं, या जॉगिंग। इसके साथ साथ जो है आपको ऐड करना पड़ेगा, इधर यू डू योगा और यू मे डू अदर एक्सरसाइजेस एज इन जिम। इसके साथ साथ जो है, क्योंकि हम बच्चों और इनकी बात कर रहे हैं टीनेजर्स की, आई मीन इफ दे डू अ कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट नथिंग लाइक इट, क्योंकि वहां सब कुछ कवर हो जाता है। आप सुबह 2 घंटे खेलते हैं, शाम को 2 घंटे खेलते हैं, इतना आपने टाइम दे दिया कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट में, तो आप वैसे ही फिट रहेंगे और लंबे समय तक फिट रहेंगे। और इस सब फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज, योगा से आपकी फिजिकल फिटनेस तो आती आती है, तो उसके साथ और भी बहुत फायदे हैं कि आपका जो सोचने की शक्ति है, आपकी रिटेन करने की शक्ति है, मेमोरी है, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, इन सब से आप दूर रहते हो, नींद अच्छी आती है। तो इसके बहुत फायदे हैं। स्लिम रहते हो, आपका वजन नहीं बढ़ता।
0: अच्छा।
1: वजन नहीं बढ़ता, बहुत सारी बीमारियों से आप दूर रह सकते। फिजिकल स्ट्रेंथ जब आपकी होगी सो आपके जॉइंट प्रॉब्लम्स जो है वो कम होंगी, आप कंसंट्रेट अच्छा कर पाओगे, आपकी पढ़ाई अच्छी होगी। कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स में जाने से कहते हैं कि पीपल लर्न हाउ टू फेस स्ट्रेस मच बेटर देन अदर्स, तो इसके बहुत फायदे हैं।
0: डिसिप्लिन सीखते हैं हम, टीम जो टीम में काम करने का एक तरीका
1: होता है, वो सीखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
0: आध्यात्मिक हेल्थ, जी आध्यात्मिक हेल्थ की आपने बात की थी, आई थिंक उसमें मेडिटेशन भी एक रोल प्ले कर सकता है।
1: यस ऑफ कोर्स, जैसे योगा इज आल्सो अ पार्ट ऑफ जो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट है उसमें, और अब तो काफी पॉपुलर भी हो चुका है योगा। और इसमें आप ये देखिए कि योगा और एक्सरसाइज इन जिम में जो फर्क है वो ये है कि योगा जो है वो शांति लाता है, सेरेनिटी, क्योंकि जो हॉर्मोन्स निकलते हैं वो दे आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम जो हॉर्मोन्स निकलते हैं एक जिम में एक्सरसाइज करने से। म्यूजिक चल रहा है, आप एक्सरसाइज कर रहे हो, आप अपने एफर्ट जो लग रहा है वो बहुत बहुत ज्यादा है जो आपको नहीं चाहिए। सो वहां के जो हॉर्मोन्स

0: हैं वो आपको फ्लाइट फ्राइट फियर के हॉर्मोन्स हैं, एड्रेनलिन रश जिसको अपन हम कहते हैं, एड्रेनलिन नॉरएड्रेनलिन निकलते हैं। योगा करने से जो है जो हॉर्मोन्स निकलते हैं वो आपको शांति पीस ये सब देते हैं। प्लस इसमें मेडिटेशन जो है या चैंटिंग, ये जो है जो आप कह रही हैं आध्यात्मिक जो स्वास्थ्य है उसके लिए बहुत बहुत मतलब उच्च कोटि के ये कुछ ऐसे नियम हैं जो कि आपकी बहुत अच्छी हेल्थ दे सकते हैं। अब ये अगर बच्चों की लाइफ में शुरू से आ जाए तो क्या फायदा क्या नुकसान की बात नहीं है, फायदा तो होना ही होना है, बट पहले से अगर हम ये सोचें कि हम इस फायदे के लिए कर रहे हैं तो वो भी ठीक नहीं है।
1: जी
0: वो करेंगे तो फायदा डेफिनेटली दिखेगा। और
1: वो
0: चैंटिंग में अगर आप
1: करेंगे।
0: देखेंगे, हाँ बिल्कुल, और चैंटिंग भी क्या है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, अगर आप कहते हैं कि अगर आप 5 से 10 मिनट की ओम चैंटिंग करें, ओम की चैंटिंग या भ्रमरी करें, तो
1: जी
0: ब्रेन में इतने अच्छे वेव्स निकलते हैं और तो ब्रेन की जो पावर है वो बढ़ती है। सो बच्चों
1: अच्छा
0: के और जो टीनेजर्स हैं उनकी जो फोकस है वो एक काम करेंगे तो उसमें फोकस ज्यादा रहेगा, अटेंशन स्पेन जो है वो बहुत अच्छा बढ़ेगा, मेमोरी बढ़ेगी। कहते हैं ब्रेन के जो अंदर सर्किट्स होते हैं वो बढ़ जाते हैं, ब्रेन का वॉल्यूम बढ़ जाता है। सो
1: जी
0: मेडिटेशन चैंटिंग ये तो इतनी अच्छी चीजें हैं, बट अनफॉर्चुनेटली ना तो हमें कभी सिखाई गई और लाइफ के काफी एंड तक आते आते ये सारी चीजें पता चलती हैं। तो जो आपने स्पिरिचुअल आध्यात्मिक स्वास्थ्य की बात करी वो अगर बच्चों में हो जाए तो बहुत अच्छी बात है।
1: बिल्कुल। और शुरू से हो जाए तो वही लाइफस्टाइल का हिस्सा बनने में देर
0: जी
1: नहीं लगती। तो एक बैलेंस बहुत
0: जी
1: अच्छा सा आपने डिस्क्राइब किया, जिसमें बहुत सारी फिजिकल एक्टिविटीज के साथ साथ मेडिटेशन को जोड़ के बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है।
0: जी
1: राइट, अब
0: जी
1: आते हैं विश्राम पर। आपकी तीसरा जो पॉइंट था, विश्राम यानी कि रेस्ट। रेस्ट की इम्पोर्टेंस
0: यस
1: मुझे लगता है जेन जी के पास तो जैसे ही नहीं, लेकिन हाँ
0: जी
1: क्या इम्पोर्टेंस है इसकी, ये भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, और किस तरह से करती है वो आप सबको समझाएं।
0: सो बॉडी और माइंड बनाया है इसलिए गया है कि थोड़ा रेस्ट मिले, मतलब 24 आवर्स कोई भी चीज नहीं चल सकती है, बट हम लोग सब ऐसे हो गए हैं कि 24 आवर्स इन कंपटीशन, आपको वर्क करना है, मेहनत करनी है, टाइम मिलेगा मतलब मल्टीटास्किंग करनी है और फिर उसमें रेस्ट रह जाता है। सो कुछ नहीं कर रहे तो आप व्हाट्सएप पे हो, आप किसी जूम मीटिंग पे हो, आप अपने काम को एक्सटेंड करते हो। तो कहते हैं कि स्लीप जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है बच्चों के लिए, ये करीब 9 से 12 घंटे की हो सकती है, टीनेजर्स के लिए 8 घंटे की हो सकती है और एक अडल्ट के लिए 8 घंटा तो जरूरी जरूरी है। ऐसा भी कहा गया है कि अगर आप दोपहर में 45 मिनट सो जाते हैं, 45 मिनट्स जो आपकी नैप होती है आफ्टरनून की, अगर आप
1: पावर
0: वो कर
1: नैप।
0: लेते हो, हाँ, तो वो आपकी प्रोडक्टिविटी को और बढ़ाता है। आपके बॉडी को और ब्रेन को रिचार्ज होना भी जरूरी है। सोचिए आपकी, हम लोग सब जो है या बच्चे भी हैं, 1-1 बजे तक सोना और फिर सुबह बच्चे जो है सुबह सुबह 6 बजे उनको उठा देते हैं स्कूल जाने के लिए, 7 बजे जाने के लिए, तो उनको क्या रेस्ट मिलेगा। और फिर घर पे आके नो गेम्स नथिंग, जस्ट सिट इन फ्रंट ऑफ टीवी या व्हाट्सएप या आप एक सेलफोन हाथ में दे देते हैं, सो वो रेस्ट तो कहीं मिलता ही नहीं है।
1: बिल्कुल। और ये सेलफोन, आईपैड, इसकी जो भी लाइटिंग है या जो भी इफेक्ट्स हैं वो हम
0: जी हाँ
1: सोते
0: बोलते
1: समय जरूर हाथ में रखते हैं, तो वो भी नुकसान पहुंचाते हैं, बिकॉज हम लोग उसको ही
0: उससे
1: देखते
0: नींद नहीं
1: देखते सो
0: आएगी,
1: रहे हैं।
0: हाँ उससे नींद नहीं आएगी क्योंकि वो जो ब्राइट लाइट होती है वो सोने नहीं देती है, वो जो स्लीप एरिया है उसको एक्टिवेट, उसको जो स्लीप एरिया है वो भी रिलैक्स नहीं हो पाता, वो भी एक्टिवेटेड रहता है तो नींद आती नहीं।
1: थॉट्स चलते रहते हैं इसलिए मैं शांत नहीं होने
0: जी
1: देती।
0: जी
1: तो रेस्ट की
0: जी
1: वाकई बहुत इम्पोर्टेंस है, और विश्राम करना बहुत जरूरी है, और वो भी कुछ कुछ घंटे जो डॉक्टर साहब ने बताए हैं उनको जानकर पहचान कर इसकी इम्पोर्टेंस बच्चों को समझाना, टीनेजर्स को समझाना, सबको समझाना बहुत जरूरी है। तो समझने की बात है। इन तीन चीजों पे हमने
0: ये
1: बात
0: कहते
1: करी।
0: हैं ना आपने, ये कहते हैं ना, एक चीज और मैं ऐड करना चाहता हूँ, हमारा एक ब्रह्म मुहूर्त का कंसेप्ट है कि आप 4 बजे उठे तो मिरेकल्स होंगे। तो 4 बजे के आप 10 बजे 10-11 बजे तक ही लोग नहीं उठ पाते हैं। सो आई मीन वो कंसेप्ट ना पता है ना हम वो कर पा रहे हैं।
1: हम अपनी पुरानी चीजों को भूल गए हैं और उसी से हम नुकसान उठा रहे हैं, वापस उन्हीं में लौटना पड़ेगा। बिल्कुल। अब बात करते हैं, आपने वैक्सीनेशन का एक पॉइंट रखा था जिसमें कि आजकल बहुत सारे वैक्सीनेशन जुड़ गए हैं जो अलग एज ग्रुप्स के लिए होते हैं। बच्चों से शुरुआत होती है ये तो सब जानते ही हैं, लेकिन बच्चों से लेकर और टीनेज तक आते आते क्या कुछ जरूरी है वैक्सीनेशन के रूप में, वो जरूर बताएं।
0: जी हाँ। सो मेरे ख्याल से एक अच्छा एक आपका जो भी पीडियाट्रिशियन है और आपके जो भी डॉक्टर हैं उनसे जरूर मिलके क्लियर कर लें कि भाई हमारे बच्चे के लग चुके हैं और क्या क्या और वैक्सीन की जरूरत है। तो वो बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस ए है, टाइफॉइड है, ट्यूबरकुलोसिस है, ऐसे पीडियाट्रिशियन आपको बता पाएंगे कि मैनिंजाइटिस है, न्यूमोकोकल वैक्सीन है, डीपीटी है, ये तो जनरली लगते ही हैं, पोलियो है, ये सब। बट जरूरी है कि वैक्सीनेशन का हमें ध्यान रखना चाहिए और ये हमारे डॉक्टर से जरूर डिस्कस कर लेना चाहिए, क्योंकि कुछ बीमारियां देखिए आजकल ऐसा है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल टैटूज हैं,
1: जी,
0: नाउ दे आर सो कॉमन,
1: वेरी कॉमन।
0: एंड उससे हेपेटाइटिस बी सी एचआईवी होने के चांस रहते हैं, स्किन डिजीजेस के चांस रहते हैं। सो अगर वैक्सीनेटेड हो तो एटलीस्ट ये तो नहीं होंगे।
1: फीमेल्स के लिए भी कुछ स्टार्ट किया गया था, अगर
0: जी
1: हम
0: हाँ जी हाँ
1: वैक्सीनेशन की
0: जी
1: बात
0: हाँ जी
1: करते हैं
0: हाँ
1: स्पेशल। जी
0: हाँ जैसे आजकल एक ह्यूमन पेपिलोमा वायरस एचपीवी के अगेंस्ट वैक्सीन आने लगा है, तो वो कहते हैं कि जो अपने गर्ल्स हैं और यंग एज के अंदर ही उनको लगा लिया जाए। कुछ लोग तो अपने जो है सन्स को भी लगा रहे हैं, लड़कों को भी लगवा रहे हैं, तो उससे एक बीमारी होती है वॉर्ट्स जो देखने को मिलते हैं, और ह्यूमन
1: अच्छा,
0: पेपिलोमा वायरस से जो बीमारियां होती हैं वो उससे बच सकते हैं। सो ये डिस्कस करना चाहिए वैक्सीनेशन इन दिस एज ग्रुप, पेरेंट्स को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए।
1: अब हम एक
0: जी
1: बहुत बड़े मुद्दे पे आना चाहेंगे जो हेल्थ को, खास करके टीनेजर हेल्थ को बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं, और उस यंग एज में इसकी शुरुआत हो जाती है जब बच्चे अभी स्कूल में ही होते हैं। मैं बात कर रही हूँ ड्रग्स की। उसके बाद आता है टबैको और फिर आता है अल्कोहल। तीनों ही हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही एब्यूजिव साबित हो रहे हैं, तो कैसे इनका इस तरह से निदान हो, क्या सॉल्यूशंस हैं?
0: देखिए, पहली चीज तो ये ध्यान रखने की है कि पेरेंट्स को जो है बच्चों से बात करनी चाहिए कि भाई ये चीज एक्सपेरिमेंट के लिए नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अल्कोहल, टोबैको, ड्रग्स, आप स्कूल्स में जाएंगे तो वहीं पर ही जो है शुरू हो जाता है ये सब।
1: बिल्कुल।
0: पेरेंट्स को बताना पड़ेगा और बच्चों को भी जो है सोसाइटीज को मिलके बताना चाहिए कि आप जितनी जल्दी एक ड्रग ऑफ अब्यूज लोगे, फॉर एग्जाम्पल अल्कोहल की बात करते हैं, तो अगर जो लोग 13 साल में शुरू करेंगे तो उसमें 100 में से 50% बच्चे जो हैं वो एडिक्शन से ग्रस्त हो जाएंगे, मतलब वो अल्कोहलिज्म उनको हो जाएगा, वो एडिक्ट हो जाएंगे। 21 साल के बाद लेते हैं तो चांसेस हैं कि करीब 10 से 20% लोगों को ये बीमारी होगी। उससे थोड़ा और ऊपर लेते हैं तो 8 से 12% को ये बीमारी होगी। अगर आप अल्कोहल को जितना जल्दी लोगे या ड्रग्स को जितना जल्दी लोगे, ज्यादा चांस है कि आप एडिक्शन में चले जाओगे, आप एडिक्ट बन जाओगे। तो सोशल ड्रिंकिंग अलग है, दैट इज डिफरेंट, बट देन वंस वंस आप अल्कोहल ले लोगे बचपन में तो ज्यादा चांस है कि आपको एडिक्शन की बीमारी लगेगी। और कोई भी एडिक्शन की बीमारी आपके हेल्थ को असर करती है। फॉर एग्जाम्पल आप टोबैको ले लो, बहुत जल्दी कैंसर हो जाएगा, मुंह का कैंसर हो जाएगा, सांस की प्रॉब्लम होने लग जाएगी, लंग्स की प्रॉब्लम होने लग जाएगी। सोचिए एक बच्चा जो 13 साल में अल्कोहल शुरू कर देता है तो वो 25 साल तक आते आते तो 12 साल हो गए लेते हुए, तो 25 से 30-35 साल के बीच में तो उसका लिवर डैमेज हो जाएगा, पैनक्रेटाइटिस हो जाएगी, बहुत कुछ हो जाएगा। और अल्कोहल एंड टोबैको तो 15 साल और 50 साल के बीच में मौत के सबसे बड़े कारण है। और ऐसा भी कहा गया है जो ड्रग्स हैं, आजकल जो ड्रग्स चल रही हैं,
1: जी।
0: जो ड्रग एडिक्ट होते हैं, उनकी तो लाइफ वैसे ही बहुत कम होती है, उनकी यूजुअल लाइफ नहीं होती है, लाइफ स्पैन नहीं होता है।
1: आप बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं जिनमें अल्कोहलिज्म और टोबैको को लेकर जो अब्यूज है उनकी हेल्थ के साथ हो रहा है, क्या मेंटालिटी आप देखते हैं या किस तरह से जो ट्रीटमेंट प्रोसीजर है वो चलता है और कैसे वो रिस्पॉन्ड करते हैं?
0: ये बहुत, पहले तो ट्रीटमेंट हर जगह ना तो अवेलेबल है ना एक्सपर्टीज अवेलेबल है, दूसरा अगर आप ट्रीटमेंट देते भी हैं प्रॉपर तो इसके रिजल्ट्स बहुत खराब है,
1: अच्छा
0: क्योंकि इसके अंदर दवाइयां कम काम करती हैं और मरीज की तरफ से जो चेंज है, जो बदलाव है उसको लाना है, उसके थॉट्स में जो चेंज लाना है, एक्शन में जो चेंज लाना है, इमोशनल स्टेट में जो चेंज लाना है, वो उस मरीज को ही करना है। उसकी फैमिली सपोर्ट कर सकती है, लेकिन दवाइयां एक हद तक ही कारगर है। तो जो दवाइयां हैं वो ठीक है, विड्रॉल है कि अगर छोड़ना है तो हम विड्रॉल का ट्रीटमेंट देते हैं जिससे कि वो छोड़ना उसको थोड़ा सा कंफर्टेबल रहे, लेकिन ये दवाइयां पूरी जिंदगी नहीं चलती हैं। उसको एक ऑब्सेशन है, आप सोचिए, एक अट्रैक्शन है, एक्सट्रीम अट्रैक्शन है एल्कोहल के प्रति या तंबाकू
1: जी
0: के प्रति या ड्रग के प्रति। तो वो जब एक बार छोड़ देता है अब उसको वापस वो नहीं लेना, तो उसके लिए उसको बहुत मेहनत करनी पड़ती है।
1: राइट
0: और वो जो समझ है और जो आप इसको बोल दीजिए, चलिए मैं विल पावर बोल देता हूँ, जितना जल्दी कोई भी नशा शुरू होता है चांसेस ज्यादा होते हैं कि वो उसका एडिक्ट बन जाए। एक तो सोशल इंटेक होता है, जैसे सोशल ड्रिंकिंग है कि शराब को कभी होली दिवाली पिए, लेकिन जो बच्चे 15 साल के पहले किसी भी चीज को लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल एल्कोहल को ही लेते हैं, तो उनका चांस एडिक्ट होने का करीब करीब 50% है। मतलब 100 बच्चे अगर लेंगे तो 50 बच्चे जो है एडिक्ट बन जाएंगे इन फ्यूचर। अगर ये ही 21 साल के बाद लिया जाए तो करीब करीब जो प्रतिशत है वो होगी 8 से 12% होगी उनके उनका चांस होगा कि वो एडिक्ट बन जाए। इसलिए पेरेंट्स को ये ध्यान रखना चाहिए और बच्चों को भी ये ध्यान रखना चाहिए, उनसे बार बार बात की जानी चाहिए कि आपको एक्सपोज किया जाएगा सोसाइटी में, आपके खुद के ही फ्रेंड्स करेंगे, आपके सीनियर्स करेंगे, जहां आप जॉब कर रहे हैं वो लोग करेंगे, कुछ तो इसका बिजनेस करते हैं वो लोग करेंगे कि भाई आप ये ट्राई करो, एक्सपेरिमेंट करो। तो बच्चों को ये सिखाना है कि एक्सपेरिमेंट कुछ चीजों से नहीं करना। किन किन चीजों से? टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट्स, एल्कोहल, ड्रग्स ऑफ अब्यूज, फॉर एग्जाम्पल हशीश, चरस, गांजा, कोकेन, मॉली, ऐसे ढेर सारे पदार्थ। दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि एक तो जो नशा है उसका ट्रीटमेंट हर जगह आपको मिलेगा नहीं, नॉट एवरीबडी इज ट्रेन टू ट्रीट सच डिजीजेस, रादर
1: जी
0: एडिक्शन। दूसरा, इसका जो रिजल्ट है वो ही बहुत खराब है। मतलब आप देखिए कि अगर अच्छे से अच्छे सेंटर में भी आप देखा जाए तो करीब केवल 50% ही छोड़ पाएंगे, बाकी लोग नहीं छोड़ पाएंगे, क्योंकि
1: अच्छा
0: जो दवाइयां हैं वो एक हद तक काम करती हैं। इम्पॉर्टेंट चीज जो काम करती है कि वो जो एडिक्ट है वो अपने थॉट्स में, अपने एक्शंस में और अपने इमोशंस में कैसे चेंज लाए। अब वो क्या चेंज लाना है वो ना तो आसपास के लोगों को पता है, तो उन उन लोगों को कैसे ढूंढे कि जो ये चेंज ला सकते हैं उसके अंदर, तो वो सपोर्ट मिलना मुश्किल होता है, सबको नहीं पता कि कहाँ वो सपोर्ट मिले। दूसरा, इस एज के अंदर जो हमारा ब्रेन का एक पार्ट होता है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स,
1: जी
0: वो डिसाइड करता है कि मुझे अब ये नशीला पदार्थ आगे लेना है या नहीं लेना है।
1: नाउ व्हाट विल बी योर मैसेज फॉर ऑल, अपनी ओवरऑल जो हेल्थ है, जो ओवरऑल हेल्थ है उसको अच्छा रखने में किस तरह की भूमिका हर शख्स निभा सकता है, क्या कर सकता है?
0: जी, तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि जो हेल्थ है वो एक बहुत इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट है लाइफ का, क्योंकि हमारा जो जो हमारा फोकस है वो हेल्थ के ऊपर ना होके और दूसरी जगह ज्यादा है, पहली चीज। दूसरी, हेल्थ केवल ये नहीं है कि केवल फिजिकल डिजीज हो, ऐसा नहीं है। को फिजिकल जो डिजीज है उनसे भी दूर रहना है, मेंटल इलनेसेस से भी दूर रहना है, इमोशनल प्रॉब्लम से भी दूर रहना है, आपको सोसाइटी में अच्छी तरह रहना आना चाहिए, आपके रिलेशनशिप अच्छे होने चाहिए, आपकी जो स्पिरिचुअलिटी है वो भी अच्छी होनी चाहिए और आपकी फाइनेंशियल हेल्थ भी अच्छी होनी चाहिए। ये सब एक स्वास्थ्य जरूरी है। अब अगर आप चाहते हैं कि आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ ठीक रहे, मैंने तीन आयाम बताए जिसमें बैलेंस जरूरी है। एक आपकी फिजिकल एक्टिविटी एंड एक्सरसाइज या श्रम, दूसरा विश्राम, नींद या स्लीप एंड रेस्ट, और तीसरा हो गया आपकी डाइट या आहार। सो इनका बैलेंस इन तीनों में बहुत जरूरी है। फिर हम इसमें दो चीज और ऐड कर देते हैं, एक वैक्सीनेशन जो कि कुछ कुछ बीमारियों से बचाता है। अगर वैक्सीनेशन नहीं होगा तो वो बीमारियां होंगी, तो इसलिए पेरेंट्स को जरूरी है कि वो अपने बच्चों के वैक्सीनेशन पे बहुत जरूर जरूर ध्यान दें। और एक चीज हमने और डिस्कस करी वो है एडिक्शंस, एडिक्शन लाइक तंबाकू, अल्कोहल एंड वेरियस ड्रग्स, ये बच्चे की आगे की लाइफ को पूरी तरह बर्बाद कर देता है, लाइफ स्पैन कम कर देता है और पूरी की पूरी तरह फैमिली लाइफ खराब हो जाती है। सो मेरा मैसेज ये है कि कोई भी बच्चा जो है पर्टिकुलरली 21 साल से पहले इन चीजों का एक्सपेरिमेंट ना करे। बाकी इन सब चीजों के बारे में और भी ज्ञान अर्जित करना बहुत जरूरी है। तो आपको केवल डॉक्टर्स ही नहीं बट बहुत सारे लोग हैं जो आपको डाइट के बारे में, एक्सरसाइज के बारे में और रेस्ट के बारे में बता सकते।
1: बिल्कुल, लेकिन सही स्रोत से ही आप अपनी जो भी ये जानकारी है उसको लें, वो बहुत जरूरी है
0: जी।
1: सो डॉक्टर हर्ष रुदावत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस खास बातचीत के लिए और इतनी अहम बातों को सभी के साथ शेयर करने के लिए, इस अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए। थैंक यू सो मच।
0: थैंक यू सुषमा जी, और आप ये टॉपिक लेकर आई और ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है और अभी प्रेजेंट सिनेरियो के लिए तो बहुत ही बहुत एप्ट है। तो थैंक यू।
2: जयपुर से निकली गाड़ी दिल्ली चले हल्ले हल्ले, दिन तिनक दिन, अरे हल्ले हल्ले क्यों, जल्दी जल्दी डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से जयपुर रेडियो ऐप अभी इसी वक्त और आनंद लीजिए अपने मन पसंद गीतों का कहीं भी कभी भी। जयपुर रेडियो, आपका अपना रेडियो।

0: need to be sad now. You can do all of this on a click away through Jaipur Radio. Send messages and dedicate your favorite songs to your loved ones on your favorite program. Your voice, your identity. So what are you waiting for? Download Jaipur Radio app through Play Store and tune into your favorite songs. Celebrate your special occasion only on your own radio, Jaipur Radio.
1: डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का ये जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, आपकी आवाज आपकी पहचान। आज एक ऐसे विषय को लेकर हम उपस्थित हुए हैं जिस विषय की आज के संदर्भ में बहुत अधिक सार्थकता है, और वो विषय है हमारी दिनचर्या, हमारा खान पान, और उसमें यदि योग को शामिल कर लें तो क्या बात है। तो इस दिनचर्या को जब तक हम नियंत्रित नहीं करेंगे, नियोजित नहीं करेंगे, तब तक हम कई बार कहते हैं कि हम बहुत बहुत व्यस्त रहता हूं, बहुत बिजी रहता हूं। असल में जो ऐसा कहते हैं वो ना तो व्यस्त रहते हैं ना बिजी रहते हैं, वो अस्त व्यस्त रहते हैं। यानी उनकी लाइफस्टाइल जो है वो बहुत ही इधर उधर होती है, कोई भी समय निर्धारित नहीं होता, ना उनके सोने का, ना उनके खाने का, ना उनके पीने का, ना जीने का। तो जीना दुभर हो ही जाता है ऐसे में। तो इसी चिंतन को लेके, इसी विषय को लेके हमारे साथ आज हैं कला सिंह बिट्टू। हम वेलकम कर रहे हैं और आप अपनी कला से हमें देंगी सलाह, और यदि इनकी सलाह हम मानेंगे और उसको व्यवहार में अपने जीवन में लाएंगे तो हमारी दिनचर्या, हमारा जो रोजमर्रा का जीवन है वो सुखी और समृद्ध हो सकता है। तो वेलकम है कला सिंह बिट्टू का जोधपुर राजस्थान से जयपुर रेडियो के इस मंच पर, गुलाबी नगरी जयपुर के इस मंच पर, जिसका नाम है आपकी आवाज आपकी पहचान। और आज कला सिंह अपनी आवाज के माध्यम से आपको बहुत ही उपयोगी सलाह देने आई हैं पूरी दुनिया को, क्योंकि हमारा ये मंच, ये आवाज पूरी दुनिया तक पहुंचती है। तो वेलकम है, स्वागत है कला जी आपका।
2: बहुत बहुत शुक्रिया सर। मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है एज ए हेल्थ कोच और एज ए योगा एक्सपर्ट
1: जी,
2: आजकल कोरोना में बहुत बीमार हो गई थी सर, और सांस की दिक्कत थी मुझे, उसके बाद मुझे सर्वाइकल पेन भी स्टार्ट हो गया, और कोटा शिफ्ट होने के बाद पानी की वजह से रूटीन चेंज हो गया, तो डाइजेस्टिव सिस्टम भी बिगड़ गया, मेरे हेडेक भी मेरे शुरू हो गया था, और विमेंस इश्यूज भी मुझे काफी प्रॉब्लम हुआ था पीसीओडी में। तो मैंने सर इसी दौरान अपना योगा में डिप्लोमा किया गुरुकुल यूनिवर्सिटी से, स्वामी नारायण गुरुकुल यूनिवर्सिटी अहमदाबाद। तो उस दौरान जब योग, हाँ जी सर, तो जब मैंने अपना योगा में डिप्लोमा शुरू किया तो आप बिलीव नहीं करेंगे कि एक एज के बाद आपसे स्टडी नहीं होती है, अगर आप बीमार है तो बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत की और मैंने अपना योगा में डिप्लोमा स्टार्ट किया। जैसे जैसे मैं योग करती गई तो मुझे चेंजेस लगे कि मेरा सर्वाइकल चला गया है, मेरा केड़ी में दर्द था वो चला गया है, मेरे विमेंस इश्यूज थे वो चले गए, मेरे जॉइंट्स पेन चले गए, और जो हेडेक माइग्रेन था, बैक पेन था, सब गायब हो गए, मुझे कब गया पता ही नहीं चला सर। तो ये सारा जो संभव हुआ है जी, ये सब योग के माध्यम से पॉसिबल हुआ। योग की
1: स्टडी के साथ आप उसका प्रैक्टिकल भी करती रही, मतलब ये था।
2: बिल्कुल हाँ जी। और उसके दौरान जब मेरा ये कंप्लीट हुआ तो वहीं से मैंने स्वामी नारायण गुरुकुल यूनिवर्सिटी से अपना हेल्थ कोच का डिप्लोमा भी किया, क्योंकि मुझे कमी लगी कि अभी भी कुछ कमी है, कुछ और करूं कि मैं स्वास्थ्य को लेके ना केवल अपना ध्यान रख सकूं बल्कि अपने परिवार, अपने फैमिली, दोस्त, जितने भी जानकार हैं उनको भी उसका बेनिफिट हो।
1: बिल्कुल।
2: आजकल क्या है सर, दवाइयां तो सारे ही खाते हैं। उसका मेन रीजन जो मैं मानती हूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस है, वो है हमारी दिनचर्या और हमारा खान पान सर।
1: जी।
2: तो हमारी जो दिनचर्या है
1: जी,
2: जैसे देर रात तक सोना, सुबह सूरज 9 बजे तक लोगों का उठना, है ना, सूर्योदय से पहले उठ जाएं तो उसके बहुत फायदे हैं, और बहुत देर तक सोते रहें तो सर बहुत नुकसान है। बिकॉज मैं स्पोर्ट्स पर्सन रही हूँ तो मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ, मैं 5 बजे उठ जाती हूँ।
1: बिल्कुल, हम यही पूछने वाले थे और यही पहुंचने वाले थे कि आप एक स्पोर्ट्स पर्सन भी हैं और योग तो आपने अभी किया है स्टार्ट, तो आपने स्पोर्ट्स लाइफ के बारे में आपने क्या क्या अचीव किया ये भी बताएं।
2: जी, मैं जब 13 साल की थी तो मैंने बास्केटबॉल खेलना शुरू कर दिया था, और मेरा फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट, फर्स्ट स्टेट, फर्स्ट नेशनल था सर, और कम से कम मैंने 10-15 नेशनल खेले होंगे, यूनिवर्सिटी, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी। और आफ्टर मैरिज, बिफोर कोरोना सर, हमने मास्टर कप खेला, उसमें हमने गोल्ड लिया था राजस्थान टीम ने
1: जी,
2: +45 में। तो बस वही है कि मैं अपनी हेल्थ को लेके जागरूक रही हूँ शुरू से, लेकिन आफ्टर योगा एक्सपर्ट हेल्थ कोच के बाद तो मैं इतनी सजग हो गई हूँ कि जब मैं कोई चीज उठाती हूँ सोचती हूँ कि मैं ये खाऊं कि नहीं खाऊं, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या मुझे नुकसान करेगा।
1: एक स्पोर्ट्स पर्सन और एक साथ में योग के जानकार होना, ये दोनों का कॉम्बो जो है वो आपको कितना भाया, कितना अच्छा लगा, और उसमें एक दोनों चीजों की जो निर्भरता है वो कैसे प्रभावित कर सकती है जीवन को, जीवन शैली को।
2: जी सर, अब जैसे मैं पहले स्पोर्ट्स पर्सन थी तो मैं केवल अपना ध्यान रख पाती थी कि मुझे वॉक करना है, एक्सरसाइज करना है। बिकॉज अब योगा एक्सपर्ट बनने के बाद और हेल्थ कोच भी बनने के बाद, सबसे पहला मैं यही कहूंगी सभी अपना रूटीन सुधारें। जो हमारा पेट है उसको डस्टबिन ना बनाए, है ना। हमारा जो एक मोटो कहते हैं वो हमें ये सिखाया गया, पेट को डस्टबिन मत बनाओ, आप खोजते ही जा रहे हैं, खोजते ही जा रहे हैं, खोजते ही जा रहे हैं, वो नुकसान करता है। अगर हम टाइम पे सो जाएं तो हमारी मॉर्निंग में नींद आराम से खुल जाती है
1: जी।
2: और उठते ही सर हमें चाय कभी नहीं लेनी चाहिए, उठते ही आप अपना गर्म पानी, उसमें शहद डाल दीजिए, नींबू डाल दीजिए, आप अपना चिया सीड्स ले सकते हैं रात को 1 चम्मच भिगो के मॉर्निंग में। उससे ना केवल हमारा वेट लॉस होता है बल्कि सर उसमें कैल्शियम भरपूर मात्रा में है
1: जी।
2: तो वो बॉडी को बहुत फायदा करता है। कई बार ऐसा होता है हम दही नहीं खा पाते हैं, दूध भी नहीं पीते हैं, तो चिया सीड्स में वो सब कुछ है जिसकी बॉडी को रिक्वायरमेंट है। उसके बाद में आता है सर आपका वेट बढ़ता है। अगर आपकी दिनचर्या गड़बड़ा गई है, आप के ना उठने का टाइम है, ना सर आपके लंच का है, ना आपके डिनर का है, कोई समय फिक्स नहीं है, तो सबसे पहले आपका वेट बढ़ेगा, और वेट बढ़ने से बहुत सारी बीमारियां लगती है, बहुत सारी सर। सबसे पहले हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बिगड़ेगा, हमारा लिवर फैटी हो जाएगा सर, और बीमारियां बस वहीं से शुरू है आजकल। तो हमें अपने लिवर की देखभाल करनी है तो मैं यही कहूंगी जितना हो सके आप उतना ही खाओ जितना हमारी बॉडी को जरूरत
1: जी।
2: आप फ्रूट्स खाइए, आप सैलेड खाइए, आप दही लीजिए, आप हरी सब्जियां खाइए, और इवनिंग में पॉसिबल हो तो 6 बजे से पहले अपना डिनर ले लीजिए, आपका वेट कभी नहीं बढ़ेगा। एक बार करके देखिए। और किसी को अपना डाइजेस्टिव सिस्टम मजबूत करना है तो सर रात को 2 चम्मच, 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच जीरा भिगो दीजिए, और मॉर्निंग में उसका पानी पीना आपको 1 महीने तक। जो चेंजेज आएंगे वो आप खुद देख लीजिए, ना केवल आपका वेट कम होगा बल्कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, आपकी जो जठर अग्नि है वो इतनी तेज हो जाए कि आप जो भी खाएंगे वो हजम हो जाएगा। और जब खाना हजम हो जाएगा सर, तो हमारे हेडेक, हमारे गैस की प्रॉब्लम, है ना, कुछ भी नहीं होगा हमारी बॉडी में। और उसके साथ अगर हम आसन कर लेते हैं तो वो सोने पे सुहागा हो जाता है।
1: बहुत बहुत उपयोगी बातें आप बता रही हैं, लेकिन इनको अमल कैसे करें आज की जो लाइफस्टाइल है उसमें, उसके लिए कुछ टिप्स आप देंगी?
2: सर बिल्कुल, मैं इसके लिए टिप्स दूंगी। क्योंकि सबसे पहले सर, जो हमारी जो दिनचर्या है ना, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। अभी लास्ट ईयर दिसंबर में मेरे फादर बीमार थे, बेड पे आ गए थे, है ना, और मेरी मम्मा के फोर्थ स्टेज का कैंसर था जबड़े का। तो कुछ परिस्थितियां ऐसी आन पड़ी कि भैया भी ऑफिसर हैं हॉस्पिटल में, रात को मम्मा को वो देखता, दिन में मैं देखती, इधर पापा, है ना, कि आप बहुत सारे जने हो तब कोई दिक्कत नहीं है, तो क्या करूं कि मैं अपने पापा को खड़ा कर दूं सर। तो मैं रात को उनके पास ही सोती थी, तो वो पहले क्या करते थे, उनकी दिनचर्या बताती हूँ मैं। वो सुबह देरी से उठते थे, फिर वो चार चार दिन से नहाना धोना करते थे अपना, और उनकी एज है 79 ईयर्स ओल्ड सर। तो मैंने सबसे पहले सर, मैं उनके पास होती थी, मैं उनसे बातें करने लगी, तो मैंने रूटीन यहाँ सुधारा कि वो जो शाम को डिनर लेते ही 6-7 बजे सो जाते थे ना, मैं उनको रात को 10 बजे सुलाने लगी। तो वो सुबह मॉर्निंग में अपने आप उनकी नींद पूरी होती, 6 बजे उठने लग गए। फिर वो एक दिन छोड़ के एक दिन नहाने लगे सर
1: जी।
2: अब कंडीशन है, वो खुद रोज नहा लेते हैं, अपना वॉक कर लेते हैं, अपना जो अंडर गार्मेंट्स वगैरह है वो भी खुद धोने लग गए हैं।
1: बहुत बढ़िया।
2: अपना एप्पल काटना, खाना, है ना, तो स्ट्रेचिंग आज भी वो करते हैं। उनका पापा कुछ और नहीं ज्यादा, तो अपना स्ट्रेचिंग करो, उठक बैठक करो, अपना चक्की चालन आसन जो होता है, जेंट्स में प्रोस्टेंट की बहुत ज्यादा शिकायत होती है, तो उसके लिए सर चक्की चालन है, मलासन है, बटरफ्लाई है, ये कुछ आसन है जो बहुत फायदेमंद होते हैं जेंट्स के लिए। तो मेरे पापा को प्रोस्टेंट में भी बहुत फायदा हुआ, और आज माता रानी की मेहरबानी से उनको देख के कोई कह नहीं सकता कि वो कभी इतने बीमार हुए थे क्या। और अगर हम खान पान सुधार लें अपना, लाइक के जैसे चने है, मूंगफली है, हमें हाई रिच प्रोटीन लेना चाहिए सर बॉडी में।
1: बिल्कुल।
2: प्रोटीन

0: ये हम नहीं लेंगे, तो इसके लिए आपको धूप सुबह की लेनी बहुत जरूरी है, बहुत ही उपयोगी बात।
1: जी सर। तो अब आता है सर कि एक होता है ईटिंग होता है अलग अलग। मैं यही कहूंगी कि जैसे लोग मोबाइल देख के भी खाना खाते रहते हैं, टीवी देखते हुए भी खाना खाते हैं सर, और कई बार हम बच्चों को डांट लगा देते हैं तो वो इमोशनल ईटिंग भी करते हैं, है ना। जैसे हमने मना कर दिया पिज्जा नहीं खाना, तो जिद से मंगाएंगे फिर खाएंगे, है ना। तो सर ये चीजें बहुत नुकसान करती है। तो जो मैदा है, ब्रेड है, ये चाउमीन है, फास्ट फूड है, ये सब छोड़ देने चाहिए। अगर हम कोशिश करते हैं ना, तो आज जैसे मुझे आज 8-9 महीने हुए, मैं मिठाई की बहुत शौकीन हूँ सर, मैंने टच तक नहीं किया। अभी मैंने फंक्शन अटेंड किया, सुबह शाम मिठाई लिया मेरे सामने, वो थी जो मेरी पसंदीदा थी। छोड़ना है तो छोड़ना है, मैं सब छोड़ चुकी हूँ सर। और उससे मुझे क्या फायदा हुआ है कि एक तो आपका हेयर फॉल नहीं होता है, एक आपके नाखून नहीं टूटेंगे सर,
0: अरे वाह,
1: और तो आंखों की रोशनी भी तेज होती है सर।
0: नई बात जी, जी बहुत उपयोगी बात जी।
1: तो बस स्वास्थ्य के लेके यही है सर कि सबसे पहले डेली रूटीन सुधारना है। उस डेली रूटीन में सर टाइम पे उठना, वॉक करना, थोड़ा बहुत आप एक्सरसाइज कर लो जितना आपको आता है। कोई जरूरी नहीं है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप अपने सिद्धियां हासिल करें आसन करके, लेकिन आप वॉक करो 45 मिनट की, फिर आपको जितना आते हैं आपको एक्सरसाइज है, या आप जिम भी जा रहे हैं या आप घर पे करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको इस समय में, समय टाइम ऐसा चल रहा है सर कि हमें अपने बॉडी का ध्यान रखना पड़ेगा, हमें अपने शरीर से प्यार करना पड़ेगा सर।
0: बिल्कुल, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि आजकल जैसे देखने को मिलता है कि कोई स्टेज पे परफॉर्मेंस दे रहा है और उसके साथ ही उसको हार्ट अटैक आया या गिर गया, कोई नाच रहा है, कोई डांस कर रहा है, तो ऐसे ही कैसे जो है ना, कोई सीढ़ियां चढ़ रहा है, कुछ कोई अपने घर आ रहा है, कोई ऑफिस जा रहा है और रास्ते में कोलैप्स हो गया। तो ये सारी जो घटनाएं हो रही हैं उसका कोई ना कोई तो रीजन होगा, कोई ना कोई तो कारण होगा ही, और वो कारण इन्हीं में से निकालना पड़ेगा, क्योंकि हाँ, हमारी दिनचर्या जो है
1: सबसे पहले कि जो
0: उसमें सुधार जरूरी है।
1: प्रोटीन पाउडर बताते हैं कि आप ये लीजिए, वो बहुत नुकसान करता है सर बॉडी को, बहुत नुकसान करता है। तो ऐसे होने को नमस्कार है, किसी को कुछ भी हो सकता है, लेकिन कोशिश कीजिए कि डिब्बा बंद, पैक बंद, जो भी फूड आता है वो बंद कर दीजिए।
0: आजकल बहुत प्रचलन चल रहा है कि वो प्रोटीन पाउडर लो, बच्चों को भी, जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको भी दूध में मिक्स करके उसको पिलाओ, तो ऐसा भी देखने को ट्रेंड चल पड़ा है।
1: हाई रिच प्रोटीन जो है सर हमें मूंगफली से मिलता है, आप बिलीव करेंगे। अगर हम रात को एक मुट्ठी भर मूंगफली भिगो देते हैं और मॉर्निंग में उसका सेवन करते हैं
0: जी।
1: हम लोग अंकुरित मूंग है, अंकुरित मोठ है ना, अंकुरित अपनी मेथी है, दाना मेथी, तो अगर हम ये सब लेने लग जाएंगे सर तो हमारे बॉडी में कभी कमी नहीं होगी प्रोटीन की, और हमें ये तला फला खाने की जरूरत ही नहीं है सर। आप खुद, मैं कोटा में रह रही हूँ, सामने से रतन रावत के कचौड़ी वाला है, मुझे यूं गिल से आने लगे, नहीं मुझे नहीं।
0: कचौड़ी तो अच्छी होगी बट मूंगफली भी कोटा की अच्छी होती है, तो वो आपको प्रोटीन का सोर्स वो भी है, तो आप तो वही लीजिए,
1: सबसे बड़ा सोर्स है सर। तो हमें जैसे है, कई कहते हैं हम लोग बादाम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो आप मूंगफली खा सकते हैं सर। मूंगफली है, चने हैं, चने गुड़ खाइए, आयरन मिलेगा भरपूर आपको, और चने में वैसे भी प्रोटीन होता है क्योंकि बेसन होता है, चना होता है वो, तो जो साबुत अनाज है, दालें हैं सर, राजमा के साथ चावल होना चाहिए, रोटी के साथ दाल होती है, सांभर के साथ इडली होती है, हमारा खुद का भोजन इतना अच्छा है कि आज हमें ये मोमोज, चाउमीन, ये सब खाने की जरूरत ही नहीं है।
0: एक फैशन सा, एक ट्रेंड सा चल पड़ा है बच्चों में, वो जो नई जनरेशन है उसमें, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगी कि हम अपनी दिनचर्या को कैसे जो है व्यवस्थित कर सकें, क्या कहना चाहेंगे?
1: देखिए, जान है तो जहान है सर, तो अगर

0: हमने अपने हेल्थ की तरफ ध्यान नहीं दिया है तो बीमारी कोई उम्र नहीं देखती है सर। समय ऐसा आ गया है कि छोटे छोटे बच्चों को हार्ट अटैक हो रहे हैं,
1: बिल्कुल
0: उसका मेन रीजन ये है कि उनकी दिनचर्या सुधरी हुई नहीं है। वो लोग फिजिकली वर्क कुछ है, उनकी एक्टिविटीज है ही नहीं, वो खाते हैं लेकिन वो कैलोरी बर्न नहीं करते हैं सर। तो
1: हाँ,
0: मैं यही
1: कैलोरी का बर्न
0: कहूंगी
1: करना भी बहुत
0: जो
1: जरूरी
0: आज
1: है जी।
0: जी आज का जो युवा वर्ग है, और कि आप अपना दिनचर्या सुधारिए, अपना अच्छा खान पान लीजिए। खान पान का मतलब ये नहीं है कि आप पिज्जा खाएं, बाहर की तरफ खींचे चलने जाएं, कोशिश करें घर पे ही खाएं। और ये वेट बढ़ रहा है तो वेट घटाना बहुत आसान है सर, वो हमारे खुद के हाथ में ही है। मैं चाहूँ तो 1 महीने में अपना 10 किलो वेट घटा सकती हूँ। कुछ टिप्स देना चाहूंगी सर मैं, किसी को अगर
1: बिल्कुल
0: अपना वेट लॉस करना है तो सर आप अपना ब्रेकफास्ट बंद कर दीजिए, आप ब्लैक टी ब्लैक कॉफी लीजिए, आप सैलेड ले सकते हैं, आप फ्रूट ले सकते हैं, फिर आप अपना लंच ले लीजिए जिसमें आपके रोटी सब्जी सैलेड होना चाहिए और हरी सब्जियां होनी चाहिए, एक आपकी पसंद की कोई भी ले सकते हैं बच्चे।
1: जी
0: और इवनिंग में कोशिश कीजिए कि अगर आपके डिनर की इच्छा है तो आप 6:30 तक डिनर ले लीजिए, ताकि आप रात को सोए जब तक आपका वो खाना हजम हो जाए, आपके लीवर को रात को आराम मिले। जब भोजन अच्छे से पाचन हो जाता है हमारे भोजन का, तो हमारी बॉडी में उसका रस बनना शुरू हो जाता है, हमारे मेटाबॉलिज्म में सर फास्ट काम करते हैं, और मेटाबॉलिज्म में फास्ट काम करता है तो हमारी हजारों बीमारियां मिट जाती है सर। आजकल जैसे हाइपोथायराइड हो जाता है, थायराइड की दिक्कत है, तो
1: जी
0: सर थायराइड ग्लैंड है जो एक्टिव नहीं रहती है, उसके लिए भी आसन होते हैं सर, है
1: जी
0: ना। गर्दन घुमाइए राइट टू लेफ्ट टू राइट, ऊपर पंखे को देखिए, नीचे गर्दन कीजिए, फिर ऊपर मुंह ले जाओ, मुंह खोलो, फिर नीचे लाओ। तो सर कुछ आसन है जिनसे करने से हम लोग हाइपोथायराइड से भी बच सकते हैं। एक है वेरिकोज वेंस की प्रॉब्लम लेडीज में, बिकॉज खड़े होके वो ज्यादा काम करती है सर। एक है घुटनों की दिक्कत, है ना।
1: जी
0: तो वेरिकोज वेंस और घुटनों की दिक्कत लेडीज में ही ज्यादा है, जेंट्स में नहीं है सर, आपने नोट किया होगा,
1: बिल्कुल
0: क्योंकि लेडीज पूरे दिन भर खड़े होके काम करती है। अब एक जमाना था कि हम लोग नीचे बैठ के खाना पकाते थे
1: बिल्कुल,
0: और
1: आजकल
0: नीचे
1: गैस
0: बैठ
1: आने
0: के
1: के
0: पूरी
1: बाद गैस
0: फैमिली खाना
1: की
0: खाते थे
1: पट्टी
0: सर।
1: पर
0: जी
1: खाना,
0: सर,
1: बिल्कुल खड़े खड़े ही सब
0: बिल्कुल
1: कुछ काम
0: सर,
1: होता। हाँ
0: या तो वो डबल बेड पे खाना खाएंगे या डाइनिंग टेबल पे बैठेंगे, है ना। सब्जियां भी वो कट करेंगे तो किचन में खड़े खड़े, तो उससे क्या वेरिकोज वेंस की प्रॉब्लम शुरू हो गई है सर लेडीज में। अभी मेरी फ्रेंड है, उसको डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि तुम्हें ऑपरेशन कराना पड़ेगा, बहुत पेन था उसकी। मेरे से कांटेक्ट में आई, मैंने कुछ आसन करवाए, विपरीत करनी बोलते हैं जिसको, आप लेट जाइए, अपने पैरों को दीवार की तरफ सीधा खड़ा कर दीजिए। तो सर जब वो ब्लड सर्कुलेशन है वो पैरों से वापस जब हमारे हार्ट की तरफ आता है तो सर वो दिक्कत खत्म हो जाती है।
1: उल्टा होगा वो। हाँ बिल्कुल
0: उल्टा, हाँ हाँ जी उल्टा, और मसाज मालिश वगैरह करने से भी ये दिक्कत खत्म हो जाती है। और अगर आप नीचे बैठ के खाना खाते हैं सर, तो मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ आपको कभी घुटनों की दिक्कत नहीं होगी। जो डॉक्टर कहते हैं आपको नीचे नहीं बैठना, आपका ग्रीस खत्म हो गया, ये वो फलाना ढेकड़ा, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट है जो ठीक हो चुके हैं। तो अपना पुराना जो हम जो हमारी भारतीय संस्कृति सभ्यता, हमारे जो रीति रिवाज खान पान जो है, वापस उसमें लौट आइए, उसी में फायदा है सर।
1: बहुत ही उपयोगी जानकारी आपने दी योग की और अपने दिनचर्या को सुधारने की और साथ साथ खान पान पे ध्यान देने की। ये बहुत ही आज की जो जीवन शैली है उसके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी और सार्थक है। तो
0: जी सर, जी
1: बिल्कुल आप कुछ और बताना चाहेंगी, कोई आपसे संपर्क करें, आपसे सलाह करें तो
0: बिल्कुल
1: कब
0: सर,
1: करें,
0: मैं एक और
1: जयपुर रेडियो के
0: उदाहरण
1: माध्यम से
0: देना
1: करें।
0: चाहूंगी।
1: बिल्कुल
0: बिल्कुल सर, आप मेरे नंबर दे दीजिए, अगर कोई परेशान है, कोई वेमेंस इश्यूज, पीसीओडी, जॉइंट्स पेन, सर्वाइकल पेन,
1: बिल्कुल, तो
0: और
1: आप जयपुर रेडियो के जो ऐप है उस पे नंबर है, उस पर आप हमें संपर्क करके आप अपना सवाल
0: जी
1: हमें दे
0: सर,
1: सकते हैं। हम कला जी को आपका सवाल जरूर प्रेषित कर देंगे और उसका आंसर भी हम हो सका तो रेडियो के माध्यम से ही आपको दिलवाएंगे। जी हाँ, आप जी कुछ उदाहरण बता रही थी वो बताएं।
0: जी सर, मेरे है एक ब्रदर है, फ्रेंड के भाई हैं, तो सर उनके बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हो गया था, बहुत कर्जा सिर हो गया, इवन जेल भी हो गई थी और वेट बहुत ज्यादा बढ़ गया था उनका, 120 समथिंग कुछ ऐसा हो गया था। फिर इस दौरान उनके भैया के फादर की, अंकल की भी डेथ हो गई थी, तो मुझे मेरी फ्रेंड से ही पता चला। मैंने जैसे तैसे आंटी से सबसे कांटेक्ट किया, राजेश से मैंने बात की, तो राजेश भैया पहले तो वीडियो कॉल पे रोया, बोल ही नहीं पाया सर। किसी को मोटिवेट करना होता है तो आपको कॉल पे लेना पड़ता है, तो मैंने एक ही चीज बोली, मैंने कहा भैया ऐसा है, देखो अमिताभ बच्चन भी बर्बाद हुए थे, है ना, वक्त किसी का भी सर बुरा आ सकता है, हिम्मत नहीं हारनी थी।
1: बिल्कुल,
0: तो मैंने बहुत मोटिवेट किया। आज राजेश भैया ने अपने फिर से जॉब ज्वाइन कर ली है, और उनकी 70-80 हजार तनख्वाह है सर, और अपना वेट भी मेरे पे ही है, वो 7 किलो मैंने वजन घटा दिया है 1.5 महीने में। तो मेरे लिए इससे बड़ा अचीवमेंट कुछ हो नहीं सकता कि आज जो मैंने डिप्लोमा किए हैं सर, उनसे
1: बिल्कुल
0: बहुत
1: आपके
0: फायदा
1: अपने
0: हो रहा
1: लोग
0: है,
1: तो
0: तो
1: कम से कम
0: सबको होना चाहिए।
1: बिल्कुल आपके अपने लोग तो जो हैं, और इसी सिलसिले में आप इस मंच पे हैं कि हम आपके जो अनुभव हैं, आपने जो प्रैक्टिकल किए हैं उसको सुन के हमारे जो लिसनर हैं, हमारे जो श्रोता हैं, वो लाभान्वित हों, उनको लाभ मिले कि हम अपनी दिनचर्या को कैसे संभालें, योग साधना कितनी जरूरी है, सूर्य की जो रोशनी है, सूर्य की जो ऊर्जा है, क्योंकि आजकल तो सोलर ऊर्जा का जमाना भी आ गया है, तो वो ऊर्जा उसमें है। यदि हमने एक जगह पढ़ा था कि कुछ आदमी सिर्फ और सिर्फ धूप में बैठे रहते हैं, कुछ खाते ही नहीं है, सिर्फ सूरज की जो ऊष्मा है, जो ऊर्जा है, उसके बल पर जीवित रहते हैं, तो
0: बिल्कुल सर,
1: तो कुछ उपयोगिता, कुछ जो प्रकृति की चीजें हैं, जो 5 तत्व हैं जिसे हम भगवान कहते हैं, वो जो भूमि है, आकाश है, जल है और अग्नि है, वायु है, यही तो हमारे जीवन का असल मूल आधार है। और इस आधार पर यदि हम इनको सशक्त बनाने, क्योंकि ये 5 तत्वों से ही हमारा शरीर बना हुआ है, और इनको हम यदि शामिल करें पूरे तौर पे, हमारे शरीर में हमारे साथ हों ये 5 तत्व, तो हम और हमारा बल कभी कम नहीं होगा, हमारी शक्ति कभी कम नहीं होगी। हम बता दें कि कला सिंह बिट्टू हमारे साथ हैं, और आप एक स्पोर्ट्स पर्सन हैं और साथ में योगिनी भी हैं, योग इनकी साधना साथ साथ चलती है, योग साधना और एक स्पोर्ट्स पर्सन होना बहुत ही दुर्लभ देखने को मिलता है, और वो दोनों कॉम्बो हमारी आज की जो प्रवक्ता हैं उनके पास हैं। तो आप अंत में कुछ कहना चाहेंगे?
0: अंत में यही कहना चाहूंगी कि हम लोग किसी भी चीज को सीरियस नहीं लेते हैं। सपोज जैसे हमारे दांतों में प्रॉब्लम हो जाती है, हमारा हेयर फॉल होता है सर, हमारे नाखून टूटते हैं सर, है ना
1: जी,
0: तो कैल्शियम की कमी है, विटामिन ई की कमी है सर, है ना, इन चीजों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। इसका मतलब हमारे बॉडी के अंदर कुछ हो रहा है,
1: कुछ कमी हुई है, किसी भी तत्व की कमी हुई है। बिल्कुल
0: जी सर, तो बस मैं यही कहूंगी कि सब चीजों को ध्यान में रखते हुए अपना खान पान सुधारिए, हेल्दी खाना खाइए, अपना अच्छे से एक्सरसाइज कीजिए, और सूर्य भगवान को थोड़ा सा नमस्कार करके 1 घंटा मॉर्निंग में या इवनिंग में 4 से 5 आप धूप सेवन कीजिए। तो अगर आप विटामिन डी लेते हैं सर, तो हमारी आधी बीमारियां तो वैसे ही खत्म हो जाती है। जो B12 आजकल चला हुआ है, वो यही दिक्कत है कि लोग पूरे दिन गाड़ी में AC, ऑफिस में AC, घर पे AC, उनके पसीना तो सर निकलता ही नहीं है। कहते हैं कि हमारा जो स्किन है वो हमारी 3री किडनी है सर। अगर हमारी किडनी काम नहीं करती है तो वो काम हमारे स्किन करती है सर, पसीना निकाल के।
1: बहुत अच्छी बात कही
0: अगर पसीना नहीं निकला तो सर कुछ भी नहीं है, तो पसीना निकलने दीजिए, आप गर्मी की आदत डालिए सर।
1: यदि स्वस्थ
0: तो
1: रहना
0: सुबह
1: है तो
0: मॉर्निंग में
1: पसीना निकलना
0: जी
1: बहुत
0: सर
1: जरूरी है ताकि टॉक्सिन
0: बहुत
1: जो है
0: जरूरी है
1: वो
0: सर
1: आउट हो सके बॉडी से।
0: जी सर।
1: बहुत
0: तो
1: सही बात।
0: सुबह मॉर्निंग में 4 बजे एसी बंद कर दीजिए, टाइमर लगा के, फिर देखिए आप अपने आप उठ जाएंगे, अपने आप आंख खुलेगी सर।
1: बिल्कुल, हमारे श्रोताओं की भी आंख खुल गई होगी इतनी सारी अच्छी जानकारी सुन के, और यदि उपयोग में लाएंगे तो आंख भी खुलेगी और हाथ पांव भी खुलेंगे और आप में एक नई स्फूर्ति नई ऊर्जा आएगी, ऐसा हमारा विश्वास है। हमारे साथ कला सिंह बिट्टू रही इतनी उपयोगी जानकारी के लिए, आपका बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। फिर आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। बहुत धन्यवाद कला जी।
0: थैंक यू सो मच, आभार सर।
2: थैंक यू।
3: नमस्कार दोस्तों, सियाटल से एक बार फिर मैं समृद्धि आप सभी का स्वागत करती हूं अपने शो में, जिसका नाम है गीतों के सवाल गीतों के जवाब। और आज का शो स्पेशल है क्योंकि आज हमारा 10th यानी कि 10वां एपिसोड है। तो आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं हमारे 10th एपिसोड के लिए। बात को आगे बढ़ाते हुए आज के शो के बारे में आपको कुछ बता दूं। आज के शो का हमारा सेंट्रल पॉइंट रहेगा कुदरत के करिश्मे, यानी कि जो हम नजारे देखते हैं उनको देखकर हमारे मन में जो तरह तरह के सवाल उठते हैं, तो आज हमने अपने गीतों के जरिए वैसे सवालों को कैप्चर करने की कोशिश की है। तो हमारे एपिसोड का नाम रखते हैं कुछ सवाल कुदरत से। कहते हैं सफर की खूबसूरती सिर्फ मंजिल में नहीं होती, रास्ते में भी होती है। कभी कोई पहाड़ रास्ता रोककर कहता है जरा ठहरो, कभी कोई हवा बिना कुछ कहे हमारे साथ चल पड़ती है, कभी बारिश शहर को इतना खूबसूरत बना देती है कि मन करता है रास्ता थोड़ा और लंबा हो जाए, और कभी कभी हम किसी खूबसूरत जगह को देखकर बस इतना ही कह पाते हैं वाह। तो आज के गीतों के सवाल और गीतों के जवाब में हम कोई सवाल हल करने नहीं आए हैं, आज हम बस निकल पड़े हैं कुदरत के नाम के एक सफर पर। तो आइए पहले पड़ाव पर। कुछ जगहें ऐसी होती हैं जिन्हें देखकर कैमरा निकालने का मन करता है, और कुछ जगहें ऐसी होती हैं जिन्हें देखकर कैमरा वापस रख देने का, क्योंकि लगता है अरे ये जगह इतनी खूबसूरत है ये तस्वीर में कहां ही आ पाएगी, है ना। पहाड़, खुला आसमान, हरियाली और उनके बीच अचानक महसूस होता है कि हम कहां आ गए हैं। आज के सफर की शुरुआत ऐसे ही एक दृश्य से करते हैं। ये हसी वादियां, ये खुला आसमान। 1992 की फिल्म रोजा का यह गीत एसपी बाला सुब्रमण्यम और केएस चित्रा ने गाया, संगीत एआर रहमान और बोल पीके मिश्रा के थे। और इस गीत के साथ एक खूबसूरत संगीत स्मृति भी जुड़ी हुई है कि यह मूवी रोजा एआर रहमान का फिल्म कंपोजर के रूप में पहला डेब्यू एल्बम था, और इसी साउंडट्रैक के लिए उन्हें नेशनल अवार्ड भी मिला था। एक डेब्यूटेंट के लिए उस समय यह ऐतिहासिक उपलब्धि थी। तो चलिए, किसी नक्शे की जरूरत नहीं, बस आंखें बंद कीजिए और कल्पना कीजिए आपके सामने एक खुला आसमान है। मेरे साथ मेरा साथ देते हुए श्री पंकज कुमार चतुर्वेदी।

0: कभी आपने ठहर कर आसमान को देखा है? वही आसमान जो सुबह सूरज की सुनहरी किरणों से नहा जाता है, शाम को लालिमा ओढ़ लेता है और रात में असंख्य तारों से सज जाता है। कभी किसी फूल को देखकर सोचा है, इन नाजुक पंखुड़ियों में इतने रंग किसने भरे होंगे? पक्षियों को उड़ने के लिए पंख किसने दिए? नदियों को बहने की लय, हवाओं को संगीत और इंसान के हृदय को भावनाएं किसने दी? हम चित्र बनाते हैं, कैनवास पर रंग भरते हैं, किसी दृश्य को अपनी कल्पना से सुंदर बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक ऐसा चित्रकार भी है जिसने न कोई कैनवास लिया न कोई रंगों की कूची, फिर भी उसने एक ऐसा संसार रच दिया जिसकी सुंदरता के सामने हमारी सारी कलाएं छोटी पड़ जाती हैं। पहाड़ उसकी कृति है, नदियां उसकी रचना है, फूल उसकी रंगोली है और यह पूरा संसार उसकी अद्भुत चित्रकारी। तभी मन में एक प्रश्न उठता है, यह कौन चित्रकार है? वह कौन है जिसने प्रकृति के इस विशाल कैनवास पर इतने अनगिनत रंग बिखेर दिए? आइए आज हम उसी अदृश्य कलाकार की कला को महसूस करें, उसकी बनाई इस खूबसूरत दुनिया को नमन करें और उसी भाव के साथ प्रस्तुत है आपके सामने गीत ये कौन चित्रकार है। मैं पंकज कुमार चतुर्वेदी रांची से आपके लिए ये गीत प्रस्तुत करता हूँ। धन्यवाद।
1: और यह गीत 1967 की फिल्म बूंद जो बन गई मोती से लिया गया है, जो ओरिजिनली मुकेश साहब की आवाज में है। यह गीत, इस गीत के गीतकार हैं भारत व्यास और संगीतकार सतीश भाटिया। आइए सुनते हैं।

0: कभी कभी जिंदगी की भागदौड़ से दूर जाने का मन करता है, जहां न शहर का शोर हो न कोई जल्दबाजी हो, बस चारों ओर हो ऊंचे ऊंचे पर्वत, खुला आसमान और प्रकृति की खामोशियां। पर्वतों की अपनी एक भाषा होती है, जो कुछ कहती नहीं फिर भी बहुत कुछ कह जाती है। उनकी ऊंचाइयों में सपने हैं, उनकी गहराइयों में रहस्य हैं, और उनकी वादियों में छुपी है एक अजीब सी सुकून भरी दुनिया। आइए आज शब्दों और सुरों के सहारे उसी खूबसूरत दुनिया की ओर चलें, जहां है पर्वतों के दायरे और प्रकृति के नजारे। ये गीत ये पर्वतों के दायरे, ये शाम का धुआं, फिल्म वासना से, जिसे मोहम्मद रफी साहब ने अपनी मधुर आवाज में गाया था और जिसके संगीतकार हैं महान संगीतकार चित्रगुप्त जी।
1: और मोहम्मद रफी साहब का साथ दिया था लता मंगेशकर जी ने इस गाने को डुएट बनाने में, और अब मैं अपने पिताजी का साथ दे रही हूँ इस गाने में।

लेकिन उसका असर पूरा दिखाई देता है। पेड़ों की पत्तियां हिलने लगती हैं, चेहरे पर बाल उड़ने लगते हैं और अचानक मन का मौसम भी बदल जाता है। 1951 की फिल्म नौजवान का यह गीत लता मंगेशकर की आवाज में है, संगीत एसडी बर्मन का, गीत साहिर लुधियानवी के। और एक बहुत दिलचस्प बात, बाद में मशहूर संगीतकार बने रवि ने अपना करियर की शुरुआत भी इसी फिल्म के कोरस सिंगर के रूप में किया था, यानी जिस फिल्म में हमें लता जी की आवाज में ठंडी हवाएं सुनाई देती है, उसी फिल्म से एक और बड़े संगीतकार की म्यूजिकल जर्नी भी शुरू हुई थी। यह गीत मुख्यतः प्रकृति और मौसम की ताजगी का एहसास देती है और इसकी धुन को राग पहाड़ी से जोड़ा जा सकता है, जो प्रकृति और लोक संगीत के रंगों के लिए बहुत ही स्वाभाविक चुनाव लगता है। तो जरा महसूस कीजिए, पहाड़ पीछे छूट रहे हैं, हवाएं हमारे साथ हैं और शायद अब मौसम कुछ कहने वाला है।

और मौसम ने आखिर कह ही दिया, बारिश आने वाली है। पहले हवा चली, फिर बादल आए और अब सड़क पर पहली बूंद गिरी। और बारिश का भी क्या कहना, कुछ लोग बारिश से बचते हैं और कुछ लोग बारिश में निकल पड़ते हैं। हम तो आज भाई सफर पर हैं, तो फिर हम बारिश से क्यों बचें? हमारा अगला गीत रिमझिम गिरे सावन। अब हमारे सफर का सबसे भीगा हुआ पड़ाव 1979 की बसु चटर्जी की फिल्म मंजिल, संगीत आरडी बर्मन और गीत योगेश के। इस गीत के दो प्रसिद्ध वर्जन हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में, दोनों ने अलग अलग गाया है। लेकिन इसके साथ जुड़ी सबसे मजेदार बात गीत की रिकॉर्डिंग नहीं, उसकी शूटिंग है। लता का जो वर्जन है, जो मैं आज आपको सुनाने वाली हूँ, को मुंबई की असली बारिश में शूट किया गया था। अमिताभ बच्चन और मौसमी चटर्जी को बारिश में चलते हुए मुंबई के लैंडमार्क्स के बीच में फिल्म किया गया था। मरीन ड्राइव और शहर के दूसरे आइकॉनिक लोकेशंस भी इस दृश्य का हिस्सा हैं। यानी जो बारिश हमें स्क्रीन पर इतनी एफर्टलेस लगती है, वह सचमुच की बारिश थी। और शायद इसी वजह से उस गीत में बारिश सिर्फ दिखाई नहीं देती, महसूस भी होती है। तो चलिए छाता बंद कर देते हैं, आज भीगने का मन है।

0: पर्वतों के बीच जब सफर शुरू होता है तो मंजिल से ज्यादा खूबसूरत हो जाती है राह। लेकिन फिर मन में एक सवाल उठता है, आखिर ये रास्ता हमें ले कहां जा रहा है, कौन सी दिशा हमारी मंजिल है और कौन सी राह हमें उन अनदेखे नजारों तक ले जाएगी जिनकी तलाश में दिल बरसों से भटकता रहा है। शायद सफर का असली आनंद मंजिल पाने में नहीं बल्कि उस अनजानी दिशा में आगे बढ़ते रहने में है। तो आइए पूछते हैं उस बटोही से, कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया। ये गीत फिल्म नदिया के पार से, जिसे हेमलता जी ने और यशपाल सिंह जी ने गाया था और जिसकी संगीत रचना की थी रविंद्र जैन साहब ने।
1: आज के एपिसोड के लिए इससे बेहतर एंडिंग शायद हो नहीं सकती, क्योंकि हमने आज कोई डेस्टिनेशन तय नहीं किया है, हमने बस चलते हुए वादियाँ देखी, पहाड़ देखे, हवा महसूस की, बारिश भी भीगी है और अब रास्ते से पूछ रहे हैं, अच्छा बताओ अब किस दिशा में चलें? तो आइए इस सफर को मंजिल पर खत्म नहीं करते, इसे अपने रास्ते पर ही छोड़ देते हैं। यह पिक्चर 1982 में रिलीज हुई थी नदिया के पार, और इस गीत और इस पूरी मूवी में जो भाषा है उसकी खासियत यह है कि वह अवधि का देसी रंग है जो कि नदिया के पार की ग्रामीण दुनिया को और अपना सा बना देती है। आइए सुनते हैं

0: समझती हूँ आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। आप प्लीज हमें अपने फीडबैक्स दें, हमें और बेहतर होने का मौका दें, और अगले एपिसोड में फिर से मिलते हैं। इजाजत दें, धन्यवाद।
1: और अब उन श्रोताओं के नाम जिन्होंने अपने लाइक्स भेजे हैं इस प्रोग्राम के लिए, श्याम बिहारी शर्मा कोलकाता वेस्ट बंगाल से, मंदाकिनी शाह बड़ोदरा गुजरात से, फाल्गुनी दवे जूनागढ़ गुजरात से, सोनल पारिक जूनागढ़ गुजरात से, ज्योति भावसार भरूच गुजरात से, हासीसेन गुप्ता मुंबई वेस्ट बंगाल से, अनीता दुगर नेपाल से, आशा जैन बेंगलोर से, हितेंद्र चतुर्वेदी जयपुर राजस्थान से, चंद्रा बोथरा जैन बीकानेर राजस्थान से, रामचंद्र गुप्ता महाराष्ट्र से।
2: अपना शहर अपनी शान, जयपुर रेडियो मेरी जान।
3: अरे ये लाहौर लाखों और इस कमबख्त को क्या हो गया, ये बजता क्यों नहीं है?
4: क्या हुआ चचा, ये रेडियो पे इतना जुल्म क्यों ढा रहे हैं आज?
3: अरे जुल्म किस बात का बेटा, अब आधे घंटे से लगे हुए हैं, अब हमारा पसंदीदा प्रोग्राम आने वाले थे, हमारे गीत आने वाले थे, लेकिन ये कमबख्त है कि बजने का नाम ही नहीं लेता।
4: तो मोबाइल पे ही सुन लीजिए ना रेडियो।
3: अरे बेटा कौन वो लीड लगाए और फिर वो दो फुलटू कान में डाल के वो लंबी सी रस्सी लेकर यहाँ वहाँ घूम।
4: अरे नहीं चाचा, अब उस रस्सी की जरूरत नहीं पड़ेगी।
3: अच्छा,
4: अब आ गया है एक नया ऐप जिसपे आप इंटरनेट के सहारे रेडियो सुन सकते हैं कहीं भी कभी भी।
3: अच्छा कौन सा ऐप है वो?
4: हाँ चाचा, जयपुर रेडियो।
3: जयपुर रेडियो? पर बेटा हम तो लखनऊ में रहते हैं और जयपुर।
4: चचा देश के नहीं बल्कि दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर आप अपने पसंद के गाने सुन सकते हैं।
3: अरे वाह, ये लो बेटा फोन, और क्या नाम बताया उस ऐप का?
4: लाइए मुझे दीजिए आपका फोन, मैं अभी डाउनलोड कर देती हूँ जयपुर रेडियो।
5: तुमने दी आवाज, हो जाए अब तो आगाज, जयपुर रेडियो आपकी पहचान।
2: आवाज की पहचान, जयपुर रेडियो मेरी जान।
6: जयपुर रेडियो अपनार आवाज अपनार परिचय, सुनते थाकुन बंधुगण। जयपुर रेडियो
2: आपकी आवाज का जादू, कैसे रहे खुद पर काबू, जयपुर रेडियो आपकी पहचान।
1: और अब आ गए हैं इस मंच के मेल सिंगर हमेशा की तरह, मैं आवाज हूं तो तू है गीत मेरा। मैं आप जानते हैं पहचानते हैं उन सिंगर को जिनका नाम है अनुराग सिन्हा, नई मुंबई से हमारे साथ इस मंच पर हमेशा रहते हैं। आप

सुपरस्टार राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर पर फिल्माया गया ये सुरीला गीत आप तक पहुंचा रहे थे अनुराग मुंबई से। आपकी आवाज आपकी पहचान का ये प्रोग्राम जिसमें आप आज सुन रहे हैं मैं आवाज हूं तो तू है गीत मेरा का ये खास प्रोग्राम हमारे इस मंच के मेल सिंगर अनुराग की आवाज में। आइए अब सुनते हैं अनुराग से ही अगला सॉन्ग।

अनुराग की सुरीली आवाज आप सुन रहे हैं इस मंच से। मैं आवाज हूँ तो तू है गीत मेरा में आज लेके आए हैं अपने गीत अनुराग मुंबई महाराष्ट्र से। आइए सुनते हैं सड़क फिल्म का ये गीत।

मौसीकी की दुनिया के कदरदानों, मैं गगन माथुर आपका स्वागत करता हूं इस संगीतमय शाम में। पिछले हफ्ते आप डिस्को की थाप पे झूमे, तो इस हफ्ते मेरी गुजारिश है 90s के मधुर गीतों को गुनगुनाने की। 80s के अंत तक डिस्को की रेपिटेटिव धुनों के आगोश में गीतकारों की रचनात्मकता दम तोड़ रही थी। तभी कयामत से कयामत तक ने उसमें एक ताजी हवा भर दी, जिससे 90s के तूफान में बदल डाला कयामत से कयामत तक के साउंडट्रैक डिस्ट्रीब्यूटर्स टी सीरीज ने। हुआ यूं कि नदीम श्रवण, कुमार सानू और अनुराधा पोडवाल जैसे हीरो को तराश के टी सीरीज ने एक एल्बम बनाई जो महेश भट्ट साहब के कानों में पड़ी, और उन्होंने गुलशन कुमार से अनुरोध करके उस एल्बम के सॉन्ग्स को रिलीज से पहले ही अपनी फिल्म के लिए रोक लिया। ये वही फिल्म थी जिसका स्टोरी आइडिया एक्टर दीपक तिजोरी ने भट्ट साहब को पेश किया था खुद को हीरो बनवाने के लिए, मगर भट्ट साहब को चैरिटी वर्कर इंदिरा रॉय का पुत्र पसंद आ गया था और दीपक तिजोरी बना दिए गए हीरो के पक्के दोस्त, लिहाजा आगे की कई फिल्मों में वो हीरोज के पक्के दोस्त बनते रहे। ये फिल्म सुपर डुपर हिट हुई और उसकी म्यूजिक एल्बम आज भी बॉलीवुड के 100 ग्रेटेस्ट साउंडट्रैक्स में चौथे स्थान पर गिनी जाती है। तो साहिबान, 90s की मेलोडी से आशिकी शुरू करवाने वाली इस फिल्म के खूबसूरत गीत को आपकी नजर के सामने ला रहे हैं प्रेरणा और राम की।

दोस्तों आशिकी एक ऐसी फिल्म थी जिसमें पोस्टर हीरो हीरोइन का चेहरा सफेद कोट में छुपाकर बनाए गए, क्योंकि भट्ट साहब को उनके चेहरे मार्केटिंग के लायक नहीं लगे। जिसमें आदित्य पंचोली को याद किया गया हीरो की आवाज में दम लाने के लिए, जिसमें पहले शॉट तक हीरो को कैरेक्टर का नाम भी नहीं पता था। सीन के दौरान कैरेक्टर को कहीं साइन करना था तो हीरो ने अपना ही नाम लिख दिया, राहुल, और वो ही कैरेक्टर का नाम बन गया। जिसमें अपना चेहरा दिखाने के लिए कुमार सानू ने अपने ही प्लेबैक किए गए एक गीत के बाद हीरो से मार खाने की जहमत उठाई। दूसरी ओर 1989 के अंत में मैंने प्यार किया से शानदार एंट्री मार ली थी सलमान खान ने, मगर उन्हें तलाश थी दूसरी हिट की बॉलीवुड में अपनी जगह पक्की करने के लिए। सलमान को एक नया स्टोरी आइडिया सूझा जिसपे न सिर्फ उनकी दूसरी बैक टू बैक ब्लॉकबस्टर बनी बल्कि एक साल बाद एक और ब्लॉकबस्टर भी स्क्रीन पे छपी जिसका नाम था सड़क। सलमान की फिल्म थी बागी जिसने सलमान को बनाया स्टार और नगमा को दिया डेब्यू। अभिजीत को बना दिया टॉप सिंगर। चांदनी रात में गाए गए इस गीत ने, जिसे पेश करने आ रहे हैं थापा और प्रियंका।

दोस्तों चांदनी रात है गीत फिल्म फेयर अवार्ड्स में भी नॉमिनेट हुआ, मगर गलती से सिंगर का नाम लिया गया अमित कुमार। थोड़ा धक्का तो लगा होगा अभिजीत को, मगर चांदनी रात ने अभिजीत साहब की रातें तो रातें दिन भी चांदी से चमका दिए और कुमार सानू के साथ साथ बॉलीवुड में पांव जमाए उनके जबरदस्त कॉम्पिटिटर अभिजीत भट्टाचार्य ने। दूसरी तरफ रोमांस को लेकर महेश भट्ट एक नए संवेदनशील प्रयोग की फिराक में थे। उन्होंने एक अलहदा सा स्टोरी आइडिया सोच रखा था धर्मपुत्र बॉबी देओल के डेब्यू के लिए, मगर बॉबी ने तो पापा के प्यार की बरसात में भीगते हुए डेब्यू फिल्म साइन कर ली काका की बेटी के साथ और भट्ट साहब टकरा गए इलू इलू फेम विवेक मुशरान से। महेश भट्ट साहब की खुशी सातवें आसमान में जा पहुंची और उन्हें लगा होगा तुम क्या मिले विवेक मुशरान। उन्होंने भट्ट गर्ल पूजा के साथ झटपट अपनी स्टोरी पर्दे पर उतार दी और ये गीत 90s के हॉल ऑफ फेम में अमर हो गया। तो चलिए सुनते हैं ये खूबसूरत सातवें आसमान पर चढ़ा हुआ गीत उषा और रईस अहमद खान की जुबानी।

1993 में आमिर खान ने अपनी डेब्यू पार्टनर जूही चावला के साथ भट्ट साहब की खूबसूरत फिल्म की और उस रोल को सुपरहिट किया जो अनिल कपूर और संजय दत्त से फिसलते फिसलते उनके पास आ गया था। उन्होंने ना सिर्फ इस फिल्म में एक्टिंग की बल्कि जहां मौका लगा उसे डायरेक्शन भी दिया। ये वो फिल्म है जिसमें सैफ के जीजा कुणाल खेमू आमिर खान के सामने इतने बच्चे थे कि कहते हैं उन्होंने महेश भट्ट से वीडियो गेम गिफ्ट लेकर एक सीन दिया था। ये वो फिल्म भी है जिसमें जूही चावला को अवार्ड देकर आमिर खान को फिल्म फेयर ने दूसरी बार इग्नोर किया। जो जीता वही सिकंदर के बाद। इस फिल्म के गीत के माध्यम से अपनी खूबसूरत आवाज में विद्या और मानवेंद्र पेश करेंगे घूंघट के डिसएडवांटेजेस।

दोस्तों 1995 में एक ऐसी फिल्म आई जिसने 5 बड़े फनकारों की किस्मत बनाई और एक को थोड़ी चोट पहुंचाई। इस फिल्म से कमबैक हुआ लेजेंडरी सिंगर आशा भोसले का, जिन्होंने प्लेबैक सिंगर अवार्ड लेना बंद कर दिया था, इसलिए इस फिल्म के एक गीत तना तना के लिए उन्हें फिल्म फेयर स्पेशल अवार्ड से नवाजा गया। स्टार बन गई उर्मिला मातोंडकर। हिंदी फिल्म डेब्यू हुआ म्यूजिक डायरेक्टर एआर रहमान, कोरियोग्राफर अहमद खान और उर्मिला की इमेज बदल देने वाले डिजाइनर मनीष मल्होत्रा का। साथ ही साथ इस फिल्म ने फिल्मफेयर अवार्ड्स को मौका दिया तीसरी और आखिरी बार आमिर खान को इग्नोर करने का, और उसके बाद आमिर ने फिल्मफेयर में आना ही बंद कर दिया। आइए सुनते हैं इस फिल्म का सबसे सेंसुअस गीत प्रशांत और शोमा से।

विधु विनोद चोपड़ा अपनी पर्सनल लव स्टोरी पे एक फिल्म बनाना चाहते थे, पर जब उन्होंने वो कहानी अनिल कपूर को सुनाई तो उन्हें कोई खास झक्कास नहीं लगी। उन्होंने उन्हें एक पीरियड लव स्टोरी का आइडिया दे डाला जो आगे जाके 1942 लव स्टोरी बनी। न संजय वंसाली डायरेक्शन के लिए तैयार हुए, न ममता कुलकर्णी हीरोइन बनने के लिए, लेकिन चोपड़ा साहब डटे रहे। 1995 में रिलीज हुई इस फिल्म का संगीत न केवल उसी साल रिलीज हुई रंगीला से जुदा था, बल्कि उसके संगीत निर्देशक अन्नू मलिक के स्टाइल से भी बहुत जुदा था। एक सिंगिंग रियलिटी शो की विनर बनी इस फिल्म की फीमेल प्लेबैक सिंगर, और इस फिल्म के गीत लोगों के दिलों के बहुत बहुत करीब पहुंच गए। आइए ऐसे ही एक गीत को सुनाने के लिए बुलाते हैं तनुजा और राहुल को।

हॉलीवुड फिल्म फॉर लव और मनी का रीमेक बनी 1997 की एक शाहरुख फिल्म, जिसका नाम पहले था मोहब्बत इसको कहते हैं। पर फिल्म बनाते बनाते शायद मेकर्स ने गौर किया होगा कि आखिर हर मोहब्बत का अंजाम होता क्या है, तो उन्होंने इस फिल्म का प्रैक्टिकल नाम रख दिया, यस बॉस। कहते हैं जावेद अख्तर के लिखे गीत बस इतना सा ख्वाब है में जाहिर की गई शाहरुख की सारी अर्जियां ऊपर वाले ने झट से मंजूर कर ली। शाहरुख बन गए किंग खान और आगे जाके वो आलिशान बंगला ही ले डाला जिसके आगे इस गीत की शूटिंग हुई थी। उस बंगले का नाम है मन्नत। आइए बुलाते हैं थापा और गायत्री को इस फिल्म की यादें ताजा करने के लिए।

1998 में डब फिल्म ने कमाए थे 14 करोड़ रुपए, जो अपने आप में रिकॉर्ड था उस समय। और उसका सबसे प्रचलित गीत फिल्माया गया था उसी बंगले के अंदर जिसके सामने पिछले गीत को फिल्माया गया था। फिल्म का नाम था बॉम्बे और गीत था हम्मा हम्मा। इस फिल्म के डायरेक्टर मणिरत्नम लेना चाहते थे ऐश्वर्या राय को, पर वो अपने मिस वर्ल्ड कमिटमेंट्स के कारण ये फिल्म न कर पाई और रोल मिल गया मनीषा कोइराला को। इसके गीत कहना ही क्या को अनेक देशी विदेशी एल्बम्स में रिमिक्स किया गया और बॉम्बे थीम को भी आगे कई फिल्म्स और एल्बम्स में यूज किया गया, मगर हम्मा हम्मा की ट्यून प्रेरित थी 1996 के एक आइटम सॉन्ग से, कोई आए तो ले जाए उसके इंटरलूड से। कभी गौर से सुनिएगा। अब श्याम और तान्या आपके आगे वो गीत पेश करेंगे जिसकी शूटिंग केरला के बेकल फोर्ट में मानसून के दौरान हुई थी।

1998 में एक ऐसी फिल्म भी रिलीज हुई जिसके हीरो हीरोइन ने पूरी फिल्म भर एक दूसरे से बात नहीं की, पर अभिनय बेहतरीन किया। हीरो थे सलमान खान और हीरोइन थी ट्विंकल खन्ना, और फिल्म का नाम था जब प्यार किसी से होता है। इस फिल्म का संगीत भी खूबसूरत बन पड़ा था और जतिन ललित निर्देशित कुमार सानू और लता मंगेशकर का ये गीत आज भी हमारे जहन में गूंजता रहता है। इसी गीत के भाव को पेश करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं श्रुति और विकास को।

दोस्तों, गीतों के इस दौर को अब अंजाम देना चाहूंगा एक ऐसी फिल्म के गीत से जिसे आज की पीढ़ी का रोमांटिक क्लासिक माना जाता है। आदित्य चोपड़ा इस फिल्म में टॉम क्रूज को लेकर इंडो अमेरिकन अफेयर पर आधारित स्टोरी लाइन रखना चाहते थे, मगर यश चोपड़ा साहब इसके पक्ष में नहीं थे, लिहाजा सैफ अली खान को अप्रोच किया गया, मगर उन्होंने भी फिल्म ठुकरा दी। और डर फिल्म की तरह बड़े सितारों की ठुकराई ये फिल्म आ गिरी शाहरुख खान की झोली में। अमूमन दो बड़े डायरेक्टर अपनी फिल्में एक साथ रिलीज नहीं करते, मगर डेविड धवन साहब ने दिवाली पे हुई डीडीएलजे की रिलीज को चैलेंज किया अपनी फिल्म याराना से, जिसकी फीमेल सुपरस्टार माधुरी दीक्षित के कारण चलने की संभावना कहीं ज्यादा थी। नतीजा, बच्चन साहब के बाद की कोई भी याराना पब्लिक को याद नहीं है। डीडीएलजे का बॉक्स ऑफिस पे 7000 दिन तक चलने का अनब्रोकन रिकॉर्ड बना और इसका मुख्य किरदार राज आज भी लोगों के दिलों पर राज कर रहे हैं। रही बात सैफ और डेविड धवन साहब की, तो आज भी अपने आप को समझा रहे होंगे कि बड़े बड़े कलाकारों से छोटी छोटी मिस्टेक्स तो होती रहती हैं सेनोरिटा। दोस्तों, गजर के इशारे अब रुकने नहीं देंगे, इसलिए अब मैं गगन माथुर आपसे इजाजत चाहता हूं, इस उम्मीद के साथ कि 90s के सुहाने सफर के बाद आपका दिल भी उस दौर में खो जाएगा और जुबान पर भी वही बोल होंगे जो आज के आखिरी गीत में डॉक्टर सुजा और मेरी यानी गगन माथुर की जुबान पे हैं।

0: वाह, बेहतरीन प्रस्तुति। दोस्तों, ख्वाहिश तो यही है कि आपके साथ जुड़े रहें, पर समय हमें रोक रहा है। वक्त है आपसे विदा लेने का। आशा करता हूं कि आज की पेशकश आपको पसंद आई होगी। जाते जाते आओ झूमे गाएं ग्रुप की ओर से मैं आप सभी का और जयपुर रेडियो का धन्यवाद करता हूं।
1: लफ्ज लफ्ज बंध गया जिंदगी के साथ, जयपुर रेडियो लाया आपके लिए नित नई सौगात।
2: आपकी आवाज का जादू, कैसे रहे खुद पर काबू। जयपुर रेडियो, आपकी पहचान।
3: कहीं भी सुनिए, कभी भी सुनिए, यह है जयपुर रेडियो। अब आपका रेडियो आपके हाथ में। आप घर में हो या दफ्तर में, बाजार में हो या कहीं और, अब आपका रेडियो हमेशा आपके साथ है। तो फिर देर किस बात की, फोन उठाइए और डाउनलोड कीजिए जयपुर रेडियो का ऐप, जहां आपको मिलेगा नॉनस्टॉप एंटरटेनमेंट।
2: तुमने दी आवाज, हो जाए अब तो आगाज। जयपुर रेडियो, आपकी पहचान।
1: आवाज की पहचान, जयपुर रेडियो मेरी जान।
2: तुमने दी आवाज, हो जाए अब तो आगाज। जयपुर रेडियो, आपकी पहचान।
1: आवाज की पहचान, जयपुर रेडियो मेरी जान।
2: तुमने दी आवाज, हो जाए। तुमने दी आवाज, हो जाए अब तो आगाज। जयपुर रेडियो, आपकी पहचान।
1: आवाज की पहचान, जयपुर रेडियो मेरी जान।
2: तुमने दी आवाज, हो जाए अब।
4: डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का ये जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, आपकी आवाज आपकी पहचान। प्रस्तुत है प्रोग्राम गीत गाथा। जी हां, आज इस प्रोग्राम में हमारे साथ हैं अपनी गजलों को लेके, अपनी गजलों के साथ भुवनेश्वर उड़ीसा से डॉक्टर गाथा मोहंती। वेलकम है डॉक्टर गाथा आपका आज के
5: बहुत शुक्रिया
4: आज के इस खास प्रोग्राम में, और आपको आज के दिन की ढेरों शुभकामनाएं। आज होली भी है,
5: थैंक यू सो मच,
4: और महिला दिवस भी है। इन दोनों दिवस की शुभकामनाएं एक साथ आपको। और हमने सुना था या आपने कहा था कि हम रंग नहीं खेलते, और जब हमने आपके घर में झांक के देखा तो आप से रंग खेल रहे थे। तो रंगों की इस दुनिया के बारे में आप क्या कहेंगी, आप कौन सा कलर पसंद करती हैं, और रंग जीवन में कितने जरूरी हैं?
5: नमस्ते व्यास जी, और सारे श्रोताओं को प्यार भरा नमस्कार। आज वुमेन्स डे है, इसीलिए सारी महिलाओं को बहुत बहुत बधाई वुमेन्स डे के इस अवसर पर, और होली की शुभकामनाएं सबके लिए। मुझे सबसे प्यारा कलर तो कॉपर सल्फेट ब्लू लगता है, और जब रंगों की बात हो तो लाइफ कलरफुल होनी चाहिए। तो मेरी भी लाइफ, मैं चाहती हूँ कि कलरफुल ही रहे, सारे रंग हो उसमें, खुशी के भी रंग हो, दुख के थोड़े से रंग तो हैं ही सबके लाइफ में। और बाकी बेटे के साथ थोड़ा सा खेला, बहुत ज्यादा नहीं।
4: बिल्कुल, खेला तो ना, और बहुत
5: जी,
4: थोड़ा ही बहुत होता है। यदि हमारे मन में बहुत है कलर तो फिर सारी दुनिया रंगीन नजर आती है। तो
5: जी,
4: बहुत ही खूबसूरत आप गाती हैं, और जब आप गाती हैं तो उसके बाद किसी और को सुनने का मन नहीं होता, इतना मन से कैसे गा लेती हैं आप? जब गजल गाती हैं खासकर, बहुत दिल से गाती हैं, और पेशे से आप अपना परिचय दें और हम श्रोताओं को बताएं, तो आप डॉक्टर हैं, और उसके बाद जब गजल गाता है तो गजल की एक दुनिया होती है और गजल गाने वाले की एक दिल की दुनिया अलग होती है। उस दुनिया में और आज के यथार्थ की दुनिया में आप कैसे फर्क करती हैं, और उस फर्क के बाद उसमें कैसे मेल कर सकती हैं, उसमें कैसे कोऑर्डिनेशन बैठाती हैं, कैसे उसके साथ चलती हैं लाइफ में?
5: जी बहुत सही कहा आपने, एक रियलिस्टिक दुनिया है और गजल जब आप गाते हो तो एक अलग ही दुनिया चली जाती है, आपको लेके जाती है गजल। और बचपन से मैं सुनती आ रही हूँ बहुत सारे गजल्स और गाती भी थी, लेकिन हमेशा यही सोचती थी कि जब गजल गा रहे हो गाना तो अच्छे से आना चाहिए, लेकिन उसके साथ वो फील भी आनी चाहिए। एक दुख जो दर्द है वो गजलों में, कि सुन के वो दर्द आ जाए पूरा, तो वो होना चाहिए आपकी आवाज में। सो उसको लाते लाते थोड़ा समय तो लगता है, पता नहीं अब श्रोता ही बता पाएंगे कि किस तरह से मैं गाती हूँ और वो फील मैं ला पाती हूँ या नहीं। तो आई जस्ट ट्राई टू डू इट। और हाँ, जब गाती हूँ वो तो अलग ही दुनिया में लेके जाता है, एंड इफ यू डोंट गो टू दैट लेवल यू कांट गेट द फील ऑफ द गजल। सो ट्राई करती रहती हूँ कि अच्छे से गा पाऊं। और गजल के लिए डिक्शन जो है उर्दू, वो अभी तक बहुत अच्छे से नहीं हो पाया है, लेकिन मैं ट्राई करती हूँ कि थोड़ा थोड़ा हो जाए उर्दू उसके लिए।
4: जी, कई बार सुनते सुनते आपको ऐसा लगता है कि आप गजल को गा रही हैं या गजल आपको गा रही हैं, दोनों में एक रस हो जाता है, ऐसा सामने होता है। बहुत ही मन से, जब दिल से किसी चीज को हम पुकारते हैं, गाते हैं, तो ऐसा ही होता होगा अक्सर, हमारा ऐसा मानना है।
5: जी।
4: तो पहली कौन सी गजल आप हमारे श्रोताओं को आज सुनाने वाली हैं?
5: आज श्रोताओं के लिए पहला गजल जो है फेस टू फेस एल्बम है जगजीत सिंह जी का, और जिसको खामोश गजीपुरी जी ने लिखा हुआ है, दैरो हरम में बसने वालों
4: महखानों में फूट न डालो। तो आइए सुनते हैं ये खूबसूरत गजल।

0: बहुत ही खूबसूरत गजल दैरो हरम में बसने वालों महखानों में फूट न डालो। आप सुन रहे हैं डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का लाइव शो गाथा गजल और हमारे साथ हैं भुवनेश्वर उड़ीसा की गजल गायिका डॉक्टर गाथा महंती। एक बार फिर वेलकम है इस लाइव शो में डॉक्टर गाथा आपका। बहुत ही खूबसूरत गजल हमने सुनी आपकी और गजल यूं ही नहीं गाई जाती, गजल यूं ही नहीं गाई जाती, गजल के लिए पसीने को लहू किया जाता होगा तब गजल दिल तक पहुंचती है। और आप ऐसी कौन सी कोशिश करती हैं, कौन सा प्रयास करती हैं कि गजल अपने रूप में हमें स्वरूप दिखाई देती है?
1: जी, कोशिश तो नहीं रहती है, लेकिन यही रहती है कि जब जो लिरिक्स है गजल की, जिसने लिखा हुआ है, उसने क्या सोच के किस तरह से हकीकत को अपने पेन से लिखा हुआ है वो सोचती हूँ। जैसे एक गजल है, उसका मतलब एक पैरा अगर सुना जाए, जैसे गांठ अगर लग जाए तो फिर रिश्ते हो या डोरी, लाख करे कोशिश खुलने में वक्त तो लगता है। ये तो सच्ची है ना, कोई भी रिश्ता हो या डोरी हो, अगर उसमें गांठ लगे तो एक रिश्ता बनाने में जितना टाइम लगता है, उसको अगर टूट जाए तो उसको फिर से जोड़ने में जो डेडिकेशन चाहिए या तो जितना टाइम लगता है वो बहुत ज्यादा होता है। सो वो उसको फील करना होता है कि अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है तो आप वही फील ला सकते हो, अगर नहीं भी हुआ है तो अगर किसी के साथ होते हुए देखा है तो वही फील लानी चाहिए। मैं तो वही सोचती हूँ, बाकी गजल जो गाते हैं उनका सोच भी मेरे से और अलग होगा। सो
0: बहुत ही खूबसूरत बात कही आपने। और ऐसी कौन सी गजल है जिसमें गांठ लग जाए अगर
1: जी
0: तो वैसी ही गजल सुना दीजिए ना।
1: जी जी, प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है, ये वही एल्बम से है फेस टू फेस और उसी को जगजीत जी ने गाया हुआ है।
0: लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है।
1: जी जी जी जी, एकदम सही है ना, एकदम सही लिखा है।
0: बहुत ही खूबसूरत गजल और पूरे जीवन की फिलॉसफी उसमें छुपी है,
1: पूरी फिलॉसफी है। जी जी,
0: तो आइए सुनते हैं और लुफ्त लेते हैं इस खूबसूरत गजल का आपकी आवाज में, आपकी आवाज आपकी पहचान डॉक्टर गाथा मोहंती।

0: प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। जिस्म की बात नहीं थी, उनके दिल तक जाना था। लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है। प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गाथा ए गजल और हमारे साथ हैं डॉक्टर गाथा महंती भुवनेश्वर उड़ीसा से। वेलकम है एक बार फिर इस प्रोग्राम में, इस खास प्रोग्राम में डॉक्टर गाथा आपका।
1: जी शुक्रिया।
0: बहुत ही खूबसूरत गजल हमें सुनने को मिली, हमारे लिसनर्स को सुनने को मिली। और आपने कभी खत लिखा? क्योंकि आजकल तो खत का जमाना नहीं है, लेकिन
1: नहीं लिखा हुआ है।
0: लिखा हुआ तो उसमें वक्त भी लगाया आपने?
1: हाँ, वक्त तो लगा था।
0: पूरी तरह से लिख पाई थी या कुछ रह गया था?
1: नहीं, शायद लिख लिया था।
0: लिख लिया। चलिए, बहुत शुभकामनाएं। बहुत शुभकामनाएं, अच्छी बात।
1: थैंक यू।
0: तो इतना खूबसूरत जो है आपने अपने स्वर में आपने इस गजल को गाया है और महसूस करके गाया है, उसको सुन के बहुत अच्छा लगा। हम चाहेंगे कि उस खत के बारे में, क्योंकि उस खत को जब आपने पहली बार कोई आदमी करता है कोई काम तो उसको भूलता नहीं है, तो आप भी
1: हाँ जी
0: बिल्कुल नहीं भूल पाएंगी, भूल पाई होंगी। हमारी जैसी सोच है, यदि आप ऐसा ही करती हैं या सोचती हैं तो आप भी नहीं भूल पाई होंगी। तो कौन सी गजल हमारे श्रोताओं को?
1: जो नेक्स्ट गजल है वो इसी के बारे में ही है। आपको भूल जाए हम इतने तो बेवफा नहीं, चित्रा जी ने गाया हुआ है। एक लाइव कॉन्सर्ट हुई थी 1988 में।
0: आपसे गिला है? आपसे क्या गिला करें, आपसे कुछ गिला नहीं।
1: जी जी
0: जी,
1: बहुत ही खूबसूरत।
0: कितना सेक्रीफाइस है इसमें है कि, और जो गजलों में विरोधाभास होता है वो दोनों चीजें इसमें आ रही हैं। आपको भूल जाएं हम इतने तो बेवफा नहीं, आपसे क्या गिला करें, आपसे कुछ गिला नहीं। तो आइए सुनते हैं आपकी आवाज में, यानी डॉक्टर गाथा मोहंती की गाई इस खूबसूरत गजल को। आपकी आवाज, आपकी पहचान। आप सुन रहे हैं डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का, जयपुर रेडियो वर्ल्ड।

0: वाह, बहुत खूबसूरत गजल। शीशा ये दिल को तोड़ना उनका तो एक खेल है, हमसे ही भूल हो गई उनकी कोई कता नहीं। वो कितना बदनसीब है गम ही जिसे मिला नहीं, आपको भूल जाएं हम इतनी तो बेवफा नहीं। आप सुन रहे हैं डॉक्टर गाथा को ओडिशा भुवनेश्वर से। हमारे साथ प्रोग्राम गाथाए गजल में डॉक्टर गाथा मोहंती इस प्रोग्राम में लाइव जुड़ी हैं। बहुत ही खूबसूरत गजल गाथा हमने सुनी और
1: जी शुक्रिया।
0: क्या कहेंगी आप इस गजल को सुनने के बाद? हमारे श्रोता तो कहेंगे ही कहेंगे, आप क्या कहेंगी?
1: नहीं, ये गजल इतनी इजी भी नहीं है, क्योंकि जब मैंने पहली बार सुना, किसी ने बोला कि आप ये सुने और इसको सीख के गाइए, तो क्योंकि इतनी बारीकियां हैं और चित्रा जी ने इतनी छोटी छोटी चीजों में हरकतें की हुई हैं, सो खाली गा लेना मेरे लिए वो सीख के एकदम हूबहू उसको फिर से प्रोड्यूस करना वाज लिटिल ट्रिकी, बट टाइम लगा लेकिन फिर हुआ। लेकिन उसके बाद क्या होता है, फील भी आनी होती है। सो एक बार गाना, फिर उसके बाद उसकी जो फाइनल डिटेल्स एंड उसके बाद द फील, एवरीथिंग मेक्स अ गजल कंप्लीट। सो शायद श्रोता ही बता पाएंगे कि वेदर दे लाइक्ड इट और नॉट, और वो कंप्लीट हुआ है या नहीं।
0: हमारी दृष्टि में तो पूरी तरह से कंप्लीट हुआ है। और भूलने की बात हो और तन्हा होने की बात हो, अकेलेपन की जब बात हो, तो भी गजल होती है। और हिंदी कविता में तो कहा जाता है, वियोगी होगा पहला कवि आह से उपजा होगा गान, निकल चुपचाप आंखों से बही होगी कविता अनजान। तो पहले कवि के बारे में ऐसे कहा जाता है, तो आप ही बताएं कि जब तन्हा होता है आदमी तो कौन सी गजल गाता है? और
1: ये कोई ये कैसे बताए कि वो तन्हा क्यों है?
0: जी वही।
1: तो ये गजल है जगजीत जी का, जी कैफी आजमी जी ने लिखा हुआ है, और ये मूवी में आई थी ये जो गजल है, ये इसको शबना आजमी जी के ऊपर फिल्माया गया था, अर्थ मूवी में
0: जी।
1: ये गजल आए थे और मुझे बहुत पसंद है ये, सो वो सुनाते हैं श्रोताओं को।
0: बिल्कुल, आपके साथ हम भी सुनते हैं श्रोताओं के साथ आपकी ये गजल डॉक्टर गाथा अपनी अगली गजल में।
2: रिश्ते तो नहीं

0: है जन्म का ये रिश्ता तो बदलता क्यों है, कोई ये कैसे बता दे कि वो तन्हा क्यों है। खूबसूरत गजल हमने सुनी डॉक्टर गाथा की आवाज में। आपकी आवाज आपकी पहचान, आप सुन रहे हैं डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो वर्ल्ड। और हमारे साथ हैं भुवनेश्वर गुहा, भुवनेश्वर उड़ीसा से, डॉक्टर गाथा, प्रोग्राम गाथा ही गजल। फिर से वेलकम है, स्वागत है डॉक्टर गाथा इस लाइव शो में। खूबसूरत गजल आपने सुनाई और इसको सुन के हमें यूं लगा, एक प्रश्न हमारे जहन में आया कि अधिकतर गजलें गम जुदाई इनको लेके होती है, जिंदगी के फलसफे को लेके होती है, और वही गजलें हमारे दिल को और सुनने वाले जो लिसनर्स हैं उनके दिल को छूती है। तो ऐसी क्या बात होती है इसमें, कौन सा आकर्षण होता है गजल में कि वो हमारे सीधे दिल में असर करती है, नॉक करती है?
1: वो सच बताती है गजल,
0: कभी झूठ नहीं बोलती।
1: फिलॉसफी जी, कभी झूठ नहीं बोलती। जो फिलॉसफी है लाइफ की, चाहे मैं कितना बता दूं कि नहीं ऐसा नहीं होता है, लेकिन यही होता है। और इसको एक्सेप्ट करना, जितनी जल्दी आप एक्सेप्ट कर लो वही आपके लिए अच्छा रहता है। सो किसको गम नहीं है इस जमाने में, सबको गम है, आपका आपको भी है, हमारा भी है, लेकिन उस गम के पीछे भी एक लाइफ चलती रहती है और उसी गम के साथ लोग चलते रहते हैं। द चेंज इज कॉन्स्टेंट, सो वही चेंज को एक्सेप्ट करना और आगे बढ़ते जाना, वही तो जिंदगी है।
0: तो सुन ले वो गजल, अपने गम को गीत बनाकर गा लेना, अपने गम को गीत बनाकर गा लेना, राग पुराना तेरा भी है,
1: तेरा भी है मेरा।
0: आइए सुनते हैं, बहुत ही खूबसूरत उम्दा गजल।

0: शहर की गलियों में चर्चा है जिसका, वो अफसाना तेरा भी है मेरा भी है। जी हाँ, चर्चा है आज प्रोग्राम गाथा है गजल की। जयपुर रेडियो पर हमारे साथ हैं डॉक्टर गाथा महंती भुवनेश्वर उड़ीसा से। आपकी आवाज आपकी पहचान, डिजिटल वॉइस वर्ड का जयपुर रेडियो वर्ड सुन रहे हैं आप। डॉक्टर गाथा, हमने सुनी गम का फसाना, गम का अफसाना, और क्या कहेंगी, गम के बगैर जिंदगी अधूरी है या जिंदगी के बगैर गम?
1: जी, दोनों ही सही है। अपनी अपनी जगह पे दोनों लाइंस एकदम सही बैठती हैं। गम के बगैर जिंदगी और जिंदगी के बगैर गम।
0: बहुत खूब बात कही आपने। और अगली गजल की ओर चलते हैं। और बहुत देर के बाद जिस चीज को आपने नहीं देखा है, जिस गजल को आपने नहीं सुना है, वो गजल हमारे श्रोताओं की नजर कर दीजिए आप। तो कौन सी गजल की ओर रुख कर रही हैं?
1: ये है नियते शौक भर ना जाए कहीं, तू भी दिल से उतर ना जाए कहीं। नासिर काजमी जी ने लिखा हुआ है और नूर जहां जी ने पहली बार गाया था इसे।
0: आज देखा है तुझे, आज देखा है तुझको, देर के बाद आज का दिन गुजर ना जाए कहीं।
1: जी, तो बहुत खूबसूरत लिखा हुआ है जी।
0: तो बिल्कुल सुनाइए आप ये गीत गजल। आइए सुनते हैं डॉक्टर गाथा को इसको।

0: न मिलाकर उदास लोगों से हुस्न तेरा बिखर न जाए कहीं, तू भी दिल से उतर न जाए कहीं। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गाथाए गजल और हमारे साथ हैं डॉक्टर गाथा मोहंती उड़ीसा भुवनेश्वर से। एक बार फिर इस लाइव शो में वेलकम है डॉक्टर गाथा आपका, क्या कहें?
1: जी शुक्रिया
0: जी।
1: जी एक डॉक्टर होते हुए भी पैशन जो है मेरी सिंगिंग है और हर तरह के गाने गाती हूँ, और इस बार गजल जो कलेक्शंस थी मेरी, मैंने सोचा कि श्रोताओं को सुनवाऊं क्योंकि उनकी फीडबैक भी बहुत जरूरी है। अगर कोई प्रोग्राम हम उनको सुनवा रहे हैं सो वो हम अपनी खुशी से जो हमें पसंद है वो उनके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, सो आई वुड एक्सपेक्ट कि

0: लोग अपने कमेंट्स दिए हैं व्यास जी को और बताएं कि ये जो मेरी प्रयास है गजलों की ये जारी रखूं या और थोड़ा बेहतरीन हो सकता है या आई वुड लाइक एन ऑनेस्ट फीडबैक।
1: बिल्कुल, ये आपका मैसेज बराबर इसी वक्त श्रोताओं के पास पहुंच रहा है। और इस गजल में एक चीज थी कि तू भी दिल से उतर न जाए कहीं। तो कई बार ऐसा होता है हमारे साथ लाइफ में कि कोई चीज, कोई गीत भी होता है तो हम बहुत सुनते हैं या बहुत उसके करीब होते हैं तो फिर वो सुनने का मन नहीं करता, या ऐसा कोई व्यक्ति भी हो सकता है या कोई चीज भी हो सकती है। तो दिल से उतरना और दिल के अंदर आना, इसका जो प्रोसेस है उसके बारे में कुछ बताएंगे आप?
0: जी, कुछ तो बहुत प्यारे लोग हैं और कुछ प्यारे गाने भी हैं जो हमें बहुत बार सुना हुआ है, लेकिन इतना सुना हुआ है और ये जो जिंदगी की भीड़ है या जिंदगी की जो कश्मकश है उसमें खो जाते हैं, लेकिन वो दिल से उतर नहीं जाते। इट्स जस्ट दैट इट हैज टू कम बैक अगेन। तो दिल से उतर जाए, कैसे उतर जाते हैं वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, हमेशा कुछ कुछ जैसे गुमसा रह गया हो और अचानक से वो सामने आ जाए तो वो जो खुशी मिलती है वो क्या कहने। वैसे गाने बहुत सारे हैं जो कि बचपन में सुना करते थे हम लोग और फिर कहीं गायब हो गए वो गाने, और जब अभी YouTube हुआ या बहुत सारे चैनल्स हुए, Spotify हुआ या बहुत सारे, जैसे आपकी रेडियो में भी आप बताएं डिजिटल वॉइस वर्ल्ड में वो गाने सुनने को मिलते हैं, तो अचानक से वो मेमोरीज जाग उठती हैं और वो जो खुशी मिलती है उन गानों को सुनने के लिए और फिर से उन गानों को गाने के लिए वो जो प्रेरणा मिलती है उसको आई कांट एक्सप्लेन इन वर्ड्स।
1: बिल्कुल, अनिवर्चनीय जिसको कहा जाता है, उसका शब्दों में बयान नहीं कर सकते हम, निःशब्द हो जाते हैं, पर वो खुशी
0: जी जी
1: दिल को महसूस होती है। जैसे गूंगे गूंगे को गुड़ का स्वाद तो मालूम होता है पर बता नहीं सकता, तो इसी तरह से होता है कई बार, कई एक बार। तो अगली गजल के लिए हम आग्रह करेंगे आपसे, कौन सी गजल रहेंगी आपकी?
0: अगली गजल एक प्राइवेट एल्बम जी वहां से लिया गया है, मोहम्मद रफी जी का ये गजल है और बहुत कम लोगों ने इसको सुना हुआ होगा या तो गाया हुआ होगा। सो व्हेन आई वाज सजेस्टेड दिस गजल, सो मैंने सुना तो एक ही बार में जो होता है ना वो चुंबकीय शक्ति होता है ना वो होता, वो मिला मुझे। अल्लाह मेरे अल्लाह, दुनिया में मेरी आबरू रखना मेरे अल्लाह, एंड द फील ऑफ द गजल इज सच दैट इट टेक्स यू इनटू अ ट्रांस, इनटू अनदर वर्ल्ड। वो तो सुनने में ऐसा होता है, तो गाते समय मुझे क्या फील हुआ होगा मैं नहीं बयां कर सकती, और इसको स्ट्रेट अवे आप प्ले कर दीजिए श्रोताओं के लिए।
1: बिल्कुल, हम सुन के और महसूस करने की कोशिश करते हैं। आप सुन रहे हैं डॉक्टर गाथा।

0: आप सुन रहे हैं डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो पर प्रोग्राम गाथा ए गजल में हमारे साथ हैं डॉक्टर गाथा महंती भुवनेश्वर ओडिशा से। एक बार फिर वेलकम है इस लाइव शो में डॉक्टर गाथा। इस खूबसूरत अरदास के बाद आबरू और इज्जत की बात अल्लाह से निवेदन करने के बाद अब कौन सी गजल इस प्रोग्राम के अंत में आप सुनाना चाहेंगे?
1: जी, ये बशीर बद्र उन्होंने लिखा हुआ है। सहर एल्बम आई थी 2000 में, जगजीत सिंह जी ने इसको गाया हुआ है। मुझसे बिछड़ के खुश रहते हो, मेरी तरह तुम भी झूठे हो। ये पहली लाइन ही इतनी खूबसूरत है और इसमें जो लिखा है, मतलब जो पैराज हैं, एक एक पैरा के जो मीनिंग्स हैं वो इतनी खूबसूरत हैं। मुझको शाम बता देते हैं तुम कैसे कपड़े पहने हो, एंड इट्स जस्ट माइंड ब्लोइंग लिरिक्स। सो
0: एक टहनी पे चांद टिका है।
1: जी, चांद टिका था।
0: मैं ये समझी
1: तुम बैठे हो। हाँ, ये एक्चुअली मेल वर्जन था, सो आई हैव जस्ट चेंज दी इट टू अ फीमेल वर्जन। सो
0: मुझसे गाते गाते खुश रहते हो, मेरी तरह तुम भी झूठे हो।
1: झूठे
0: तो
1: हो
0: जी। बिछड़ने की बात आई गई और सुनते हैं आपकी ये खूबसूरत गजल
1: जी
0: डॉक्टर गाथा। इस खूबसूरत गजल में आपके साथ

0: मुझसे बिछुड़कर खुश रहती हो, मेरी तरह तुम भी झूठे हो। ये तो श्रोता तय करेंगे कि हमारा प्रोग्राम सच्चा है कि नहीं। बहुत ही खूबसूरत गजल हमें सुनाई डॉक्टर गाथा ने इस प्रोग्राम में, जिसका नाम है गाथाए गजल। और चलते चलते क्या कहेंगे डॉक्टर गाथा हमारे लिसनर्स को, कुछ संदेश अपने बारे में कुछ बताएं।
1: लिसनर्स, तो मैं क्या कह सकती हूँ, वही आपने जो कहा ना, सच्चा है या झूठा है वो लिसनर्स ही बताएंगे। और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप सुनते हैं और अप्रिशिएट करते हैं। सो आगे भी सुनते रहेंगे तो मुझे भी बहुत ज्यादा
0: बहुत ही कीमती समय आपने अपना दिया, इसके लिए बहुत धन्यवाद, आभार। सुनते रहें जयपुर रेडियो बार बार, आपकी आवाज आपकी पहचान। आज का ये सुरीला सफर यहीं तक, अनुमति दी, नमस्कार
1: जी, नमस्ते।

नमस्कार दोस्तों, सिएटल से एक बार फिर मैं समृद्धि आप सभी का स्वागत करती हूं अपने शो में जिसका नाम है गीतों के सवाल गीतों के जवाब। और आज का शो स्पेशल है क्योंकि आज हमारा 10th यानी कि 10वां एपिसोड है। तो आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं हमारे 10th एपिसोड के लिए। बात को आगे बढ़ाते हुए आज के शो के बारे में आपको कुछ बता दूं। आज के शो का हमारा सेंट्रल पॉइंट रहेगा कुदरत के करिश्मे, यानी कि जो हम नजारे देखते हैं उनको देखकर हमारे मन में जो तरह तरह के सवाल उठते हैं, तो आज हमने अपने गीतों के जरिए वैसे सवालों को कैप्चर करने की कोशिश की है। तो हमारे एपिसोड का नाम रखते हैं कुछ सवाल कुदरत से। कहते हैं सफर की खूबसूरती सिर्फ मंजिल में नहीं होती, रास्ते में भी होती है। कभी कोई पहाड़ रास्ता रोककर कहता है जरा ठहरो, कभी कोई हवा बिना कुछ कहे हमारे साथ चल पड़ती है, कभी बारिश शहर को इतना खूबसूरत बना देती है कि मन करता है रास्ता थोड़ा और लंबा हो जाए, और कभी कभी हम किसी खूबसूरत जगह को देखकर बस इतना ही कह पाते हैं वाह। तो आज के गीतों के सवाल और गीतों के जवाब में हम कोई सवाल हल करने नहीं आए हैं, आज हम बस निकल पड़े हैं कुदरत के नाम के एक सफर पर। तो आइए पहले पड़ाव पर। कुछ जगहें ऐसी होती हैं जिन्हें देखकर कैमरा निकालने का मन करता है, और कुछ जगहें ऐसी होती हैं जिन्हें देखकर कैमरा वापस रख देने का, क्योंकि लगता है अरे ये जगह इतनी खूबसूरत है ये तस्वीर में कहां ही आ पाएगी, है ना। पहाड़, खुला आसमान, हरियाली और उनके बीच अचानक महसूस होता है कि हम कहां आ गए हैं। आज के सफर की शुरुआत ऐसे ही एक दृश्य से करते हैं। ये हसी वादियां, ये खुला आसमान। 1992 की फिल्म रोजा का यह गीत एसपी बाला सुब्रमण्यम और केएस चित्रा ने गाया, संगीत एआर रहमान और बोल पीके मिश्रा के थे। और इस गीत के साथ एक खूबसूरत संगीत स्मृति भी जुड़ी हुई है कि यह मूवी रोजा एआर रहमान का फिल्म कंपोजर के रूप में पहला डेब्यू एल्बम था, और इसी साउंड ट्रैक के लिए उन्हें नेशनल अवार्ड भी मिला था। एक डेब्यूटेंट के लिए उस समय यह ऐतिहासिक उपलब्धि थी। तो चलिए, किसी नक्शे की जरूरत नहीं, बस आंखें बंद कीजिए और कल्पना कीजिए आपके सामने एक खुला आसमान है। मेरे साथ मेरा साथ देते हुए श्री पंकज कुमार चतुर्वेदी।

0: कभी आपने ठहर कर आसमान को देखा है? वही आसमान जो सुबह सूरज की सुनहरी किरणों से नहा जाता है, शाम को लालिमा ओढ़ लेता है और रात में असंख्य तारों से सज जाता है। कभी किसी फूल को देखकर सोचा है, इन नाजुक पंखुड़ियों में इतने रंग किसने भरे होंगे? पक्षियों को उड़ने के लिए पंख किसने दिए? नदियों को बहने की लय, हवाओं को संगीत और इंसान के हृदय को भावनाएं किसने दी? हम चित्र बनाते हैं, कैनवास पर रंग भरते हैं, किसी दृश्य को अपनी कल्पना से सुंदर बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक ऐसा चित्रकार भी है जिसने न कोई कैनवास लिया न कोई रंगों की कूची, फिर भी उसने एक ऐसा संसार रच दिया जिसकी सुंदरता के सामने हमारी सारी कलाएं छोटी पड़ जाती हैं। पहाड़ उसकी कृति है, नदियां उसकी रचना है, फूल उसकी रंगोली है और यह पूरा संसार उसकी अद्भुत चित्रकारी। तभी मन में एक प्रश्न उठता है, यह कौन चित्रकार है? वह कौन है जिसने प्रकृति के इस विशाल कैनवास पर इतने अनगिनत रंग बिखेर दिए? आइए आज हम उसी अदृश्य कलाकार की कला को महसूस करें, उसकी बनाई इस खूबसूरत दुनिया को नमन करें और उसी भाव के साथ प्रस्तुत है आपके सामने गीत ये कौन चित्रकार है। मैं पंकज कुमार चतुर्वेदी रांची से आपके लिए ये गीत प्रस्तुत करता हूँ। धन्यवाद।
1: और यह गीत 1967 की फिल्म बूंद जो बन गई मोती से लिया गया है, जो ओरिजिनली मुकेश साहब की आवाज में है। यह गीत, इस गीत के गीतकार हैं भारत व्यास और संगीतकार सतीश भाटिया। आइए सुनते हैं।

0: कभी कभी जिंदगी की भागदौड़ से दूर जाने का मन करता है, जहां न शहर का शोर हो न कोई जल्दबाजी हो, बस चारों ओर हो ऊंचे ऊंचे पर्वत, खुला आसमान और प्रकृति की खामोशियां। पर्वतों की अपनी एक भाषा होती है, जो कुछ कहती नहीं फिर भी बहुत कुछ कह जाती है। उनकी ऊंचाइयों में सपने हैं, उनकी गहराइयों में रहस्य हैं, और उनकी वादियों में छुपी है एक अजीब सी सुकून भरी दुनिया। आइए आज शब्दों और सुरों के सहारे उसी खूबसूरत दुनिया की ओर चलें, जहां है पर्वतों के दायरे और प्रकृति के नजारे। ये गीत ये पर्वतों के दायरे, ये शाम का धुआं, फिल्म वासना से, जिसे मोहम्मद रफी साहब ने अपनी मधुर आवाज में गाया था और जिसके संगीतकार हैं महान संगीतकार चित्रगुप्त जी।
1: और मोहम्मद रफी साहब का साथ दिया था लता मंगेशकर जी ने इस गाने को डुएट बनाने में, और अब मैं अपने पिताजी का साथ दे रही हूँ इस गाने में।

लेकिन उसका असर पूरा दिखाई देता है। पेड़ों की पत्तियां हिलने लगती हैं, चेहरे पर बाल उड़ने लगते हैं और अचानक मन का मौसम भी बदल जाता है। 1951 की फिल्म नौजवान का यह गीत लता मंगेशकर की आवाज में है, संगीत एसडी बर्मन का, गीत साहिर लुधियानवी के। और एक बहुत दिलचस्प बात, बाद में मशहूर संगीतकार बने रवि ने अपना करियर की शुरुआत भी इसी फिल्म के कोरस सिंगर के रूप में किया था, यानी जिस फिल्म में हमें लता जी की आवाज में ठंडी हवाएं सुनाई देती है, उसी फिल्म से एक और बड़े संगीतकार की म्यूजिकल जर्नी भी शुरू हुई थी। यह गीत मुख्यतः प्रकृति और मौसम की ताजगी का एहसास देती है और इसकी धुन को राग पहाड़ी से जोड़ा जा सकता है, जो प्रकृति और लोक संगीत के रंगों के लिए बहुत ही स्वाभाविक चुनाव लगता है। तो जरा महसूस कीजिए, पहाड़ पीछे छूट रहे हैं, हवाएं हमारे साथ हैं और शायद अब मौसम कुछ कहने वाला है।

और मौसम ने आखिर कह ही दिया, बारिश आने वाली है। पहले हवा चली, फिर बादल आए और अब सड़क पर पहली बूंद गिरी। और बारिश का भी क्या कहना, कुछ लोग बारिश से बचते हैं और कुछ लोग बारिश में निकल पड़ते हैं। हम तो आज भाई सफर पर हैं, तो फिर हम बारिश से क्यों बचे। हमारा अगला गीत, रिमझिमे गिरे सावन। अब हमारे सफर का सबसे भीगा हुआ पड़ाव, 1979 की बसु चटर्जी की फिल्म मंजिल, संगीत आरडी बर्मन और गीत योगेश के। इस गीत के दो प्रसिद्ध वर्जन हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में, दोनों ने अलग अलग गाया है। लेकिन इसके साथ जुड़ी सबसे मजेदार बात गीत की रिकॉर्डिंग नहीं, उसकी शूटिंग है। लता का जो वर्जन है जो मैं आज आपको सुनाने वाली हूँ, को मुंबई की असली बारिश में शूट किया गया था। अमिताभ बच्चन और मौसमी चटर्जी को बारिश में चलते हुए मुंबई के लैंडमार्क्स के बीच में फिल्म किया गया था। मरीन ड्राइव और शहर के दूसरे आइकॉनिक लोकेशंस भी इस दृश्य का हिस्सा हैं। यानी जो बारिश हमें स्क्रीन पर इतनी एफर्टलेस लगती है, वह सचमुच की बारिश थी। और शायद इसी वजह से उस गीत में बारिश सिर्फ दिखाई नहीं देती, महसूस भी होती है। तो चलिए छाता बंद कर देते हैं, आज भीगने का मन है।

0: पर्वतों के बीच जब सफर शुरू होता है तो मंजिल से ज्यादा खूबसूरत हो जाती है राह। लेकिन फिर मन में एक सवाल उठता है, आखिर ये रास्ता हमें ले कहां जा रहा है, कौन सी दिशा हमारी मंजिल है और कौन सी राह हमें उन अनदेखे नजारों तक ले जाएगी जिनकी तलाश में दिल बरसों से भटकता रहा है। शायद सफर का असली आनंद मंजिल पाने में नहीं बल्कि उस अनजानी दिशा में आगे बढ़ते रहने में है। तो आइए पूछते हैं उस बटोही से, कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया। ये गीत फिल्म नदिया के पार से, जिसे हेमलता जी ने और यशपाल सिंह जी ने गाया था और जिसकी संगीत रचना की थी रविंद्र जैन साहब ने।
1: आज के एपिसोड के लिए इससे बेहतर एंडिंग शायद हो नहीं सकती, क्योंकि हमने आज कोई डेस्टिनेशन तय नहीं किया है, हमने बस चलते हुए वादियाँ देखी, पहाड़ देखे, हवा महसूस की, बारिश में भी भीगे और अब रास्ते से पूछ रहे हैं, अच्छा बताओ अब किस दिशा में चलें? तो आइए इस सफर को मंजिल पर खत्म नहीं करते, इसे अपने रास्ते पर ही छोड़ देते हैं। यह पिक्चर 1982 में रिलीज हुई थी नदिया के पार, और इस गीत और इस पूरी मूवी में जो भाषा है उसकी खासियत यह है कि वह अवधि का देसी रंग है जो कि नदिया के पार की ग्रामीण दुनिया को और अपना सा बना देती है। आइए सुनते हैं

0: समझती हूँ आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। आप प्लीज हमें अपने फीडबैक्स दें, हमें और बेहतर होने का मौका दें, और अगले एपिसोड में फिर से मिलते हैं। इजाजत दें, धन्यवाद।
1: और अब उन श्रोताओं के नाम जिन्होंने अपने लाइक्स भेजे हैं इस प्रोग्राम के लिए, श्याम बिहारी शर्मा कोलकाता वेस्ट बंगाल से, मंदाकिनी शाह बड़ोदरा गुजरात से, फाल्गुनी दवे जूनागढ़ गुजरात से, सोनल पारिक जूनागढ़ गुजरात से, ज्योति भावसार भरूच गुजरात से, आशीषन गुप्ता मुंबई वेस्ट बंगाल से, अनीता दुग्गर नेपाल से, आशा जैन बेंगलोर से।

0: अरे ये लाहौर लाखों और इस कमबख्त को क्या हो गया, ये बजता क्यों नहीं है?
1: क्या हुआ चचा, ये रेडियो पे इतना जुल्म क्यों ढा रहे हैं आज?
0: अरे जुल्म किस बात का बेटा, अब आधे घंटे से लगे हुए हैं, अब हमारा पसंदीदा प्रोग्राम आने वाले थे, हमारे गीत आने वाले थे, लेकिन ये कमबख्त है कि बजने का नाम ही नहीं लेता।
1: तुम मोबाइल पे ही सुन लीजिए ना रेडियो।
0: अरे बेटा, कौन वो लीड लगाए और फिर वो दो फुलटरू कान में डाल के वो लंबी सी रस्सी लेकर यहाँ वहाँ घूम।
1: अरे नहीं चाचा, अब उस रस्सी की जरूरत नहीं पड़ेगी।
0: अच्छा,
1: अब आ गया है एक नया ऐप जिसपे आप इंटरनेट के सहारे रेडियो सुन सकते हैं कहीं भी कभी भी।
0: अच्छा, कौन सा ऐप है वो?
1: हाँ चाचा, जयपुर रेडियो।
0: जयपुर रेडियो? पर बेटा, हम तो लखनऊ में रहते हैं और जयपुर?
1: चचा, देश के नहीं बल्कि दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर आप अपने पसंद के गाने सुन सकते हैं।
0: अरे वाह, ये लो बेटा फोन, और क्या नाम बताया उस ऐप का?
1: लाइए, मुझे दीजिए आपका फोन, मैं अभी डाउनलोड कर देती हूँ जयपुर रेडियो।
2: तुमने दी आवाज, हो जाए अब तो आगाज, जयपुर रेडियो आपकी पहचान।
3: आवाज की पहचान, जयपुर रेडियो मेरी जान।
4: जयपुर रेडियो अपनार आवाज अपनार परिचय, सुनते थाकुन बंधुगण। जयपुर रेडियो
3: आपकी आवाज का जादू, कैसे रहे खुद पर काबू। जयपुर रेडियो आपकी पहचान।
5: और अब आ गए हैं इस मंच के मेल सिंगर हमेशा की तरह। मैं आवाज हूं तो तू है गीत मेरा, मैं आप जानते हैं पहचानते हैं उन सिंगर को जिनका नाम है अनुराग सिन्हा। नई मुंबई से हमारे साथ इस मंच पर हमेशा रहते हैं। आपके

सुपरस्टार राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर पर फिल्माया गया ये सुरीला गीत आप तक पहुंचा रहे थे अनुराग मुंबई से। आपकी आवाज आपकी पहचान का ये प्रोग्राम जिसमें आप आज सुन रहे हैं मैं आवाज हूं तो तू है गीत मेरा का ये खास प्रोग्राम हमारे इस मंच के मेल सिंगर अनुराग की आवाज में। आइए अब सुनते हैं अनुराग से ही अगला सॉन्ग।

भीगे आज इस मौसम में गा रहे थे अनुराग। और अब बात कर रहे हैं हम प्यार करने वाले क्या करते हैं, आइए सुन लेते हैं।

अनुराग की सुरीली आवाज आप सुन रहे हैं इस मंच से। मैं आवाज हूँ तो तू है गीत मेरा में आज लेके आए हैं अपने गीत अनुराग मुंबई महाराष्ट्र से। आइए सुनते हैं सड़क फिल्म का ये गीत।

झूमे गाए। आप सुन रहे हैं जयपुर रेडियो, आपकी आवाज आपकी पहचान। देखिए जानी मस्तानी पहचानी और थोड़ी सी दीवानी तनु का प्यार भरा नमस्कार। आप सब कैसे हैं? जयपुर रेडियो में आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, मुसाफिर, शायरी और जिंदगी इन तीनों का ही एक दिलचस्प किरदार है। जब हम इस दुनिया में जन्म लेते हैं तो हम सबका सफर शुरू हो जाता है। हमारा जीवन अपने आप में एक सफर ही तो है और हम सब इस सफर के मुसाफिर, जहाँ सबकी अपनी अपनी मंजिलें हैं और अपने अपने रास्ते। मंजिल तक पहुँचने की आरजू किस तरह तमाम जद्दोजहद के बावजूद एक सुकून का एहसास करा जाती है, ये बात भला किसने ना महसूस की होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि आज मैं इतनी सूफियाना बातें क्यों कर रही हूँ। तो जनाब, आज के हमारे कार्यक्रम का शीर्षक ही कुछ ऐसा है, मुसाफिर हूँ यारो। गीतों के मेरे पिटारे में से आज कुछ ऐसे गीतों को प्रस्तुत करूंगी जो जीवन के फलसफे तो कहीं हंसी ठिठोली और मजाक मस्ती को चित्रित करेंगे। वैसे आज जो गीत मैं आपके सामने पेश करने जा रही हूँ वो यातायात के साधनों पर चित्रित किए गए हैं, यानी कि बस, कार, रेलगाड़ी इत्यादि पर। तो चलिए ज्यादा समय नहीं लेते हैं और कार्यक्रम का आगाज करते हैं फिल्म मेरे हमसफर के एक बेहद ही खूबसूरत गीत किसी राह पर किसी मोड़ पर। प्रस्तुत करने आ रहे हैं अपनी सुमधुर आवाज में केतन जी और डॉली जी।

बेहद खूबसूरत प्रस्तुति। ट्रक के सफर के बाद आइए लुफ्त उठाते हैं तांगे का। 1966 में प्रदर्शित फिल्म सावन की घटा का वो गीत जिसके गीतकार हैं SH बिहारी जी और संगीत के जादूगर OP नय्यर साहब इस गीत के संगीतकार हैं। ये गीत हमारे लिए यहाँ प्रस्तुत करने आ रही हैं तृप्ति सावन और उनका साथ दे रहे हैं मंगेश जी। आइए सुनते हैं हौले हौले साजिरा।

0: बेहद कर्णप्रिय प्रस्तुति आपकी नजर कार्यक्रम का अगला गीत जो कि है रिक्शा के ऊपर और फिल्माया गया है रुपहले पर्दे के मशहूर हास्य अभिनेता महमूद जी पर। फिल्म का नाम है कुवारा बाग। वैसे दोस्तों क्या आपको पता है कि फिल्म में महमूद साहब के पोलियो ग्रसित पुत्र का किरदार किसने निभाया? नहीं पता? तो चलिए मैं बता देती हूँ, महमूद जी के स्वयं के पोलियो ग्रसित बेटे ने इस किरदार को निभाया था। दोस्तों एक समय ऐसा भी आया था जब बड़े सितारे महमूद जी के साथ काम करने से कतराने लगे थे, इसीलिए महमूद जी ने उस समय के लगभग 25 मशहूर अभिनेता अभिनेत्रियों को कुवारा बाप ने गेस्ट अपेयरेंस कराया था। आइए सुनते हैं थोड़ा सा कम सुना लेकिन बेहद खूबसूरत गीत अनूप जी की आवाज में, मैं हूँ घोड़ा ये है गाड़ी।
1: हुरिया, हुरिया, हुरिया।

वाह क्या बात है, 60 के दशक से ले चलती हूँ आपको 90 के दशक में। 90 के दशक में आपको शायद याद हो एक हास्य फिल्म आई थी, नाम है अंदाज अपना अपना। इसी फिल्म का एक मस्ती भरा गीत जो कि फिल्माया गया है तांगे के ऊपर। कुछ याद आया? नहीं आया तो मैं याद दिलाती हूँ। गीत के बोल है एलो जी सनम। आमंत्रित कर रही हूँ विद्या विकास और भौमिक जी को, स्वागत है।

खूबसूरत गायकी। टांगे की सवारी के बाद चलिए आपको दुनिया की सैर कराते हैं लोपथ गामिनी से। नहीं समझे? मैं बात कर रही हूँ रेलगाड़ी की। वैसे ये जो अगला गीत मैं आपकी नजर करने जा रही हूँ, उस गीत में वाद्य यंत्रों का उपयोग बहुत कम हुआ है। कारण तो हुआ यूं जनाब कि डेट्स बहुत मुश्किल से मिल रही थी, और जब डेट्स मिली तब संगीतकारों ने हड़ताल कर रखी थी। निर्माता निर्देशक पहुंचे संगीत के जादूगर आर डी बर्मन साहब के पास। आर डी बर्मन साहब कहां मानने वाले थे, उन्होंने सिर्फ 3 वाद्य यंत्रों के साथ विभिन्न चीजों का उपयोग किया, जैसे कि रेत का कागज, डब्बे और ना जाने क्या क्या, और इस तरह उत्पत्ति हुई एक खूबसूरत और मशहूर गीत हम दोनों दो प्रेमी। आइए यही गीत सुनाती हूँ मनीष राजे और गिरिजा जी की खूबसूरत आवाजों में। अजनबी फिल्म के लिए राज

बेहद मधुर प्रस्तुति। दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है, चले तो कट ही जाता है सफर, आहिस्ता आहिस्ता। हम उस तक पहुंच तो जाते हैं मगर आहिस्ता आहिस्ता। यूं ही कट जाता है सफर जनाब, गर साथ चलते रहे आहिस्ता आहिस्ता। अगला गीत कुछ ऐसे ही उद्गारों को दर्शाते हुए, जो कि 90 के दशक की चर्चित फिल्म हम है राही प्यार से लिया गया है। गीत के बोल है, यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से। आमंत्रित कर रही हूं बिमल जी और मनीषा को, स्वागत है आपका।

बेहद सुमधुर प्रस्तुति। दोस्तों, जयपुर रेडियो सुन रहे हैं आप और मैं हूँ तनुजा मुंद्रा आपके साथ मुंबई से। आज के कार्यक्रम को लेकर आई हूँ जिसका शीर्षक है मुसाफिर हूँ यारो। रेलगाड़ी का लुत्फ उठाने के बाद चलिए आपको ले चलती हूँ पानी के जहाज पर, जहाँ युगल प्रेमी अटखेलियां कर रहे हैं। फिल्म का नाम है नाइट इन लंदन और गीत के बोल बाहोशो हवास में। और अपनी गायकी का जादू बिखेरने के लिए बुलाने जा रही हूँ प्रशांत जी को।

और उतनी ही मधुरता से गाया आपने। दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है, बहुत कुछ सिखाया जिंदगी के सफर ने अनजाने में, बहुत कुछ सिखाया जिंदगी के सफर ने अनजाने में, वो किताबों में दर्ज था ही नहीं जो पढ़ाया सबक जमाने ने। जिंदगी का यही सबक सीखने के लिए नायक और नायिका अपने घर को छोड़कर कहीं दूर प्यार का एक घरौंदा बनाने के लिए निकल पड़े हैं, और वो भी ट्रक में बैठकर। कार्यक्रम की अगली पायदान का बेहद खूबसूरत गीत फिल्म दिल से है, जिसके बोल हैं हमने घर छोड़ा है। पेश करने आ रहे हैं डॉक्टर गिरीश, और उनका साथ दे रही हैं मऊ।

बेहद मधुर प्रस्तुति आप दोनों की। दोस्तों, आज के कार्यक्रम के गुलदस्ते का अंतिम फूल या फिर कहें अंतिम कवाली आपकी नजर जो कि ली गई है बी आर चोपड़ा जी की बेहद महत्वाकांक्षी फिल्म द बर्निंग ट्रेन से, जो कि हिंदी रिमेक है जापानी फिल्म बुलेट ट्रेन का। 1980 में प्रदर्शित ये फिल्म पहले औसत दर्जे की बताई जाती थी और आश्चर्य की बात यह है कि आज द बर्निंग ट्रेन को एक क्लासिक फिल्म के रूप में जाना जाता है। पल दो पल का साथ हमारा एक जीवंत कव्वाली है और इसका सार है कि किसी के भी साथ हमारे जुड़ाव की अवधि अप्रत्याशित होती है, इसलिए जीवन के हर पल को जी भर के जी लेना चाहिए जनाब। चूंकि ये एक कव्वाली है इसलिए इसमें बहुत सारे गायक और गायिकाओं का होना लाजमी है। आइए सुनते हैं ये ही खूबसूरत कव्वाली गायत्री जगन्नाथ, एमडी त्यागी, वीसी किशोर, विद्या विकास, कविता और मेरी यानी तनुजा मुंद्रा की आवाजों में।

0: समय ना किसी के लिए रुकता है और ना किसी के लिए रुकेगा। देखिए ना, ये मुई सुइयां भी टिक टिक करके इशारा कर रही हैं समय की समाप्ति का। जिंदगी के सफर में हिंदी वाला सफर करके जिंदगी का लुफ्त उठाते रहिए दोस्तों, वरना अंग्रेजी वाला सफर तो लगा ही रहता है। अब आज्ञा दीजिए अपनी सखी तनुजा मुंदड़ा को। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और यूं ही गुनगुनाते रहिए। और हाँ, सुनना ना भूलिएगा जयपुर रेडियो, क्योंकि यही तो है आपकी आवाज, आपकी पहचान। नमस्कार।
1: तुमने दी आवाज, हो जाए अब तो आगाज। जयपुर रेडियो आपकी पहचान,
2: आवाज की पहचान। जयपुर रेडियो मेरी जान।
1: तुमने दी आवाज, हो जाए अब तो आगाज। जयपुर रेडियो आपकी पहचान,
2: आवाज की
1: तुमने दी आवाज, हो जाए अब तो आगाज। जयपुर रेडियो आपकी पहचान,
2: आवाज की पहचान। जयपुर रेडियो मेरी जान।
1: तुमने दी आवाज, हो जाए अब तो आगाज। जयपुर रेडियो आपकी पहचान,
2: आवाज की पहचान। जयपुर रेडियो मेरी जान।
1: तुमने दी आवाज, हो जाए अब तो आगाज। जयपुर रेडियो आपकी पहचान,
2: आवाज की पहचान। जयपुर रेडियो मेरी जान।
1: तुमने दी आवाज, हो जाए अब तो आगाज। जयपुर रेडियो आपकी पहचान,
2: आवाज की पहचान। जयपुर रेडियो मेरी जान।
1: तुमने दी आवाज, हो जाए अब तो आगाज। जयपुर रेडियो आपकी पहचान,
2: आवाज की पहचान। जयपुर रेडियो मेरी जान।
1: तुमने दी आवाज, हो जाए अब तो आगाज। जयपुर रेडियो आपकी पहचान,
2: आवाज की पहचान। जयपुर रेडियो मेरी जान।
1: तुमने दी आवाज, हो जाए अब तो आगाज। जयपुर रेडियो आपकी पहचान,
2: आवाज की पहचान। जयपुर रेडियो मेरी जान।
1: तुमने दी आवाज, हो जाए अब तो आगाज। जयपुर रेडियो आपकी पहचान,
2: आवाज की
3: नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप? मैं आरजे भूमिका और मेरे संग सुपर सिंगर अर्चु रानू, और हम लेकर आए हैं आपके लिए गीत सुहाने और गीतों में छुपे अफसाने। लिसनर्स, आपसे मिलकर ना जाने क्यों और भी याद आता है। ये कह रहे हैं उदय कुमार रजक इस गीत में। आइए सुनते हैं उदय कुमार और अर्जुन रानू को।

पुरानी यादों का गीत अर्जुन रानू के संग पहुंचाया उदय कुमार रजक ने, और अब एक और बेहतरीन सिंगर दीपक कह रहे हैं, जाने कब से दिल में है तू, जब से मैं हूँ तब से है तू। ये सुरीला गीत फिल्म मुझसे दोस्ती करोगे को आप तक पहुंचा रहे हैं अर्जुन रानू के संग दीपक।

मैं आवाज हूँ तो तू है गीत मेरा के इस लेटेस्ट एपिसोड को प्रस्तुत कर रही हूँ मैं आरजे भूमिका, जयपुर रेडियो की सुरीली सुपर सिंगर अच्छू रानू के सुरीले गीतों को लेकर। और दिन महीने साल गुजर ही जाएंगे और गुजरते जाएंगे, और जयपुर रेडियो आप श्रोताओं के प्यार और सुरीले स्नेह के साथ यूं ही गीतों के अफसानों के साथ साथ गाते जाएंगे। अगले गीत में बबलू आर्य आए हैं सुपर सिंगर अच्छू रानू का साथ देने।

वक्त की रफ्तार को कौन थाम पाया है? जिसने भी कहा है इसी वाक्य को दोहराया है, लेकिन कभी थोड़ी देर के लिए रुक भी जाता है आके ये वक्त जयपुर रेडियो के इस मंच पर, जिसका नाम है मैं आवाज हूँ तो तू है गीत मेरा। वीजी विनोद गुप्ता आ गए हैं अर्जुन रानू का साथ देने इस सुरीले गीत में, तेरी बाहों में आके।

आपने सुना वीजी विनोद गुप्ता और अर्जुन रानू को। अगले गीत में एक बार फिर वीजी विनोद गुप्ता गीतों का बंजारा सुपर सिंगर अर्जुन रानू के संग। आइए सुनते हैं गली गली में फिरता है तू क्यों बन के बंजारा, वीजी विनोद गुप्ता और अर्जुन रानू के संग। प्रोग्राम मैं आवाज हूँ तो तू है गीत मेरा में।

0: क्यों बन के बन जा रहा, जयपुर रेडियो के दिल में बस जा, सुरीले सिंगर वीजी विनोद गुप्ता को सुरीला निमंत्रण जयपुर रेडियो की ओर से। आपके दो शानदार गीतों के लिए बधाई और शुक्रिया। मैं आवाज हूँ तो तू है गीत मेरा का ये आज का एपिसोड, और इसमें आज अपनी सिंगिंग को आप तक पहुँचाने वाले सिंगर्स का अर्जु रानू के संग सुरीला सफर आपको कैसा लगा। जिन सिंगर्स ने इस सुरीले सफर में अर्जु रानू का साथ दिया उनके नाम है उदय कुमार रजक, दीपक, बबलू आर्य और वीजी विनोद गुप्ता। आप अपने पसंदीदा सिंगर के लिए अपने फीडबैक हमें सेंड कर सकते हैं। और अब
1: अपना शहर अपनी शान, जयपुर रेडियो मेरी जान।
2: अरे ये लाहौर लाखों और इस कमबख्त को क्या हो गया, ये बजता क्यों नहीं है?
3: क्या हुआ चचा, ये रेडियो पे इतना जुल्म क्यों ढा रहे हैं आज?
2: अरे जुल्म किस बात का बेटा, अब आधे घंटे से लगे हुए हैं, अब हमारा पसंदीदा प्रोग्राम आने वाले थे, हमारे गीत आने वाले थे, लेकिन ये कमबख्त है कि बजने का नाम ही नहीं लेता।
3: तो मोबाइल पे ही सुन लीजिए ना रेडियो।
2: अरे बेटा कौन वो लीड लगाए और फिर वो दो फुलटरू कान में डाल के वो लंबी सी रस्सी लेकर यहाँ वहाँ घूम।
3: अरे नहीं चाचा, अब उस रस्सी की जरूरत नहीं पड़ेगी।
2: अच्छा,
3: अब आ गया है एक नया ऐप जिसपे आप इंटरनेट के सहारे रेडियो सुन सकते हैं कहीं भी कभी भी।
2: अच्छा कौन सा ऐप है वो?
3: हाँ चाचा, जयपुर रेडियो।
2: जयपुर रेडियो? पर बेटा हम तो लखनऊ में रहते हैं और जयपुर।
3: चचा देश के नहीं बल्कि दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर आप अपने पसंद के गाने सुन सकते हैं।
2: अरे वाह, ये लो बेटा फोन, और क्या नाम बताया उस ऐप का?
3: लाइए मुझे दीजिए आपका फोन, मैं अभी डाउनलोड कर देती हूँ जयपुर रेडियो।
4: तुमने दी आवाज, हो जाए अब तो आगाज, जयपुर रेडियो आपकी पहचान।
1: आवाज की पहचान, जयपुर रेडियो मेरी जान।
5: जयपुर रेडियो अपनार आवाज अपनार परिचय, सुनते थाकुन बंधुगण जयपुर रेडियो।
1: आपकी आवाज का जादू, कैसे रहे खुद पर काबू, जयपुर रेडियो आपकी पहचान।
6: और अब आ गए हैं इस मंच के मेल सिंगर हमेशा की तरह। मैं आवाज हूं तो तू है गीत मेरा मैं आप जानते हैं पहचानते हैं उन सिंगर को जिनका नाम है अनुराग सिन्हा। नई मुंबई से हमारे साथ इस मंच पर हमेशा रहते हैं। आप

भीगे आज इस मौसम में गा रहे थे अनुराग। और अब बात कर रहे हैं हम प्यार करने वाले क्या करते हैं, आइए सुन लेते हैं।

अनुराग की सुरीली आवाज आप सुन रहे हैं इस मंच से। मैं आवाज हूं तो तू है गीत मेरा में आज लेके आए हैं अपने गीत अनुराग मुंबई महाराष्ट्र से। आइए सुनते हैं सड़क फिल्म का ये गीत।

तुझे पाकर जमाने की खुशी पाई है, तुझे अपना बनाने की कसम खाई है। और ये कह रहे थे इस मंच के मेल सिंगर अनुराग, जिनका नाम है। और अब फिका ये गीत अनुराग की आवाज में।

0: वाह, मैं शायर तो नहीं। आपने सुना अनुराग सिन्हा को, मैं आवाज हूं तो तू है गीत मेरा, इस प्रोग्राम के मेल सिंगर गा रहे थे अपनी आवाज में ये सारे गीत। कैसा लगा आपको ये प्रोग्राम? हमें अपने फीडबैक जरूर प्रेषित कीजिएगा।
1: नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप? मैं आरजे भूमिका और मेरे संग सुपर सिंगर अर्चू रानू, और हम लेकर आए हैं आपके लिए गीत सुहाने और गीतों में छुपे अफसाने। लिसनर्स, आपसे मिलकर ना जाने क्यों और भी याद आता है। ये कह रहे हैं उदय कुमार रजक इस गीत में। आइए सुनते हैं उदय कुमार और अर्जुन रानू को।

पुरानी यादों का गीत अर्जुन रानू के संग पहुंचाया उदय कुमार रजक ने। और अब एक और बेहतरीन सिंगर दीपक कह रहे हैं, जाने कब से दिल में है तू, जब से मैं हूँ तब से है तू। ये सुरीला गीत फिल्म मुझसे दोस्ती करोगे को आप तक पहुंचा रहे हैं अर्जुन रानू के संग दीपक।

मैं आवाज हूँ तो तू है गीत मेरा के इस लेटेस्ट एपिसोड को प्रस्तुत कर रही हूँ मैं आरजे भूमिका, जयपुर रेडियो की सुरीली सुपर सिंगर अच्छू रानू के सुरीले गीतों को लेकर। और दिन महीने साल गुजर ही जाएंगे और गुजरते जाएंगे, और जयपुर रेडियो आप श्रोताओं के प्यार और सुरीले स्नेह के साथ यूं ही गीतों के अफसानों के साथ साथ गाते जाएंगे। अगले गीत में बबलू आर्य आए हैं सुपर सिंगर अर्चू रानू का साथ देने।

की रफ्तार को कौन थाम पाया है? जिसने भी कहा है इसी वाक्य को दोहराया है, लेकिन कभी थोड़ी देर के लिए रुक भी जाता है आके ये वक्त जयपुर रेडियो के इस मंच पर, जिसका नाम है मैं आवाज हूँ तो तू है गीत मेरा। वीजी विनोद गुप्ता आ गए हैं अर्जुन रानू का साथ देने इस सुरीले गीत में, तेरी बाहों में आके।

आपने सुना वीजी विनोद गुप्ता और अर्जुन रानू को। अगले गीत में एक बार फिर वीजी विनोद गुप्ता गीतों का बंजारा सुपर सिंगर अर्जुन रानू के संग। आइए सुनते हैं गली गली में फिरता है तू क्यों बन के बंजारा, वीजी विनोद गुप्ता और अर्जुन रानू के संग। प्रोग्राम मैं आवाज हूँ तो तू है गीत मेरा में।

0: गली गली में फिरता है तू क्यों बनके बंजारा, जयपुर रेडियो के दिल में बस जा। सुरीले सिंगर वीजी विनोद गुप्ता को सुरीला निमंत्रण जयपुर रेडियो की ओर से। आपके दो शानदार गीतों के लिए बधाई और शुक्रिया। मैं आवाज हूँ तो तू है गीत मेरा का ये आज का एपिसोड, और इसमें आज अपने सिंगिंग को आप तक पहुँचाने वाले सिंगर्स का अर्जू रानू के संग सुरीला सफर आपको कैसा लगा। जिन सिंगर्स ने इस सुरीले सफर में अर्जू रानू का साथ दिया उनके नाम है उदय कुमार रजक, दीपक, बबलू आर्य और वीजी विनोद गुप्ता। आप अपने पसंदीदा सिंगर के लिए अपने फीडबैक हमें सेंड कर सकते हैं। और अब
1: अपना शहर अपनी शान जयपुर रेडियो मेरी जान।
2: अरे ये लाहौर लाखों और इस कमबख्त को क्या हो गया, ये बजता क्यों नहीं है?
3: क्या हुआ चचा, ये रेडियो पे इतना जुल्म क्यों ढा रहे हैं आज?
2: अरे जुल्म किस बात का बेटा, अब आधे घंटे से लगे हुए हैं, अब हमारा पसंदीदा प्रोग्राम आने वाले थे, हमारे गीत आने वाले थे, लेकिन ये कमबख्त है कि बजने का नाम ही नहीं लेता।
3: तो मोबाइल पे ही सुन लीजिए ना रेडियो।
2: अरे बेटा कौन वो लीड लगाए और फिर वो दो फुलटू कान में डाल के वो लंबी सी रस्सी लेकर यहाँ आ गई।
3: अरे नहीं चाचा, अब उस रस्सी की जरूरत नहीं पड़ेगी।
2: अच्छा,
3: अब आ गया है एक नया ऐप जिसपे आप इंटरनेट के सहारे रेडियो सुन सकते हैं कहीं भी कभी भी।
2: अच्छा कौन सा ऐप है वो?
3: हाँ चाचा, जयपुर रेडियो।
2: जयपुर रेडियो? पर बेटा हम तो लखनऊ में रहते हैं और जयपुर।
3: चचा देश के नहीं बल्कि दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर आप अपने पसंद के गाने सुन सकते हैं।
2: अरे वाह, ये लो बेटा फोन, और क्या नाम बताया उस ऐप का?
3: लाइए मुझे दीजिए आपका फोन, मैं अभी डाउनलोड कर देती हूँ जयपुर रेडियो।
4: तुमने दी आवाज, हो जाए अब तो आगाज, जयपुर रेडियो आपकी पहचान।
1: आवाज की पहचान जयपुर रेडियो मेरी जान।
5: जयपुर रेडियो अपनार आवाज अपनार परिचय, सुनते थाकुन बंधुगण जयपुर रेडियो।
1: आपकी आवाज का जादू, कैसे रहे खुद पर काबू, जयपुर रेडियो आपकी पहचान।
6: और अब आ गए हैं इस मंच के मेल सिंगर हमेशा की तरह। मैं आवाज हूं तो तू है गीत मेरा में आप जानते हैं पहचानते हैं उन सिंगर को जिनका नाम है अनुराग सिन्हा। नई मुंबई से हमारे साथ इस मंच पर हमेशा रहते हैं। आप

सुपरस्टार राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर पर फिल्माया गया ये सुरीला गीत आप तक पहुंचा रहे थे अनुराग मुंबई से। आपकी आवाज आपकी पहचान का ये प्रोग्राम जिसमें आप आज सुन रहे हैं मैं आवाज हूं तो तू है गीत मेरा का ये खास प्रोग्राम हमारे इस मंच के मेल सिंगर अनुराग की आवाज में। आइए अब सुनते हैं अनुराग से ही अगला सॉन्ग।

भीगे आज इस मौसम में गा रहे थे अनुराग, और अब बात कर रहे हैं हम प्यार करने वाले क्या करते हैं, आइए सुन लेते हैं।

अनुराग की सुरीली आवाज आप सुन रहे हैं इस मंच से। मैं आवाज हूँ तो तू है गीत मेरा में आज लेके आए हैं अपने गीत अनुराग मुंबई महाराष्ट्र से। आइए सुनते हैं सड़क फिल्म का ये गीत।

तुझे पाकर जमाने की खुशी पाई है, तुझे अपना बनाने की कसम खाई है। और ये कह रहे थे इस मंच के मेल सिंगर अनुराग, जिनका नाम है। और अब फिका ये गीत अनुराग की आवाज में।

0: वाह, मैं शायर तो नहीं। आपने सुना अनुराग सिन्हा को, मैं आवाज हूं तो तू है गीत मेरा, इस प्रोग्राम के मेल सिंगर गा रहे थे अपनी आवाज में ये सारे गीत। कैसा लगा आपको ये प्रोग्राम, हमें अपने फीडबैक जरूर प्रेषित कीजिएगा।
1: नमस्कार दोस्तों, सियाटल से एक बार फिर मैं समृद्धि आप सभी का स्वागत करती हूं अपने शो में, जिसका नाम है गीतों के सवाल गीतों के जवाब। और आज का शो स्पेशल है क्योंकि आज हमारा 10th यानी कि 10वां एपिसोड है। तो आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं हमारे 10th एपिसोड के लिए। बात को आगे बढ़ाते हुए आज के शो के बारे में आपको कुछ बता दूं। आज के शो का हमारा सेंट्रल पॉइंट रहेगा कुदरत के करिश्मे, यानी कि जो हम नजारे देखते हैं उनको देखकर हमारे मन में जो तरह तरह के सवाल उठते हैं, तो आज हमने अपने गीतों के जरिए वैसे सवालों को कैप्चर करने की कोशिश की है। तो हमारे एपिसोड का नाम रखते हैं कुछ सवाल कुदरत से। कहते हैं सफर की खूबसूरती सिर्फ मंजिल में नहीं होती, रास्ते में भी होती है। कभी कोई पहाड़ रास्ता रोककर कहता है जरा ठहरो, कभी कोई हवा बिना कुछ कहे हमारे साथ चल पड़ती है, कभी बारिश शहर को इतना खूबसूरत बना देती है कि मन करता है रास्ता थोड़ा और लंबा हो जाए, और कभी कभी हम किसी खूबसूरत जगह को देखकर बस इतना ही कह पाते हैं वाह। तो आज के गीतों के सवाल और गीतों के जवाब में हम कोई सवाल हल करने नहीं आए हैं, आज हम बस निकल पड़े हैं कुदरत के नाम के एक सफर पर। तो आइए पहले पड़ाव पर। कुछ जगहें ऐसी होती हैं जिन्हें देखकर कैमरा निकालने का मन करता है, और कुछ जगहें ऐसी होती हैं जिन्हें देखकर कैमरा वापस रख देने का, क्योंकि लगता है अरे ये जगह इतनी खूबसूरत है ये तस्वीर में कहां ही आ पाएगी, है ना। पहाड़, खुला आसमान, हरियाली और उनके बीच अचानक महसूस होता है कि हम कहां आ गए हैं। आज के सफर की शुरुआत ऐसे ही एक दृश्य से करते हैं। ये हसी वादियां, ये खुला आसमान। 1992 की फिल्म रोजा का यह गीत एसपी बाला सुब्रमण्यम और केएस चित्रा ने गाया, संगीत एआर रहमान और बोल पीके मिश्रा के थे। और इस गीत के साथ एक खूबसूरत संगीत स्मृति भी जुड़ी हुई है कि यह मूवी रोजा एआर रहमान का फिल्म कंपोजर के रूप में पहला डेब्यू एल्बम था, और इसी साउंड ट्रैक के लिए उन्हें नेशनल अवार्ड भी मिला था। एक डेब्यूटेंट के लिए उस समय यह ऐतिहासिक उपलब्धि थी। तो चलिए, किसी नक्शे की जरूरत नहीं, बस आंखें बंद कीजिए और कल्पना कीजिए आपके सामने एक खुला आसमान है। मेरे साथ मेरा साथ देते हुए श्री पंकज कुमार चतुर्वेदी।

0: कभी आपने ठहर कर आसमान को देखा है? वही आसमान जो सुबह सूरज की सुनहरी किरणों से नहा जाता है, शाम को लालिमा ओढ़ लेता है और रात में असंख्य तारों से सज जाता है। कभी किसी फूल को देखकर सोचा है, इन नाजुक पंखुड़ियों में इतने रंग किसने भरे होंगे? पक्षियों को उड़ने के लिए पंख किसने दिए? नदियों को बहने की लय, हवाओं को संगीत और इंसान के हृदय को भावनाएं किसने दी? हम चित्र बनाते हैं, कैनवास पर रंग भरते हैं, किसी दृश्य को अपनी कल्पना से सुंदर बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक ऐसा चित्रकार भी है जिसने न कोई कैनवास लिया न कोई रंगों की कूची, फिर भी उसने एक ऐसा संसार रच दिया जिसकी सुंदरता के सामने हमारी सारी कलाएं छोटी पड़ जाती हैं। पहाड़ उसकी कृति हैं, नदियां उसकी रचना हैं, फूल उसकी रंगोली है और यह पूरा संसार उसकी अद्भुत चित्रकारी। कभी मन में एक प्रश्न उठता है, यह कौन चित्रकार है? वह कौन है जिसने प्रकृति के इस विशाल कैनवास पर इतने अनगिनत रंग बिखेर दिए? आइए आज हम उसी अदृश्य कलाकार की कला को महसूस करें, उसकी बनाई इस खूबसूरत दुनिया को नमन करें और उसी भाव के साथ प्रस्तुत है आपके सामने गीत ये कौन चित्रकार है। मैं पंकज कुमार चतुर्वेदी रांची से आपके लिए ये गीत प्रस्तुत करता हूँ। धन्यवाद।
1: और यह गीत 1967 की फिल्म बूंद जो बन गई मोती से लिया गया है, जो ओरिजिनली मुकेश साहब की आवाज में है। यह गीत, इस गीत के गीतकार हैं भारत व्यास और संगीतकार सतीश भाटिया। आइए सुनते हैं।

0: कभी कभी जिंदगी की भागदौड़ से दूर जाने का मन करता है, जहां न शहर का शोर हो न कोई जल्दबाजी हो, बस चारों ओर हो ऊंचे ऊंचे पर्वत, खुला आसमान और प्रकृति की खामोशियां। पर्वतों की अपनी एक भाषा होती है, जो कुछ कहती नहीं फिर भी बहुत कुछ कह जाती है। उनकी ऊंचाइयों में सपने हैं, उनकी गहराइयों में रहस्य हैं, और उनकी वादियों में छुपी है एक अजीब सी सुकून भरी दुनिया। आइए आज शब्दों और सुरों के सहारे उसी खूबसूरत दुनिया की ओर चलें, जहां है पर्वतों के दायरे और प्रकृति के नजारे। ये गीत ये पर्वतों के दायरे, ये शाम का धुआं, फिल्म वासना से, जिसे मोहम्मद रफी साहब ने अपनी मधुर आवाज में गाया था और जिसके संगीतकार हैं महान संगीतकार चित्रगुप्त जी।
1: और मोहम्मद रफी साहब का साथ दिया था लता मंगेशकर जी ने इस गाने को डुएट बनाने में, और अब मैं अपने पिताजी का साथ दे रही हूँ इस गाने में।

लेकिन उसका असर पूरा दिखाई देता है। पेड़ों की पत्तियां हिलने लगती हैं, चेहरे पर बाल उड़ने लगते हैं और अचानक मन का मौसम भी बदल जाता है। 1951 की फिल्म नौजवान का यह गीत लता मंगेशकर की आवाज में है, संगीत एसडी बर्मन का, गीत साहिर लुधियानवी के। और एक बहुत दिलचस्प बात, बाद में मशहूर संगीतकार बने रवि ने अपना करियर की शुरुआत भी इसी फिल्म के कोरस सिंगर के रूप में किया था, यानी जिस फिल्म में हमें लता जी की आवाज में ठंडी हवाएं सुनाई देती है, उसी फिल्म से एक और बड़े संगीतकार की म्यूजिकल जर्नी भी शुरू हुई थी। यह गीत मुख्यतः प्रकृति और मौसम की ताजगी का एहसास देती है और इसकी धुन को राग पहाड़ी से जोड़ा जा सकता है, जो प्रकृति और लोक संगीत के रंगों के लिए बहुत ही स्वाभाविक चुनाव लगता है। तो जरा महसूस कीजिए, पहाड़ पीछे छूट रहे हैं, हवाएं हमारे साथ हैं और शायद अब मौसम कुछ कहने वाला है।

और मौसम ने आखिर कह ही दिया, बारिश आने वाली है। पहले हवा चली फिर बादल आए और अब सड़क पर पहली बूंद गिरी। और बारिश का भी क्या कहना, कुछ लोग बारिश से बचते हैं और कुछ लोग बारिश में निकल पड़ते हैं। हम तो आज भाई सफर पर हैं, तो फिर हम बारिश से क्यों बचें? हमारा अगला गीत, रिमझिमे गिरे सावन। अब हमारे सफर का सबसे भीगा हुआ पड़ाव, 1979 की बसु चटर्जी की फिल्म मंजिल, संगीत आरडी बर्मन और गीत योगेश के। इस गीत के दो प्रसिद्ध वर्जन हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में, दोनों ने अलग अलग गाया है। लेकिन इसके साथ जुड़ी सबसे मजेदार बात गीत की रिकॉर्डिंग नहीं, उसकी शूटिंग है। लता का जो वर्जन है, जो मैं आज आपको सुनाने वाली हूँ, को मुंबई की असली बारिश में शूट किया गया था। अमिताभ बच्चन और मौसमी चटर्जी को बारिश में चलते हुए मुंबई के लैंडमार्क्स के बीच में फिल्म किया गया था। मरीन ड्राइव और शहर के दूसरे आइकॉनिक लोकेशंस भी इस दृश्य का हिस्सा हैं। यानी जो बारिश हमें स्क्रीन पर इतनी एफर्टलेस लगती है, वह सचमुच की बारिश थी। और शायद इसी वजह से उस गीत में बारिश सिर्फ दिखाई नहीं देती, महसूस भी होती है। तो चलिए छाता बंद कर देते हैं, आज भीगने का मन है।

0: पर्वतों के बीच जब सफर शुरू होता है तो मंजिल से ज्यादा खूबसूरत हो जाती है राह। लेकिन फिर मन में एक सवाल उठता है, आखिर ये रास्ता हमें ले कहां जा रहा है, कौन सी दिशा हमारी मंजिल है और कौन सी राह हमें उन अनदेखे नजारों तक ले जाएगी जिनकी तलाश में दिल बरसों से भटकता रहा है। शायद सफर का असली आनंद मंजिल पाने में नहीं बल्कि उस अनजानी दिशा में आगे बढ़ते रहने में है। तो आइए पूछते हैं उस बटोही से, कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया। ये गीत फिल्म नदिया के पार से, जिसे हेमलता जी ने और यशपाल सिंह जी ने गाया था और जिसकी संगीत रचना की थी रविंद्र जैन साहब ने।
1: आज के एपिसोड के लिए इससे बेहतर एंडिंग शायद हो नहीं सकती, क्योंकि हमने आज कोई डेस्टिनेशन तय नहीं किया है, हमने बस चलते हुए वादियाँ देखी, पहाड़ देखे, हवा महसूस की, बारिश में भी भीगे और अब रास्ते से पूछ रहे हैं, अच्छा बताओ अब किस दिशा में चलें? तो आइए इस सफर को मंजिल पर खत्म नहीं करते, इसे अपने रास्ते पर ही छोड़ देते हैं। यह पिक्चर 1982 में रिलीज हुई थी नदिया के पार, और इस गीत और इस पूरी मूवी में जो भाषा है उसकी खासियत यह है कि वह अवधि का देसी रंग है जो कि नदिया के पार की ग्रामीण दुनिया को और अपना सा बना देती है। आइए सुनते हैं

0: करती हूँ आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। आप प्लीज हमें अपने फीडबैक्स दें, हमें और बेहतर होने का मौका दें, और अगले एपिसोड में फिर से मिलते हैं। इजाजत दें, धन्यवाद।
1: और अब उन श्रोताओं के नाम जिन्होंने अपने लाइक्स भेजे हैं इस प्रोग्राम के लिए, श्याम बिहारी शर्मा कोलकाता वेस्ट बंगाल से, मंदाकिनी शाह बड़ोदरा गुजरात से, फाल्गुनी दवे जूनागढ़ गुजरात से, सोनल पारिक जूनागढ़ गुजरात से, ज्योति भावसार भरूच गुजरात से, आशीषन गुप्ता मुंबई वेस्ट बंगाल से, अनीता दुगड़ नेपाल से, आशा जैन बेंगलोर से, हितेंद्र चतुर्वेदी जयपुर राजस्थान से, चंद्रा बोथरा जैन बीकानेर राजस्थान से, रामचंद्र गुप्ता महाराष्ट्र से।
2: अपना शहर अपनी शान, जयपुर रेडियो मेरी जान।
3: अरे ये लाहौर लाखों और इस कमबख्त को क्या हो गया, ये बजता क्यों नहीं है?
4: क्या हुआ चचा, ये रेडियो पे इतना जुल्म क्यों ढा रहे हैं आज?
3: अरे जुल्म किस बात का बेटा, अब आधे घंटे से लगे हुए हैं, अब हमारा पसंदीदा प्रोग्राम आने वाले थे, हमारे गीत आने वाले थे, लेकिन ये कमबख्त है कि बजने का नाम ही नहीं लेता।
4: तो मोबाइल पे ही सुन लीजिए ना रेडियो।
3: अरे बेटा कौन वो लीड लगाए और फिर वो दो फुलटू कान में डाल के वो लंबी सी रस्सी लेकर यहाँ वहाँ घूम।
4: अरे नहीं चाचा, अब उस रस्सी की जरूरत नहीं पड़ेगी।
3: अच्छा,
4: अब आ गया है एक नया ऐप जिसपे आप इंटरनेट के सहारे रेडियो सुन सकते हैं, कहीं भी कभी भी।
3: अच्छा कौन सा ऐप है वो?
4: हाँ चाचा, जयपुर रेडियो।
3: जयपुर रेडियो? पर बेटा हम तो लखनऊ में रहते हैं और जयपुर।
4: चचा देश के नहीं बल्कि दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर आप अपने पसंद के गाने सुन सकते हैं।
3: अरे वाह, ये लो बेटा फोन, और क्या नाम बताया उस ऐप का?
4: लाइए मुझे दीजिए आपका फोन, मैं अभी डाउनलोड कर देती हूँ जयपुर रेडियो।
5: तुमने दी आवाज, हो जाए अब तो आगाज, जयपुर रेडियो आपकी पहचान।
2: आवाज की पहचान, जयपुर रेडियो मेरी जान।
6: जयपुर रेडियो अपनार आवाज अपनार परिचय, सुनते थाकुन बंधुगण। जयपुर रेडियो
2: आपकी आवाज का जादू, कैसे रहे खुद पर काबू, जयपुर रेडियो आपकी पहचान।
1: और अब आ गए हैं इस मंच के मेल सिंगर हमेशा की तरह, मैं आवाज हूं तो तू है गीत मेरा, मैं आप जानते हैं पहचानते हैं उन सिंगर को जिनका नाम है अनुराग सिन्हा, नई मुंबई से हमारे साथ इस मंच पर हमेशा रहते हैं। आप

सुपरस्टार राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर पर फिल्माया गया ये सुरीला गीत आप तक पहुंचा रहे थे अनुराग मुंबई से। आपकी आवाज आपकी पहचान का ये प्रोग्राम जिसमें आप आज सुन रहे हैं मैं आवाज हूं तो तू है गीत मेरा का ये खास प्रोग्राम हमारे इस मंच के मेल सिंगर अनुराग की आवाज में। आइए अब सुनते हैं अनुराग से ही अगला सॉन्ग।

भीगे आज इस मौसम में गा रहे थे अनुराग। और अब बात कर रहे हैं हम प्यार करने वाले क्या करते हैं, आइए सुन लेते हैं।

अनुराग की सुरीली आवाज आप सुन रहे हैं इस मंच से। मैं आवाज हूँ तो तू है गीत मेरा में आज लेके आए हैं अपने गीत अनुराग मुंबई महाराष्ट्र से। आइए सुनते हैं सड़क फिल्म का ये गीत।

नमस्कार दोस्तों, सिएटल से एक बार फिर मैं समृद्धि आप सभी का स्वागत करती हूं अपने शो में जिसका नाम है गीतों के सवाल गीतों के जवाब। और आज का शो स्पेशल है क्योंकि आज हमारा 10th यानी कि 10वां एपिसोड है। तो आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं हमारे 10th एपिसोड के लिए। बात को आगे बढ़ाते हुए आज के शो के बारे में आपको कुछ बता दूं। आज के शो का हमारा सेंट्रल पॉइंट रहेगा कुदरत के करिश्मे, यानी कि जो हम नजारे देखते हैं उनको देखकर हमारे मन में जो तरह तरह के सवाल उठते हैं, तो आज हमने अपने गीतों के जरिए वैसे सवालों को कैप्चर करने की कोशिश की है। तो हमारे एपिसोड का नाम रखते हैं कुछ सवाल कुदरत से। कहते हैं सफर की खूबसूरती सिर्फ मंजिल में नहीं होती, रास्ते में भी होती है। कभी कोई पहाड़ रास्ता रोककर कहता है जरा ठहरो, कभी कोई हवा बिना कुछ कहे हमारे साथ चल पड़ती है, कभी बारिश शहर को इतना खूबसूरत बना देती है कि मन करता है रास्ता थोड़ा और लंबा हो जाए, और कभी कभी हम किसी खूबसूरत जगह को देखकर बस इतना ही कह पाते हैं वाह। तो आज के गीतों के सवाल और गीतों के जवाब में हम कोई सवाल हल करने नहीं आए हैं, आज हम बस निकल पड़े हैं कुदरत के नाम के एक सफर पर। तो आइए पहले पड़ाव पर। कुछ जगहें ऐसी होती हैं जिन्हें देखकर कैमरा निकालने का मन करता है, और कुछ जगहें ऐसी होती हैं जिन्हें देखकर कैमरा वापस रख देने का, क्योंकि लगता है अरे ये जगह इतनी खूबसूरत है ये तस्वीर में कहां ही आ पाएगी, है ना। पहाड़, खुला आसमान, हरियाली और उनके बीच अचानक महसूस होता है कि हम कहां आ गए हैं। आज के सफर की शुरुआत ऐसे ही एक दृश्य से करते हैं। ये हसी वादियां, ये खुला आसमान। 1992 की फिल्म रोजा का यह गीत एसपी बाला सुब्रमण्यम और केएस चित्रा ने गाया, संगीत एआर रहमान और बोल पीके मिश्रा के थे। और इस गीत के साथ एक खूबसूरत संगीत स्मृति भी जुड़ी हुई है कि यह मूवी रोजा एआर रहमान का फिल्म कंपोजर के रूप में पहला डेब्यू एल्बम था, और इसी साउंडट्रैक के लिए उन्हें नेशनल अवार्ड भी मिला था। एक डेब्यूटेंट के लिए उस समय यह ऐतिहासिक उपलब्धि थी। तो चलिए, किसी नक्शे की जरूरत नहीं, बस आंखें बंद कीजिए और कल्पना कीजिए आपके सामने एक खुला आसमान है। मेरे साथ मेरा साथ देते हुए श्री पंकज कुमार चतुर्वेदी।

0: कभी आपने ठहर कर आसमान को देखा है? वही आसमान जो सुबह सूरज की सुनहरी किरणों से नहा जाता है, शाम को लालिमा ओढ़ लेता है और रात में असंख्य तारों से सज जाता है। कभी किसी फूल को देखकर सोचा है, इन नाजुक पंखुड़ियों में इतने रंग किसने भरे होंगे? पक्षियों को उड़ने के लिए पंख किसने दिए? नदियों को बहने की लय, हवाओं को संगीत और इंसान के हृदय को भावनाएं किसने दी? हम चित्र बनाते हैं, कैनवास पर रंग भरते हैं, किसी दृश्य को अपनी कल्पना से सुंदर बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक ऐसा चित्रकार भी है जिसने न कोई कैनवास लिया न कोई रंगों की कूची, फिर भी उसने एक ऐसा संसार रच दिया जिसकी सुंदरता के सामने हमारी सारी कलाएं छोटी पड़ जाती हैं। पहाड़ उसकी कृति है, नदियां उसकी रचना है, फूल उसकी रंगोली है और यह पूरा संसार उसकी अद्भुत चित्रकारी। तभी मन में एक प्रश्न उठता है, यह कौन चित्रकार है? वह कौन है जिसने प्रकृति के इस विशाल कैनवास पर इतने अनगिनत रंग बिखेर दिए? आइए आज हम उसी अदृश्य कलाकार की कला को महसूस करें, उसकी बनाई इस खूबसूरत दुनिया को नमन करें और उसी भाव के साथ प्रस्तुत है आपके सामने गीत ये कौन चित्रकार है। मैं पंकज कुमार चतुर्वेदी रांची से आपके लिए ये गीत प्रस्तुत करता हूँ। धन्यवाद।
1: और यह गीत 1967 की फिल्म बूंद जो बन गई मोती से लिया गया है, जो ओरिजिनली मुकेश साहब की आवाज में है। यह गीत, इस गीत के गीतकार हैं भारत व्यास और संगीतकार सतीश भाटिया। आइए सुनते हैं।

0: कभी कभी जिंदगी की भागदौड़ से दूर जाने का मन करता है, जहां न शहर का शोर हो न कोई जल्दबाजी हो, बस चारों ओर हो ऊंचे ऊंचे पर्वत, खुला आसमान और प्रकृति की खामोशियां। पर्वतों की अपनी एक भाषा होती है, जो कुछ कहती नहीं फिर भी बहुत कुछ कह जाती है। उनकी ऊंचाइयों में सपने हैं, उनकी गहराइयों में रहस्य हैं, और उनकी वादियों में छुपी है एक अजीब सी सुकून भरी दुनिया। आइए आज शब्दों और सुरों के सहारे उसी खूबसूरत दुनिया की ओर चलें, जहां है पर्वतों के दायरे और प्रकृति के नजारे। ये गीत ये पर्वतों के दायरे, ये शाम का धुआं, फिल्म वासना से, जिसे मोहम्मद रफी साहब ने अपनी मधुर आवाज में गाया था और जिसके संगीतकार हैं महान संगीतकार चित्रगुप्त जी।
1: और मोहम्मद रफी साहब का साथ दिया था लता मंगेशकर जी ने इस गाने को डुएट बनाने में, और अब मैं अपने पिताजी का साथ दे रही हूँ इस गाने में।

लेकिन उसका असर पूरा दिखाई देता है। पेड़ों की पत्तियां हिलने लगती हैं, चेहरे पर बाल उड़ने लगते हैं और अचानक मन का मौसम भी बदल जाता है। 1951 की फिल्म नौजवान का यह गीत लता मंगेशकर की आवाज में है, संगीत एसडी बर्मन का, गीत साहिर लुधियानवी के। और एक बहुत दिलचस्प बात, बाद में मशहूर संगीतकार बने रवि ने अपना करियर की शुरुआत भी इसी फिल्म के कोरस सिंगर के रूप में किया था, यानी जिस फिल्म में हमें लता जी की आवाज में ठंडी हवाएं सुनाई देती है, उसी फिल्म से एक और बड़े संगीतकार की म्यूजिकल जर्नी भी शुरू हुई थी। यह गीत मुख्यतः प्रकृति और मौसम की ताजगी का एहसास देती है और इसकी धुन को राग पहाड़ी से जोड़ा जा सकता है, जो प्रकृति और लोक संगीत के रंगों के लिए बहुत ही स्वाभाविक चुनाव लगता है। तो जरा महसूस कीजिए, पहाड़ पीछे छूट रहे हैं, हवाएं हमारे साथ हैं और शायद अब मौसम कुछ कहने वाला है।

और मौसम ने आखिर कह ही दिया, बारिश आने वाली है। पहले हवा चली, फिर बादल आए और अब सड़क पर पहली बूंद गिरी। और बारिश का भी क्या कहना, कुछ लोग बारिश से बचते हैं और कुछ लोग बारिश में निकल पड़ते हैं। हम तो आज भाई सफर पर हैं, तो फिर हम बारिश से क्यों बचे। हमारा अगला गीत रिमझिमे गिरे सावन। अब हमारे सफर का सबसे भीगा हुआ पड़ाव 1979 की बसु चटर्जी की फिल्म मंजिल, संगीत आरडी बर्मन और गीत योगेश के। इस गीत के दो प्रसिद्ध वर्जन हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में, दोनों ने अलग अलग गाया है। लेकिन इसके साथ जुड़ी सबसे मजेदार बात गीत की रिकॉर्डिंग नहीं, उसकी शूटिंग है। लता का जो वर्जन है जो मैं आज आपको सुनाने वाली हूँ, को मुंबई की असली बारिश में शूट किया गया था। अमिताभ बच्चन और मौसमी चटर्जी को बारिश में चलते हुए मुंबई के लैंडमार्क्स के बीच में फिल्म किया गया था। मरीन ड्राइव और शहर के दूसरे आइकॉनिक लोकेशंस भी इस दृश्य का हिस्सा हैं। यानी जो बारिश हमें स्क्रीन पर इतनी एफर्टलेस लगती है, वह सचमुच की बारिश थी। और शायद इसी वजह से उस गीत में बारिश सिर्फ दिखाई नहीं देती, महसूस भी होती है। तो चलिए छाता बंद कर देते हैं, आज भीगने का मन है।

0: पर्वतों के बीच जब सफर शुरू होता है तो मंजिल से ज्यादा खूबसूरत हो जाती है राह। लेकिन फिर मन में एक सवाल उठता है, आखिर ये रास्ता हमें ले कहां जा रहा है, कौन सी दिशा हमारी मंजिल है और कौन सी राह हमें उन अनदेखे नजारों तक ले जाएगी जिनकी तलाश में दिल बरसों से भटकता रहा है। शायद सफर का असली आनंद मंजिल पाने में नहीं बल्कि उस अनजानी दिशा में आगे बढ़ते रहने में है। तो आइए पूछते हैं उस बटोही से, कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया। ये गीत फिल्म नदिया के पार से, जिसे हेमलता जी ने और यशपाल सिंह जी ने गाया था और जिसकी संगीत रचना की थी रविंद्र जैन साहब ने।
1: आज के एपिसोड के लिए इससे बेहतर एंडिंग शायद हो नहीं सकती, क्योंकि हमने आज कोई डेस्टिनेशन तय नहीं किया है, हमने बस चलते हुए वादियाँ देखी, पहाड़ देखे, हवा महसूस की, बारिश में भी भीगे और अब रास्ते से पूछ रहे हैं अच्छा बताओ अब किस दिशा में चलें। तो आइए इस सफर को मंजिल पर खत्म नहीं करते, इसे अपने रास्ते पर ही छोड़ देते हैं। यह पिक्चर 1982 में रिलीज हुई थी नदिया के पार, और इस गीत और इस पूरी मूवी में जो भाषा है उसकी खासियत यह है कि वह अवधि का देसी रंग है जो कि नदिया के पार की ग्रामीण दुनिया को और अपना सा बना देती है। आइए सुनते हैं

0: समझती हूँ आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। आप प्लीज हमें अपने फीडबैक्स दें, हमें और बेहतर होने का मौका दें, और अगले एपिसोड में फिर से मिलते हैं। इजाजत दें, धन्यवाद।
1: और अब उन श्रोताओं के नाम जिन्होंने अपने लाइक्स भेजे हैं इस प्रोग्राम के लिए, श्याम बिहारी शर्मा कोलकाता वेस्ट बंगाल से, मंदाकिनी शाह बड़ोदरा गुजरात से, फाल्गुनी दवे जूनागढ़ गुजरात से, सोनल पारिक जूनागढ़ गुजरात से, ज्योति भावसार भरूच गुजरात से, आशीषन गुप्ता मुंबई वेस्ट बंगाल से, अनीता दुगर नेपाल से, आशा जैन बेंगलोर से, हितेंद्र चतुर्वेदी जयपुर राजस्थान से, चंद्रा बोथरा जैन बीकानेर राजस्थान से, रामचंद्र गुप्ता महाराष्ट्र से।
2: अपना शहर अपनी शान, जयपुर रेडियो मेरी जान।
3: अरे ये लाहौर लाखों और इस कमबख्त को क्या हो गया, ये बजता क्यों नहीं है?
4: क्या हुआ चचा, ये रेडियो पे इतना जुल्म क्यों ढा रहे हैं आज?
3: अरे जुल्म किस बात का बेटा, अब आधे घंटे से लगे हुए हैं, अब हमारा पसंदीदा प्रोग्राम आने वाले थे, हमारे गीत आने वाले थे, लेकिन ये कमबख्त है कि बजने का नाम ही नहीं लेता।
4: तो मोबाइल पे ही सुन लीजिए ना रेडियो।
3: अरे बेटा कौन वो लीड लगाए और फिर वो दो फुलटू कान में डाल के वो लंबी सी रस्सी लेकर यहाँ वहाँ घूम।
4: अरे नहीं चाचा, अब उस रस्सी की जरूरत नहीं पड़ेगी।
3: अच्छा,
4: अब आ गया है एक नया ऐप जिसपे आप इंटरनेट के सहारे रेडियो सुन सकते हैं, कहीं भी कभी भी।
3: अच्छा कौन सा ऐप है वो?
4: हाँ चाचा, जयपुर रेडियो।
3: जयपुर रेडियो? पर बेटा हम तो लखनऊ में रहते हैं और जयपुर।
4: चचा देश के नहीं बल्कि दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर आप अपने पसंद के गाने सुन सकते हैं।
3: अरे वाह, ये लो बेटा फोन, और क्या नाम बताया उस ऐप का?
4: लाइए मुझे दीजिए आपका फोन, मैं अभी डाउनलोड कर देती हूँ जयपुर रेडियो।
5: तुमने दी आवाज, हो जाए अब तो आगाज, जयपुर रेडियो आपकी पहचान।
2: आवाज की पहचान, जयपुर रेडियो मेरी जान।
6: जयपुर रेडियो अपनार आवाज अपनार परिचय, सुनते थाकुन बंधुगण। जयपुर रेडियो
2: आपकी आवाज का जादू, कैसे रहे खुद पर काबू, जयपुर रेडियो आपकी पहचान।
1: और अब आ गए हैं इस मंच के मेल सिंगर हमेशा की तरह, मैं आवाज हूं तो तू है गीत मेरा। मैं आप जानते हैं पहचानते हैं उन सिंगर को जिनका नाम है अनुराग सिन्हा, नई मुंबई से हमारे साथ इस मंच पर हमेशा रहते हैं। आपके

सुपरस्टार राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर पर फिल्माया गया ये सुरीला गीत आप तक पहुंचा रहे थे अनुराग मुंबई से। आपकी आवाज आपकी पहचान का ये प्रोग्राम जिसमें आप आज सुन रहे हैं मैं आवाज हूं तो तू है गीत मेरा का ये खास प्रोग्राम हमारे इस मंच के मेल सिंगर अनुराग की आवाज में। आइए अब सुनते हैं अनुराग से ही अगला सॉन्ग।

भीगे आज इस मौसम में गा रहे थे अनुराग, और अब बात कर रहे हैं हम प्यार करने वाले क्या करते हैं। आइए सुन लेते हैं।

नमस्कार दोस्तों, सियाटल से एक बार फिर मैं समृद्धि आप सभी का स्वागत करती हूं अपने शो में जिसका नाम है गीतों के सवाल गीतों के जवाब। और आज का शो स्पेशल है क्योंकि आज हमारा 10th यानी कि 10वां एपिसोड है। तो आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं हमारे 10th एपिसोड के लिए। बात को आगे बढ़ाते हुए आज के शो के बारे में आपको कुछ बता दूं। आज के शो का हमारा सेंट्रल पॉइंट रहेगा कुदरत के करिश्मे, यानी कि जो हम नजारे देखते हैं उनको देखकर हमारे मन में जो तरह तरह के सवाल उठते हैं, तो आज हमने अपने गीतों के जरिए वैसे सवालों को कैप्चर करने की कोशिश की है। तो हमारे एपिसोड का नाम रखते हैं कुछ सवाल कुदरत से। कहते हैं सफर की खूबसूरती सिर्फ मंजिल में नहीं होती, रास्ते में भी होती है। कभी कोई पहाड़ रास्ता रोककर कहता है जरा ठहरो, कभी कोई हवा बिना कुछ कहे हमारे साथ चल पड़ती है, कभी बारिश शहर को इतना खूबसूरत बना देती है कि मन करता है रास्ता थोड़ा और लंबा हो जाए, और कभी कभी हम किसी खूबसूरत जगह को देखकर बस इतना ही कह पाते हैं वाह। तो आज के गीतों के सवाल और गीतों के जवाब में हम कोई सवाल हल करने नहीं आए हैं, आज हम बस निकल पड़े हैं कुदरत के नाम के एक सफर पर। तो आइए पहले पड़ाव पर। कुछ जगहें ऐसी होती हैं जिन्हें देखकर कैमरा निकालने का मन करता है, और कुछ जगहें ऐसी होती हैं जिन्हें देखकर कैमरा वापस रख देने का, क्योंकि लगता है अरे ये जगह इतनी खूबसूरत है ये तस्वीर में कहां ही आ पाएगी, है ना। पहाड़, खुला आसमान, हरियाली और उनके बीच अचानक महसूस होता है कि हम कहां आ गए हैं। आज के सफर की शुरुआत ऐसे ही एक दृश्य से करते हैं। ये हसी वादियां, ये खुला आसमान। 1992 की फिल्म रोजा का यह गीत एसपी बाला सुब्रमण्यम और केएस चित्रा ने गाया, संगीत एआर रहमान और बोल पीके मिश्रा के थे। और इस गीत के साथ एक खूबसूरत संगीत स्मृति भी जुड़ी हुई है कि यह मूवी रोजा एआर रहमान का फिल्म कंपोजर के रूप में पहला डेब्यू एल्बम था, और इसी साउंड ट्रैक के लिए उन्हें नेशनल अवार्ड भी मिला था एक डेब्यूटेंट के लिए उस समय

यह ऐतिहासिक उपलब्धि थी। तो चलिए, किसी नक्शे की जरूरत नहीं, बस आंखें बंद कीजिए और कल्पना कीजिए, आपके सामने एक खुला आसमान है। मेरे साथ मेरा साथ देते हुए श्री पंकज कुमार चतुर्वेदी।

कभी आपने ठहर कर आसमान को देखा है? वही आसमान जो सुबह सूरज की सुनहरी किरणों से नहा जाता है।

0: शाम को लालिमा ओढ़ लेता है और रात में असंख्य तारों से सज जाता है। कभी किसी फूल को देखकर सोचा है, इन नाजुक पखुड़ियों में इतने रंग किसने भरे होंगे? पक्षियों को उड़ने के लिए पंख किसने दिए? नदियों को बहने की लय, हवाओं को संगीत और इंसान के हृदय को भावनाएं किसने दी? हम चित्र बनाते हैं, कैनवास पर रंग भरते हैं, किसी दृश्य को अपनी कल्पना से सुंदर बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक ऐसा चित्रकार भी है जिसने न कोई कैनवास लिया न कोई रंगों की कूची, फिर भी उसने एक ऐसा संसार रच दिया जिसकी सुंदरता के सामने हमारी सारी कलाएं छोटी पड़ जाती हैं। पहाड़ उसकी कृति हैं, नदियां उसकी रचना हैं, फूल उसकी रंगोली है और यह पूरा संसार उसकी अद्भुत चित्रकारी। तभी मन में एक प्रश्न उठता है, यह कौन चित्रकार है? वह कौन है जिसने प्रकृति के इस विशाल कैनवास पर इतने अनगिनत रंग बिखेर दिए? आइए आज हम उसी अदृश्य कलाकार की कला को महसूस करें, उसकी बनाई इस खूबसूरत दुनिया को नमन करें और उसी भाव के साथ प्रस्तुत है आपके सामने गीत ये कौन चित्रकार है। मैं पंकज कुमार चतुर्वेदी रांची से आपके लिए ये गीत प्रस्तुत करता हूँ। धन्यवाद।
1: और यह गीत 1967 की फिल्म बूंद जो बन गई मोती से लिया गया है, जो ओरिजिनली मुकेश साहब की आवाज में है। यह गीत, इस गीत के गीतकार हैं भारत व्यास और संगीतकार सतीश भाटिया। आइए सुनते हैं।

0: कभी कभी जिंदगी की भागदौड़ से दूर जाने का मन करता है, जहां न शहर का शोर हो न कोई जल्दबाजी हो, बस चारों ओर हो ऊंचे ऊंचे पर्वत, खुला आसमान और प्रकृति की खामोशियां। पर्वतों की अपनी एक भाषा होती है, जो कुछ कहती नहीं फिर भी बहुत कुछ कह जाती है। उनकी ऊंचाइयों में सपने हैं, उनकी गहराइयों में रहस्य हैं, और उनकी वादियों में छुपी है एक अजीब सी सुकून भरी दुनिया। आइए आज शब्दों और सुरों के सहारे उसी खूबसूरत दुनिया की ओर चलें, जहां है पर्वतों के दायरे और प्रकृति के नजारे। ये गीत ये पर्वतों के दायरे, ये शाम का धुआं, फिल्म वासना से, जिसे मोहम्मद रफी साहब ने अपनी मधुर आवाज में गाया था और जिसके संगीतकार हैं महान संगीतकार चित्रगुप्त जी।
1: और मोहम्मद रफी साहब का साथ दिया था लता मंगेशकर जी ने इस गाने को डुएट बनाने में, और अब मैं अपने पिताजी का साथ दे रही हूँ इस गाने में।

लेकिन उसका असर पूरा दिखाई देता है। पेड़ों की पत्तियां हिलने लगती हैं, चेहरे पर बाल उड़ने लगते हैं और अचानक मन का मौसम भी बदल जाता है। 1951 की फिल्म नौजवान का यह गीत लता मंगेशकर की आवाज में है, संगीत SG बर्मन का, गीत साहिर लुधियानवी के। और एक बहुत दिलचस्प बात, बाद में मशहूर संगीतकार बने रवि ने अपना करियर की शुरुआत भी इसी फिल्म के कोरस सिंगर के रूप में किया था, यानी जिस फिल्म में हमें लता जी की आवाज में ठंडी हवाएं सुनाई देती है, उसी फिल्म से एक और बड़े संगीतकार की म्यूजिकल जर्नी भी शुरू हुई थी। यह गीत मुख्यतः प्रकृति और मौसम की ताजगी का एहसास देती है और इसकी धुन को राग पहाड़ी से जोड़ा जा सकता है, जो प्रकृति और लोक संगीत के रंगों के लिए बहुत ही स्वाभाविक चुनाव लगता है। तो जरा महसूस कीजिए, पहाड़ पीछे छूट रहे हैं, हवाएं हमारे साथ हैं और शायद अब मौसम कुछ कहने वाला है।

और मौसम ने आखिर कह ही दिया, बारिश आने वाली है। पहले हवा चली, फिर बादल आए और अब सड़क पर पहली बूंद गिरी। और बारिश का भी क्या कहना, कुछ लोग बारिश से बचते हैं और कुछ लोग बारिश में निकल पड़ते हैं। हम तो आज भाई सफर पर हैं, तो फिर हम बारिश से क्यों बचें? हमारा अगला गीत रिमझिमे गिरे सावन। अब हमारे सफर का सबसे भीगा हुआ पड़ाव 1979 की बसु चटर्जी की फिल्म मंजिल, संगीत आरडी बर्मन और गीत योगेश के। इस गीत के दो प्रसिद्ध वर्जन हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में, दोनों ने अलग अलग गाया है। लेकिन इसके साथ जुड़ी सबसे मजेदार बात गीत की रिकॉर्डिंग नहीं, उसकी शूटिंग है। लता का जो वर्जन है जो मैं आज आपको सुनाने वाली हूँ, को मुंबई की असली बारिश में शूट किया गया था। अमिताभ बच्चन और मौसमी चटर्जी को बारिश में चलते हुए मुंबई के लैंडमार्क्स के बीच में फिल्म किया गया था। मरीन ड्राइव और शहर के दूसरे आइकॉनिक लोकेशंस भी इस दृश्य का हिस्सा हैं। यानी जो बारिश हमें स्क्रीन पर इतनी एफर्टलेस लगती है, वह सचमुच की बारिश थी। और शायद इसी वजह से उस गीत में बारिश सिर्फ दिखाई नहीं देती, महसूस भी होती है। तो चलिए छाता बंद कर देते हैं, आज भीगने का मन है।

0: पर्वतों के बीच जब सफर शुरू होता है तो मंजिल से ज्यादा खूबसूरत हो जाती है राह। लेकिन फिर मन में एक सवाल उठता है, आखिर ये रास्ता हमें ले कहां जा रहा है, कौन सी दिशा हमारी मंजिल है और कौन सी राह हमें उन अनदेखे नजारों तक ले जाएगी जिनकी तलाश में दिल बरसों से भटकता रहा है। शायद सफर का असली आनंद मंजिल पाने में नहीं बल्कि उस अनजानी दिशा में आगे बढ़ते रहने में है। तो आइए पूछते हैं उस बटोही से, कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया। ये गीत फिल्म नदिया के पार से, जिसे हेमलता जी ने और यशपाल सिंह जी ने गाया था और जिसकी संगीत रचना की थी रविंद्र जैन साहब ने।
1: आज के एपिसोड के लिए इससे बेहतर एंडिंग शायद हो नहीं सकती, क्योंकि हमने आज कोई डेस्टिनेशन तय नहीं किया है, हमने बस चलते हुए वादियाँ देखी, पहाड़ देखे, हवा महसूस की, बारिश में भी भीगे और अब रास्ते से पूछ रहे हैं, अच्छा बताओ अब किस दिशा में चलें? तो आइए इस सफर को मंजिल पर खत्म नहीं करते, इसे अपने रास्ते पर ही छोड़ देते हैं। यह पिक्चर 1982 में रिलीज हुई थी नदिया के पार, और इस गीत और इस पूरी मूवी में जो भाषा है उसकी खासियत यह है कि वह अवधि का देसी रंग है जो कि नदिया के पार की ग्रामीण दुनिया को और अपना सा बना देती है। आइए सुनते हैं

0: करती हूँ आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। आप प्लीज हमें अपने फीडबैक्स दें, हमें और बेहतर होने का मौका दें, और अगले एपिसोड में फिर से मिलते हैं। इजाजत दें, धन्यवाद।
1: और अब उन श्रोताओं के नाम जिन्होंने अपने लाइक्स भेजे हैं इस प्रोग्राम के लिए, श्याम बिहारी शर्मा कोलकाता वेस्ट बंगाल से, मंदाकिनी शाह बड़ोदरा गुजरात से, फाल्गुनी दवे जूनागढ़ गुजरात से, सोनल पारिक जूनागढ़ गुजरात से, ज्योति भावसार भरूच गुजरात से, आशीषन गुप्ता मुंबई वेस्ट बंगाल से, अनीता दुगड़ नेपाल से, आशा जैन बेंगलोर से, हितेंद्र चतुर्वेदी जयपुर राजस्थान से, चंद्रा बोथरा जैन बीकानेर राजस्थान से, रामचंद्र गुप्ता महाराष्ट्र से।
2: अपना शहर अपनी शान, जयपुर रेडियो मेरी जान।
3: अरे ये लाहौर लाखों और इस कमबख्त को क्या हो गया, ये बजता क्यों नहीं है?
4: क्या हुआ चचा, ये रेडियो पे इतना जुल्म क्यों ढा रहे हैं आज?
3: अरे जुल्म किस बात का बेटा, अब आधे घंटे से लगे हुए हैं, अब हमारा पसंदीदा प्रोग्राम आने वाले थे, हमारे गीत आने वाले थे, लेकिन ये कमबख्त है कि बजने का नाम ही नहीं लेता।
4: तुम मोबाइल पे ही सुन लीजिए ना रेडियो।
3: अरे बेटा कौन वो लीड लगाए और फिर वो दो फुल कान में डाल के वो लंबी सी रस्सी लेकर यहाँ आ गई।
4: अरे नहीं चाचा, अब उस रस्सी की जरूरत नहीं पड़ेगी।
3: अच्छा?
4: अब आ गया है एक नया ऐप जिसपे आप इंटरनेट के सहारे रेडियो सुन सकते हैं, कहीं भी कभी भी।
3: अच्छा कौन सा ऐप है वो?
4: हाँ चाचा, जयपुर रेडियो।
3: जयपुर रेडियो? पर बेटा हम तो लखनऊ में रहते हैं और जयपुर।
4: चाचा देश के नहीं बल्कि दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर आप अपने पसंद के गाने सुन सकते हैं।
3: अरे वाह, ये लो बेटा फोन, और क्या नाम बताया उस ऐप का?
4: लाइए मुझे दीजिए आपका फोन, मैं अभी डाउनलोड कर देती हूँ जयपुर रेडियो।
5: तुमने दी आवाज, हो जाए अब तो आगाज, जयपुर रेडियो आपकी पहचान।
2: आवाज की पहचान, जयपुर रेडियो मेरी जान।
6: जयपुर रेडियो अपनार आवाज अपनार परिचय, सुनते थाकुन बंधुगण। जयपुर रेडियो
2: आपकी आवाज का जादू, कैसे रहे खुद पर काबू, जयपुर रेडियो आपकी पहचान।
1: और अब आ गए हैं इस मंच के मेल सिंगर हमेशा की तरह, मैं आवाज हूं तो तू है गीत मेरा, में आप जानते हैं पहचानते हैं उन सिंगर को जिनका नाम है अनुराग सिन्हा, नई मुंबई से हमारे साथ इस मंच पर हमेशा रहते हैं।

सुपरस्टार राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर पर फिल्माया गया ये सुरीला गीत आप तक पहुंचा रहे थे अनुराग मुंबई से। आपकी आवाज आपकी पहचान का ये प्रोग्राम जिसमें आप आज सुन रहे हैं मैं आवाज हूं तो तू है गीत मेरा का ये खास प्रोग्राम हमारे इस मंच के मेल सिंगर अनुराग की आवाज में। आइए अब सुनते हैं अनुराग से ही अगला सॉन्ग।

भीगे आज इस मौसम में गा रहे थे अनुराग, और अब बात कर रहे हैं हम प्यार करने वाले क्या करते हैं। आइए सुन लेते हैं।

अनुराग की सुरीली आवाज आप सुन रहे हैं इस मंच से। मैं आवाज हूँ तो तू है गीत मेरा में आज लेके आए हैं अपने गीत अनुराग, मुंबई महाराष्ट्र से। आइए सुनते हैं सड़क फिल्म का ये गीत।

0: हेल्दी सिटीजन्स आर द ग्रेटेस्ट एसेट एनी कंट्री कैन हैव, ये बात कही थी विंस्टन चर्चिल ने, और इस पर गौर फरमाया जाए तो 100% करेक्ट है। तो यही है आज हमारा विषय, आज के एपिसोड में मेरे तकनीकी सहयोगी श्री ओम प्रकाश शर्मा। तो हो जाए बातें दिल की विद सुषमा। नमस्कार, मैं हूँ सुषमा। बहुत ही महत्वपूर्ण है लाइफ की कुछ स्टेजेस, चाइल्डहुड, टीनेज एंड यूथ, जब वृद्धि और विकास अपने चरम पर होते हैं। इन स्टेजेस में शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और व्यवहारिक विकास सभी पर ध्यान देना जरूरी हो जाता है जब हम एक स्वस्थ राष्ट्र की परिकल्पना करते हैं। सो हेल्थ, अ वेरी इम्पोर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, जिस पर आज हम बात करेंगे डॉक्टर हर्ष उदावत से, डायरेक्टर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी एंड लिवर साइंसेज, इटर्नल हॉस्पिटल जयपुर। आपका अपना क्लिनिक भी है, उदावत गैस्ट्रो क्लिनिक इन श्यामनगर जयपुर। डाइजेस्टिव सिस्टम, लिवर, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियाज, इंटेस्टाइन्स, फूड पाइप, स्टमक डिजीजेस, एडिक्शंस, अल्कोहलिज्म, इन सभी की ट्रीटमेंट का पिछले 20 साल का अनुभव आपके पास। अ वंडरफुल डॉक्टर, स्पीकर एंड गाइड। नमस्कार डॉक्टर हर्ष उदावत।
1: नमस्कार सुषमा जी और सभी श्रोतागण।
0: सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि एक स्वस्थ जीवन शैली की परिभाषा क्या है, क्या इसके कोई बेसिक नियम भी है?
1: तो स्वस्थ जीवन शैली की परिभाषा के पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि हेल्थ किसे कहते हैं या स्वास्थ्य किसे कहते हैं। तो उसके अंदर केवल शारीरिक बीमारियां ही नहीं आती हैं, बल्कि एक इंसान को मानसिक बीमारियों से भी दूर रहना होता है, और साथ में सामाजिक और आध्यात्मिक जो स्वास्थ्य है वो भी होना जरूरी है। और कुछ लोगों ने तो आजकल फाइनेंशियल हेल्थ इंक्लूड कर लिया है। अब अगर अच्छी जीवन शैली नहीं होगी तो ये पूरा जो स्वास्थ्य है वो ठीक नहीं रह सकता। सो अच्छे स्वास्थ्य के लिए अच्छी जीवन शैली भी जरूरी है। और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि ये जितना जल्दी, मेरा मतलब है उम्र में जितनी जल्दी शुरू हो जाए, सो मतलब ये है कि स्कूल लाइफ से, और जब बच्चा बड़ा हो रहा हो उसको ये पता हो कि अच्छी जीवन शैली क्या है, हेल्थ क्या है, तो वो आगे जाके अपने जीवन में उसको ला सकता है। अदरवाइज क्या होता है कि बहुत लेट ये जितने चेंजेस लाना, एक तो बहुत मुश्किल होती है जीवन शैली को चेंज करना, और आजकल तो 30-30, 40-40 साल में ही बीमारियां आने लग गई हैं। तो हम चाहते हैं बीमारी का बचाव, तो इसलिए ये जो हम टॉक हमने प्लान करी है वो है छोटे उम्र के बच्चे, यूथ, टीनेजर्स, वो अच्छी लाइफस्टाइल क्या है उसको पता रखें, और जिससे कि वो बीमारियों से दूर रह सके।
0: तो अच्छे लाइफस्टाइल की जब हम बात कर रहे हैं तो क्या इसके बेसिक रूल्स हैं? सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है।
1: मैं आपको तीन चीजें बताता हूँ कि एक बैलेंस जरूरी है, तो उसको हम कहते हैं कि तीन चीजों का समन्वय जरूरी है। एक तो आहार, एक श्रम और एक विश्राम। तो ये हो गया डाइट, फिजिकल एक्टिविटी एंड एक्सरसाइज, एंड थर्ड इज रेस्ट एंड स्लीप। तो ये सब प्रॉपर होना जरूरी है,
0: इसका बैलेंस होना बहुत जरूरी है।
1: यस जी। और इसके साथ साथ हम दो चीजें मैं और ऐड कर देता हूँ। नंबर वन इज वैक्सीन इन चाइल्डहुड, और दूसरा है एडिक्शन से दूर रहना, नशे से दूर रहना, क्योंकि अगर किसी को नशा हो जाता है तो वो पूरा जो यूथ है वो ही बर्बाद हो जाता है। और फिर कहते हैं कि जो ज्यादा नशा करते हैं या जो एडिक्ट होते हैं उनकी लाइफ स्पैन वैसे ही कम हो जाता है। सो इसलिए इसमें हम दो चीजें और ऐड कर सकते हैं।
0: तो चलिए बात शुरू करते हैं आहार से, यानी डाइट से। क्या ध्यान देने की बातें एक डाइट को लेकर, कैसी हो डाइट और क्या अवॉइड किया जाए?
1: जी, तो अभी प्रेजेंट सिचुएशन में तो जो हमारी लड़ाई है वो है कि कैसे ये जंक फूड और प्रोसेस्ड फूड से दूर रहा जाए, और वो हर कहीं अवेलेबल है। घर में खाना कम बनने लगा है, सो बाहर के खाने पे ज्यादा बाहर का खाना खाते हैं, और इसमें हमें ये देखना होता है कि ये जो भी जंक और प्रोसेस्ड फूड है इसमें एक तो शुगर बहुत ज्यादा होता है, सॉल्ट बहुत ज्यादा होता है, फैट बहुत ज्यादा होता है, इसके अंदर फूड एडिटिव्स होते हैं, ये सब केमिकल्स हैं, फॉर एग्जाम्पल अजीनोमोटो, फॉर एग्जाम्पल कलरिंग एजेंट्स, इमल्सिफायर्स। तो ये सब एक तो मोटापा बढ़ाते हैं, मेटाबॉलिक सिंड्रोम एक होता है जिसके अंदर न केवल मोटापा बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो ये सारी जो फूड जो हमारे प्रेजेंट सिनेरियो में चल रहा है, ये सब बीमारियों का दाता है। अब इसकी जगह उल्टा क्या है कि जो भी नेचुरल फूड्स हैं वो हम खा पाए, घर का बना हुआ खाना हो। एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको कि मसाले जो काम में आते हैं आजकल, वो भी पैकेज और डब्बा बंद होते हैं
0: जी।
1: तो क्या नेचुरल मसाले काम में लिए गए हैं? आप फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स, ये सारी जो चीजें हैं ये कितनी नेचुरल हैं, और जितनी नेचुरल होंगी उतना आपके जो है हेल्थ के लिए। फिर आता है कि आजकल जैसे जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं,
0: राइट,
1: जैसे कोल्ड ड्रिंक्स हैं, आर्टिफिशियल जूसेस हैं, एनर्जी ड्रिंक्स हैं, अल्कोहलिक ड्रिंक्स हैं, इनका बहुत ज्यादा फैशन है। तो क्या हम उनकी जगह दूध, छाछ, लस्सी, फ्रूट जूसेस फ्रेश काम में ले सकते हैं? आजकल तो आप देखें कि कहीं भी आप वॉक करने जाएंगे या पार्क के बाहर जो है सब्जियों के और फ्रूट्स होते हैं उनके फ्रेश जूसेस मिलते हैं निकाल। तो ये प्रेजेंट जनरेशन के ना तो उनका टेस्ट डेवलप है ना उनको पता है कि ये भी चीजें होती हैं। इनको हम कैसे इंट्रोड्यूस? तो ये एक बड़ा चैलेंज है।
0: तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ा सवाल है हमारे सामने कि कैसे इन चीजों को अट्रैक्टिव बनाया जाए कि वो बच्चा भी उनको लेने को तैयार हो जाए।
1: बिल्कुल। अब आप सोचिए, आप छोटे बच्चे को आपने कोई भी कोल्ड ड्रिंक दे दी, आपने जब कोल्ड ड्रिंक दे दी तो उसका जो टेस्ट है उसका और छाछ का तो फर्क होगा, जूस का फर्क होगा ना। सो बच्चे को तो वही चीज अच्छी लगेगी, वो कैसे ये करेगा? सो कहने का मतलब ये है कि फूड में एक चीज तो होगी क्या खाएं क्या ना खाएं। सो मोस्ट ऑफ द टाइम्स घर पे ही खाना खाएं तो ज्यादा अच्छा है। रिलाइंग ऑन आउटसाइड फूड मे नॉट बी सेफ एंड हाइजीनिक। दूसरा है कि ये टाइमिंग ऑफ मील्स क्या रखें। सो ऐसा कहा गया है कि भाई एक समय बांध लेना चाहिए कि जैसे सुबह का खाना आपने 7 से 9 बजे के बीच में ले लिया, दोपहर का 12 से 1 बजे का बीच में हो गया, रात जो डिनर है वो 5 से 7 बजे के बीच में हो गया। कहते हैं 8 बजे के बाद तो खाना ही नहीं खाना चाहिए, और जितना आप भूखा सोएंगे उतना अच्छा है। कि जरूरी है क्या कि हम 3 ही मील लें? तो नहीं, 1 या 2 मील भी ठीक है। पानी के बहुत रूल्स हैं।
0: अच्छा।
1: तो उसमें पहला कहा जाता है कि हाँ, जैसे हम सुबह उठते हैं तो करीब 2 से 3 ग्लास जो है ल्यूक वार्म वाटर या गर्म पानी या आपके मटके में रखा हुआ पानी या कॉपर के तांबे में रखा हुआ पानी, तो ये सब पानी आप सुबह ले सकते हैं बिफोर ब्रशिंग टीथ, और उसको आप धीरे धीरे सिप बाय सिप पानी पिए, और उसके 45 मिनट तक पानी ना पिए। जब आपने पानी ले लिया सुबह ये 2 से 3 ग्लास बैठ के शांति से, अब उसके 45 मिनट में ब्रेकफास्ट या बैड टी जो लेते हैं वो सब नहीं लेना चाहिए
0: जी।
1: ठंडा पानी जैसे फ्रिज में रखा हुआ पानी है बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। पानी जो है खाने के साथ बिल्कुल न दें, 1 घंटे पहले या 1 घंटे बाद में ही लें। प्लास्टिक बॉटल्स में पानी कितना प्रचलित है आजकल,
0: बिल्कुल
1: वो बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। और आजकल तो ये होता है कि बिस्लेरी की बॉटल में एक बार पानी पिया और उसी को काम में लेते रहते हैं, और वो धूप में भी पड़ा रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। कहते हैं प्लास्टिक के साथ पानी तो कैंसरस भी हो सकता है। सो ये छोटी छोटी चीजें हैं। फॉर एग्जाम्पल अब लोगों को सीखना चाहिए कि भाई हमें जैसे जितनी भी कहते हैं व्हाइट चीज है वो सब खराब है, जैसे मान लीजिए शुगर है, हमारे को लगता है जितना व्हाइट उतना अच्छा, सॉल्ट जितना व्हाइट उतना अच्छा। तो जैसे शुगर के क्या अल्टरनेटिव्स हो सकते हैं? सो गुड़ है, गुड़िया शक्कर है, हनी है, ये काम में लिया जा सकता
0: है।
1: जो अपना सॉल्ट है जो हम बिल्कुल एकदम सफेद काम में लेते हैं उसकी जगह सेंधा नमक इज बेस्ट, काला नमक अच्छा है, हमारे सांभर लेक का जो नमक आता है वो बहुत अच्छा है। फिर हम तेल पे आ सकते हैं, हम बिल्कुल सफेद तेल काम में लेने के आदि हो गए हैं जिसका ना टेस्ट है और ना जा उसकी चिकनाई है। कहते हैं कि कच्ची घानी का तेल बेस्ट है। अब वो के सरसों का तेल हो सकता है, मूंगफली का तेल हो सकता है, कोकोनट ऑयल हो सकता है, तिल्ली का तेल हो सकता है, या आपके जो ऑलिव ऑयल है वो हो सकता है। सो उस ऑयल को रोटेट करना है हर 3 से 4 महीने में, एक ऑयल को हमेशा काम में मत लीजिए।
0: अच्छा।
1: एंड अवॉइड प्रोसेस्ड रिफाइंड एंड सुपर रिफाइंड ऑयल्स।
0: तो ये सारी छोटी बातें,
1: ये सारी चीजें जो हैं इसका, हाँ इसका थोड़ा सा ज्ञान लेना पड़ेगा और इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा डिटेल में तो हम बात नहीं कर सकते, बट ये कुछ इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो कि घर में अगर लोग काम में लेंगे तो बच्चों की हेल्थ के लिए भी आगे अच्छा।
0: बस सबसे पहले बड़ी बात ये हो जाती है कि बचपन से अगर ये आदतें डाल ली जाएंगी तो शायद उनके लाइफस्टाइल का हिस्सा बनने में मुश्किल नहीं होगी, ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है।
1: जी
0: आहार की बात आते हैं श्रम पर, आपने श्रम की बात की यानी फिजिकल एक्टिविटी की बात की, और आप तो खुद एक अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन रहे हैं, क्रिकेट बीइंग योर परफॉर्मिंग एरिया, तो कितना जरूरी है स्पोर्ट्स, कितनी बड़ी भूमिका निभा सकता है ये हमारे अच्छे स्वास्थ्य की कोशिश में, कैसी हो हमारी फिजिकल एक्टिविटी?
1: पहली चीज जो लेते हैं वो उसको हम कर सकते हैं डेली वॉक, जो कि करीब करीब 45 मिनट से एक घंटे की होनी चाहिए, या उसकी जगह साइकिलिंग कर सकते हैं या स्विमिंग कर सकते हैं या जॉगिंग। इसके साथ साथ जो है आपको ऐड करना पड़ेगा इधर यू डू योगा और यू मे डू अदर एक्सरसाइजेस एज इन जिम। इसके साथ साथ जो है, क्योंकि हम बच्चों और इनकी बात कर रहे हैं टीनेजर्स की, आई मीन इफ दे डू अ कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट नथिंग लाइक इट, क्योंकि वहां सब कुछ कवर हो जाता है। आप सुबह 2 घंटे खेलते हैं, शाम को 2 घंटे खेलते हैं, इतना आपने टाइम दे दिया कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट में, तो आप वैसे ही फिट रहेंगे और लंबे समय तक फिट रहेंगे। और इस सब फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज, योगा से आपकी फिजिकल फिटनेस तो आती आती है, तो उसके साथ और भी बहुत फायदे हैं कि आपका जो सोचने की शक्ति है, आपकी रिटेन करने की शक्ति है, मेमोरी है, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, इन सबसे आप दूर रहते हो, नींद अच्छी आती है, तो इसके बहुत फायदे हैं। स्लिम रहते हो, आपका वजन नहीं बढ़ता।
0: अच्छा।
1: वजन नहीं बढ़ता, बहुत सारी बीमारियों से आप दूर रह सकते। फिजिकल स्ट्रेंथ जब आपकी होगी सो आपके जॉइंट प्रॉब्लम्स जो है वो कम होंगी, आप कंसंट्रेट अच्छा कर पाओगे, आपकी पढ़ाई अच्छी होगी। कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स में जाने से कहते हैं कि पीपल लर्न हाउ टू फेस स्ट्रेस मच बेटर देन अदर्स, तो इसके बहुत फायदे हैं।
0: डिसिप्लिन सीखते हैं हम, टीम जो टीम में काम करने का एक तरीका
1: होता है, है, सीखते हैं। बिल्कुल।
0: आध्यात्मिक हेल्थ, जी आध्यात्मिक हेल्थ की आपने बात की थी, आई थिंक उसमें मेडिटेशन भी एक रोल प्ले कर सकता है।
1: यस ऑफ कोर्स, जैसे योगा इज आल्सो अ पार्ट ऑफ जो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट है उसमें, और अब तो काफी पॉपुलर भी हो चुका है योगा। और इसमें आप ये देखिए कि योगा और एक्सरसाइज इन जिम में जो फर्क है वो ये है कि योगा जो है वो शांति लाता है, सेरेनिटी, क्योंकि जो हॉर्मोन्स निकलते हैं वो दे आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम जो हॉर्मोन्स निकलते हैं एक जिम में एक्सरसाइज करने से। वहां म्यूजिक चल रहा है, आप एक्सरसाइज कर रहे हो, आप अपने एफर्ट जो लग रहा है वो बहुत बहुत ज्यादा है जो आपको नहीं चाहिए। सो वहां के जो हॉर्मोन्स हैं वो आपको फ्लाइट फ्राइट फियर के हॉर्मोन्स हैं, एड्रेनलिन रश जिसको अपन हम कहते हैं, एड्रेनलिन नॉरएड्रेनलिन निकलते हैं। योगा करने से जो है जो हॉर्मोन्स निकलते हैं वो आपको शांति, पीस, ये सब देते हैं। प्लस इसमें मेडिटेशन जो है या चैंटिंग, ये जो है जो आप कह रही हैं आध्यात्मिक जो स्वास्थ्य है उसके लिए बहुत बहुत मतलब उच्च कोटि के ये कुछ ऐसे नियम हैं जो कि आपकी बहुत अच्छी हेल्थ दे सकते हैं। अब ये अगर बच्चों की लाइफ में शुरू से आ जाए तो क्या फायदा क्या नुकसान की बात नहीं है, फायदा तो होना ही होना है, बट पहले से अगर हम ये सोचें कि हम इस फायदे के लिए कर रहे हैं तो वो भी ठीक नहीं है।
0: जी
1: वो करेंगे तो फायदा डेफिनेटली दिखेगा। और चैंटिंग में अगर आप देखेंगे, हाँ बिल्कुल, और चैंटिंग भी क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, अगर आप कहते हैं कि अगर आप 5 से 10 मिनट की ओम चैंटिंग करें, ओम की चैंटिंग या भ्रमरी करें, तो ब्रेन में इतने अच्छे वेव्स निकलते हैं और ब्रेन की जो पावर है वो बढ़ती है। सो बच्चों के और जो टीनेजर्स हैं उनकी जो फोकस है वो एक काम करेंगे तो उसमें फोकस ज्यादा रहेगा, अटेंशन स्पैन जो है वो बहुत अच्छा बढ़ेगा, मेमोरी बढ़ेगी। कहते हैं ब्रेन के जो अंदर सर्किट्स होते हैं वो बढ़ जाते हैं, ब्रेन का वॉल्यूम बढ़ जाता है। सो मेडिटेशन, चैंटिंग, ये तो इतनी अच्छी चीजें हैं, बट अनफॉर्चुनेटली ना तो हमें कभी सिखाई गई और लाइफ के काफी एंड तक आते आते ये सारी चीजें पता पड़ती हैं। तो जो आपने स्पिरिचुअल आध्यात्मिक स्वास्थ्य की बात करी वो अगर बच्चों में हो जाए तो बहुत अच्छी बात है।
0: बिल्कुल, और शुरू से हो जाए तो वही लाइफस्टाइल का हिस्सा बनने में देर नहीं लगती। तो एक बैलेंस बहुत अच्छा सा आपने डिस्क्राइब किया जिसमें बहुत सारी फिजिकल एक्टिविटीज के साथ साथ मेडिटेशन को जोड़ के बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है।
1: जी जी
0: अब आते हैं विश्राम पर, आपकी तीसरा जो पॉइंट था विश्राम यानी कि रेस्ट। रेस्ट की इम्पोर्टेंस
1: यस
0: मुझे लगता है जेन जी के पास तो जैसे ही नहीं, लेकिन हाँ
1: जी
0: क्या इम्पोर्टेंस है इसकी, ये भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है और किस तरह से करती है वो आप सबको समझाएं।
1: सो बॉडी और माइंड बनाया है इसलिए गया है कि थोड़ा रेस्ट मिले, मतलब 24 आवर्स कोई भी चीज नहीं चल सकती है। बट हम लोग सब ऐसे हो गए हैं कि 24 आवर्स इन कंपटीशन, आपको वर्क करना है, मेहनत करनी है, टाइम मिलेगा मतलब मल्टीटास्किंग करनी है, और फिर उसमें रेस्ट रह जाता है। सो कुछ नहीं कर रहे तो आप व्हाट्सएप पे हो, आप किसी जूम मीटिंग पे हो, आप अपने काम को एक्सटेंड करते हो। तो कहते हैं कि स्लीप जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों के लिए ये करीब 9 से 12 घंटे की हो सकती है, टीनेजर्स के लिए 8 घंटे की हो सकती है, और एक अडल्ट के लिए 8 घंटा तो जरूरी जरूरी है। ऐसा भी कहा गया है कि अगर आप दोपहर में 45 मिनट सो जाते हैं, 45 मिनट्स जो आपकी नैप होती है आफ्टरनून की, अगर आप
0: पावर
1: वो
0: नैप।
1: कर लेते हो, हाँ, तो वो आपकी प्रोडक्टिविटी को और बढ़ाता है। आपके बॉडी को और ब्रेन को रिचार्ज होना भी जरूरी है। सोचिए आपकी, हम लोग सब जो है, या बच्चे भी हैं, 1-1 बजे तक सोना, और फिर सुबह बच्चे जो है सुबह सुबह 6 बजे उनको उठा देते हैं स्कूल जाने के लिए, 7 बजे जाने के लिए, तो उनको क्या रेस्ट मिलेगा। और फिर घर पे आके नो गेम्स नथिंग, जस्ट सिट इन फ्रंट ऑफ टीवी या व्हाट्सएप, या आप एक सेलफोन हाथ में दे देते हैं, सो वो रेस्ट तो कहीं मिलता ही नहीं है।
0: बिल्कुल। और ये सेलफोन, आईपैड, इसकी जो भी लाइटिंग है या जो भी इफेक्ट्स हैं वो हम
1: जी हाँ,
0: सोते
1: मत
0: समय जरूर हाथ में रखते हैं तो वो भी नुकसान पहुंचाते हैं, बिकॉज हम लोग उसको ही
1: उससे
0: देखते
1: नींद नहीं
0: देखते सो
1: आएगी।
0: रहे हैं।
1: हाँ, उससे नींद नहीं आएगी, क्योंकि वो जो ब्राइट लाइट होती है वो सोने नहीं देती है। वो जो स्लीप एरिया है उसको एक्टिवेट, उसको जो स्लीप एरिया है वो भी रिलैक्स नहीं हो पाता, वो भी एक्टिवेटेड रहता है, तो नींद आती नहीं।
0: थॉट्स चलते रहते हैं इसलिए मैं शांत नहीं होने
1: जी
0: देती।
1: जी
0: तो रेस्ट की
1: जी
0: वाकई बहुत इम्पोर्टेंस है और विश्राम करना बहुत जरूरी है, और वो भी कुछ कुछ घंटे जो डॉक्टर साहब ने बताए हैं उनको जानकर पहचान कर इसकी इम्पोर्टेंस बच्चों को समझाना, टीनेजर्स को समझाना, सबको समझाना बहुत जरूरी है। तो समझने की बात है। इन तीन चीजों पे हमने
1: ये
0: बात
1: कहते
0: करी।
1: हैं ना,
0: आप
1: आपने ये कहते हैं ना, एक चीज और मैं ऐड करना चाहता हूँ। हमारा एक ब्रह्म मुहूर्त का कंसेप्ट है
0: हाँ
1: कि आप 4 बजे उठे तो मिरेकल्स होंगे। तो 4 बजे के आप 10 बजे, 10-11 बजे तक ही लोग नहीं उठ पाते हैं। सो आई
0: राइट।
1: मीन वो कंसेप्ट ना पता है ना हम वो कर पा रहे हैं।
0: हम अपनी पुरानी चीजों को भूल गए हैं और उसी से हम नुकसान उठा रहे हैं, वापस उन्हीं
1: जी
0: में
1: जी
0: लौटना पड़ेगा। बिल्कुल।
1: जी
0: अब बात
1: जी
0: करते हैं, आपने वैक्सीनेशन का एक पॉइंट रखा था जिसमें कि आजकल बहुत सारे वैक्सीनेशन जुड़ गए हैं जो अलग एज ग्रुप्स के लिए होते हैं। बच्चों से
1: जी
0: शुरुआत
1: जी
0: होती है ये तो सब जानते ही हैं, लेकिन बच्चों से लेकर और टीनेज तक आते आते क्या कुछ जरूरी है वैक्सीनेशन के रूप में, वो जरूर बताएं।
1: जी हाँ। सो मेरे ख्याल से एक अच्छा, एक आपका जो भी पीडियाट्रिशियन है और आपके जो भी डॉक्टर हैं, उनसे जरूर मिलके क्लियर कर लें कि भाई हमारे बच्चे के लग चुके हैं और क्या क्या और वैक्सीन की जरूरत है। तो वो बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस ए है, टाइफॉइड है, ट्यूबरकुलोसिस है, ऐसे पीडियाट्रिशियन आपको बता पाएंगे कि मेनिनजाइटिस है, न्यूमोकोकल वैक्सीन है, डीपीटी है, ये तो जनरली लगते ही हैं, पोलियो है, ये सब। बट जरूरी है कि वैक्सीनेशन का हमें ध्यान रखना चाहिए, और ये हमारे डॉक्टर से जरूर डिस्कस कर लेना चाहिए। क्योंकि कुछ बीमारियां देखिए आजकल ऐसा है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल टैटूज हैं,
0: जी,
1: नाउ दे आर सो कॉमन,
0: वेरी कॉमन।
1: एंड उससे हेपेटाइटिस बी सी HIV होने के चांस रहते हैं, स्किन डिजीजेस के चांस रहते हैं। सो अगर वैक्सीनेटेड हो तो एटलीस्ट ये तो नहीं होंगे।
0: फीमेल्स के लिए भी कुछ स्टार्ट किया गया था, अगर
1: जी
0: हम
1: हाँ जी हाँ
0: वैक्सीनेशन की
1: जी
0: बात
1: हाँ जी
0: करते हैं
1: हाँ
0: स्पेशल। जी
1: हाँ जैसे आजकल एक ह्यूमन पेपिलोमा वायरस HPV के अगेंस्ट वैक्सीन आने लगा है, तो वो कहते हैं कि जो अपने गर्ल्स हैं और यंग एज के अंदर ही उनको लगा लिया जाए। कुछ लोग तो अपने जो है सन्स को भी लगा रहे हैं, लड़कों को भी लगवा रहे हैं, तो उससे एक बीमारी होती है, वॉर्ट्स जो देखने को मिलते हैं और ह्यूमन पेपिलोमा वायरस से जो बीमारियां होती हैं वो उससे बच सकते हैं। सो ये डिस्कस करना चाहिए वैक्सीनेशन इन दिस एज ग्रुप, पेरेंट्स को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए।
0: अब हम एक बहुत बड़े मुद्दे पे आना चाहेंगे जो हेल्थ को, खास करके टीनेजर हेल्थ को बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं, और उस यंग एज में इसकी शुरुआत हो जाती है जब बच्चे अभी स्कूल में ही होते हैं। मैं बात कर रही हूँ ड्रग्स की। उसके बाद आता है टबैको और फिर आता है अल्कोहल। तीनों ही हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही अब्यूजिव साबित हो रहे हैं, तो कैसे इनका इस तरह से निदान हो, क्या सॉल्यूशंस हैं?
1: देखिए, पहली चीज तो ये ध्यान रखने की है कि पेरेंट्स को जो है बच्चों से बात करनी चाहिए कि भाई ये चीज एक्सपेरिमेंट के लिए नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अल्कोहल, टोबैको, ड्रग्स, आप स्कूल्स में जाएंगे तो वहीं पर ही जो है शुरू हो जाता है।
0: बिल्कुल,
1: पेरेंट्स को बताना पड़ेगा और बच्चों को भी जो है सोसाइटीज को मिलकर बताना चाहिए कि आप जितनी जल्दी एक ड्रग ऑफ अब्यूज लोगे, फॉर एग्जाम्पल अल्कोहल की बात करते हैं, अगर जो लोग 13 साल में शुरू करेंगे तो उसमें 100 में से 50% बच्चे जो हैं वो एडिक्शन से ग्रस्त हो जाएंगे, मतलब वो अल्कोहलिज्म उनको हो जाएगा, वो एडिक्ट हो जाएंगे। 21 साल के बाद लेते हैं तो चांसेस हैं कि करीब 10-20% लोगों को ये बीमारी होगी। उससे थोड़ा और ऊपर लेते हैं तो 8-12% को ये बीमारी होगी। अगर आप अल्कोहल को जितना जल्दी लोगे या ड्रग्स को जितना जल्दी लोगे, ज्यादा चांस है कि आप एडिक्शन में चले जाओगे, आप एडिक्ट बन जाओगे। तो सोशल ड्रिंकिंग अलग है, दैट इज डिफरेंट। बट देन वंस आप अल्कोहल ले लोगे बचपन में, तो ज्यादा चांस है कि आपको एडिक्शन की बीमारी लगेगी। और कोई भी एडिक्शन की बीमारी आपके हेल्थ को असर करती है। फॉर एग्जाम्पल आप टोबैको ले लो, बहुत जल्दी कैंसर हो जाएगा, मुंह का कैंसर हो जाएगा, सांस की प्रॉब्लम होने लग जाएगी, लंग्स की प्रॉब्लम होने लग जाएगी। सोचिए एक बच्चा जो 13 साल में अल्कोहल शुरू कर देता है तो वो 25 साल तक आते आते तो 12 साल हो गए लेते हुए, तो 30-35 साल के बीच में तो उसका लिवर डैमेज हो जाएगा, पैनक्रियाटाइटिस हो जाएगी, बहुत कुछ हो जाएगा। और अल्कोहल एंड टोबैको तो 15 साल और 50 साल के बीच में मौत के सबसे बड़े कारण। और ऐसा भी कहा गया है जो ड्रग्स हैं, आजकल जो ड्रग्स चल रही हैं
0: जी,
1: जो ड्रग एडिक्ट होते हैं उनकी तो लाइफ वैसे ही बहुत कम होती है। उनकी यूजुअल लाइफ नहीं होती है, लाइफ स्पैन नहीं होता है।
0: आप बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं जिनमें अल्कोहलिज्म और टोबैको को लेकर जो अब्यूज है उनकी हेल्थ के साथ हो रहा है, क्या मेंटालिटी आप देखते हैं या किस तरह से जो ट्रीटमेंट प्रोसीजर है वो चलता है और कैसे वो रिस्पॉन्ड करते हैं?
1: ये बहुत, पहले तो ट्रीटमेंट हर जगह ना तो अवेलेबल है ना एक्सपर्टीज अवेलेबल है। दूसरा, अगर आप ट्रीटमेंट देते भी हैं प्रॉपर तो इसके रिजल्ट्स बहुत खराब है।
0: अच्छा,
1: क्योंकि इसके अंदर दवाइयां कम काम करती हैं और मरीज की तरफ से जो चेंज है, जो बदलाव है उसको लाना है, उसके थॉट्स में जो चेंज लाना है, एक्शन में जो चेंज लाना है, इमोशनल स्टेट में जो चेंज लाना है, वो उस मरीज को ही करना है। उसकी फैमिली सपोर्ट कर सकती है लेकिन दवाइयां एक हद तक ही कारगर है। तो जो दवाइयां हैं वो ठीक है, विड्रॉल है कि अगर छोड़ना है तो हम विड्रॉल का ट्रीटमेंट देते हैं जिससे कि वो छोड़ना उसको थोड़ा सा कंफर्टेबल रहे, लेकिन ये दवाइयां पूरी जिंदगी नहीं चलती। उसको एक ऑब्सेशन है, आप सोचिए एक अट्रैक्शन है, एक्सट्रीम अट्रैक्शन है अल्कोहल के प्रति या तंबाकू के प्रति या ड्रग के प्रति। तो वो जब एक बार छोड़ देता है अब उसको वापस वो नहीं लेना, तो उसके लिए उसको बहुत मेहनत करनी पड़ती है।
0: राइट,
1: और वो जो समझ है और जो आप इसको बोल दीजिए, चलिए मैं विल पावर बोल देता हूं, जितना जल्दी कोई भी नशा शुरू होता है चांसेस ज्यादा होते हैं कि वो उसका एडिक्ट बन जाए। एक तो सोशल इंटेक होता है, जैसे सोशल ड्रिंकिंग है कि शराब को कभी होली दिवाली पिए, लेकिन जो बच्चे 15 साल के पहले किसी भी चीज को लेते हैं, फॉर एग्जांपल अल्कोहल को ही लेते हैं, तो उनका चांस एडिक्ट होने का करीब करीब 50% है, मतलब 100 बच्चे अगर लेंगे तो 50 बच्चे जो है एडिक्ट बन जाएंगे इन फ्यूचर। अगर ये ही 21 साल के बाद लिया जाए तो करीब करीब जो प्रतिशत है वो होगी 8-12% होगी उनके उनका चांस होगा कि वो एडिक्ट बन जाए। इसलिए पेरेंट्स को ये ध्यान रखना चाहिए और बच्चों को भी ये ध्यान रखना चाहिए, उनसे बार बार बात की जानी चाहिए कि आपको एक्सपोज किया जाएगा सोसाइटी में, आपके खुद के ही फ्रेंड्स करेंगे, आपके सीनियर्स करेंगे, जहां आप जॉब कर रहे हैं वो लोग करेंगे, कुछ तो इसका बिजनेस करते हैं वो लोग करेंगे कि भाई आप ये ट्राई करो, एक्सपेरिमेंट करो। तो बच्चों को ये सिखाना है कि एक्सपेरिमेंट कुछ चीजों से नहीं करना। किन किन चीजों से? टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट्स, एल्कोहल, ड्रग्स ऑफ अब्यूज, फॉर एग्जाम्पल हशीश, चरस, गांजा, कोकेन, मौली, ऐसे ढेर सारे पदार्थ। दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि एक तो जो नशा है उसका ट्रीटमेंट हर जगह आपको मिलेगा नहीं, नॉट एवरीबडी इज ट्रेन्ड टू ट्रीट सच डिजीजेस रादर एडिक्शन। दूसरा, इसका जो रिजल्ट है वो ही बहुत खराब है, मतलब आप देखिए कि अगर अच्छे सच्चे सेंटर में भी आप देखा जाए तो करीब केवल 50% ही छोड़ पाएंगे, बाकी लोग नहीं छोड़ पाएंगे। अच्छा। क्योंकि जो दवाइयां हैं वो एक हद तक काम करती हैं, इम्पॉर्टेंट चीज जो काम करती है कि वो जो एडिक्ट है वो अपने थॉट्स में, अपने एक्शंस में और अपने इमोशंस में कैसे चेंज लाए। वो क्या चेंज लाना है वो ना तो आसपास के लोगों को पता है, तो उन लोगों को कैसे ढूंढे कि जो ये चेंज ला सकते हैं उसके अंदर। तो वो सपोर्ट मिलना मुश्किल होता है, सबको नहीं पता कि कहाँ वो सपोर्ट मिले। दूसरा, इस एज के अंदर जो हमारा ब्रेन का एक पार्ट होता है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स,
0: जी,
1: वो डिसाइड करता है कि मुझे अब ये नशीला पदार्थ आगे लेना है या नहीं लेना है।
0: Now, what will be your message for all, अपनी overall जो health है, जो overall health है, उसको अच्छा रखने में किस तरह की भूमिका हर शख्स निभा सकता है, क्या कर सकता है?
1: जी, तो मैं तो ये कहना चाहूंगा कि जो हेल्थ है वो एक बहुत इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट है लाइफ, क्योंकि हमारा जो जो हमारा फोकस है वो हेल्थ के ऊपर ना होके और दूसरी जगह ज्यादा है, पहली चीज। दूसरी, हेल्थ केवल ये नहीं है कि केवल फिजिकल डिजीज हो, ऐसा नहीं है। तो फिजिकल जो डिजीज है उनसे भी दूर रहना है, मेंटल इलनेसेस से भी दूर रहना है, इमोशनल प्रॉब्लम से भी दूर रहना है, आपको सोसाइटी में अच्छी तरह रहना आना चाहिए, आपके रिलेशनशिप अच्छे होने चाहिए, आपकी जो स्पिरिचुअलिटी है वो भी अच्छी होनी चाहिए और आपकी फाइनेंशियल हेल्थ भी अच्छी होनी चाहिए। ये सब एक स्वास्थ्य जरूरी है। अब अगर आप चाहते हैं कि आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ ठीक रहे, मैंने तीन आयाम बताए जिसमें बैलेंस जरूरी है। एक आपकी फिजिकल एक्टिविटी एंड एक्सरसाइज या श्रम, दूसरा विश्राम, नींद या स्लीप एंड रेस्ट, और तीसरा हो गया आपकी डाइट या आहार। सो इनका बैलेंस इन तीनों में बहुत जरूरी है। फिर हम इसमें दो चीज और ऐड कर देते हैं, एक वैक्सीनेशन, जो कि कुछ कुछ बीमारियों से बचाता है। अगर वैक्सीनेशन नहीं होगा तो वो बीमारियां होंगी, तो इसलिए पेरेंट्स को जरूरी है कि वो अपने बच्चों को, बच्चों के वैक्सीनेशन पे बहुत जरूर जरूर ध्यान दें। और एक चीज हमने और डिस्कस करी वो है एडिक्शंस, एडिक्शन लाइक तंबाकू, एल्कोहल एंड वेरियस ड्रग्स। ये बच्चे की आगे की लाइफ को पूरी तरह बर्बाद कर देता है, लाइफ स्पैन कम कर देता है और पूरी की पूरी तरह फैमिली लाइफ खराब हो जाती है। सो मेरा मैसेज ये है कि कोई भी बच्चा जो है पर्टिकुलरली 21 साल से पहले इन चीजों का एक्सपेरिमेंट ना करे। बाकी इन सब चीजों के बारे में और भी ज्ञान अर्जित करना बहुत जरूरी है। तो आपको केवल डॉक्टर्स ही नहीं बट बहुत सारे लोग हैं जो आपको डाइट के बारे में, एक्सरसाइज के बारे में और रेस्ट के बारे में बता सकते।
0: बिल्कुल, लेकिन सही स्रोत से ही आप अपनी जो भी ये जानकारी है उसको लें, वो बहुत जरूरी है
1: जी।
0: सो डॉक्टर हर्ष रुदावत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस खास बातचीत के लिए और इतनी अहम बातों को सभी के साथ शेयर करने के लिए, इस अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए। थैंक यू सो मच।
1: थैंक यू सुषमा जी, और आप ये टॉपिक लेकर आई और ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है और अभी प्रेजेंट सिनेरियो के लिए तो बहुत ही बहुत एप्ट है। तो थैंक यू।
2: जयपुर से निकली गाड़ी दिल्ली चले हल्ले हल्ले, दिदिन तिनक दिन, दिदिन तिनक दिन, अरे हल्ले हल्ले क्यों, जल्दी जल्दी डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से जयपुर रेडियो ऐप अभी इसी वक्त और आनंद लीजिए अपने मन पसंद गीतों का कहीं भी कभी भी। जयपुर रेडियो, आपका अपना रेडियो।

0: be sad now. You can do all of this on a click away through Jaipur Radio. Send messages and dedicate your favorite songs to your loved ones on your favorite program. Your voice, your identity. So what are you waiting for? Download Jaipur Radio app through Play Store and tune into your favorite songs. Celebrate your special occasion only on your own radio, Jaipur Radio.
1: डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का ये जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, आपकी आवाज़ आपकी पहचान। आज एक ऐसे विषय को लेकर हम उपस्थित हुए हैं जिस विषय की आज के संदर्भ में बहुत अधिक सार्थकता है, और वो विषय है हमारी दिनचर्या, हमारा खान पान, और उसमें यदि योग को शामिल कर लें तो क्या बात है। तो इस दिनचर्या को जब तक हम नियंत्रित नहीं करेंगे, नियोजित नहीं करेंगे, तब तक हम कई बार कहते हैं कि हम बहुत बहुत व्यस्त रहता हूं, बहुत बिजी रहता हूं। असल में जो ऐसा कहते हैं वो ना तो व्यस्त रहते हैं ना बिजी रहते हैं, वो अस्त व्यस्त रहते हैं। यानी उनकी लाइफस्टाइल जो है वो बहुत ही इधर उधर होती है, कोई भी समय निर्धारित नहीं होता, ना उनके सोने का, ना उनके खाने का, ना उनके पीने का, ना जीने का। तो जीना दुभर हो ही जाता है ऐसे में। तो इसी चिंतन को लेके, इसी विषय को लेके हमारे साथ आज हैं कला सिंह बिट्टू। हम वेलकम कर रहे हैं और आप अपनी कला से हमें देंगी सलाह, और यदि इनकी सलाह हम मानेंगे और उसको व्यवहार में अपने जीवन में लाएंगे तो हमारी दिनचर्या, हमारा जो रोजमर्रा का जीवन है वो सुखी और समृद्ध हो सकता है। तो वेलकम है कला सिंह बिट्टू का जोधपुर राजस्थान से जयपुर रेडियो के इस मंच पर, गुलाबी नगरी जयपुर के इस मंच पर, जिसका नाम है आपकी आवाज आपकी पहचान। और आज कला सिंह अपनी आवाज के माध्यम से आपको बहुत ही उपयोगी सलाह देने आई हैं पूरी दुनिया को, क्योंकि हमारा ये मंच, ये आवाज पूरी दुनिया तक पहुंचती है। तो वेलकम है, स्वागत है कला जी आपका।
2: बहुत बहुत शुक्रिया सर। मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है एज ए हेल्थ कोच और एज ए योगा एक्सपर्ट
1: जी,
2: आफ्टर कोरोना मैं बहुत बीमार हो गई थी सर, और सांस की दिक्कत थी मुझे, उसके बाद मुझे सर्वाइकल पेन भी स्टार्ट हो गया, और कोटा शिफ्ट होने के बाद पानी की वजह से रूटीन चेंज हो गया, तो डाइजेस्टिव सिस्टम भी बिगड़ गया, मेरे हेडक भी मेरे शुरू हो गया था, और विमेंस इश्यूज भी मुझे काफी प्रॉब्लम हुआ था पीसीओडी में। तो मैंने सर इसी दौरान अपना योगा में डिप्लोमा किया गुरुकुल यूनिवर्सिटी से, स्वामी नारायण गुरुकुल यूनिवर्सिटी अहमदाबाद। तो उस दौरान जब योग, हाँ जी सर, तो जब मैंने अपना योगा में डिप्लोमा शुरू किया तो आप बिलीव नहीं करेंगे कि एक एज के बाद आपसे स्टडी नहीं होती, और अगर आप बीमार हैं तो बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत की और मैंने अपना योगा में डिप्लोमा स्टार्ट किया। जैसे जैसे मैं योग करती गई तो मुझे चेंजेस लगे कि मेरा सर्वाइकल चला गया है, मेरा एड़ी में दर्द था वो चला गया है, मेरे विमेंस इश्यूज थे वो चले गए, मेरे जॉइंट्स पेन चले गए, और जो हेडक माइग्रेन था, बैक पेन था, सब गायब हो गए, मुझे कब गया पता ही नहीं चला सर। तो ये सारा जो संभव हुआ है जी, ये सब योग के माध्यम से पॉसिबल हुआ।
1: स्टडी के साथ आप उसका प्रैक्टिकल भी करती रही, मतलब ये था।
2: बिल्कुल हाँ जी, और उसके दौरान जब मेरा ये कंप्लीट हुआ तो वहीं से मैंने स्वामी नारायण गुरुकुल यूनिवर्सिटी से अपना हेल्थ कोच का डिप्लोमा भी किया, क्योंकि मुझे कमी लगी कि अभी भी कुछ कमी है, कुछ और करूं कि मैं स्वास्थ्य को लेके ना केवल अपना ध्यान रख सकूं बल्कि अपने परिवार, अपने फैमिली, दोस्त, जितने भी जानकार हैं उनको भी उसका बेनिफिट हो।
1: बिल्कुल।
2: आजकल क्या है सर, दवाइयां तो सारे ही खाते हैं। उसका मेन रीजन जो मैं मानती हूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस है, वो है हमारी दिनचर्या और हमारा खान पान सर
1: जी।
2: तो हमारी जो दिनचर्या है
1: जी,
2: जैसे देर रात तक सोना, सुबह सूरज 9 बजे तक लोगों का उठना, है ना, सूर्योदय से पहले उठ जाएं तो उसके बहुत फायदे हैं, और बहुत देर तक सोते रहें तो सर बहुत नुकसान है। बिकॉज मैं स्पोर्ट्स पर्सन रही हूँ तो मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ, मैं 5 बजे उठ जाती हूँ।
1: बिल्कुल, हम यही पहुंच पूछने वाले थे और यहीं पहुंचने वाले थे कि आप एक स्पोर्ट्स पर्सन भी हैं और योग तो आपने अभी किया है स्टार्ट, तो अपने स्पोर्ट्स लाइफ के बारे में आपने क्या क्या अचीव किया ये भी बताएं।
2: जी, मैं जब 13 साल की थी तो मैंने बास्केटबॉल खेलना शुरू कर दिया था और मेरा फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट, फर्स्ट स्टेट, फर्स्ट नेशनल था सर, और कम से कम मैंने 10-15 नेशनल खेले होंगे, यूनिवर्सिटी, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी। और आफ्टर मैरिज, बिफोर कोरोना सर, हमने मास्टर कप खेला, उसमें हमने गोल्ड लिया था राजस्थान टीम ने
1: जी,
2: प्लस 45 में। तो बस वही है कि मैं अपनी हेल्थ को लेके जागरूक रही हूँ शुरू से, लेकिन आफ्टर योगा एक्सपर्ट हेल्थ कोच के बाद तो मैं इतनी सजग हो गई हूँ कि जब मैं कोई चीज उठाती हूँ सोचती हूँ कि मैं ये खाऊं कि नहीं खाऊं, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या मुझे नुकसान करेगा।
1: एक स्पोर्ट्स पर्सन और एक साथ में योग के जानकार होना, ये दोनों का कॉम्बो जो है वो आपको कितना भाया, कितना अच्छा लगा, और उसमें एक दोनों चीजों की जो निर्भरता है वो कैसे प्रभावित कर सकती है जीवन को, जीवन शैली को।
2: जी सर, अब जैसे मैं पहले स्पोर्ट्स पर्सन थी तो मैं केवल अपना ध्यान रख पाती थी कि मुझे वॉक करना है, एक्सरसाइज करना है। बिकॉज अब योगा एक्सपर्ट बनने के बाद और हेल्थ कोच भी बनने के बाद सबसे पहला मैं यही कहूंगी, सभी अपना रूटीन सुधारें, जो हमारा पेट है उसको डस्टबिन ना बनाए, है ना। हमारा जो एक मोटो कहते हैं वो हमें ये सिखाया गया, पेट को डस्टबिन मत बनाओ, आप खोजते ही जा रहे हैं, खोजते ही जा रहे हैं, खोजते ही जा रहे हैं, वो नुकसान करता है। अगर हम टाइम पे सो जाएं तो हमारी मॉर्निंग में नींद आराम से खुल जाती है
1: जी।
2: और उठते ही सर हमें चाय कभी नहीं लेनी चाहिए, उठते ही आप अपना गर्म पानी, उसमें शहद डाल दीजिए, नींबू डाल दीजिए, आप अपना चिया सीड्स ले सकते हैं रात को 1 चम्मच भिगो के मॉर्निंग में। उससे ना केवल हमारा वेट लॉस होता है बल्कि सर उसमें कैल्शियम भरपूर मात्रा में है
1: जी।
2: तो बॉडी को बहुत फायदा करता है। कई बार ऐसा होता है हम दही नहीं खा पाते हैं, दूध भी नहीं पीते हैं, तो चिया सीड्स में वो सब कुछ है जिसकी बॉडी को रिक्वायरमेंट है। उसके बाद में आता है सर आपका वेट बढ़ता है। अगर आपकी दिनचर्या गड़बड़ा गई है, आपके ना उठने का टाइम है, ना सर आपके लंच का है, ना आपके डिनर का है, कोई समय फिक्स नहीं है, तो सबसे पहले आपका वेट बढ़ेगा। और वेट बढ़ने से बहुत सारी बीमारियां लगती है, बहुत सारी सर। सबसे पहले हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बिगड़ेगा, हमारा लिवर फैटी हो जाएगा सर, और बीमारियां बस वहीं से शुरू है आजकल। तो हमें अपने लीवर की देखभाल करनी है तो मैं यही कहूंगी, जितना हो सके आप उतना ही खाओ जितना हमारी बॉडी को जरूरत
1: जी।
2: आप फ्रूट्स खाइए, आप सैलेड खाइए, आप दही लीजिए, आप हरी सब्जियां खाइए, और इवनिंग में पॉसिबल हो तो 6 बजे से पहले अपना डिनर ले लीजिए, आपका वेट कभी नहीं बढ़ेगा। एक बार करके देखिए। और किसी को अपना डाइजेस्टिव सिस्टम मजबूत करना है तो सर रात को 2 चम्मच, 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच जीरा भी भिगो दीजिए, और मॉर्निंग में उसका पानी पीना आपको 1 महीने तक। जो चेंजेस जाएंगे वो आप खुद देख लीजिए, ना केवल आपका वेट कम होगा बल्कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, आपकी जो जठर अग्नि है वो इतनी तेज हो जाए कि आप जो भी खाएंगे वो हजम हो जाएगा। और जब खाना हजम हो जाएगा सर, तो हमारे हेडेक, हमारे गैस की प्रॉब्लम, है ना, कुछ भी नहीं होगा हमारी बॉडी में। और उसके साथ अगर हम आसन कर लेते हैं तो वो सोने पे सुहागा हो जाता है।
1: बहुत बहुत उपयोगी बातें आप बता रही हैं, लेकिन इनको अमल कैसे करें आज की जो लाइफस्टाइल है उसमें, उसके लिए कुछ टिप्स आप देंगी?
2: सर बिल्कुल, मैं इसके लिए टिप्स दूंगी, क्योंकि सबसे पहले सर जो हमारी जो दिनचर्या है ना, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। अभी लास्ट ईयर दिसंबर में मेरे फादर बीमार थे, बेड पे आ गए थे, है ना, और मेरी मम्मा के फोर्थ स्टेज का कैंसर था जबड़े का। तो कुछ परिस्थितियां ऐसी आन पड़ी कि भैया भी ऑफिसर हैं हॉस्पिटल में, रात को मम्मा को वो देखता, दिन में मैं देखती, इधर पापा, है ना, कि आप बहुत सारे जने हो तब कोई दिक्कत नहीं है, तो क्या करूं कि मैं अपने पापा को खड़ा कर दूं सर। तो मैं रात को उनके पास ही सोती थी, तो वो पहले क्या करते थे, उनकी दिनचर्या बताती हूँ मैं। वो सुबह देरी से उठते थे, फिर वो चार चार दिन से नहाना धोना करते थे अपना, और उनकी एज है 79 ईयर्स ओल्ड सर। तो मैंने सबसे पहले सर, मैं उनके पास सोती थी, मैं उनसे बातें करने लगी, तो मैंने रूटीन यहाँ सुधारा कि वो जो शाम को डिनर लेते ही 6-7 बजे सो जाते थे ना, मैं उनको रात को 10 बजे सुलाने लगी, तो वो सुबह मॉर्निंग में अपने आप उनकी नींद पूरी होती 6 बजे उठने लग गए। फिर वो एक दिन छोड़ के एक दिन नहाने लगे सर
1: जी।
2: अब कंडीशन है, वो खुद रोज नहा लेते हैं, अपना वॉक कर लेते हैं, अपना जो अंडर गार्मेंट्स वगैरह है वो भी खुद धोने लग गए हैं,
1: बहुत बढ़िया।
2: अपना एप्पल काटना, खाना, है ना, तो स्ट्रेचिंग आज भी वो करते हैं। मैंने कहा पापा कुछ और नहीं ज्यादा, तो अपना स्ट्रेचिंग करो, उठक बैठक करो, अपना चक्की चालन आसन जो होता है, जेंट्स में प्रोस्टेंट की बहुत ज्यादा शिकायत होती है, तो उसके लिए सर चक्की चालन है, मलासन है, बटरफ्लाई है, ये कुछ आसन है जो बहुत फायदेमंद होते हैं जेंट्स के लिए। तो मेरे पापा को प्रोस्टेंट में भी बहुत फायदा हुआ, और आज माता रानी की मेहरबानी से उनको देख के कोई कह नहीं सकता कि वो कभी इतने बीमार हुए थे क्या। और अगर हम खान पान सुधार लें अपना, लाइक के जैसे चने है, मूंगफली है, हमें हाई रिच प्रोटीन लेना चाहिए सर बॉडी में।
1: बिल्कुल,
2: प्रोटीन होगा बॉडी में तभी हमारे न्यूट्रिएंट और सारी चीजें अब्सॉर्ब होगी। और विटामिन डी बहुत जरूरी है। तो लोग दिन भर एसी में बैठे रहते हैं, मैं यही कहूंगी कि जब आपको थोड़ी गर्मी लगे तो बैठे रहो, अदरवाइज आप नेचुरल लाइफ जीना सीख। अगर आप विटामिन डी नहीं लेंगे तो आप कितना भी अच्छा भोजन कर लो, हमारी बॉडी उसको ऑब्जर्व नहीं करेगी, कोई न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी में नहीं बनेगा। और जब खाना ही अच्छे से रस नहीं बनेगा सर, तो हमारा शरीर कैसे काम करेगा।
1: बहुत ही उपयोगी बात है, बहुत सामान्य शब्दों में आपने कही है कि विटामिन डी यदि हम नहीं लेंगे तो इसके लिए आपको धूप सुबह की लेनी बहुत जरूरी है, बहुत ही उपयोगी बात।
2: जी सर। तो अब आता है सर कि एक होता है ईटिंग, होता है अलग अलग। मैं यही कहूंगी कि जैसे लोग मोबाइल देख के भी खाना खाते रहते हैं, टीवी देखते हुए भी खाना खाते हैं सर, और कई बार हम बच्चों को डांट लगा देते हैं तो वो इमोशनल ईटिंग भी करते हैं, है ना, जैसे हमने मना कर दिया पिज्जा नहीं खाना तो जिद से मंगाएंगे फिर खाएंगे, है ना। तो सर ये चीजें बहुत नुकसान करती है। तो जो मैदा है, ब्रेड है, ये चाउमीन है, फास्ट फूड है, ये सब छोड़ देने चाहिए। अगर हम कोशिश करते हैं ना, तो आज जैसे मुझे आज 8-9 महीने हुए, मैं मिठाई की बहुत शौकीन हूँ सर, मैंने टच तक नहीं किया। अभी मैंने फंक्शन अटेंड किया, सुबह शाम मिठाइयां मेरे सामने वो थी जो मेरी पसंदीदा थी। छोड़ना है तो छोड़ना है, मैं सब छोड़ चुकी हूँ सर। और उससे मुझे क्या फायदा हुआ है कि एक तो आपका हेयर फॉल नहीं होता है, एक आपके नाखून नहीं टूटेंगे सर,
1: अरे वाह,
2: और तो आंखों की रोशनी भी तेज होती है सर।
1: नई बात जी, जी बहुत उपयोगी बात जी।
2: तो बस स्वास्थ्य के लेके यही है सर कि सबसे पहले डेली रूटीन सुधारना है। उस डेली रूटीन में सर टाइम पे उठना, वॉक करना, थोड़ा बहुत आप एक्सरसाइज कर लो जितना आपको आता है। कोई जरूरी नहीं है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप अपने सिद्धियां हासिल करें आसन करके, लेकिन आप वॉक करो 45 मिनट की, फिर आपको जितना आते हैं आपको एक्सरसाइज है, या आप जिम भी जा रहे हैं या आप घर पे करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको इस समय में, समय टाइम ऐसा चल रहा है सर कि हमें अपने बॉडी का ध्यान रखना पड़ेगा, हमें अपने शरीर से प्यार करना पड़ेगा सर।
1: बिल्कुल, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि आजकल जैसे देखने को मिलता है कि कोई स्टेज पे परफॉर्मेंस दे रहा है और उसके साथ ही उसको हार्ट अटैक आया या गिर गया, कोई नाच रहा है, कोई डांस कर रहा है, तो ऐसे ही कैसे जो है ना, कोई सीढ़ियां चढ़ रहा है, कुछ कोई अपने घर आ रहा है, कोई ऑफिस जा रहा है और रास्ते में कोलैप्स हो गया, तो ये सारी जो घटनाएं हो रही हैं उसका कोई ना कोई तो रीजन होगा, कोई ना कोई तो कारण होगा ही, और वो कारण इन्हीं में से निकालना पड़ेगा, क्योंकि हाँ, हमारी दिनचर्या जो है
2: सबसे पहले कि जो
1: उसमें सुधार जरूरी है।
2: प्रोटीन पाउडर बताते हैं कि आप ये लीजिए, वो बहुत नुकसान करता है सर, बॉडी को बहुत नुकसान करता है। तो ऐसे होने को नमस्कार है, किसी को कुछ भी हो सकता है, लेकिन कोशिश कीजिए कि डिब्बा बंद, पैक बंद, जो भी कोड आता है वो बंद कर दीजिए।
1: आजकल बहुत प्रचलन चल रहा है कि वो प्रोटीन पाउडर लो, बच्चों को भी, जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको भी दूध में मिक्स करके उसको पिलाओ, तो ऐसा भी देखने को ट्रेंड चल पड़ा है।
2: हाई रिच प्रोटीन जो है सर हमें मूंगफली से मिलता है, आप बिलीव करेंगे, अगर हम रात को एक मुट्ठी भर मूंगफली भिगो देते हैं और मॉर्निंग में उसका सेवन करते हैं
1: जी।
2: हम लोग अंकुरित मूंग है, अंकुरित मोठ है ना, अंकुरित अपनी मेथी है, दाना मेथी, तो अगर हम ये सब लेने लग जाएंगे सर तो हमारे बॉडी में कभी कमी नहीं होगी प्रोटीन की, और हमें ये तला फला खाने की जरूरत ही नहीं है सर। आप खुद, मैं कोटा में रह रही हूँ, सामने से रतन रावत के कचौड़ी वाला है, मुझे यूं दिल से आने लगे नहीं, मुझे नहीं,
1: कचौड़ी तो अच्छी होगी बट मूंगफली भी कोटा की अच्छी होती है, तो वो आपको प्रोटीन का सोर्स वो भी है, तो आप तो वही लीजिए,
2: सबसे बड़ा सोर्स है सर। तो हमें जैसे है, कई कहते हैं हम लोग बादाम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो आप मूंगफली खा सकते हैं सर, मूंगफली है, चने हैं, चने गुड़ खाइए, आयरन मिलेगा भरपूर आपको, और चने में वैसे भी प्रोटीन होता है क्योंकि बेसन होता है, चना होता है, वो तो जो साबुत अनाज है, दालें हैं सर, राजमा के साथ चावल होना चाहिए, रोटी के साथ दाल होती है, सांभर के साथ इडली होती है, हमारा खुद का भोजन इतना अच्छा है कि आज हमें ये मोमोज, चाउमीन, ये सब खाने की जरूरत ही नहीं है।
1: एक फैशन सा, एक ट्रेंड सा चल पड़ा है बच्चों में, वो जो नई जनरेशन है उसमें, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगी कि हम अपनी दिनचर्या को कैसे जो है व्यवस्थित कर सकें, क्या कहना चाहिए?
2: सर देखिए, जान है तो जहान है सर, तो अगर हमने अपने हेल्थ की तरफ ध्यान नहीं दिया है तो बीमारी कोई उम्र नहीं देखती है सर। समय ऐसा आ गया है कि छोटे छोटे बच्चों को हार्ट अटैक हो रहे हैं, उसका मेन रीजन ये है कि उनकी दिनचर्या सुधरी हुई नहीं है, वो लोग फिजिकली वर्क कुछ है, उनकी एक्टिविटीज है ही नहीं, वो खाते हैं लेकिन वो कैलोरी बर्न नहीं करते हैं सर।
1: तो मैं यही कहूँगी तो
2: जी आज का जो युवा वर्ग है, और कि आप अपना दिनचर्या सुधारिए, अपना अच्छा खान पान लीजिए। खान पान का मतलब ये नहीं है कि आप पिज्जा खाएं, बाहर की तरफ खींचे चलने जाएं, कोशिश करें घर पे ही खाएं, और ये वेट बढ़ रहा है तो वेट घटाना बहुत आसान है सर, वो हमारे खुद के हाथ में ही है। मैं चाहूँ तो एक महीने में अपना 10 किलो वेट घटा सकती हूँ, कुछ टिप्स देना चाहूंगी सर मैं किसी को, अगर अपना वेट लॉस करना है तो सर आप अपना ब्रेकफास्ट बंद कर दीजिए, आप ब्लैक टी, ब्लैक कॉफी लीजिए, आप सैलेड ले सकते हैं, आप फ्रूट ले सकते हैं, फिर आप अपना लंच ले लीजिए जिसमें आपके रोटी सब्जी सैलेड होना चाहिए और हरी सब्जियां होनी चाहिए, एक आपकी पसंद की कोई भी ले सकते हैं बच्चे
1: जी।
2: और इवनिंग में कोशिश कीजिए कि अगर आपके डिनर की इच्छा है तो आप 6:30 तक डिनर ले लीजिए, ताकि आप रात को सोए जब तक आपका वो खाना हजम हो जाए, आपके लीवर को रात को आराम मिले, जब भोजन अच्छे से पाचन हो जाता है हमारे भोजन का, तो हमारी बॉडी में उसका रस बनना शुरू हो जाता है। हमारे मेटाबॉलिज्म सर फास्ट काम करते हैं, और मेटाबॉलिज्म फास्ट काम करता है तो हमारी हजारों बीमारियां मिट जाती है सर। आजकल जैसे हाइपोथायराइड हो जाता है, थायराइड की दिक्कत है, तो
1: जी
2: सर थायराइड ग्लैंड है जो एक्टिव नहीं रहती है, उसके लिए भी आसन होते हैं सर, है ना। गर्दन घुमाइए राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, ऊपर पंखे को देखिए, नीचे गर्दन कीजिए, फिर ऊपर मुंह ले जाओ, मुंह को लो, फिर नीचे लाओ। तो सर कुछ आसन है जिनसे करने से हम लोग हाइपोथायराइड से भी बच सकते हैं। एक है वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम लेडीज में, बिकॉज खड़े होके वो ज्यादा काम करती है सर। एक है घुटनों की दिक्कत, है ना।
1: जी
2: तो वेरिकोज वेन्स और घुटनों की दिक्कत लेडीज में ही ज्यादा है, जेंट्स में नहीं है सर, आपने नोट किया होगा,
1: बिल्कुल
2: क्योंकि लेडीज पूरे दिन भर खड़े होके काम करती है। अब एक जमाना था कि हम लोग नीचे बैठ के खाना पकाते थे,
1: बिल्कुल,
2: और
1: आजकल
2: नीचे
1: गैस
2: बैठ
1: आने
2: के
1: के
2: पूरी
1: बाद
2: फैमिली
1: गैस
2: खाना खाते थे
1: पट्टी
2: सर।
1: पर
2: जी
1: खाना,
2: सर,
1: बिल्कुल खड़े खड़े ही सब
2: बिल्कुल
1: कुछ काम
2: सर।
1: होता। हाँ
2: या तो वो डबल बेड पे खाना खाएंगे या डाइनिंग टेबल पे बैठेंगे, है ना। सब्जियां भी वो कट करेंगे तो किचन में खड़े खड़े, तो उससे क्या वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम शुरू हो गई है सर लेडीज में। अभी मेरी फ्रेंड है, उसको डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि तुम्हें ऑपरेशन कराना पड़ेगा, बहुत पेन था उसकी। मेरे से कांटेक्ट में आई, मैंने कुछ आसन करवाए, विपरीत करनी बोलते हैं जिसको, आप लेट जाइए, अपने पैरों को दीवार की तरफ सीधा खड़ा कर दीजिए। तो सर जब वो ब्लड सर्कुलेशन है वो पैरों से वापस जब हमारे हार्ट की तरफ आता है तो सर वो दिक्कत खत्म हो जाती है।
1: उल्टा होगा वो। हाँ बिल्कुल,
2: उल्टा, हाँ हाँ जी उल्टा, और मसाज मालिश वगैरह करने से भी ये दिक्कत खत्म हो जाती है। और अगर आप नीचे बैठ के खाना खाते हैं सर, तो मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ आपको कभी घुटनों की दिक्कत नहीं होगी। जो डॉक्टर कहते हैं आपको नीचे नहीं बैठना, आपका ग्रीस खत्म हो गया, ये वो फलाना ढेकड़ा, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट है जो ठीक हो चुके हैं। तो अपना पुराना जो हम जो हमारी भारतीय संस्कृति सभ्यता, हमारे जो रीति रिवाज खान पान जो है वापस उसमें लौट आई, उसी में फायदा है सर।
1: बहुत ही उपयोगी जानकारी आपने दी योग की और अपने दिनचर्या को सुधारने की और साथ साथ खान पान पे ध्यान देने की। ये बहुत ही आज की जो जीवन शैली है उसके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी और सार्थक।

0: हो सका तो रेडियो के माध्यम से ही आपको दिलवाएंगे। जी हाँ, आप जी कुछ उदाहरण बता रही थी वो बताएं।
1: जी सर, मेरे है एक ब्रदर है, फ्रेंड के भाई हैं, तो सर उनके बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हो गया था, बहुत कर्जा सिर हो गया, इवन जेल भी हो गई थी, और वेट बहुत ज्यादा बढ़ गया था उनका, 120 समथिंग कुछ ऐसा हो गया था।
0: हैवी।
1: फिर इस दौरान उनके भैया के फादर की, अंकल की भी डेथ हो गई थी, तो मुझे मेरी फ्रेंड से ही पता चला। मैंने जैसे तैसे आंटी से सबसे कांटेक्ट किया, राजेश से मैंने बात की, तो राजेश भैया पहले तो वीडियो कॉल पे रोया, बोल ही नहीं पाया। सर किसी को मोटिवेट करना होता है तो आपको कॉल पे लेना पड़ता है, तो मैंने एक ही चीज बोली, मैंने कहा भैया ऐसा है, देखो अमिताभ बच्चन भी बर्बाद हुए थे, है ना, वक्त किसी का भी सर बुरा आ सकता है, हिम्मत नहीं हारनी थी।
0: बिल्कुल।
1: तो मैंने बहुत मोटिवेट किया, आज राजेश भैया ने अपने फिर से जॉब ज्वाइन कर ली है, और उनके 70-80 हजार तनख्वाह है सर, और अपना वेट भी मेरे पे ही है, वो 7 किलो मैंने वजन घटा दिया है 1.5 महीने में। तो मेरे लिए इससे बड़ा अचीवमेंट कुछ हो नहीं सकता कि आज जो मैंने डिप्लोमा किए हैं सर, उनसे
0: बिल्कुल
1: बहुत
0: आपके
1: फायदा हो
0: अपने
1: रहा
0: लोग
1: है,
0: तो
1: तो ये
0: कम से कम,
1: जानकारी सबको होना चाहिए। जी
0: बिल्कुल आपके अपने लोग तो जो हैं, और इसी सिलसिले में आप इस मंच पे हैं कि हम आपके जो अनुभव हैं, आपने जो प्रैक्टिकल किए हैं उसको सुन के
1: जी
0: हमारे जो लिसनर हैं, हमारे जो श्रोता हैं, वो लाभान्वित हों, उनको लाभ मिले कि
1: बिल्कुल सर,
0: हम अपनी
1: बिल्कुल
0: दिनचर्या को कैसे संभालें, योग साधना कितनी जरूरी है, सूर्य की जो रोशनी है, सूर्य की जो ऊर्जा है, क्योंकि आजकल तो सोलर ऊर्जा का जमाना भी आ गया है,
1: जी
0: तो
1: जी सर
0: वो ऊर्जा उसमें है। यदि हमने एक जगह पढ़ा था कि कुछ आदमी सिर्फ और सिर्फ धूप में बैठे रहते हैं, कुछ खाते ही नहीं है, सिर्फ सूरज की जो
1: जी
0: ऊष्मा
1: सर
0: है, जो ऊर्जा है, उसके बल पर जीवित रहते हैं,
1: बिल्कुल सर
0: तो कुछ उपयोगिता, कुछ जो प्रकृति की चीजें हैं, जो 5 तत्व हैं जिसे हम भगवान कहते हैं, वो
1: जी
0: जो
1: सर
0: भूमि है, आकाश है, जल है और अग्नि है, वायु है, यही तो हमारे जीवन
1: जी
0: का
1: सर
0: असल मूल आधार है। और इस
1: जी जी
0: आधार
1: सर
0: पर यदि हम इनको सशक्त बनाने, क्योंकि ये 5 तत्वों से ही हमारा शरीर बना हुआ है, और इनको हम
1: बिल्कुल सर
0: यदि शामिल करें पूरे तौर पे हमारे शरीर में, हमारे साथ हों ये 5 तत्व, तो हम और हमारा बल कभी कम नहीं होगा, हमारी शक्ति कभी कम नहीं होगी। हम बता दें कि कला सिंह बित्तू हमारे साथ हैं, और आप एक स्पोर्ट्स पर्सन हैं और साथ में योगिनी भी हैं, योग इनकी साधना साथ साथ चलती है, योग साधना और एक स्पोर्ट्स पर्सन होना बहुत ही दुर्लभ देखने को मिलता है, और वो दोनों कॉम्बो हमारी आज की जो प्रवक्ता हैं उनके पास हैं। तो आप अंत में कुछ कहना चाहेंगे, कुछ टिप्स?
1: अंत में सर मैं, जी सर मैं अंत में यही कहना चाहूंगी कि हम लोग किसी भी चीज को सीरियस नहीं लेते हैं। सपोज जैसे हमारे दांतों में प्रॉब्लम हो जाती है, हमारा हेयर फॉल होता है सर, हमारे नाखून टूटते हैं सर, है ना, तो कैल्शियम की कमी है, विटामिन ई की कमी है सर, है ना, इन चीजों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। इसका मतलब हमारे बॉडी के अंदर कुछ हो रहा है,
0: कुछ कमी
1: कुछ
0: हुई है,
1: गड़बड़ है
0: किसी
1: सर।
0: भी तत्व की
1: जी
0: कमी हुई
1: सर
0: है, बिल्कुल।
1: जी जी सर जी सर तो बस मैं यही कहूंगी कि सब चीजों को ध्यान में रखते हुए अपना खान पान सुधारिए, हेल्दी खाना खाइए, अपना अच्छे से एक्सरसाइज कीजिए, और सूर्य भगवान को थोड़ा सा नमस्कार करके 1 घंटा मॉर्निंग में या इवनिंग में 4 से 5 आप धूप सेवन कीजिए। तो अगर आप विटामिन डी लेते हैं सर, तो हमारी आधी बीमारियां तो वैसे ही खत्म हो जाती है। जो B12 आजकल चला हुआ है, वो यही दिक्कत है कि लोग पूरे दिन गाड़ी में एसी, ऑफिस में एसी, घर पे एसी, उनके पसीना तो सर निकलता ही नहीं है। कहते हैं कि हमारा जो स्किन है वो हमारी तीसरी किडनी है सर, अगर हमारी किडनी काम नहीं करती है तो वो काम हमारे स्किन करती है सर, पसीना निकाल के।
0: बहुत अच्छी बात कही
1: अगर
0: आपने।
1: पसीना नहीं निकला तो सर कुछ भी नहीं है, तो

0: गर्मी की आदत डाली है सर।
1: यदि स्वस्थ
0: तो
1: रहना
0: सुबह
1: है तो
0: मॉर्निंग
1: पसीना
0: में
1: निकालना बहुत
0: जी सर
1: जरूरी है ताकि टॉक्सिन
0: बहुत
1: जो है
0: जरूरी है
1: वो
0: सर
1: आउट हो सके बॉडी से।
0: जी सर। तो
1: बहुत सही बात।
0: सुबह मॉर्निंग में 4 बजे एसी बंद कर दीजिए, टाइमर लगा के, फिर देखिए आप अपने आप उठ जाएंगे, अपने आप आंख खुलेगी सर।
1: बिल्कुल, हमारे श्रोताओं की भी आंख खुल गई होगी इतनी सारी अच्छी जानकारी सुन के, और यदि उपयोग में लाएंगे तो आंख भी खुलेगी और हाथ पांव भी खुलेंगे और आप में एक नई स्फूर्ति नई ऊर्जा आएगी, ऐसा हमारा विश्वास है। हमारे साथ कला सिंह बिट्टू रही इतनी उपयोगी जानकारी के लिए, आपका बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। फिर आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। बहुत धन्यवाद कला जी।
0: थैंक यू सो मच, आभार सर।
2: थैंक यू नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी आरजे सपना देवगुप्ता और मेरे साथ हैं टेक्निकल एक्सपर्ट जगदीश अरोड़ा जी, और आप सुन रहे हैं आप सबका मनपसंद प्रोग्राम जश्न सितारा गीत गुफ्तगू। आज की हमारी मेहमान हैं डॉक्टर अलका, जो पेशे से एक सफल गायनोकोलॉजिस्ट हैं। मूल रूप से उत्तर प्रदेश से हैं, लेकिन पिछले लगभग 20 वर्षों से अमेरिका में रह रही हैं। दो बेटों की स्नेहमयी माँ होने के साथ साथ इन्होंने अपने व्यस्त पेशेवर जीवन में संगीत के लिए भी एक बहुत खूबसूरत जगह बनाई है। इनकी माताजी ने संगीत में मास्टर्स किया है और वही इनकी पहली प्रेरणा भी रही हैं। पिताजी चीफ इंजीनियर के पद से सेवानिवृत्त हुए और अब इनका परिवार मुंबई में बस चुका है। डॉक्टर अलका को बचपन से ही संगीत का वातावरण मिला, इन्होंने मंच पर भी कई प्रस्तुतियां दी हैं और पिछले कई वर्षों से स्म्यूल कैरियोके ऐप के माध्यम से भी अपनी मधुर आवाज से श्रोताओं का दिल जीत रही हैं।

0: डॉक्टर अलका जश्न सितारा गीत गुफ्तगू में आपका दिल से स्वागत है।
1: बहुत बहुत शुक्रिया। जयपुर रेडियो के श्रोताओं को भी मेरा बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार।
0: जी, हमारे श्रोताओं की आज मैं तो कहूंगी किस्मत बहुत अच्छी है कि आप जैसी कलाकार के साथ वो रूबरू होने जा रहे हैं।
1: बहुत बहुत शुक्रिया।
0: तो अलका, हम शुरू करते हैं अपने प्रश्नों का सिलसिला। जैसे कि मैंने पहले आपके इंट्रोडक्शन में बताया और आपने मुझे बताया कि आपकी माता जी ने संगीत में मास्टर्स किया है, तो
1: जी,
0: बचपन में घर का संगीत भरा माहौल कैसा था?
1: एक्चुअली आपको पता होगा कि उस टाइम में ना ज्यादा कुछ तो नहीं होता था कि हम सीख रहे हैं या कुछ कर रहे हैं,
0: जी,
1: क्योंकि वहां पढ़ाई ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होती थी उस टाइम में। तो
0: बिल्कुल
1: जब हम पढ़ाई कर रहे होते थे, और याद है लाइट चली जाती थी, तो
0: जी,
1: जब लाइट जाती थी तो हम सब बहन भाई मिलकर अंताक्षरी खेलते थे।
0: क्या
1: अब
0: बात है
1: वो होता क्या था कि डेली की ही लाइट थी उन दिनों में, थोड़े टाइम
0: जी
1: के लिए जरूर जाने होती थी, तो हमारा जो माहौल होता था उस टाइम में अंताक्षरी का माहौल होता था, तो
0: जी
1: वहां पर हम खूब गाने गाते थे, और मम्मी को भी बुला लेते थे, आ जाओ मम्मी चलो साथ में गाते
0: जी
1: हैं। तो
0: बिल्कुल
1: वो कह सकते हो कि वो एक तरह से हमारी एक तरह से पाठशाला थी।
0: जी, सबसे पहली आपकी पाठशाला वही थी।
1: पाठशाला
0: और
1: वो ही कह
0: आपने
1: सकते हो।
0: बहुत ठीक कहा कि हम सभी ने अपने बचपन में शायद ये वक्त देखा है। बिजली तो खैर तब भी क्या अब भी जाती है, भारत में तो बहुत जाती है, मुझे अमेरिका का नहीं पता। तो अभी भी जब बिजली जाती है तो तकरीबन वही एक वक्त होता है जब सारा परिवार एक साथ मिलकर बैठता है और वो वक्त हमें जोड़ता है। तो इसी के
1: सच
0: साथ हम
1: में
0: आपका एक गीत लेते हैं।

0: प्रश्नों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं डॉक्टर अलका। जैसे कि आपने कहा कि आपके जो माता पिता हैं वो आपकी सबसे बड़ी प्रेरणा हैं, तो उनके व्यक्तित्व
1: जी
0: की कौन सी ऐसी बात है जो आज भी आपको आगे बढ़ने की ताकत देती है?
1: एक्चुअली उस टाइम में इतनी सारी फैसिलिटीज नहीं होती थी जो हमको आजकल मिली हुई हैं,
0: जी
1: तो उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत अच्छे संघर्ष किया है। तो मुझे तो बस यही लगता है कि उनके संघर्ष को देखकर उन्होंने हमारे लिए कोई कमी नहीं छोड़ी। वो बोलते थे कि तुम्हें जो चाहिए हमें बताओ, हम आपको करके देंगे, पर आप बस पढ़ाई करो और अच्छी अच्छी पढ़ाई करो जिससे कि हमारा नाम रोशन कर सको। तो
0: जी
1: बस उनके लाइफ का जो संघर्ष है कि वो संघर्ष करते रहो और अपने ड्रीम्स और गोल्स की तरफ बढ़ते रहो।
0: जी तो डॉक्टर अलका, आपके परिवार में आपके मायके की तरफ से कौन कौन है?
1: मेरे मम्मी पापा
0: जी
1: और मेरा एक ब्रदर है, मेरे दो सिस्टर्स हैं।
0: अच्छा, तो आप किस
1: मेरा
0: नंबर पर
1: ब्रदर
0: आती हैं?
1: सबसे बड़ी मेरी दीदी है, फिर
0: अच्छा
1: मैं हूँ, फिर मेरा ब्रदर है, वो भी इंजीनियर है
0: अच्छा अच्छा
1: और रिलायंस में इंजीनियर है, आजकल पोस्टेड है बॉम्बे में ही।
0: अच्छा
1: और मेरी
0: जी
1: छोटी सिस्टर वो भी डॉक्टर है,
0: अरे
1: वो भी
0: वाह
1: बॉम्बे में है।
0: जी। तो जैसे कि आपने कहा कि आपको संगीत की जो प्रेरणा है वो अपनी माता जी से मिली, और जो आपकी पहली पाठशाला थी वो भी घर का संगीतमय माहौल था, तो आप डॉक्टरी की
1: जी
0: तरफ कैसे बढ़ी?
1: बस होता था ना उस टाइम में कि लड़की है तो डॉक्टर बनेगी और लड़का है तो इंजीनियर बनेगा। तो शुरू
0: बिल्कुल
1: से ही था कि बस मुझे डॉक्टर बनना है, डॉक्टर। और हम लोग बहन भाई मिलकर, मैं डॉक्टर बनती थी, मेरे बहन भाई पेशेंट बनते थे, मेरी जो छोटी सिस्टर थी वो कंपाउंडर बन जाती थी।
0: अरे वाह
1: तो हम लोगों का शुरू से ये था कि हाँ हमें डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है। और फिर थोड़ा पढ़ाई में अच्छे थे तो होता गया यही,
0: जी, तो भगवान ने आपको सच में डॉक्टर ही बना दिया।
1: डॉक्टर ही बना दिया।
0: बहुत ही रोचक ये आपकी याद है, और इसी के साथ हम आपका एक और गीत लेते हैं।

0: डॉक्टर अलका, एक गायनोकोलॉजिस्ट का जीवन आपसे ज्यादा कौन जान सकता है, बहुत व्यस्त और जिम्मेदारियों से भरा होता है। तो ऐसे में
1: जी
0: संगीत के लिए समय निकालना कितना कठिन और कितना सुकून देने वाला है आपके लिए?
1: ये आपने बिल्कुल सही कहा कि एक गायनक की लाइफ तो बहुत ही बिजी होती है, क्योंकि हमारा
0: जी
1: पेशेंट ना दिन रात नहीं देखता, वो किसी
0: जी
1: भी टाइम आ सकता है, उसका दिन में भी आ सकता है, रात में भी आ सकता है। तो हमारी लाइफ खैर बिजी तो बहुत होती है गायनिक की, पर हाँ अगर आपको कोई शौक है तो उसके लिए आप थोड़ा बहुत टाइम निकाल सकते हो।
0: जी
1: तो मैं जितनी कोशिश करती हूँ कि अगर मिल जाता है टाइम तो मैं अपने शौक के लिए जरूर निकालती हूँ।
0: जी तो डॉक्टर साहब, आजकल हम जैसे इंस्टाग्राम पे भी बहुत रील्स देखते हैं कि कई डॉक्टर्स अपने पेशेंट्स को म्यूजिक थेरेपी भी देते हैं, तो क्या आप भी इसमें यकीन रखती हैं कि अपने पेशेंट्स का स्ट्रेस दूर करने के लिए या उनके इलाज का एक भाग बनाने के लिए आप म्यूजिक को
1: नहीं,
0: प्राथमिकता देती हों?
1: हमारे पेशेंट ना जिस स्टेज पे आते हैं ना तो वो शायद म्यूजिक सुनना ही नहीं चाहेंगे, वो इतने पेन में होते हैं, वो इतने पेन में होते हैं कि वो कहेंगे ये क्या कर रही है डॉक्टर साहब, जल्दी करो जल्दी करो। या फिर अगर अगर कुछ थोड़ा सीरियस है तो फिर वो सर्जरी होती है तो सर्जरी में तो हमारा पेशेंट बेहोश होता है,
0: जी
1: तो
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: सॉरी हम उनको म्यूजिक थेरेपी नहीं दे सकते।
0: जी। तो जैसे आप पिछले 20 वर्षों से अमेरिका में हैं, तो क्या अमेरिका में आने से पहले आप भारत में भी प्रैक्टिस करती थीं?
1: जी हाँ मैं प्रैक्टिस करती थी
0: अच्छा, बताएंगे आप हमारे
1: मेरे
0: श्रोताओं को कुछ?
1: इन-लॉज।
0: हाँ जी
1: हाँ मैं आगरा में मतलब तो मेरी शादी हुई है तो
0: जी
1: आगरा में मेरे इन-लॉज का नर्सिंग होम था, तो मैं वहाँ प्रैक्टिस करती थी। फिर मेरी रेलवे में जॉब लगी तो रेलवे वाले बोलते थे कि नहीं आप प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर सकते, तो मैंने वहाँ पे
0: अच्छा
1: बस 2 साल प्रैक्टिस की, 2 साल जॉब की, उसके बाद मैंने छोड़ के अपनी प्रैक्टिस की, क्योंकि फिर अपना नर्सिंग होम है तो फिर कौन देखेगा फिर
0: जी
1: इसलिए।
0: जी
1: फिर मैंने हाँ वहाँ पे प्रैक्टिस की।
0: तो जैसे आप कह रही हैं आपका अपना नर्सिंग होम था, तो क्या आपके सास ससुर भी मेडिकल फील्ड के साथ कनेक्टेड हैं?
1: जी हाँ दोनों भी डॉक्टर थे।
0: अच्छा, तो और इस वक्त आपके ससुराल में कौन कौन है?
1: इस वक्त मेरी सासू जी हैं
0: जी
1: पर वो प्रैक्टिस नहीं करती हैं क्योंकि वो एज की
0: जी जी
1: प्रॉब्लम
0: जी
1: है,
0: जी
1: तो अब
0: जी
1: वो
0: जी
1: हाँ प्रैक्टिस नहीं कर पाती हैं, पर
0: जी
1: अभी मेरी सासू जी हैं आगरा में।
0: जी अच्छा, उन्होंने भारत में ही रहने का निर्णय लिया?
1: जी हाँ तो ये है ना कि बड़े लोग आना नहीं चाहते हैं अपना देश छोड़ के, तो बिल्कुल भी नहीं आना चाहते
0: जी
1: और अपनी
0: बिल्कुल
1: जगह जहाँ वो
0: बिल्कुल
1: शुरू से रहे हैं इतना टाइम उन्होंने बिताया है, जबकि वो
0: बिल्कुल।
1: अकेले हैं फिर भी वो नहीं आना चाहती हैं,
0: ये
1: तो
0: अक्सर आजकल की
1: मेरे
0: जनरेशन को, जो आपकी और हमारी जनरेशन है, उसे ये प्रॉब्लम बहुत फेस करना पड़ता है, क्योंकि
1: जी
0: हमारे पेरेंट्स
1: हाँ
0: के जो रूट्स हैं, जो उनका घर बार है, दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, उनको लगता है कि भारत से अगर वो चले जाएंगे तो इन सब से उनका नाता टूट जाएगा, तो वो
1: छूट
0: शायद वहीं
1: जाएगा
0: रहने का निर्णय लेते हैं।
1: जी
0: हालांकि उनका ये निर्णय हम लोगों के लिए थोड़ा पीड़ाजनक होता है, क्योंकि हम गिल्ट में आ
1: जी
0: जाते हैं कि हम कैसे उनकी सेवा करें।
1: सेवा करें बस यही होता है।
0: जी
1: डेली कॉल करते हैं वीडियो कॉल करते हैं पर वो बात नहीं होती ना कि
0: वो
1: चलो
0: बात
1: थोड़ी उनकी
0: नहीं
1: सेवा भी
0: रहती।
1: करने को मिल जाए तो वो
0: सही,
1: हो नहीं
0: बिल्कुल
1: पाता।
0: सही। तो आपको अमेरिका और इंडिया दोनों में क्या फर्क लगा? वो यहाँ की रहन सहन, वेशभूषा, बोल चाल, इन सब में क्या फर्क लगा आपको, और कौन सा
1: सबसे
0: देश
1: पहले
0: बेहतर
1: जो
0: लगा?
1: भाई जन्मभूमि कर्मभूमि है देखा जाए, वो तो जन्मभूमि
0: जी
1: हुई हमारी, ये कर्मभूमि हो गई, अब इतने टाइम से हम यहाँ पर हैं। पर अगर ऑनेस्टली कहा जाए तो मुझे तो अमेरिका ज्यादा पसंद आया, एक तो
0: जी
1: लाइफस्टाइल और सब कुछ, मतलब जितना जो हिंदू कल्चर यहाँ पर हम लोग सेलिब्रेट करते हैं या जो भी फेस्टिवल्स हम यहाँ सेलिब्रेट करते हैं, मुझे लगता है आजकल इंडिया में लोग इतना कर पाते हैं। हम हर फेस्टिवल चाहे वो रक्षाबंधन है चाहे वो जन्माष्टमी है चाहे वो दशहरा है, आजकल मैंने देखा है हाँ सब फेस्टिवल हम यहाँ इतने अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, मिलके करते हैं, खूब धूमधाम से करते हैं। एंड कभी कभी तो जैसे होली है वो हमारे हर वीकेंड पे होता है, मार्च
0: अरे
1: में होली
0: वाह,
1: आती है
0: क्या बात है,
1: हर वीकेंड हम होली खेलते
0: क्या बात है,
1: हैं।
0: क्या बात है।
1: दिवाली हर वीकेंड पे दिवाली होती है, किसी के घर होती है या किसी मंदिर में होती है किसी ग्राउंड में होती है,
0: जी।
1: जो
0: और
1: अगर
0: मैंने
1: ऐसे
0: एक बात
1: कम
0: और महसूस की है, यहाँ इस देश में जो अमेरिका है, एक दूसरे के प्रति जो रिस्पेक्ट है, आदर की भावना है, वो भी ज्यादा है एज
1: बहुत
0: कंपेयर
1: ज्यादा है
0: टू। हाँ
1: जी हाँ। अगर आप वॉक कर रहे होगे ना, अगर आप किसी को नहीं भी जानते होगे तो वो अगर आई टू आई कांटेक्ट होता है तो आपको हेलो किए बिना नहीं जाएंगे यहाँ से,
0: जी
1: आप
0: जी
1: वॉक करे होंगे तो वो हेलो हाय हाउ आर यू ये तो बोलेंगे ही, भले आप उनको जानते हो कि नहीं जानते हो। इंडिया
0: जी
1: में तो शायद पता नहीं आजकल क्या
0: नहीं
1: है,
0: वैसे
1: पर
0: इंडिया में भी ये सब तो आजकल होता है, वहां पर जब हम वॉक्स पे
1: होता है।
0: जाते हैं हेलो हाय नहीं होती लेकिन राम राम जरूर हो जाती है, तो वो अपना अपना एक
1: अच्छा
0: तरीका होता है सबका विश करने का, बट
1: जी।
0: ये सब तो खैर वहां पर भी है। तो डॉक्टर साहब आपको
1: होते
0: ये
1: होते
0: कैसे, आपको क्या लगता है कि संगीत ने अमेरिका में रहते हुए भी आपको अपनी भारतीय जड़ों के साथ जुड़े रखा है, कोई इसका भी कोई
1: बिल्कुल
0: इसमें
1: बिल्कुल,
0: योगदान है?
1: क्योंकि हम ना एक टेम्पल से जुड़े हुए हैं,
0: अच्छा
1: तो हम हर संडे को वहां जाते हैं।
0: अच्छा
1: मेरे हस्बैंड उस कमेटी के मेंबर भी हैं, तो हम लोग हर संडे को जाते हैं। तो वहाँ फेस्टिवल्स होते हैं, और हर संडे को एक आधा घंटे का एक भजन प्रोग्राम होता है,
0: जी
1: तो वहां पे जाके हम भजन गाते हैं। तो वो उस तरह से भी आप कह सकते हो कि संगीत से जुड़े हुए हैं।
0: जी जी जी जी जी बहुत बहुत बहुत ही खूबसूरत बात आपने ये बोली कि आप मंदिर में जाकर भी जो संगीत संध्या करती हैं और उसका हिस्सा बनती
1: जी
0: हैं उसने आपको आपकी भारतीय जड़ों से जोड़े रखा है। बहुत
1: जोड़ा
0: खूब
1: हुआ है बिल्कुल।
0: जी, और यहीं पर हम आपका एक गीत और लेते हैं।

0: डॉक्टर अलका, आप एक सफल कलाकार हैं, एक सफल गायिका भी हैं और आपकी स्म्यूल कैरियोके पे एक बहुत अच्छी फैन फॉलोइंग भी है, तो निसंदेह आपने मंच पर भी काफी परफॉर्मेंसेस दी होंगी।
1: जी हाँ, आजकल तो इंडिया में तो काफी स्मॉल मीट्स होती
0: जी
1: हैं,
0: जी जी
1: तो जब भी मैं इंडिया जाती हूँ, अगर कोई स्मॉल मीट होती है तो मैं उसको अटेंड करती हूँ और वहां पर कह
0: जी
1: सकते हैं कि स्टेज परफॉर्मेंस दी है।
0: और बिल्कुल उत्तर प्रदेश में तो बहुत बहुत ही होती हैं स्म्यूल
1: बहुत होने लगी है अब तो। हाँ, अब
0: मीटिंग्स।
1: तो बहुत होने लगी है, हर सिटी का नाम लो और सिटी में स्कूल मीट हो रही होती
0: जी
1: है।
0: बिल्कुल
1: नहीं, वही मैंने कहा, अगर मेरे टाइम में अगर कोई स्कूल मीट होती है तो मैं जरूर अटेंड कर लेती हूँ।
0: जी। आपको ये भी तो रहता होगा कि चलिए अपने दोस्तों से मुलाकात हो जाएगी।
1: जी हाँ, इसी बहाने मुलाकात हो जाती है।
0: जी, तो क्या कोई ऐसा स्टेज परफॉर्मेंस जो आपको अभी तक याद हो, अभी भी आपके दिल के बहुत करीब हो और आप हमारी श्रोताओं के साथ वो वाकया साझा करना चाहती हो?
1: मेरा मेडिकल कॉलेज का मैं बता सकती हूँ कि वो मुझे थोड़ा सा, मेडिकल कॉलेज में जब मैं फर्स्ट ईयर में गई थी तो वहां पर एक स्टेज परफॉर्मेंस, हमारा प्रोग्राम होते थे वहां पर, तो मुझे
0: जी
1: बोला गया कि अरे तुम अच्छा गाती हो, चलो एक स्टेज परफॉर्मेंस देना अपना करना। हमारे बैच का प्रोग्राम था वो, तो हमारे बैच वालों को करना था। अब इतने बड़े ऑडिटोरियम में जहाँ पे 3,000 स्टूडेंट्स, फिर टीचर्स,
0: जी
1: प्रोफेसर, उनकी वाइफ, इतने सब लोगों के सामने स्टेज पे पहुंचकर मेरा तो हो गया नर्वस। पर
0: हाँ
1: मेरे जो फ्रेंड्स थे वो पीछे से इतना बूस्ट कर रहे थे, इतना मतलब कर रहे थे, अरे नहीं नहीं कर ले, हो गया हो जाएगा, पीछे से ना। और किसी भी ऑडियंस को मत देखना, बस ऊपर देख, कहीं और देख, ऑडियंस को मत देखना। तो मैंने वहां पे परफॉर्म किया था अजीब दास्तां है ये,
0: अरे वाह, क्या
1: और
0: बात
1: वो
0: है।
1: गाना मेरे लिए इतना फेमस हुआ कि मतलब लोग मुझे कहते हैं, वो अलका जी का जो सॉन्ग है ना अजीब दास्तां है, वो प्ले कीजिए, वो
0: क्या
1: सुनाइए।
0: बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो आप स्म्यूल तक कब से गा रही हैं?
1: मैं स्मूल पर हूँ 2017 से।
0: जी। तो स्म्यूल पर जो आपको स्म्यूल ने मंच दिया है गायकी का, क्या इस मंच ने आपकी संगीत यात्रा में कोई बदलाव लाया है? कोई आपके परफॉर्मेंसेस आगे से बेहतर हुई हैं? रियाज आपका ज्यादा पक्का हुआ है? स्म्यूल में आपको गाकर क्या लगा? आप में क्या डिफरेंसेस आए हैं?
1: बहुत, ये तो मैं तो कहूंगी, क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस है वो तो यही है। 2017 में मैं जो गाती हूँ, गाती थी, मैं सुनती हूँ अगर,
0: जी
1: और अब की सिंगिंग में बहुत डिफरेंस आया है।
0: जी
1: एक्चुअली उस टाइम में शायद हमें इतना नॉलेज नहीं थी या आइडिया नहीं था कि कैसे गाना है, बस ट्रैक देखा और गा दिया। जब अब सुनते हैं ना तो अब लगता है यार एक बार यूट्यूब सुन तो लेते, ओरिजिनल सॉन्ग सुन तो लेते कि
0: जी
1: उसमें जो
0: बिल्कुल
1: और कमियां हैं, क्योंकि हम लोग
0: बिल्कुल
1: को कुछ तो इतने पॉपुलर सॉन्ग है ना कि वो ऐसा लगता है अरे ये तो हमारे बाएं हाथ का खेल है, यो गा
0: जी,
1: देंगे वो
0: ये तो
1: गा देंगे।
0: चुटकियों में गा देंगे हम। जी
1: हाँ, पर जब बाद में सुनते हैं और ओरिजिनल सॉन्ग सुनते हैं, मैंने कहा वाह, इन्होंने कितने अच्छे से लिया है इस वर्ल्ड को, इन्होंने कितने अच्छे से पॉज लिया है। तो अब मैं चीजों को इतनी बारीकियों से सुनती हूँ ना, पहले यूट्यूब में, फिर मैं अपना इनवाइट ओपन करती हूँ, और मतलब इतना फर्क तो आया है, बहुत डिफरेंस आया
0: जी,
1: है सिंगिंग
0: ये
1: में,
0: बात
1: मुझे
0: आपने
1: मुझे
0: बिल्कुल
1: ऐसा
0: सही
1: लगता है।
0: कही है। किसी भी हम म्यूजिक लेजेंड का कोई भी गीत, चाहे हम 10 बार सुने, चाहे 20 बार सुने, जब भी हम सुनते हैं तो हमें हमेशा कोई ना कोई नई चीज उसमें मिल जाती है। कोई हरकत
1: जी
0: कहाँ
1: जी
0: पे लेनी है, कोई सरगम किस
1: जी
0: तरह छेड़नी है, कुछ ना कुछ हम
1: जी
0: हमेशा नया सीखते ही सीखते हैं। तो
1: जी
0: आपको किन के गीत पसंद हैं? आप जैसे कितने हमारे लेजेंड्स हैं, लता जी हैं, महेंद्र कपूर जी हैं, रफी साहब हैं, आपको कौन से सिंगर्स के गीत पसंद हैं?
1: एक्चुअली सिंगर्स के तो सभी के गाने बहुत पसंद हैं,
0: जी
1: पर कुछ कह सकते हैं कि जैसे कुछ फेवरेट होते हैं जिनके मुझे, मतलब शुरू से मेरे को इतना अच्छे लगते थे,
0: जी
1: किशोर कुमार जी एंड आशा भोसले के डुएट्स, तो बस कुछ मिल जाए गाने को म्यूजिक
0: जी। और खासकर अगर आरडी बर्मन जी का म्यूजिक हो साथ में
1: हो, ओहो, तो
0: तो बहुत
1: बस
0: ही
1: सोने पे सुहागा।
0: इररेजिस्टिबल कॉम्बिनेशन बन जाता है। जी।
1: जी
0: तो डॉक्टर साहब, अगर मैं आपको कहूं कि हमारे श्रोताओं के लिए आप आशा जी या किशोर दा का कोई गीत समर्पित कीजिए, तो आप कौन सा गीत चुनेंगी?
1: वेरी टफ क्वेश्चन।
0: जी
1: इतने सारे सॉन्ग्स में से जो कि
0: जो
1: इनके इतने अच्छे हैं, उनमें से एक बताना तो बहुत ही मुश्किल
0: कि
1: काम है।
0: आप, मैं अगर अभी कहूं कि हमारे श्रोताओं को समर्पित कीजिए।
1: ये तो बहुत मुश्किल काम है, पर हाँ अच्छा, ये लोग सॉन्ग कर सकते हैं अपने श्रोताओं को समर्पित, कि हाल कैसा है जनाब का, हाल
0: अरे
1: कैसा है
0: वाह।
1: श्रोताओं आपका।
0: तो आपसे इतनी
1: इसमें
0: सी गुजारिश है कि अभी आप गा के सुना दीजिए हमारे श्रोताओं के लिए ये
1: अरे
0: गीत।
1: अरे सपना जी, बड़ा मुश्किल काम है ये तो। इतने वेरिएशन से इस सॉन्ग में, और दोनों ने इतना अच्छे से परफॉर्म किया है, किशोर कुमार
0: जी
1: जी के हीरोइन और आशा जी के, वो नखरे ना मधुबाला जी के जो नखरे, बिल्कुल आप उनकी सिंगिंग में पता लगा सकते हो कि उन्होंने मधुबाला जी के लिए गाया होगा,
0: अरे बिल्कुल
1: जो उनकी
0: बिल्कुल
1: अदाएं हैं।
0: जी जी जी जी जी
1: तो
0: तो हो जाए।
1: अभी
0: चलिए मैं किशोरदा
1: चलिए दो
0: बनती हूँ
1: लाइन
0: आपके लिए,
1: सुनाती
0: दो
1: हूँ।
0: लाइंस में मैं
1: अच्छा
0: किशोरदा बन जाती हूँ आपके लिए, आप
1: ठीक
0: आशा जी बन जाएंगी। ठीक,
1: है,
0: सिर्फ दो
1: चले
0: लाइन
1: ये
0: है
1: सही रहेगा
0: ना।
1: जी। हाँ
0: हाँ।

0: मुझे लगता है उल्टा हो
1: उल्टा हो
0: गया।
1: गया ना, ऐसे मुझे भी लग रहा है कि मैं अटक गई। चलो कोई बात
0: हाँ
1: नहीं।
0: कोई बात नहीं, चलिए इस बहाने
1: मैं
0: आपके
1: किशोर
0: साथ
1: बन गई,
0: मुझे
1: आप
0: गाने का
1: आशा बन
0: मौका मिल गया।
1: गए।
0: जी जी

0: डॉक्टर साहब, दो बेटों की माँ होने के साथ साथ आप एक डॉक्टर हैं, संगीत प्रेमी हैं, अपना परिवार संभालती हैं, मंदिर के साथ एसोसिएटेड हैं, संगीत संध्या में भी हिस्सा लेती हैं और निसंदेह आप अपने दोस्तों में भी बहुत पॉपुलर हैं। तो इन सभी भूमिकाओं के बीच में संतुलन कैसे बनाती हैं आप?
1: संतुलन तो कह सकते हैं, लाइफ है तो व्यस्तता भी रहेगी।
0: जी
1: और मैं तो यही कहना चाहूंगी कि संतुलित होने के लिए आपको वक्त के साथ थोड़ा बहुत तो बदलाव करना पड़ेगा।
0: जी तो अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारे श्रोताओं के लिए कोई संदेश दीजिए, खासकर उन लोगों के लिए जो अपनी व्यस्त जिंदगी में भी अपने शौक को जिंदा रखना चाहते हैं।
1: जी, लाइफ है तो काम है, व्यस्तता भी है, बट आई वुड से कि अपने लिए थोड़ा सा तो वक्त निकालिए,
0: जी
1: अपने अपने शौक को पूरा करने के लिए थोड़ा सा टाइम निकालिए, फाइव
0: जी
1: मिनट्स 10 मिनट्स एटलीस्ट।
0: जी जो
1: तो
0: कि
1: मैं तो ये
0: जिसको आजकल
1: कहूंगी
0: हम कहते हैं कि
1: एटलीस्ट,
0: मी टाइम है, वो बहुत जरूरी है
1: या
0: हमारे
1: बहुत
0: लिए।
1: जरूरी है। जी हाँ, तो अगर आपके पास कोई भी शौक है, मैं ये नहीं कहूंगी सिंगिंग ही है, जो भी शौक है उसके लिए मुझे लगता है थोड़ा टाइम तो अपनी इस बिजी लाइफ में से निकालना चाहिए
0: जी
1: और इतना टाइम को देना चाहिए
0: जी वो
1: जिससे कि आप
0: हमारे
1: अपने
0: सुकून
1: शौक को
0: के लिए
1: जिंदा
0: भी
1: रख
0: बहुत
1: सके।
0: जरूरी है। और
1: जी
0: जी,
1: हाँ
0: जी आपने अपने एक्सपीरियंसेस, अपने अनुभव, संगीत के प्रति अपने प्रेम और जीवन की खूबसूरत सोच को जो हमारे साथ साझा किया है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी पूरी टीम की ओर से आपका दिल से धन्यवाद।
1: थैंक यू सपना, थैंक यू सो मच। और मुझे बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जयपुर रेडियो का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत
0: जी
1: अच्छा लगा आपसे बात करके।
0: जी हमें भी, और हम यही कामना करते हैं कि आप चिकित्सा के क्षेत्र में इसी तरह सेवा करती रहें और संगीत की मधुर धुनों से सबका दिल जीतती रहें। और हमारे
1: थैंक
0: प्यारे
1: यू।
0: श्रोताओं, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई शख्सियत, एक नई कहानी और नई गीतों के साथ। मैं हूं आरजे सपना देव गुप्ता और मेरे साथ हैं टेक्निकल एक्सपर्ट जगदीश अरोड़ा जी। मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए, रब राखा।
2: डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का ये जयपुर रेडियो वर्ल्ड है, आपकी आवाज आपकी पहचान। प्रस्तुत है प्रोग्राम संगीते शाम, और संगीते शाम में हमारे आज के मेहमान कलाकार हैं गोविंदगढ़ पंजाब से जगदीश अरोड़ा और यूएसए से अलका लश्करी। आज आप सुनेंगे आप दोनों के युगल गीत, और हम तो यही कहेंगे आइए शोक से गाइए। आप चाहें तो कुछ और कह सकते हैं, जगदीश अरोड़ा और अलका लश्करी संगीते शाम प्रोग्राम में।

0: आइए बैठिए। क्या है आपका नाम? और नाम हम बता देते हैं कि आज संगीत शाम में हमारे साथ जो सिंगर्स हैं उनके नाम हैं गोविंदगढ़ पंजाब के जगदीश अरोड़ा और यूएसए से अलका लश्करी। और जब कहेंगे गुलाम ही हो गए, तो जब कहेंगे तब बैठेंगे, जब कहेंगे तब उठेंगे, जब आप कहेंगे गाएंगे तो हम तो यही कहेंगे कि आप गाइए ना।
1: बैठ जा, खड़े हो जा,

गीतों से भी आप जादू कर सकते हैं। आवाज की जादूगरी आपने देख ही ली, वशीकरण भी है और सम्मोहन भी है। मोहक से गीत हमने सुने जगदीश अरोड़ा और अलका की आवाजों में। आप सुन रहे हैं डिजिटल वॉइस वर्ल्ड का जयपुर रेडियो वर्ल्ड प्रोग्राम संगीत शाम। और जब ऐसा हो जाता है वशीकरण गीतों का, आवाज का, तो फिर सब कुछ भूलना भी पड़ सकता है। इसलिए सावधान रहिए और गाते रहिए। आपकी आवाज आपकी पहचान। अलका लश्करी यूएसए से और पंजाब से जगदीश अरोड़ा। आपकी आवाज आपकी पहचान।

जी हाँ, गीतों की जादूगरी है और एक ही बात है जो कभी भूली नहीं जाती इन गीतों में। हम हर गीत में यही गाते हैं, यही कहते हैं और इसी को पाने की तड़प सी रहती है और इसी की दुश्वारी है, फिर भी हमें आपसे यारी है। आपकी आवाज आपकी पहचान। संगीत शाम प्रोग्राम में आप सुन रहे हैं जगदीश अरोड़ा और अलका लश्करी की आवाजें डिजिटल वॉइस वर्ल्ड के जयपुर रेडियो वर्ल्ड से। आपकी आवाज आपकी पहचान। आइए सुनते हैं अगला खूबसूरत गीत जगदीश अरोड़ा और अलका की आवाजों में।

की गल है जी। हाँ, और इस गल को आप सभी जानते हैं, हमारे सुनने वाले भी जानते हैं, और ये गल, ये बात आप तक पहुंचाई यूएसए की अलका लश्करी और पंजाब के गोविंदगढ़ से जगदीश अरोड़ा। आपकी आवाज, आपकी पहचान, संगीत शाम प्रोग्राम की ये आखिरी पेशकश आप दोनों की आवाजों में।

तुम मिले प्यार से, और हम तो कहेंगे कि आप दोनों आए प्यार से, यानी जगदीश अरोड़ा और अलका लश्करी इस प्रोग्राम में। और इस प्रोग्राम को आपने खूबसूरत बना दिया, बेहतरीन बना दिया अपने गीतों के माध्यम से, और गीत भी चुन चुन के लाए। हमारे सभी सुनने वालों को आपके गीत भाए, इसलिए हम लेना चाहेंगे उन लिसनर्स के नाम जिन्होंने आपको लाइक किया है। अनिल जय झुमके वाला मुंबई से, सोनल पारिक जूनागढ़ से, मंदाकिनी शाह वडोदरा गुजरात से, जगदीश तंवर पटियाला पंजाब से, मीता ठक्कर जगदलपुर छत्तीसगढ़ से, सुजाता जस्सानी गुजरात से, अनीता दुग्गड़ नेपाल से, तनु शर्मा हैदराबाद से, मीनू सिंह पंजाबी जयपुर राजस्थान से, महबूब अरमान यूपी से, अलका मदान दिल्ली से, अशोक पगाड़े हिमांशु सिंह जोधपुर से, और श्वेता सूद कनाडा से। आप सबका आभार। बहुत सारे फीडबैक्स मिले हैं, सभी का नाम लेना हमारे लिए संभव नहीं है क्योंकि अलग अलग डिवाइस और व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा आपको शुभकामनाओं के मैसेज मिले हैं। हमारे आज के इस मंच के उपस्थित कलाकार गोविंदगढ़ पंजाब के जगदीश अरोड़ा साहब, और यूएसए से हमारे साथ रही अलका लश्करी। आप दोनों का आभार और शुभकामनाएं। सुनते रहें आपकी आवाज, आपकी पहचान, संगीत शाम का ये सफर यहीं तक। आप सबका आभार।

0: आओ झूमे गाए। आप सुन रहे हैं जयपुर रेडियो, आपकी आवाज आपकी पहचान।
1: जीवन की इस आपाधापी में सभी व्यस्त हैं, न जाने किस दौड़ में शामिल है और न जाने ये दौड़ कब खत्म होगी। दोस्तों, कहीं ऐसा ना हो ये जीवन रेत की तरह आपकी मुट्ठी से फिसल जाए और आपको पता भी न लगे। तो जनाब, ढूंढ लीजिए कुछ मनोरंजन के साधन और जी लीजिए अपनी जिंदगी। मनोरंजन की बात चली है तो मेरे अनुसार मनोरंजन का एक सशक्त माध्यम है फिल्में। अब ये फिल्में हो सकती हैं बॉलीवुड की, टॉलीवुड की या फिर हॉलीवुड की फिल्में, और वो भी संगीत प्रधान फिल्में, तो भाई क्या बात है। वो कहते हैं ना, खाने में यदि नमक ना हो तो वो बेस्वादी सा लगता है। इसी तरह से जीवन में संगीत ना हो तो फिर क्या जीना यारो। अनदेखी अनजानी मस्तानी पहचानी और थोड़ी सी दीवानी तनु का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ डांसिंग दीवा ऑफ बॉलीवुड। आज के मेरे गीतों के पिटारे को खोलने से पहले आप सबको एक वादा करना होगा, और वो भी पक्का वादा, क्योंकि आज का हमारा कार्यक्रम समर्पित है डांसिंग दीवाज ऑफ बॉलीवुड को। तो जब आओ झूमे गाए समूह के सदस्य अपने खूबसूरत गीतों को प्रस्तुत करें तो आप भी उनके साथ थिरकिएगा जरूर। पक्का वादा? ठीक है, तो लीजिए पेशे खिदमत है आज की इस खुशनुमा सांझ का पहला गीत संचप्पा सुंतारा दीपशिखा और डॉक्टर गिरीश की मधुर आवाजों में।

चंपा और तारा ने तो एक दूसरे की बात सुन ली है, पर मैंने आपकी तालियों की गड़गड़ाहट नहीं सुनी। कंजूसी नहीं चलेगी जनाब, चलिए बजा भी दीजिए तालियां हमारे हुनरमंद कलाकारों दीपशिखा और डॉक्टर गिरीश के लिए। दोस्तों, कुछ गाने जब हम गाते हैं तो हम नहीं, हमारी खामोशियां गुनगुनाती हैं। ये गाने हमें प्यार की धुन पर नाचने के लिए मजबूर सा कर देते हैं, और यही वो गीत है जो हमें संगीत के नशे में हमेशा बहकाए रखते हैं। चलिए लुफ्त उठाते हैं अगले गीत का, जिसे प्रस्तुत करने आ रही हैं संगीता और तान्या। गीत के बोल होठों पे ऐसी बात, और फिल्म का नाम है ज्वेल थीफ।

संगीता और तान्या, आपने होठों पे जो बात दबा कर रखी थी वो जग जाहिर नहीं हुई है। इस खूबसूरत प्रस्तुति के बाद आपका तारुफ कराना चाहती हूँ ऐसे दो कलाकारों से जिनका कहना है कि मेरे पैरों में घुंघरू बंधा दो तो फिर मेरी चाल देखना। तो आइए देखते हैं उनकी चाल। नाना मेरा मतलब है, सुनते हैं ये गीत।

अभी जो ये गीत आपने सुना वो था फिल्म संघर्ष से, जो प्रदर्शित हुई थी 1968 में। अगला गीत जो मैं आपकी नजर करने जा रही हूँ, दरअसल वो एक रिजेक्टेड गीत था। जी हाँ जनाब, आपने ठीक सुना, रिजेक्टेड। तो हुआ यूँ कि ये गीत पहले देवानंद साहब की फिल्म के लिए रिकॉर्ड किया गया था, पर देवानंद साहब को ये कुछ खास पसंद नहीं आया, जिसके चलते गीत के कंपोजर जयकिशन साहब ने इस गीत को सुरक्षित रखा। एक दिन यूँ ही उन्होंने एक पार्टी में इस गीत को बजाया और पार्टी में उपस्थित शमी कपूर साहब इस गीत से बेहद मुतासिर हुए। उन्होंने जयकिशन साहब से इस गीत को उनकी फिल्म ब्रह्मचारी में सम्मिलित करने की गुजारिश की। जयकिशन साहब जी ने उनकी गुजारिश सहर्ष मंजूर कर ली और इस तरह से ये प्लेटिनम गाना सम्मिलित हो गया फिल्म ब्रह्मचारी में, और आगे जो हुआ वो एक इतिहास ही है। आइए सुनते हैं ये प्लेटिनम गाना प्रशांत जी और मनीषा की सुमधुर आवाजों में।

आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे। दोस्तों, बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि यह गीत लता दीदी ने गाया है। वैसे सच तो ये है कि यह गीत मोहम्मद रफ़ी साहब ने गाया था और उनके सुर में सुर मिलाया था सुमन कल्याणपुर जी ने। इश्क वालों से न पूछो कि उनकी रात का आलम तन्हा कैसे गुजरता है, जुदा हो हम सफ़र जिसका वो उसको याद करता है, ना हो जिसका कोई वो मिलने की फरियाद करता है। आपकी नज़र अगला गीत अनजान साहब की जादुई कलम से, जो कि सराबोर है इश्क प्यार मोहब्बत के पाक और पाकीज़ा एहसास से। अगला गीत फिल्म मुकद्दर का सिकंदर से, जिसे फिल्म में गाया था लता दीदी और किशोर दा ने, और हमारे लिए यह लेके आ रहे हैं बिमल जी और कविता।

भाई क्या बात है। दोस्तों आप सभी से करबद्ध प्रार्थना, आप एकांत में बैठ जाएं और ईश्वर की ओर अपना ध्यान लगाने का प्रयत्न करें, क्योंकि कार्यक्रम का अगला गीत भक्ति रस से ओतप्रोत जो है, और भक्ति रस का रसपान कराने आ रहे हैं संजय जोशी जी और उनका साथ दे रही है रति।

जय जय शिव शंकर, बेहतरीन प्रस्तुति। और ये लिया गया था फिल्म आपकी कसम से। वैसे फिल्म आपकी कसम के लगभग सारे गीत बेहद मशहूर हुए थे, फिर वो सुनो कहो हो या फिर जिंदगी के सफर में या फिर करवटे बदलते रहे। दोस्तों, आपने कहावत तो जरूर सुनी होगी, दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। उसी तरह से मैं कहती हूँ, गाने गाने पर लिखा होता है फिल्म का नाम। कार्यक्रम की अगली पायदान पर जो गीत मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, वो किसी और फिल्म के लिए बनाया गया था, लेकिन बजाया गया किसी और फिल्म में। तो ये फिल्म थी कसाब, और फिरोज खान ने इस फिल्म के लिए एक बेहद ही पैरों को थिरकाने वाला गीत बनाया, लेकिन ये गीत सम्मिलित हुआ फिल्म कुर्बानी में, और इसने सफलता के परचम लहरा दिए। बुलाना चाहूंगी दोनों लैलाओं को, माफ कीजिएगा, दोनों गायिकाओं को, अनुजा और प्रियंका को। स्वागत है।

गुलू गुलू गुलू गुलू

वाह भाई वाह, धूम मचा दी आप दोनों ने। दोस्तों बात है उस समय की जब चार दिग्गज एन चंद्रा, लक्ष्मीकांत जी, प्यारे लाल जी और जावेद अख्तर साहब, ये चौकड़ी एकत्रित हुई थी एक गाने को खूबसूरत स्वरूप देने के लिए। लेकिन निर्देशक एन चंद्रा साहब चाहते क्या थे वो बता नहीं पा रहे थे, जिसके चलते जावेद साहब मीटिंग छोड़कर चले गए। दूसरी मुलाकात हुई एन चंद्रा और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी की। एन चंद्रा साहब ने एक मराठी धुन सुनाई और इस गीत पर जो बोल उन्होंने गाए वो थे डिंग डोंग डिंग, डिंग डोंग डिंग डोंग। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने तुरंत अपना हारमोनियम लिया और इसी गीत को रिकॉर्ड किया गया। और पता है डमी बोल क्या थे? वो बोल थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। साहब ने जब ये डमी बोलों को सुना तो उन्हें ये बोल बहुत अच्छे लगे और उन्होंने इन बोलों को ऐसे ही उस गीत में उतार दिया और इस तरह से उत्पत्ति हुई एक बेहद ही मशहूर चार्टबस्टर गीत की। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं बात कर रही हूँ फिल्म तेजाब की, उस मशहूर गीत की। आइए सुनते हैं यही गीत।

दोस्तों, आपको याद है ना, आपने वादा किया था अपने पैरों को थिरकाते रहने का। इतनी मधुरता से गिनती सिखाने के लिए गगन माथुर और डॉली जी का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, जब हम किसी से मिलते हैं तो सबसे पहले हमारा ध्यान कहाँ जाता है? जी हाँ, आँखों पर, आँखों की खूबसूरती पर। और यही कारण है कि आँखों की खूबसूरती पर शायर रीझ ही जाते हैं। इनके चार हो जाने से इश्क का मौसम जो आ जाता है जनाब, और जब इन आंखों में कचरा लगा दिया जाए तो मानो आसमान पर अटखेलिया करते बादल घेर आते हैं। कचरारे नैनों का बखान करने के लिए आमंत्रित कर रही हूँ मुकेश चोपड़ा जी को, और उनके सुर मिलाने का सौभाग्य मिल रहा है मुझे, यानी तनुजा मुंदड़ा को।

0: कचरा रे कचरा रे तेरे कारे कारे नैना। इस गीत के लिए अलीशा चुनाई जी को फिल्म फेयर का सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका का अवार्ड मिला और साथ ही साथ वह भी मर्चेंट को सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफर का अवार्ड मिला था। जयपुर रेडियो सुन रहे हैं आप और मैं हूँ तनु जमुंदड़ा आपके साथ, लेकर आई हूँ डांसिंग दिवा ऑफ बॉलीवुड। पेश है कार्यक्रम का अंतिम लेकिन बेहतरीन गीत, जो कि लिया गया है मेरी पर्सनल फेवरेट फिल्म ये जवानी है दीवानी से। इस फिल्म का प्रत्येक चरित्र आत्म प्रेम, स्वयं की स्वीकृति और सपनों पर विश्वास करना सिखाता है। स्वागत कीजिए वीसी किशोर और प्रेरणा का, जो कि लेकर आ रहे हैं दिल्ली वाला घाघरा।
1: साहेबान कदरदान मेहरबान, दिल थाम के बैठिए क्योंकि अब आपके सामने तशरीफ ला रही है आगरा की अजीम फनकारा मलिका हुस्न नूर नजर मोहतरमा मोहिनी

0: वाह, मौसम बदल दिया। दोस्तों, घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि समय हो चला है आपसे विदा लेने का। अपनी सखी तनुजा को इजाजत दीजिए, फिर मिलूंगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और हाँ, सुनना ना भूलिएगा जयपुर रेडियो। भक्ति प्रभा, भजनों की सरिता, आप सुन रहे हैं जयपुर रेडियो, आपकी आवाज आपकी पहचान।
1: नमस्कार मित्रों, मैं लक्ष्मी बालचंद्रन आप सभी श्रोताओं का स्वागत करती हूँ हमारे कार्यक्रम भजनों की सरिता में। मित्रों, हमारे यहाँ कई ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने मानवता को एक अलग दिशा दिखाई है। इन महापुरुषों के विचारों ने समय समय पर हमें नई ऊर्जा और सोच का अनुभव कराया है। ऐसे ही सकारात्मक ऊर्जा से भरे और प्रेरणापद विचार रखने वाले महापुरुषों में एक हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। आज का ये कार्यक्रम उस महान कवि को समर्पित है। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि जब तुलसीदास जी ने राम गाथा लिखना शुरू किया तो दिन के दौरान उनके द्वारा लिखे गए सभी छंद अगले दिन तक गायब हो जाते थे। एक सप्ताह तक लगातार ऐसा होता रहा, जिसके पश्चात भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिया और उन्हें संस्कृत के बजाय एक स्थानीय भाषा में लिखने का निर्देश दिया। तो चलिए, इस पावन माह में गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित शिव रुद्राक्ष स्तोत्र से शुरुआत करते हैं। इसे प्रस्तुत करने आ रहे हैं अनूप शर्मा जी, संजय फड़के जी, संजय हरने जी, एस महर्षि जी, ललिता कृष्णमूर्ति और

आप सुन रहे हैं जयपुर रेडियो। मित्रों, कहते हैं कि तुलसीदास जी जन्म के समय रोए नहीं थे, बल्कि राम शब्द का उच्चारण किया था और इसलिए उन्हें राम बोला के नाम से जाना जाता था। तुलसीदास जी रामानंद वैष्णव संप्रदाय के वंशज थे, जिन्होंने खुद को भगवान राम की पूजा के लिए समर्पित कर दिया था। भगवान राम जी उनके व्यक्तित्व में इतने सम्मिलित थे कि तुलसीदास जी ने एक गीत की रचना की मानो जैसे वे खुद वहां उपस्थित थे। वह दृश्य था भगवान राम का जन्म और उनकी बाल्यावस्था। किलकी किलकी उठत धाय, गिरत भूमि लटपटाए, धाय मात गोद लेतु दशरथ की रानिया, ठुमक चलत रामचंद्र। इसे प्रस्तुत करने आ रहे हैं प्रेरणा जकादार, शोमा चटर्ज रॉय और दीपा गणेश।

मित्रों, गोस्वामी तुलसीदास जी की अनेक रचनाएं हैं, जिनमें से एक विनय पत्रिका है। कई देवी देवताओं के स्तुति गीत इसमें शामिल है, हालांकि प्रमुख स्थान भगवान राम जी को दिया गया है। इस दिव्य रचनावली से एक मशहूर भजन सुनते हैं, जिसे मूल रूप में लता मंगेशकर जी ने प्रस्तुत किया है। जयपुर रेडियो के लिए प्रस्तुत करने आ रहे हैं विद्याशंकर

यमुना तट टीले रेतीले, घास फूस का घर डंडे पर, गोबर से लीपी आंगन में, तुलसी का बिरवा घंटी स्वर, माँ के मुंह में रामायण के दोहे चौपाई रस घोले, आओ मन की गांठें खोले। ये पंक्तियां हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविता आओ मन की गांठें खोले में से हैं। मित्रों, हम और आप एक पल हमारे अतीत में जाए तो एक चीज हमारे बीच स्वरूप होगा और वह है रामायण। हम सभी ने हमारी दादी नानी से रामायण की कहानियां जरूर सुना है। तुलसीदास जी को महर्षि वाल्मीकि, जो संस्कृत में मूल रामायण के लेखक थे, उनका अवतार माना जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा अवधी भाषा में रचित हनुमान चालीसा श्री हनुमान जी पर एक अति प्रिय भजन है। उत्तर भारत में अधिकांश घरों में इसका रोजाना पाठ होता है। नियमित रूप से इसका जाप करने से हमें अनेक लाभ प्राप्त होते हैं, जैसे तनाव से मुक्त होना, हमारे सभी प्रयासों में बाधाओं को दूर करना और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने में मदद करता है। आइए सुनते हैं भगवान राम जी के भक्त हनुमान जी को समर्पित 40 चौपाई की यह माला। इसे प्रस्तुत करने आ रहे हैं अनूप शर्मा, ललिता कृष्णमूर्ति, मुकेश चोपड़ा, संजय हरने, एमडी त्यागी, चारुल सक्सेना, तनुजा मोंद्रा, रमावी और मैं लक्ष्मी बालचंद्रन।

0: बोलो सियावर रामचंद्र की जय।
1: जय
2: पवन सुत हनुमान की जय।
3: तुलसी साथी विपत्ति के, विद्या विनय विवेक, साहस सुकृति सुसत्य व्रत, राम भरोसे एक। तुलसीदास जी कहते हैं कि किसी भी विपदा से ये सात गुण आपको बचाएंगे। विद्या विनय विवेक साहस आपके भले कर्म, सत्यनिष्ठा और भगवान के प्रति आपका विश्वास। आइए हम इन सभी सकारात्मक विचारों का अनुभव करें। जाते जाते मैं लक्ष्मी बालचंद्रन आप सभी श्रोताओं का धन्यवाद करती हूँ। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। धन्यवाद।
0: भक्ति प्रभा, भजनों की सरिता, आप सुन रहे हैं जयपुर रेडियो, आपकी आवाज आपकी पहचान। आपका तहे दिल से अभिनंदन है। आपकी सखी तनुजा मुंदड़ा पुनः उपस्थित है एक भक्तिमय प्रस्तुति के साथ। दोस्तों, सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति एवं संहार के अधिपति देव है शिव भोलेनाथ। जिस प्रकार इस ब्रह्मांड का ना तो कोई आरंभ है और ना कोई अंत, उसी प्रकार शिव अनादि हैं, अनंत हैं। संपूर्ण प्रकृति शिव के अंदर समाहित है। कार्यक्रम का प्रारंभ कर रहे हैं शिव स्तुति के साथ। शिव भक्त वीरेंद्र मिश्रा जी की इस प्रार्थना के साथ, भोर भई अब जागो शंभू।

बेहद खूबसूरत प्रस्तुति। दोस्तों, सतयुग द्वापर युग में ईश्वर प्राप्ति के लिए तप, तपस्या, अनुष्ठान, आराधना की जाती थी, लेकिन कलयुग में ईश्वर नाम मात्र से ही मानव जीवन तर जाता है। इसलिए हमें जहाँ भी मौका मिले ईश्वर सुमिरन का मौका चूकना नहीं चाहिए। कबीरदास ने भी क्या खूब कहा है, कबीर सुमिरन सार है और सकल जंजाल, कबीर सुमिरन सार है और सकल जंजाल, आदि अंतमति सोधियो, आदि अंतमति सोधियो, दूजा देखा काल। यानी ईश्वर का ध्यान सुमिरन ही मुख्य है, बाकी सब तो मोह माया है, जंजाल है। शुरू में, अंत में और मध्य में यदि जांच परख कर देखा जाए तो सुमिरन के अलावा बाकी सब कुछ दुख मात्र है। अगली प्रस्तुति नाम की महिमा को बताती हुई, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं संजय हरने जी, नाम हरि का जप ले रे।

दोस्तों, हिंदू धर्म में माता दुर्गा की पूजा बड़ी ही आस्था के साथ की जाती है। ऐसा माना जाता है कि माँ दुर्गा जिस भी भक्त से प्रसन्न होती हैं, उसके जीवन के सभी कष्टों का नाश कर देती हैं। दुर्गा जी की तुलना परम ब्रह्मा से भी की जाती है। दुर्गा को आदिशक्ति, प्रधान प्रकृति, गुणवती माया, बुद्धि तत्व की जननी और विकार रहित बताया गया है। कहते हैं माँ दुर्गा अपने भक्तों को अंधकार और अज्ञानता से बचाती है। माता दुर्गा के आदि शक्ति स्वरूप की आराधना करने हमारे समक्ष आ रहे हैं मुकेश चोपड़ा जी।

बहुत खूब दोस्तों, आदि शक्ति को सनातन निराकार परब्रह्म जो कि ब्रह्मांड से भी बड़े एक सर्वोच्च शक्ति के रूप में माना जाता है। ये शक्ति मूल रूप से निर्गुण है, परंतु निराकार परमेश्वर जो न स्त्री है न पुरुष ने जब सृष्टि की रचना की तो इस आदि पराशक्ति को बल से भरपूर बना दिया। हमारी अगली प्रस्तुति एक भक्त की गुहार जो पग पग ठोकर खाने के बाद आदि शक्ति से मांग रहा है, शक्ति दे मां, शक्ति दे मां। प्रस्तुत करने आ रहे हैं महेश साठे।

आदिशक्ति से प्रार्थना, इस कठिन समय में जो भी लोग मझधार में डूब रहे हैं उन्हें अपनी शक्ति से उबारे। दोस्तों, प्रभु का रास्ता बड़ा ही सीधा है और उतना ही उलझा हुआ भी। जी हाँ, बुद्धि से चलें तो बहुत उलझा हुआ और भक्ति से चलें तो बहुत सीधा, विचार से चलें तो बहुत दूर और भाव से चलें तो बहुत पास, नजरों से देखें तो कण कण में और यदि अंतर मन से देखें तो जन जन में। देरी है तो सिर्फ सुमिरन की, उसको पुकारने की। तो हमारा अगला भजन लेकर आ रही हैं चारुल, प्रभु तेरो नाम।

बेहतरीन प्रस्तुति। दोस्तों, आप सभी के जीवन में कभी ना कभी तो ऐसा क्षण अवश्य आया होगा जब आपने अपने अंतर्मन के तार उस अलौकिक आदर्श शक्ति से जुड़े हुए महसूस किए होंगे। कुछ ऐसे ही अनुभूति ये भजन सुनकर आपको अवश्य होगी, जिसे लेकर आ रहे हैं संजय गुप्ता जी।

जी हाँ, सत्य ही तो है, ईश्वर सदा हमारे साथ। ईश्वर वंदना एक माध्यम खुद को ईश्वर के और निकट ले जाने का। फिर उपस्थित होंगे एक और भक्तिमय प्रस्तुति के साथ। तब तक जपते रहिए हरि का नाम और सुनते रहिए जयपुर रेडियो।

नमस्कार मित्रों, भजनों की सरिता में मैं लक्ष्मी आप सभी श्रोताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देवी दुर्गा को सबसे शक्तिशाली देवता माना जाता है। चलिए इनकी आराधना में इस गीत को सुनते हैं, जिसे मूल रूप से लता मंगेशकर जी ने गंगा की लहरें फिल्म के लिए गाया है। इस गीत के लेखक थे मशरू सुल्तानपुरी और इसके संगीतकार थे चित्रगुप्त जी। हमारे लिए प्रस्तुत करने आ रही है।

वाह ललिता जी, बेहद खूबसूरत प्रस्तुति। मित्रों, विश्व माता जगद्धात्री ही जगदम्बा माता है। देवी महात्म्य अच्छाई और बुराई के बीच एक लड़ाई का वर्णन करता है, जहां देवी दुर्गा राक्षस महिषासुर के खिलाफ सद्गुणों का नेतृत्व करती है और बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। आइए सुनते हैं जगदम्बे माँ की गुणगान इस भजन में, जिसे मूल रूप से अनूप जलोटा जी ने गाया है। इसके लेखक हैं राजेश जौहरी और जयपुर रेडियो के लिए प्रस्तुत

ने तो एकदम से माहौल ही भक्तिमय बना दिया है। मित्रों, संतोषी माता या संतोषी माँ, इन्हें संतुष्टि की माँ के रूप में सम्मानित किया जाता है। संतोषी माता की पूजा विशेष रूप से उत्तर भारत की महिलाएं करती हैं। संतोषी माँ व्रत महिलाओं द्वारा लगातार 16 शुक्रवार करने से ऐसा माना जाता है कि देवी की कृपा प्राप्त होती है। आइए संतोषी माता की आरती सुनते हैं, जिसे मूल रूप से उषा मंगेशकर जी ने गाया है। इस गीत के लेखक थे कवि प्रदीप और इसके संगीतकार थे सी अर्जुन। इसे जयपुर रेडियो के लिए प्रस्तुत करने आ रही हैं मुंबई से विद्या शंकर जी।

बेहद खूबसूरत विद्या जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, पुराणों में दुर्गा देवी को पुरुष देवताओं की सहायता करने, राक्षसों को मारने के लिए सक्रिय करने के रूप में चित्रित किया गया है। दुर्गा देवी अपने आप में भी सक्रिय है महिषासुर के साथ उसकी लड़ाई में। दुर्गा माता को कई भुजाओं के साथ वर्णित किया गया है, जिनमें से प्रत्येक के पास एक हथियार है और एक भयंकर सिंह की सवारी भी है। हालांकि एक विजयी योद्धा दुर्गा जी को एक सुंदर रूप में भी चित्रित किया जाता है और कभी कभी उन्हें माँ भी कहा जाता है, जो इस देवी के बहुआयामी स्वरूप को प्रदर्शित करती है। आइए सुनते हैं इनकी आराधना में एक और भजन, जिसे प्रस्तुत करने आ रहे हैं संजय।